0: जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
1: मेरे ख्याल से इन्होंने जो विवाद रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: सरकार के सामने कॉकरोच जनता पार्टी ने तीन मांगे रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
2: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूजडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूजडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग FIR के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
3: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हुआ, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा है। सोमवार को एक बार फिर मानसून सत्र की शुरुआत होगी, संसद खुलेगा, जहां पर बड़े घमासान के आसार हैं।
4: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
5: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
6: खुश है कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।
4: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
7: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे।
8: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
4: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मानसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी, तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
9: They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
10: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
11: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
4: उधर दिपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है,
12: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
4: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
3: लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन दिखे। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, खबर आई उसके बाद से जश्न मनता हुआ दिखाई दिया। कई शहरों में विरोध उग्र दिख रहा था और अब सवाल बड़ा यह है कि ऐसे शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा जो है ये करवाया है, इसके पीछे क्या क्या वजह रही है, इनसाइड स्टोरी बताते हैं।

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।
2: ना घर से पता गया है?
3: नहीं,
2: घर पे नहीं बोला है?
3: नहीं,
2: घर पे क्या बोला है?
3: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था
2: हाँ
3: कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
2: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुँच गए? आक्रोश देख के पहुँचे, प्रोटेस्ट देख के पहुँचे?
3: प्रोटेस्ट देख के पहुँचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तोड़फोड़। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला, यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
4: ये लोग कहाँ से हैं सर?
5: कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो कि
4: राजस्थान से। बाहर से भी पकड़ा रहे, बाहर के लोग
5: आए, बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग को ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना।
6: यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है, जो ढेला देखिए तो ढेला चलाए, उससे फोड़ फाड़ दिए,
7: चोट भी लगा।
6: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे इसमें न थे, इसमें होगा तो होइएगा, हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई, अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
8: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
9: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो, घर जब भी आना, जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
10: के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या होगा? क्या अब और मुद्दों पर कांग्रेस जनता पार्टी उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी? तो इसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
11: आई का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया।
7: नहीं, हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको दो महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, आई थिंक ये मेन आप।
12: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने के वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
11: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
13: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना इतना, अभी आगे क्या क्या होता है।
14: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा, उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
11: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
10: अब बात गुजरात की करेंगे, क्योंकि गुजरात में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर इस समय आपदा की चपेट में है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। नवसारी में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो गई।

0: गुजरात इस समय आसमानी आफत झेल रहा है। पिछले दो दिनों में दक्षिण गुजरात के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए, शहर पानी में डूब गए, गांवों का भी बुरा हाल है। अहमदाबाद हो या वलसाड़ या फिर सूरत, हर जगह मॉनसून अपने साथ मुसीबत लेकर आया है।
1: अहमदाबाद के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति है। दो दिन में 20 इंच बारिश के कारण अहमदाबाद के काफी सारे इलाके जो है जलमग्न हुए थे। अभी हम जो है गुमा इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे जलदीप 3 जलदीप 4 ये सोसाइटियां आई हुई हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जिस तरह से जो है पानी की निकासी नहीं हो रही, दो दिन में पहले बारिश हुई थी 20 इंच, पर कल से जो है बारिश बंद हुई, फिर भी जो है वो जल जमाव अभी भी देखने को मिल रहा है।
0: नवसारी, वलसाड़, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग ये वो जिले हैं जहां मॉनसून का आक्रमण हुआ है।
1: अहमदाबाद में बारिश का जोर कम हुआ है, पर जल निकासी का इश्यू अभी भी लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है। हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
0: अहमदाबाद में बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2000 के बाद पहली बार अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर इतनी बरसात हुई थी जितनी अब हुई है। साल 2000 में अहमदाबाद में एक दिन में 328 mm बारिश हुई थी। 23 जुलाई 2026 को 294 mm बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के बोपल में 23 और 24 जुलाई के बीच 491 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। अहमदाबाद शहर पर आसमानी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अहमदाबाद में 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के अलावा स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई हैं। प्रभावित इलाकों से अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है।
2: तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल साउथ गुजरात में खासतौर पर, जिसमें वलसाड़, नवसारी, डांग, सूरत और दमन, ये सब इलाके में काफ़ी भारी बारिश हुई है। उसके वजह से फ्लडिंग हुई, एनडीआरएफ की टीम्स को वहां भेजा गया है, मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया है और एडिशनल टीम्स जो है डिमांड की गई। उड़ीसा से हमने 4 टीम एयरलिफ्ट की है और गुजरात में अभी 2 अहमदाबाद में, 1 नवसारी में, 1 सूरत में तैनात की गई है।
0: अहमदाबाद के बोपल इलाके में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत को जाना परखा और फिर आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से सहयोग करेगी, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उधर वलसाड़ में गुजरात से डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ग्राउंड पर उतरे। वलसाड़ में मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मची है। 12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। हर्ष सांघवी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर बार देखे और अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सूरत की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। नाव से ही अफसरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। नवसारी जिले की नदियों में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कावेरी नदी में आई बाढ़ से कर्णदेवी इलाके में 9 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें गांव के आसपास नदी और खेतों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।
3: बाद पहाड़ों की हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। पहाड़ी इलाकों में मुसीबत दोगुनी हो जाती है क्योंकि बारिश के साथ साथ पहाड़ दरकने लगते हैं। चंबा में कार पर मलबा गिरा जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है।
4: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से तरबतर है तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है जहाँ खड़मुख में NHPC परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते ही देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहाँ से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंबा के ही जनजातीय इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा जिसकी चपेट में कार आ गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
5: जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहाँ मार्ग में उदयपुर के आगे कुड्डू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहां पर बच पाए हैं।
4: तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम ना उठाए। सिर्फ हिमाचल नहीं जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है।
6: जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी है और पिछले 3 से 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगहों पे तबाही बहुत ज्यादा है, इसमें जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके हैं, लेकिन अब जेहलम भी जो है उबाल पे है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी फ्लड डिक्लेरेशन मार्ग जेहलम ने क्रॉस कर लिया है और अभी हालात ये है कि जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जेहलम का अगर फ्लड की बात करें तो श्रीनगर में जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कश्मीर में जो क्लाउड बस्ट होते हैं और बारिश होती है वही पानी जो है जेहलम में आता है और फिर वही फ्लड ला सकता है। यही कहानी हमने 2014 में देखी और अभी जैसे आप देख सकते हैं कल से तकरीबन 2 से 3 फीट तक इसका पानी बढ़ा है।
4: भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से झेलम का पानी घट रहा है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
3: ईरान अमेरिका टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत जारी है लेकिन जरूरत पड़ी तो हमले और तेज किए जाएंगे, दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और खाड़ी देशों में चेतावनी जारी कर चुका है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से अहम मुलाकात होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की अब निगाहें हैं।

0: भीषण बमबारी, तबाही भारी। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ बातचीत जारी। फिर तल्ख हुए अमेरिका ईरान, हॉर्मुज में भी घमासान। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका और ईरान के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर रहा है। ताजा हमलों में उसने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें बरसाई हैं। इनमें बंदर अब्बास, तेहरान और अहवाज जैसे शहर शामिल हैं। अहवाज खुजस्तान प्रांत की राजधानी है और ईरान के तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। ईरान का दावा है कि अहवाज पर 40 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका के इस हमले से ईरान के रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान के जिन शहरों में बमबारी की है उनमें बंदर अब्बास, जास्क, कोनारक, सुझा, ताफ्त, खोंडाब, खुर्रमाबाद, अहवाज, खुर्रम शहर, अनारक, फिरोजाबाद और उम्मीदिये शामिल हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। सीजफायर टूटने के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान में तबाही न मचाई हो। वॉशिंगटन में कल रात मीडिया ने इस युद्ध के बारे में जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन लगता है कि तेहरान फिलहाल कोई डील करने के मूड में नहीं है।
1: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys.
0: माना कि बातचीत चल रही है और मिसाइलों के बीच भी मुलाकात के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई तो आने वाले दिनों में क्या युद्ध और भीषण होगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वहां वह राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, कहा पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से अधिक है अहम देश। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन, दीपके ने कहा लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर में छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीट, राहुल गांधी ने कहा सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की उतनी ही संघ की, अखिलेश बोले सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, गांधी मैदान में छात्रों के समर्थन में शामिल हुए थे, सीजेएम कोर्ट में हुई पेशी। और गुजरात में बाढ़ से बिगड़ गए हालात, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम में भी 61 ने गवाई जान।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार ने छात्रों की सारी शर्तों को मान लिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है और अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ था। क्या पेपर लीक अब रुक जाएगा? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत अब कोई नहीं कर पाएगा?

0: छात्रों की मांग कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद, विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। दो पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: हर तरह से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
0: आज सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे राउंड

0: की बैठक थी जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
1: मेरे ख्याल से इन्होंने जो रिवाज रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: सरकार के सामने कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मांगे रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
2: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIRs के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
3: और इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको दिखा दें। आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी की तरफ से बयान दिया गया है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे बखूबी वो निभाएंगे। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा और प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी उनकी तरफ से अदा किया गया है।
4: अभी अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
3: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा हुआ है। सोमवार को एक बार फिर से मानसून सत्र के लिए संसद खुलेगी, जहां बड़े घमासान के आसार हैं।
5: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है।
6: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।
7: खुश है कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।
5: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
8: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे।
9: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
5: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मानसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी, तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
10: पैलेट गन्स वर फायर्ड एट देम, टियर गैस वाज फायर्ड एट देम, दे वर बीटन विद लाठीज, they had injuries, serious injuries, but they did not bend. द गवर्नमेंट हैड टू बेंड टू देयर विल।
11: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
12: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
5: उधर दीपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है,
13: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
5: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
3: पेपर लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन होते रहे, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई थी सभी जगह जश्न मनाया जाने लगा। हालांकि कई शहरों में ये विरोध उग्र भी होता हुआ नजर आया। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे ही शहर शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा करवा दिया?

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: इसके अलावा पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
2: ये ना घर से पता गया है?
3: नहीं।
2: घर पे नहीं बुलाया?
3: नहीं।
2: घर पे क्या बोला है?
3: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था।
2: हाँ।
3: कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
2: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुँच गए? आक्रोश देख के पहुँचे, प्रोटेस्ट देख के पहुँचे?
3: प्रोटेस्ट देख के पहुँचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। वहीं कुछ ने तोड़फोड़, हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं की। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला। यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
4: ये लोग कहाँ से हैं सर?
5: कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो कि
4: बाहर से भी पकड़ा रहे। बाहर के लोग
5: बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग को ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना।
6: यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है जो ढेला देखिए तो ढेला चलाया, फोड़ फाड़ दिए,
7: चोट भी लगा।
6: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे इसमें न थे, इसमें होगा तो होइएगा। हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ। पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई। अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
8: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
9: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो, घर जब भी आना, जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
10: पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या होगा? क्या अब और मुद्दों पर कांग्रेस जनता पार्टी उतर आएगी? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
11: जे आई
7: का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया,
11: नहीं हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको दो महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात भी रख सकते हैं, तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, आई थिंक वी हैव मेड आवर पॉइंट।
12: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने के वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है, एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
7: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
13: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना, इतना अभी आगे क्या क्या होता है।
14: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
7: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
10: और अब बात करेंगे गुजरात की, क्योंकि गुजरात में बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। अहमदाबाद सूरत जैसे शहरों में भी इस आपदा की वजह से बहुत परेशानियां हैं। सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ साथ ही कोस्ट गार्ड्स को रेस्क्यू में लगा दिया गया है। नवसारी में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो गई।
15: गुजरात इस समय आसमानी आफत झेल रहा है। पिछले 2 दिनों में दक्षिण गुजरात के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए, शहर पानी में डूब गए, गांवों का भी बुरा हाल है। अहमदाबाद हो या वलसाड़ या फिर सूरत, हर जगह मॉनसून अपने साथ मुसीबत लेकर आया है।
16: अहमदाबाद के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति है। 2 दिन में 20 इंच बारिश के कारण अहमदाबाद के काफी सारे इलाके जो है जलमग्न हुए थे। अभी हम जो है गुमा इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे जलदीप 3 जलदीप 4 ये सोसाइटियां आई हुई हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जिस तरह से जो है पानी की निकासी नहीं हो रही, 2 दिन में पहले बारिश हुई थी 20 इंच, पर कल से जो है बारिश बंद हुई, फिर भी जो है वो जल जमाव अभी भी देखने को मिल रहा है।
15: नवसारी, वलसाड़, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग, ये वो जिले हैं जहां मॉनसून का आक्रमण हुआ है।
16: अहमदाबाद में बारिश का जोर कम हुआ है, पर जल निकासी का इश्यू अभी भी लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है, हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
15: अहमदाबाद में बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2000 के बाद पहली बार अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर इतनी बरसात हुई थी जितनी अब हुई है। साल 2000 में अहमदाबाद में एक दिन में 328 mm बारिश हुई थी। 23 जुलाई 2026 को 294 mm बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के बोपल में 23 और 24 जुलाई के बीच 491 mm से ज्यादा बारिश हुई है। जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। अहमदाबाद शहर पर आसमानी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अहमदाबाद में 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के अलावा स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई है। प्रभावित इलाकों से अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है।
17: तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल साउथ गुजरात में खास तौर पर, जिसमें वलसाड, नौसारी, डांग, सूरत और दमन, ये सब इलाके में काफ़ी भारी बारिश हुई है। उसके वजह से फ्लडिंग हुई। एनडीआरएफ की टीम्स को वहाँ भेजा गया है। मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया है और एडिशनल टीम्स जो है डिमांड की गई। उड़ीसा से हमने 4 टीम एयरलिफ्ट की है और गुजरात में अभी 2 अहमदाबाद में, 1 नवसारी में, 1 सूरत में तैनात की गई है।
15: अहमदाबाद के बोपल इलाके में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत को जाना परखा और फिर आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से सहयोग करेगी, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उधर वलसाड में गुजरात से डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ग्राउंड पर उतरे। वलसाड में मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मची है। 12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। हर्ष सांघवी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर बार देखे और अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सूरत की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। नाव से ही अफसरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। नवसारी जिले की नदियों में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कावेरी नदी में आई बाढ़ से कर्णदेवी इलाके में 9 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें गांव के आसपास नदी और खेतों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।
10: और अब बात करेंगे पहाड़ों की। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। पहाड़ी इलाकों में मुसीबत दोगुनी हो चुकी है क्योंकि बारिश के साथ ही साथ पहाड़ भी दरकने लगते हैं। चम्बा में एक कार पर मलबा गिरा था जिसमें 13 लोगों की जान चली गई।
15: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से तरबतर है तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है, जहाँ खड़मुख में एनएचपीसी परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहाँ से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंबा के ही जनजातीय इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा जिसकी चपेट में कार आ गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
18: जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहाँ मार्ग में उदयपुर के आगे कुड्डू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई, जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहां पर बच पाए हैं।
15: तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम न उठाए। सिर्फ हिमाचल नहीं जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया, जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है।
19: जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी है और पिछले 3 से 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगहों पे तबाही बहुत ज्यादा है, इसमें जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके हैं, लेकिन अब जेहलम भी जो है उबाल पे है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी फ्लड डिक्लेरेशन मार्क जेहलम ने क्रॉस कर लिया है और अभी हालात ये है कि जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जेहलम का अगर फ्लड की बात करें तो श्रीनगर में जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कश्मीर में जो क्लाउड बस्ट होते हैं और बारिश होती है, वही पानी जो है जेहलम में आता है और फिर वही फ्लड ला सकता है। यही कहानी हमने 2014 में देखी और अभी जैसे आप देख सकते हैं कल से तकरीबन 2 से 3 फीट तक इसका पानी बढ़ा है।
15: भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से झेलम का पानी घट रहा है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
10: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
21: The world keeps moving, changing, and jobs are changing along with it. That's why you need an education that keeps up. WGU prepares you for where work is going and fits the life you're living now. You don't just earn a degree. You build skills that help you move your career forward and adapt as your field evolves. Your turn starts now. Learn more at wgu.edu.
22: रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा से स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा? रविवार के दिन सूर्य देव आपके हृदय को कैसे अच्छा कर देंगे? रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा से हर कार्य में विजय कैसे मिलेगी? क्या है रविवार और सूर्य देव का संबंध और क्या हैं इस दिन के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ
23: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
10: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, कहा पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से अधिक है अहम देश। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने खत्म किया आंदोलन, दीपके ने कहा लोकतंत्र की जीत, जंतर मंतर में छात्रों का जश्न। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीट, राहुल गांधी ने कहा सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हमला, जितनी गलती मोदी की उतनी ही संघ की, अखिलेश बोले सरकार को झुकना ही था। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, गांधी मैदान में छात्रों के समर्थन में शामिल हुए थे, सीजेएम कोर्ट में हुई पेशी। और गुजरात में बाढ़ से बिगड़ गए हालात, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम में भी 61 ने गवाई जान। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो गया है, सरकार ने छात्रों की सारी शर्तों को मान लिया है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है। और अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ था, क्या पेपर लीक अब रुक जाएगा, क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत अब कोई नहीं कर पाएगा।

0: की मांग कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: हर तरह से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
0: आज सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
3: मेरे ख्याल से इन्होंने जो रिवाज रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: सरकार के सामने कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मांगे रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई न हो।
4: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIR के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
5: और इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको दिखा दें। आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी की तरफ से बयान दिया गया है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे बखूबी वो निभाएंगे। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा और प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी उनकी तरफ से अदा किया गया है।
6: अभी अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
5: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही छात्र आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी इस मुद्दे पर सियासी खेल बचा हुआ है। सोमवार को एक बार फिर से मानसून सत्र के लिए संसद खुलेगी, जहां बड़े घमासान के आसार हैं।
7: छात्र खुश हैं, विपक्ष खुश है,
2: सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ।
4: खुश है कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए।
7: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है।
8: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे।
9: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
7: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है। लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मॉनसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी, तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
10: Fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
11: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसके तहत चलाना पड़ेगा।
12: जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी।
7: उधर दिपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है,
1: ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है।
7: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
5: पेपर लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन होते रहे, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई थी, सभी जगह जश्न मनाया जाने लगा। हालांकि कई शहरों में ये विरोध उग्र भी होता हुआ नजर आया। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे ही शहर शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा करवा दिया?

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: इसके अलावा पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।
2: ना घर से पता गया है?
3: नहीं,
2: घर पे नहीं बोला है?
3: नहीं।
2: घर पे क्या बोला है?
3: अभी जाकर बता देंगे, अभी पता नहीं था।
2: हाँ।
3: ये प्रोटेस्ट हो रहा है।
2: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुँच गए? आक्रोश देख के पहुँचे, प्रोटेस्ट देख के पहुँचे?
3: प्रोटेस्ट देख के पहुँचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तोड़फोड़। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं की। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला, यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
4: ये लोग कहाँ से हैं सर?
5: कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो कि
4: बाहर से भी पकड़ा रहे। बाहर के लोग भी आए?
5: बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना।
6: यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है जो ढेला देखिए तो ढेला चलाया, फोड़ फाड़ दिए,
7: चोट भी लगा।
6: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे, इसमें न थे, इसमें होगा तो होइएगा, हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई, अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
8: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
9: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो, घर जब भी आना, जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
10: पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है लेकिन अब कांग्रेस जनता पार्टी का क्या होगा? क्या अब और मुद्दों पर कांग्रेस जनता पार्टी उतर आएगी? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
11: जे आई
7: सीपीआई का कॉकरोच पर एक बयान, फिर सोशल मीडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान और फिर जंतर मंतर पर 50 दिनों तक चला आंदोलन। जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया,
11: नहीं हम लोग को क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको क्रेडिट लेना है ले ले। देश का युवा बहुत समझदार है, ये वही युवा है जिसको दो महीने पहले तक लोग डाउट कर रहे थे कि ये लोग सड़क पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात भी रख सकते हैं। तो आप उन पे भरोसा रखिए, वो बहुत समझदार है, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है और कौन अब क्या क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, आई थिंक ये मेन आर पॉइंट।
12: इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने के वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है, एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते हैं, संविधान से बड़ा बनाते हैं, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा।
7: आज अभिजीत दिपके की माँ की आंखें खुशी से नम हैं, पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
13: डर लग रहा था ना मुझे, अभी सर को ऐसे उठा के ले गए सुबह सुबह में, अभी ये बैठा था इसको कुछ करेंगे, उस बहुत डर लग रहा था, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मालूम नहीं था ना इतना, अभी आगे क्या क्या होता है।
14: गरीब लोगों के लिए उसका लगाव और उनके प्रतिभूति सहानुभूति उसके दिल में है, तो वो कोई तो भी अच्छा ही काम करेगा उसके हम पीछे रहेंगे जो भी अच्छा काम करेगा।
7: एक अनोखे ड्रामे से सोशल मीडिया से शुरू हुई ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची, जहां छात्रों के मन की बात को सरकार ने भी समझा। आज तक ब्यूरो।
10: और अब बात करेंगे गुजरात की, क्योंकि गुजरात में बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। अहमदाबाद सूरत जैसे शहरों में भी इस आपदा की वजह से बहुत परेशानियां हैं। सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ साथ ही कोस्ट गार्ड्स को रेस्क्यू में लगा दिया गया है। नवसारी में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो गई।
15: गुजरात इस समय आसमानी आफत झेल रहा है। पिछले 2 दिनों में दक्षिण गुजरात के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए, शहर पानी में डूब गए, गांवों का भी बुरा हाल है। अहमदाबाद हो या वलसाड़ या फिर सूरत, हर जगह मॉनसून अपने साथ मुसीबत लेकर आया है।
16: अहमदाबाद के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति है। 2 दिन में 20 इंच बारिश के कारण अहमदाबाद के काफी सारे इलाके जो है जलमग्न हुए थे। अभी हम जो है गुमा इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे जलदीप 3 जलदीप 4 ये सोसाइटियां आई हुई हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जिस तरह से जो है पानी की निकासी नहीं हो रही, 2 दिन में पहले बारिश हुई थी 20 इंच, पर कल से जो है बारिश बंद हुई, फिर भी जो है वो जल जमाव अभी भी देखने को मिल रहा है।
15: नवसारी, वलसाड़, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग, ये वो जिले हैं जहां मॉनसून का आक्रमण हुआ है।
16: अहमदाबाद में बारिश का जोर कम हुआ है, पर जल निकासी का इश्यू अभी भी लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है, हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
15: अहमदाबाद में बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2000 के बाद पहली बार अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर इतनी बरसात हुई थी जितनी अब हुई है। साल 2000 में अहमदाबाद में एक दिन में 328 mm बारिश हुई थी। 23 जुलाई 2026 को 294 mm बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के बोपल में 23 और 24 जुलाई के बीच 491 mm से ज्यादा बारिश हुई है। जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। अहमदाबाद शहर पर आसमानी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अहमदाबाद में 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के अलावा स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई हैं। प्रभावित इलाकों से अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है।
17: तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल साउथ गुजरात में खासतौर पर, जिसमें वलसाड, नौसारी, डांग, सूरत और दमन, ये सब इलाके में काफ़ी भारी बारिश हुई है। उसके वजह से फ्लडिंग हुई। एनडीआरएफ की टीम्स को वहाँ भेजा गया है। मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया है और एडिशनल टीम्स जो है डिमांड की गई। उड़ीसा से हमने 4 टीम एयरलिफ्ट की है और गुजरात में अभी 2 अहमदाबाद में, 1 नवसारी में, 1 सूरत में तैनात की गई है।
15: अहमदाबाद के बोपल इलाके में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत को जाना परखा और फिर आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से सहयोग करेगी, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उधर वलसाड में गुजरात से डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ग्राउंड पर उतरे। वलसाड में मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मची है। 12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। हर्ष सांघवी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर बार देखे और अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सूरत की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। नाव से ही अफसरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। नवसारी जिले की नदियों में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कावेरी नदी में आई बाढ़ से कर्णदेवी इलाके में 9 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें गांव के आसपास नदी और खेतों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।
10: और अब बात करेंगे पहाड़ों की। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। पहाड़ी इलाकों में मुसीबत दोगुनी हो चुकी है क्योंकि बारिश के साथ ही साथ पहाड़ भी दरकने लगते हैं। चम्बा में एक कार पर मलबा गिरा था जिसमें 13 लोगों की जान चली गई।
15: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से तरबतर है तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है, जहाँ खड़मुख में एनएचपीसी परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते ही देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंबा के ही जनजातीय इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा जिसकी चपेट में कार आ गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
18: जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहाँ मार्ग में उदयपुर के आगे एक कड़ू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई, जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहाँ पर बच पाए हैं।
15: तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम न उठाए। सिर्फ हिमाचल नहीं जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया, जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है।
19: जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी है और पिछले 3 से 4 दिन से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगहों पे तबाही बहुत ज्यादा है, इसमें जम्मू के राजौरी और पुंछ इलाके हैं, लेकिन अब जेहलम भी जो है उबाल पे है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी फ्लड डिक्लेरेशन मार्क जेहलम ने क्रॉस कर लिया है और अभी हालात ये है कि जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जेहलम का अगर फ्लड की बात करें तो श्रीनगर में जो बारिश हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कश्मीर में जो क्लाउड बस्ट होते हैं और बारिश होती है, वही पानी जो है जेहलम में आता है और फिर वही फ्लड ला सकता है। यही कहानी हमने 2014 में देखी और अभी जैसे आप देख सकते हैं कल से तकरीबन 2 से 3 फीट तक इसका पानी बढ़ा है।
15: भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से झेलम का पानी घट रहा है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
10: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
21: रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा से स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा? रविवार के दिन सूर्य देव आपके हृदय को कैसे अच्छा कर देंगे? रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा से हर कार्य में विजय कैसे मिलेगी? क्या है रविवार और सूर्य देव का संबंध और क्या है इस दिन के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ
22: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox. For 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
21: भाग्य चक्र में

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए

शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार, बोले पूरी निष्ठा से निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह ने कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से ज्यादा जरूरी है देश। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीठ। राहुल गांधी ने कहा सालों से शिक्षा व्यवस्था पर हो रहा था हमला, जितनी गलती मोदी की उतनी ही संघ की। अखिलेश बोले सरकार को झुकना ही था। अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में हुई एसआईटी का गठन, दो आईपीएस ऑफिसर्स की एंट्री, विजय विश्वास और नील रतन बाहर। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देगी योगी सरकार। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, अहमदाबाद, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत। असम में भी 61 ने गंवाई जान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन माना जाता है और अगर आप रविवार को सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य देव की पूजा करें, तो आप सूर्य संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो कौन कौन से उपाय आप रविवार को करें जिससे सूर्य का वरदान आपको मिले, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 1:57 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः 7:34 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:34 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको आज ये बता रहे हैं कि अगर आप रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना करें तो सूर्य की विशेष कृपा और वरदान आपको मिल सकता है। रविवार को सूर्य देव की उपासना का महत्व क्या है? देखिए, रविवार का संबंध सूर्य देव से माना जाता है और इस दिन सूर्य देव की उपासना विशेष फलवती होती है, विशेष शुभ मानी जाती है। अगर आप सप्ताह में किसी भी दिन सूर्य देव की उपासना नहीं कर पाते तो केवल रविवार के दिन अगर आप सूर्य देव की उपासना करें या पूजा करें

से भी आपको लाभ होगा। रविवार को सूर्य के विशेष उपाय करना लाभकारी होता है। सूर्य से संबंधित अगर जीवन में कोई बाधा है, कोई समस्या है और उसके लिए आप रविवार को उपाय करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए, सूर्य आरोग्य का, स्वास्थ्य का स्वामी है। सूर्य का गड़बड़ होना आपके स्वास्थ्य को बुरी तरह बिगाड़ सकता है, तो रविवार को सूर्य देव की उपासना कैसे करें जिससे अच्छे स्वास्थ्य का वरदान जीवन में प्राप्त हो। सुबह के समय स्नान करके रविवार को सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और जल में थोड़ी सी रोली मिलाइएगा। इसके बाद जो सूर्य देव का मुख्य मंत्र है, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिएगा। लोटे के किनारे जो रोली लगी रह जाती है उस रोली का तिलक अपने माथे पर, अपने कंठ पर लगाइएगा। ऐसा हर रविवार के रविवार अगर आप करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सूर्य देव की कृपा पाने के और उपायों पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, सूर्य अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ है, सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब है, तो आपको हृदय रोग हो सकता है। अगर हृदय रोग की संभावना है तो भी, और अगर हृदय रोग है तो भी, रविवार को सूर्य देव की पूजा कैसे करें कि हृदय रोग से राहत मिले। रविवार को प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, जल में लाल फूल डालिएगा। अगर गुड़हल का फूल हो, जवा पुष्प हो, तो ज्यादा अच्छा होगा। सूर्य देव को गुड़ का भोग लगाइएगा और इसके बाद 108 बार एक माला या तीन माला ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। और किसी भी रविवार को एक लाल चंदन की माला सूर्य देव को अर्पित करके इसको गले में हमेशा धारण किए रखें। एक ही बार आप लाल चंदन की माला अर्पित करके इसके बाद इसको पहने रखिएगा। ऐसा करने से हृदय संबंधित स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। सूर्य देव के अन्य उपायों पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं
तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनिल जी ने हमें लिखा है और अनिल जी हमें मेल लिखते हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 8 अक्टूबर 1975। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है भोपाल। ये कह रहे हैं कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में लगभग पिछले 15 साल से काम कर रहा था लगातार, और अब वहां पर मेरी नौकरी जाने की नौबत आ गई है, तो क्या भविष्य में मुझे कोई और बेहतर नौकरी मिलेगी या ये नौकरी छूटने के बाद मुझे व्यापार में जाना चाहिए? अनिल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय चल रहा है। इस समय आपकी नौकरी में बदलाव होगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्थान में परिवर्तन हो, आपको भोपाल से थोड़ा दूर जाना पड़े। नौकरी और स्थान में परिवर्तन होने की संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। करियर में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसकी चिंता आप करिए। दो उपाय करिए अपने करियर को बेहतर करने के लिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर सूर्य आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो जीवन में बहुत शत्रु आते हैं और जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं मिलती हैं और बार बार मिलती हैं जिससे आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने शत्रुओं पर और अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करनी है तो रविवार को क्या करेंगे? रविवार के दिन उपवास रखिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि रविवार को आप नमक नहीं खाएंगे। सुबह सुबह रविवार को स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा और इसके बाद जल चढ़ाने के बाद सूर्य की रोशनी में बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा या मोबाइल पर इसका पाठ लगाकर सुन लीजिएगा और इसके बाद शत्रुओं पर, समस्याओं पर विजय मिले ऐसी प्रार्थना करिएगा। हर रविवार को अगर आप प्रार्थना करें, जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, इस उपाय को करने से आपको विजय अवश्य मिलेगी। देखिए, अगर जीवन में सूर्य की कृपा हो तो व्यक्ति को बड़ी आसानी से मान सम्मान मिलता है, नाम और यश मिलता है। छोटी उम्र में आदमी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मान सम्मान मिले, नाम और यश मिले, तो क्या करेंगे? रविवार को एक लोटा जल ले लें, इसमें रोली डालें, लाल चंदन डालें और लाल फूल डाल करके इस जल को सूर्य देव को अर्पित करिएगा। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा किसी भी रविवार को सूर्य देव को अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद
ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का एक माला या तीन माला जप करिएगा और इसके बाद तांबे का चौकोर टुकड़ा गले में धारण कर लें या हमेशा अपने पास रखें। तांबे का चौकोर टुकड़ा केवल एक रविवार को अर्पित करके प्रयोग करिए, बाकी हर रविवार को रोली चंदन फूल मिलाकर सूर्य देव को सुबह जल चढ़ाइए और सुबह के समय एक या तीन माला ओम भास्कराय नमः का जप करिएगा, आपको नाम यश की प्राप्ति अवश्य होगी। सूर्य के उपायों पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, यात्रा में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना अगर आप श्रद्धा से करें, तरीके से करें, तो आपको सूर्य से कृपा मिलेगी और सूर्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो रविवार के दिन कौन कौन से काम करना अच्छा होगा? संभव हो तो रविवार को भगवान सूर्य को जवा पुष्प या आक के पुष्प अर्पित करिएगा। अगर सूर्य की वजह से जीवन में दिक्कतें ज्यादा हैं तो गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का रविवार को दान करिएगा। रविवार को आप उपवास रखिए, बहुत अच्छा होगा, या केवल सात्विक आहार ग्रहण करिए, प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करेंगे। और अगर आपका सूर्य कमजोर है, आप उसको ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो सलाह लेकर रविवार के दिन माणिक्य धारण करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान की चिंता रह सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि सूर्य की पूजा या सूर्य के मंत्र का जप सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा सही है? देखिए, सूर्य दिन में बलवान होते हैं, दीपावली है, इसीलिए सूर्य की ज्यादातर जो पूजा है, सूर्य को जल चढ़ाना, उनके मंत्र का जप करना,
इसके लिए ज्यादातर दिन में करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दिन के हिस्से पर अधिकार सूर्य का होता है। सूर्यास्त के बाद सूर्य का अधिकार नहीं होता, उसके बाद शनि, चंद्रमा, इन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है। तो सामान्यतः सामान्य स्थिति में आपको सूर्यास्त के बाद सूर्य का मंत्र जप करना या सूर्य की पूजा करना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर कोई स्वास्थ्य की गंभीर परिस्थिति है या जीवन में कोई बड़ा गंभीर संकट सूर्य की वजह से पैदा हो गया है, तब ऐसी स्थिति में आप सूर्य की पूजा दोनों वेला दोनों समय कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, करियर में लापरवाही ना करें। नंबर 6, परिवार में शुभ कार्य होंगे। नंबर 7, करियर में बदलाव होगा। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करेंगे, आपको जीवन में नाम और यश की प्राप्ति होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न भास्कर जी ने हमें लिखा है और भास्कर जी हमें गुड़गांव से मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 मई 1981, दोपहर के 2 बजे, अमृतसर, पंजाब में, लिखते हैं गुड़गांव से। भास्कर कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहता हूं, क्या नौकरी छोड़ करके मेरा व्यापार में जाना बेहतर रहेगा? भास्कर जी, आपकी कुंडली कहती है कि आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में आगे चल करके अपना काम करेंगे, इंडिपेंडेंट काम करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। फरवरी 2027 के बाद इसकी बेहतर संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा,
सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। कुंभ राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। वृषभ राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। आज द्वादशी तिथि है। द्वादशी के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं, तो आज श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करिएगा। और रविवार के दिन जब ऐसी तिथि आती है तो ककरच नामक योग बनता है और इस तिथि पर किए गए कार्य मध्यम हो जाते हैं। तो आज जो भी शुभ काम करेंगे उसका मध्यम फल आपको प्राप्त होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: शिक्षा मंत्री से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रहलाद जोशी को मिला है अतिरिक्त प्रभार। शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद बोले, निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर से बोले अभिजीत दीप के, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। जंतर मंतर से प्रदर्शन खत्म हुआ, तुरंत लौटे प्रदर्शनकारी। कांग्रेस जनता पार्टी की सभी मांगों को केंद्र सरकार ने माना। नड्डा जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रवक्ताओं के साथ किया संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। नड्डा बोले, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR ली जाएगी वापस, मुआवजे पर नियमों के मुताबिक फैसला। मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीजेपी प्रवक्ता, मंगलवार को मिलेगी सरकार की तरफ से लिखित गारंटी। 4 हफ्ते के बाद शिक्षा सुधारों पर फिर से होगी सरकार से बात। अमित शाह ने कहा, देश और छात्रों का हित सर्वोपरि। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं के सम्मान का प्रतीक है, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई जारी। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीट, राहुल गांधी बोले ये युवा हिंदुस्तान का भविष्य, सरकार को लाना होगा ठोस सिस्टम। जंतर मंतर पर हिंसा के लिए राहुल गांधी ने अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया, कहा प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे, यही हमारी मांग है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव, युवा पीढ़ी की जीत है, सरकार को प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर चीज के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को बधाई दी, बताया लोकतंत्र की इसे बड़ी जीत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तेजस्वी यादव ने बताया सच, हक न्याय की जीत, कहा झूठ पैंतरे अहंकार की हार हुई। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भेजा गया है जेल, 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पटना के गांधी मैदान में प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे तेज प्रताप यादव। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास बोले, अगर समस्या का हल नहीं तो फिर लौटेंगे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने आज तिरंगा यात्रा का ऐलान किया, कहा मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी यात्रा, युवाओं की जीत का जश्न मनाया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा बिल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान की सराहनी का कहा, धर्मेंद्र प्रधान का काम सराहनीय, छात्रों के हित में काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच छात्रों की भावनाओं का सम्मान बताया, कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए छात्रों की भावनाएं सर्वोपरि है, छात्रों का हित जरूरी। धर्मेंद्र प्रधान के बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सराहना की, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा इस्तीफे का बड़ा फैसला लिया गया है बड़े हित में, पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने किया स्वागत, सोशल मीडिया पर लिखा दे रहा है दोस्त आए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की, कहा राष्ट्रहित में इस्तीफा दिया, उन्होंने अपना दायित्व निभाया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में पड़े कसीदे, बोले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में अहम भूमिका, व्यापक समाज हित में दिया गया इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा बोले, इस्तीफा देना उनका फैसला, लेकिन उन्होंने असम की बहुत मदद की। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने प्रधान के इस्तीफे को बताया सिर्फ दिखावा, दबाव में सरकार को पीछे हटने पर तंज भी कसा। केंद्र सरकार को असदुद्दीन ओवैसी ने घेरा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोली सरकार किसी को नहीं दबा सकती, सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पंजाब में भी उठी आवाज, हरसिमरत कौर बादल बोली पंजाब के शिक्षा मंत्री बर्खास्त होने चाहिए, 4.5 साल में 6 परीक्षाओं में घोटाले। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार किए गए, नीट प्रदर्शन में सड़कों पर उतरने के बाद बिहार पुलिस का एक्शन। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का वीडियो में दावा, सीवान में AK-47 से फायरिंग, दोषी ऑफिसर्स पर कार्रवाई हो। पटना के गांधी मैदान में करीब पुलिस TOP के प्रदर्शनकारी छात्रों से सुतली बम से उड़ाने की खबर, जमकर तोड़फोड़। नीट पेपर लीक के विरोध में शनिवार को रहा बिहार बंद, भागलपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मिला जुला असर नजर आया। बिहार के औरंगाबाद में 2 दिन में प्रदर्शन के दौरान पथराव और पुलिस ने आंसू गैस के ओले भी दागे, हुआ लाठीचार्ज। बिहार का बंद भोजपुर में भी नजर आया असर, आर स्टेशन पर ट्रेन को रोककर हंगामा किया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारियों ने खुशी की लहर दिखाई, छात्रों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग। बिहार के समस्तीपुर में आयसा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, बिहार बंद दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशियां जताएंगे। सूरत में कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने मनाया जश्न, मिठाइयां बांटी गई। चंडीगढ़ में कांग्रेस के समर्थकों और छात्रों ने बांटी मिठाइयां, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जीत का दावा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूर्वांचल में युवाओं का जश्न, चंदौली में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जाहिर की गई खुशी। लखनऊ में भी समर्थकों में खुशी की लहर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बांटी गई चॉकलेट। विशाखापट्टनम में छात्रों ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न, एनटीए के खिलाफ भी गुस्से का इजहार किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नागपुर में छात्रों का जश्न, संविधान चौक पर नाचते गाते खुशियां मनाते नजर आए। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड समेत दो की गिरफ्तारी, महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार से किया अरेस्ट। यूपी के फतेहपुर पेपर लीक के मामले में बोले सीएम योगी, नकल माफिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की देन है, नकल माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान से सोशल मीडिया के जरिए फैलाया गया दुष्प्रचार, 400 से ज्यादा पाकिस्तानी हैंडल्स को ब्लॉक किया गया। आज करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल का भव्य सजावट। रक्षा मंत्री ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ऑपरेशन विजय के शहीदों के बलिदान को याद किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित हुई नई एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हुई 3 IPS की एसआईटी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इससे पहले यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अधिकारियों तक नाम कोर्ट को बताने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में बाढ़ को लेकर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को फोन किया, केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। असम में बारिश कम होने के बाद स्थिति में सुधार के संकेत, प्रशासन प्रभावित इलाकों में जरूरी मदद पहुंचाने में जुटा। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने शिवसागर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों का दौरा किया, स्वास्थ्य सेवा, भोजन पानी और अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई है, अब तक 61 लोगों की जान गई। अहमदाबाद के गैलॉप्स इंडस्ट्रियल पार्क में जलभराव के बीच राहत और बचाव का काम जारी है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर काम कर रहे 400 से ज्यादा कर्मचारी बाढ़ में फंसे, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को बाहर निकाला। अहमदाबाद में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, फैक्ट्री में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नवसारी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने दौरा किया, हालात का जायजा लिया। गुजरात में बाढ़ बारिश से अब तक 56 लोगों ने गंवाई है जान, पिछले दो दिनों में 25 लोगों की मौत। गुजरात में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच देवदूत बने हैं सेना के जवान, राज्य भर में देवदूत बनकर लोगों की बचा रहे हैं जान और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली में अगले दो दिनों तक हल्की बारिश की संभावना, 36 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद पीर की गली और पोशाना के बीच मुगल रोड पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड, बीआरओ की टीम मौके पर मौजूद। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, शोपियां में उफनती धाराओं के बागों और खड़ी हुई फसलों को नुकसान पहुंचाया। जंतर मंतर पर छात्रों से मारपीट के वीडियो वायरल हुआ, गाजियाबाद के युवक पर कार्रवाई की मांग तेज की गई। बागपत में सुशील जंग का कुख्यात अपराधी और शार्प शूटर ढेरुआ अपराधी और एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया आरोपी। ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे हुए गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत हुई, इलाके में अफरा तफरी। हरदोई पुलिस ने व्यापारी के घर पर चोरी का खुलासा किया, 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के एटा में खुद को गोली मारकर शख्स ने आत्महत्या की, मामले की जांच जारी। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह ने जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में बनाई है जगह, पुरुष 55 किलो वर्ग ग्राम के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मेजबान स्कॉटलैंड के ऑरेन कुलिन को 5-0 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बाई मिलने से सेमीफाइनल में पहुंची, उनका एक पदक पक्का। जिम्बाब्वे में 90 रन से हराकर टीम इंडिया ने जीता है T20 मैचों की सीरीज को, श्रृंखला में 2-0 से आगे। भारत की अनाहा सिंह बनी है जूनियर स्क्वैश विश्व चैंपियन, फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को हराकर जीता यह खिताब। विश्व जूनियर स्क्वैश में भारत ऐतिहासिक स्वर्ण, अनाहा सिंह ने फाइनल 3-0 से जीतकर इतिहास रचा। सितंबर अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ होने जा रहे 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में बिना स्टार खिलाड़ियों के उतरेगी टीम इंडिया, बीसीसीआई चुनेगी अगली टीम। कुल 8 खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं होंगे उपलब्ध। इस सूची में श्रेयस अय्यर, बुमराह, ईशान किशन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल। एक ही समय आयोजित हो रहे हैं दो टूर्नामेंट 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारत वेस्टइंडीज सीरीज है। एशियन गेम्स में 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी क्रिकेट प्रतियोगिता। टी20 सीरीज के बीच टीम इंडिया को मिला खास निमंत्रण। हरारे के इंडिया हाउस में भारत के राजदूत महामहिम ब्रह्म कुमार से की टीम ने मुलाकात। मुलाकात के दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर और अंतरिम मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण ने किया को सम्मानित किया गया। बीसीसीआई ने इस खास मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। यूपी के बांदा में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। चित्रकूट जाने वाले नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर लगा दी गई है रोक। श्रद्धालु सड़क मार्ग से पैदल चलकर चित्रकूट धाम पहुंचते हैं, वहां से जल लेकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। ऐसे रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। सहारनपुर में कावड़ रूट पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की लगाई गई है ड्यूटी। खाने की चीजों की गुणवत्ता और साफ सफाई पर रहेगी नजर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर मरम्मत और रेस्टोरेशन के काम को रिव्यू किया है। कैंप के अधिकारियों से बैठक की। मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पक्की करने और माउंटेन रेस्क्यू टीम के निर्देश दे दिए हैं। मौसम का रियल टाइम अपडेट शेयर करने के लिए भी कहा गया। जगन्नाथ पुरी में उड़ा आस्था का जनसैलाब। महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु। आज जगन्नाथपुरी में निभाई जाएगी अधर पाना की रस्म। बड़े मिट्टी के पात्रों में अर्पित किया जाएगा विशेष मीठा पेय। रथों पर विराजमान देवताओं को अर्पित होगा खास पेय। इन पारंपरिक रस्मों का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से पहुंचे हैं श्रद्धालु। कल निभाई जाएगी नीलाद्री बीजे की परंपरा। नीलाद्री बीजे से पूरी रथ यात्रा का अंतिम और समापन अनुष्ठान माना जाता है। नीलाद्री बीजे में मां लक्ष्मी को भोग कराते हैं महाप्रभु। मां लक्ष्मी का गुस्सा शांत कर महाप्रभु गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल रिफाइनरी पर हमला किया। हुती सैन्य प्रवक्ता ने कहा जिनान और यानबू में अरामको की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी शहरों पर रूसी सेना का भीषण हमला। कीव और जपोरजिया में रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। दोनों ही मिसाइल हमले में 13 लोगों की मौत। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस में फिर से तनाव बढ़ा। चीनी तटरक्षक बलों ने फिलीपींस के जहाज पर पानी की बौछारों से हमला किया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने राजधानी दमिश्क में सीरिया राष्ट्रपति अहमद अलशारा से मुलाकात की। यूएन महासचिव का यह दौरा सीरिया के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आई शिखर सम्मेलन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। नेटो में इंटर्नशिप कर रही कैनेडाई महिला जासूस के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। बेल्जियम की संघीय पुलिस ने की कार्रवाई। चीनी मूल की महिला बेल्जियम में नेटो के सैन्य ठिकानों पर कर रही थी इंटर्नशिप। हंगरी के पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने नई सरकार के खिलाफ आंदोलन का किया ऐलान। कहा हंगरी में स्वतंत्रता खतरे में है। रूसी एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर मडराया ड्रोन हमले का खतरा। येकातेरिन वर्ग में खतरे के चलते चैंपियनशिप को एक दिन पहले ही करना पड़ा स्थगित। स्पेन में जंगल की आग से बड़ी तबाही। रिहायशी इलाकों में फैली है जंगल की आग। राजधानी मैड्रिड के पास कई घरों में आग। दक्षिणी चीन में शक्तिशाली तूफान नॉल का कहर है। तूफान की वजह से समुद्र में ऊंची लहर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.
4: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
8: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se.
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को आरडीएक्स रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर।
3: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: Sorry.
1: Aye, tala aye. Aye, sí, aquí en Madrid, aye.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: Hello everyone. आप सबको बहुत बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेंजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी, ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद।
6: जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले एक महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया, और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पे युवाओं ने कहा था, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी, पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ दो वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा। एक, किसानों का आंदोलन, एक साल के बाद सरकार झुकी। दूसरा, नौजवानों का आंदोलन, जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पूरी निष्ठा से निभाऊंगा जिम्मेदारी, अमित शाह ने कहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बस से ज्यादा जरूरी है देश। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीट, राहुल गांधी बोले संसद में उठाएंगे पैलेट गन का मुद्दा। प्रदर्शन खत्म होने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर से हटे बैरिकेडिंग, सभी मेट्रो स्टेशन पर एंट्री एग्जिट बहाल। पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन को लेकर नपे लालू के बेटे तेज प्रताप यादव 14 दिन के लिए भेजे गए जेल। कोलकाता प्रोटेस्ट पर 11 लोग गिरफ्तार, 10 आरोपी मुसलमान। अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में नए एसआईटी का गठन, 2 आईपीएस ऑफिसर्स की एंट्री, विजय विश्वास और नील रतन बाहर। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देगी योगी सरकार। और गुजरात में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, अहमदाबाद, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 की मौत। असम में भी पानी पानी, अब तक 61 ने गवाई है जान, हजारों लोग बेघर।
1: चुप्पी है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: जो बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों का जश्न जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर से देर रात की कई तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदर्शन खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में युवा और प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर डटे रहे और जश्न मनाते नजर आए। हालात को देखते हुए पुलिस ने लगातार अनाउंसमेंट जारी रखी, लोगों से इलाका खाली करने की अपील की गई। उसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आसपास से इलाकों से हटाया। देर रात तक चले इस अभियान के बाद धीरे धीरे जंतर मंतर का जो इलाका है वो खाली हो गया है। सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर से ही नहीं, देश के कई हिस्सों से भी छात्रों के जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। तो छह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और छह तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जश्न मनाया गया है इस रेजिग्नेशन के बाद। गीतों के जरिए जश्न मनाया गया है, नारेबाजी करके जश्न मनाया गया है, ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए ये तमाम लोग नजर आए हैं। साथ ही साथ लोगों ने घर जाने का नाम ही नहीं लिया, तो पुलिस ने लगातार लोगों को इस पूरे के पूरे इलाके को खाली करने के लिए कहा गया और धीरे धीरे करके सुबह तक ये इलाका आप कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जंतर मंतर वाला जो एरिया है वो अब खाली हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल जुड़ गए, उनका हम रुख करेंगे। अंशुल, क्या जानकारी है, किस तरह की तस्वीर है और क्या अभी पूरा का पूरा जो एरिया है खाली हो चुका है?
1: जी हाँ, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो टॉल्स्टॉय मार्ग है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्ग है, पिछले कई दिनों से ट्रैफिक के लिए बंद था, उसे खोल दिया गया है। और मैं आपको अभी सुबह की तस्वीरें दिखाऊंगा जंतर मंतर से। ये वही जगह है जहां पर स्टेज लगा हुआ था पिछले करीब एक महीने से। अभिजीत दिप के, सोनम वांगचुक सब यहीं पर बने हुए स्टेज पर बैठे हुए थे, लेकिन अगर आज आप सुबह की तस्वीरें देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहां पर कभी भी कोई स्टेज था। रातों रात पूरे स्टेज को यहां से खाली करा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कल देर रात से ही एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे सफाई अभियान में लगे हैं, क्योंकि पिछले करीब एक महीने से यहाँ पर किसी भी तरह की सफाई नहीं हो पा रही थी। हाँ, कुछ वॉलंटियर्स थे कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में ऐसे थे जो साफ सफाई करने का काम कर रहे थे, लेकिन जो पूरा इलाका है काफी ज्यादा गंदा हो गया था। और कल देर शाम से ही और देर रात से ही जो एनडीएमसी के कर्मचारी हैं वो पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। अभी सड़कों की धुलाई की जा रही है, सुबह झाड़ू लगाया गया है, यहाँ पर कूड़ा हटाया गया और अब सड़कों की धुलाई चल रही है। और आज सुबह से ही पिछले कई दिनों से जिस तरीके से हम देख रहे थे कि यहाँ पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो थे वो काफी भारी संख्या में तैनात थे, तो आज सुबह उनके लिए भी ये राहत की खबर है कि आज वो भी थोड़ा आराम कर सकते हैं और आज यहाँ जंतर मंतर आने की जरूरत नहीं है या ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, क्योंकि आज सुबह से कोई भी प्रदर्शनकारी यहाँ जंतर मंतर नहीं आया। हाँ, एक दो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं जो ये देखने के लिए उत्सुकता से

0: समझ रहे हैं कि आखिर जंतर मंतर पे हो क्या रहा था, लेकिन कल देर शाम से ही जिस तरीके से अभियान चलाया गया है, स्टेज साफ कर दिया गया है, सड़कें साफ कर दी गई हैं, ट्रैफिक खोल दिया गया है और स्थिति एक बार फिर से यहां पर सामान्य दिख रही है।
1: अंजुला, में मेट्रो स्टेशन के बारे में भी जानकारी मिली कि बैरिकेड हटा दिए गए हैं वहां से भी और तमाम जो एंट्री एंड एग्जिट था बहाल कर दिया गया है, मेट्रो स्टेशन जो बंद किए गए थे।
0: जी हाँ, करीब पिछले 3 दिनों से 18 मेट्रो स्टेशन जो नई दिल्ली के इलाके में थे उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। एंट्री एग्जिट अलाउड नहीं थी, बस ट्रांसिट अलाउड था। कल जब देर शाम ये खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और भीड़ को यहां से निकालने के लिए मेट्रो और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के ये फैसला लिया कि करीब 1 घंटे के लिए मेट्रो को फ्री कर दिया, राजीव चौक मेट्रो में एंट्री और उसके बाद मेट्रो का ट्रैवल भी फ्री कर दिया ताकि भीड़ यहां से निकल पाए। और आज सुबह मेट्रो ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि सारे के सारे जो 18 मेट्रो स्टेशन जो बंद थे एंट्री एग्जिट के लिए वो एक बार फिर से सामान्य रूप से सुचारू हो चुके हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से साफ सफाई का काम जारी है और पूरा का पूरा जंतर मंतर खाली हो चुका है। तो छात्रों के आंदोलन के कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था इस आंदोलन के बाद, जबरदस्त हंगामे के बाद, और उसके बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय का प्रभार मिलने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो उसे अच्छे से निभाएंगे। और चलिए वो बयान भी हम आपको सुनवा देते हैं जिसमें प्रहलाद जोशी ने कहा कि जो अतिरिक्त जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें सौंपी गई है वो उसे बखूबी निभाएंगे।
2: अभी अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: तो पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। सरकार ने छात्रों की सारी शर्तों को मान लिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ था। क्या पेपर लीक अब रुक जाएगा? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत कोई नहीं करेगा अब?

0: की मांग कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने।
2: से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
0: आज सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
3: भारत माता की।
4: मेरे ख्याल से इन्होंने जो भी बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: सरकार के सामने कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मांगे रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
5: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIRs के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
6: और अब बिहार से बड़ी और अहम खबर आ रही है। नीट पेपर लीक के विरोध में जो बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन हुआ था उसमें शामिल होने के बाद तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि पटना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के बाद देर रात कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है। पुलिस का आरोप ये भी है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों को उकसाने और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश उन्होंने की थी। वहीं तेज प्रताप के वकील का दावा यह है कि गिरफ्तारी के बिना वारंट की गई और FIR बाद में दर्ज की गई थी उनके खिलाफ। इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तेज प्रताप भेज दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और बात कोलकाता से खबर दिखाएंगे आपको, क्योंकि कोलकाता से CJP रैली में हंगामे पर बड़ी अपडेट सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिंसा तोड़फोड़ के मामले में यहां पर 11 लोगों की पहचान हुई है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा यह है कि गिरफ्तार किए गए सभी जो छात्र होने का दावा कर रहे थे लेकिन छात्र नहीं है और रैली के दौरान उपद्रव में वो शामिल थे, वहीं सीजेपी ने कोलकाता पुलिस को ईमेल करके साफ कर दिया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति का उनके संगठन की गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। पुलिस अब सीसीटीवी और अन्य इनपुट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। और जो ये खबर है दिल्ली से जुड़े ग्रेटर नोएडा से है, जहां ग्रेटर नोएडा के कलाधाम कॉलोनी में पानी भरे हुए गड्ढे में गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। ये घटना 25 जुलाई की शाम की है। परिजन बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है ग्रेटर नोएडा में, जहां पानी से भरे हुए गड्ढे में गिरने की वजह से 6 साल के मासूम ने अपनी जान गंवा दी। यह खबर गुजरात से है, क्योंकि गुजरात में जबरदस्त बारिश की वजह से तबाही हुई है। अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर भी आपदा की चपेट में आ चुके हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड्स रेस्क्यू करने में लगे पड़े हैं। नवसारी में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई है बाढ़ की वजह से।
7: गुजरात इस समय आसमानी आफत झेल रहा है। पिछले 2 दिनों में दक्षिण गुजरात के इलाकों में इतनी बरसात हुई है कि दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए, शहर पानी में डूब गए, गांवों का भी बुरा हाल है। अहमदाबाद हो या वलसाड़ या फिर सूरत, हर जगह मॉनसून अपने साथ मुसीबत लेकर आया है।
8: अहमदाबाद के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति है। 2 दिन में 20 इंच बारिश के कारण अहमदाबाद के काफी सारे इलाके जो है जलमग्न हुए थे। अभी हम जो है घुमा इलाका है अहमदाबाद का, जहां पे जलदीप 3 जलदीप 4 ये सोसाइटियां आई हुई हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। जिस तरह से जो है पानी की निकासी नहीं हो रही, 2 दिन में पहले बारिश हुई थी 20 इंच, पर कल से जो है बारिश बंद हुई, फिर भी जो है वो जल जमाव अभी भी देखने को मिल रहा है।
7: नवसारी, वलसाड, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, तापी और डांग, ये वो जिले हैं जहां मॉनसून का आक्रमण हुआ है।
8: अहमदाबाद में बारिश का जोर कम हुआ है, पर जल निकासी का इश्यू अभी भी लग रहा है। पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं। जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है। मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है। हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
7: अहमदाबाद में बारिश ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2000 के बाद पहली बार अहमदाबाद में 24 घंटे के अंदर इतनी बरसात हुई थी जितनी अब हुई है। साल 2000 में अहमदाबाद में एक दिन में 328 mm बारिश हुई थी। 23 जुलाई 2026 को 294 mm बारिश दर्ज की गई। अहमदाबाद के बोपल में 23 और 24 जुलाई के बीच 491 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। अहमदाबाद शहर पर आसमानी अटैक हुआ तो भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अहमदाबाद में 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। सेना के अलावा स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई हैं। प्रभावित इलाकों से अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है।
9: तेज बारिश हुई है, हैवी रेनफॉल साउथ गुजरात में खासतौर पर, जिसमें वलसाड, नौसारी, डांग, सूरत और दमन, ये सब इलाके में काफ़ी भारी बारिश हुई है। उसके वजह से फ्लडिंग हुई। एनडीआरएफ की टीम्स को वहाँ भेजा गया है। मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाया गया है और एडिशनल टीम्स जो है डिमांड की गई। उड़ीसा से हमने 4 टीम एयरलिफ्ट की है और गुजरात में अभी 2 अहमदाबाद में, 1 नवसारी में, 1 सूरत में तैनात की गई है।
7: अहमदाबाद के बोपल इलाके में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जमीनी हकीकत को जाना परखा और फिर आश्वासन दिया कि सरकार हर तरह से सहयोग करेगी, जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उधर वलसाड में गुजरात से डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ग्राउंड पर उतरे। वलसाड में मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मची है, 12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। हर्ष सांघवी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके घर बार देखे और अफसरों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए। सूरत की सड़कों पर अब गाड़ियों की जगह नाव चल रही है, नाव से ही अफसरों की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और स्थिति की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। नवसारी जिले की नदियों में आई भीषण बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कावेरी नदी में आई बाढ़ से कर्णदेवी इलाके में 9 लोग बह गए थे, जिनमें से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें गांव के आसपास नदी और खेतों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आज तक ब्यूरो।
6: तो हालात बहुत ज्यादा खराब है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और साथ ही साथ लोकल टीमें लगातार लगी हुई हैं लोगों को रेस्क्यू करने में। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: When your cat is acting weird-er, or your dog is being loud-er,

0: Your turtle moves slower.
1: Hello, Ted.
0: Your cat seems thirsty-er.
2: Whoa, slow down, buddy.
0: Or your puppy is acting clumsy-er. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
1: Veg ER for Pets, this is Kate.
0: Veg, the better, kinder ER for pets.
3: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now. Sokudo.
4: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
5: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: In association with
4: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
6: मैदानी इलाके मूसलाधार प्रहार से तरबतर है, तो वहीं पहाड़ों पर दोहरी मार पड़ रही है। यहाँ बारिश के साथ साथ पहाड़ भी टूट रहे हैं। ये दिल दहला देने वाला वीडियो चंबा के भरमौर का है, जहाँ खड़मुख में NHPC परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। पहाड़ों से पत्थरों की बरसात किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ, उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। चंबा के ही जनजातीय इलाके पांगी में कुड्डू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरा, जिसकी चपेट में कार आ गई। उस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। पांगी को चंबा से जोड़ने वाले साच पास पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश की वजह से सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास भी बादल फटने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, ताकि जल्द से जल्द स्थिति बहाल की जा सके, लेकिन लगातार खराब मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। चंबा प्रशासन ने अलर्ट किया है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कोई भी व्यक्ति साच पास की तरफ जाने का जोखिम न उठाए। सिर्फ हिमाचल नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बारिश और फ्लैश फ्लड से लोग परेशान हैं। कठुआ में अचानक आई बाढ़ में एक शख्स फंस गया, जिसको निकालने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अपनी जान पर खेलकर जवानों ने पानी में फंसे शख्स को सुरक्षित निकाल लिया। भारी बारिश की वजह से उरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला जिलों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है। भारी बारिश की वजह से बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। झेलम नदी भी खतरे के निशान पर पहुंच गई थी,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आसमानी आफत सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, मुसीबत पूर्वोत्तर में भी दस्तक दे चुकी है। असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घर जलमग्न हैं, सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं और लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हैं। कई परिवार अब भी बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। रास्ते बंद हैं, संपर्क टूट चुका है और खेत खलिहान भी पानी में डूब चुके हैं।
3: कोई सड़क और पुल डूबे हुए हैं, जिसमें उनके खेत और संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। आप देख रहे हैं, अभी हम हैं शिवसागर जिले के, सबसे ज्यादा असर हुआ है शिवसागर, सराइडो और जुहार में दिखने को कोई मिल रहा है। हजारों परिवार अपने घर छोड़कर राहत शिविर में राहत की मजबूत है, जबकि कोई लोग अब भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं।
2: असम में बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, कामरूप, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कार्बी आंगलोंग और तिनसुकिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे अधिक प्रभावित जिला शिवसागर है, जहां 3.75 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव में 1.86 लाख और जोरहाट में 1.15 लाख लोग प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से असम में 25,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूब गई है, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिन नदियों का जल स्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, उनमें डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग, शिवसागर की किखोर और देसांग, गोलाघाट की धनसिरी तथा श्री भूमि की नदी शामिल है। शिवसागर में जल स्तर अभी भी बढ़ रहा है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। असम के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश से नदियां बेकाबू हो गई हैं। वहीं गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। गुवाहाटी का यह पेट्रोल पंप पूरी तरह पानी में डूब गया, बैंक के अंदर पानी भर गया और बाजार भी जलमग्न दिखाई दिए। असम इन दिनों कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है, एक तरफ नदियों का सैलाब है तो दूसरी तरफ जल निकासी की खराब व्यवस्था से पैदा हुए हालात। दोनों ही परिस्थितियों में सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को उठानी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। बोले, पूरी निष्ठा से निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से ज्यादा जरूरी है देश। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीट। राहुल गांधी बोले, संसद में उठाएंगे पायलट गन का मुद्दा। प्रदर्शन खत्म होने के बाद दिल्ली में जंतर मंतर से हटे बैरिकेडिंग। सभी मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बहाल। पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन को लेकर नपे। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव 14 दिन के लिए भेजे गए जेल। कोलकाता प्रोटेस्ट पर 11 लोग गिरफ्तार, 10 आरोपी मुसलमान। अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में नई एसआईटी का गठन। 2 आईपीएस ऑफिसर्स की एंट्री। विजय विश्वास और नील रतन बाहर। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देगी योगी सरकार। और गुजरात में बारिश के बाद बाढ़ से बिगड़े हैं हालात। अहमदाबाद, नवसारी में, सूरत में बुरा हाल। अब तक 56 लोगों की मौत। असम में भी पानी पानी। अब तक 61 ने गवाई जान। हजारों लोग बेघर। प्रेजेंटेड

शिक्षा मंत्री से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रहलाद जोशी को मिला अतिरिक्त प्रभार। शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद बोले, निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर से बोले अभिजीत दीप के, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर से प्रदर्शन खत्म हुआ, तुरंत लौटे प्रदर्शनकारी। कांग्रेस जनता पार्टी की सभी मांगों से केंद्र सरकार सहमत। नड्डा जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नड्डा बोले, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस ली जाएगी, मुआवजे पर नियमों के मुताबिक फैसला। मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीजेपी प्रवक्ता, मंगलवार को मिलेगी सरकार की तरफ से लिखित गारंटी, चार हफ्ते के बाद शिक्षा सुधारों की फिर से समीक्षा होगी। अमित शाह ने कहा, देश और छात्रों का हित सर्वोपरि, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं के सम्मान का प्रतीक, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई जारी। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीट, राहुल गांधी बोले युवा हिंदुस्तान का भविष्य, सरकार को लाना होगा ठोस सिस्टम। जंतर मंतर पर हिंसा के लिए राहुल गांधी ने अमित शाह को बताया जिम्मेदार, कहा प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे हमारी मांग। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव, ये युवा पीढ़ी की जीत है, सरकार को प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर चीज के बारे में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को बधाई दी, बताया लोकतंत्र की बड़ी जीत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तेजस्वी यादव ने बताया सच, हक, न्याय की जीत, कहा झूठे पैतरे और अहंकार की हार हुई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भेजा गया है जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। पटना के गांधी मैदान में प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे तेज प्रताप यादव। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास बोले, अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो फिर से लौटेंगे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आज तिरंगा यात्रा का ऐलान किया, कहा मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी यात्रा, युवाओं की जीत का जश्न है। पेपर लीक के खिलाफ सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा बिल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान की सराहना की, कहा धर्मेंद्र प्रधान का काम सराहनीय है, छात्रों के हित में काम किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे छात्रों की भावनाओं का सम्मान बताया, कहा प्रधानमंत्री के लिए छात्रों की भावनाएं सर्वोपरि, छात्रों की हर चिंता दूर होगी। धर्मेंद्र प्रधान के बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सराहना की, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा इस्तीफा का फैसला बड़े हित में लिया गया, पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने स्वागत किया, सोशल मीडिया पर लिखा दे राय दुरुस्त आए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की, कहा राष्ट्रहित में दिया गया इस्तीफा, उन्होंने हर दायित्व को निभाया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में पड़े कसीदे, बोले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में अहम भूमिका, व्यापक समाज हित में फैसले लिए गए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले इस्तीफा देना उनका फैसला, लेकिन उन्होंने असम की बड़ी मदद की। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा सिर्फ दिखावा है, दबाव में सरकार के पीछे हटने पर उन्होंने तंज भी कसा। केंद्र सरकार को असदुद्दीन ओवैसी ने घेरा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले सरकार किसी को दबा नहीं सकती, सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पंजाब में भी उठी आवाज, हरसिमरत कौर बादल बोली पंजाब के शिक्षा मंत्री बर्खास्त होने चाहिए, 4.5 साल में 6 परीक्षाओं में घोटाले हुए। पटना में जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, नीट प्रदर्शन में सड़कों पर उतरने के बाद बिहार पुलिस का एक्शन। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का वीडियो से दावा, सीवान में AK-47 से फायरिंग, दोषी ऑफिसर्स पर कार्रवाई हो। पटना के गांधी मैदान में खड़ी पुलिस टीओपी को प्रदर्शनकारी छात्र सुतली बम से उड़ाया, जमकर तोड़फोड़। नीट पेपर लीक के विरोध में शनिवार को बिहार बंद रहा, भागलपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, मिला जुला असर देखने को मिला। बिहार के औरंगाबाद में दिन में प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज भी किया गया। बिहार बंद का भोजपुर में दिखाई दिया असर, आरा स्टेशन पर ट्रेन रोककर मचाया गया बवाल। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारियों में खुशी के लिए छात्रों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग। बिहार के समस्तीपुर में आईएसएस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, बिहार बंद के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशियां जताई गई। सूरत में कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने मनाया जश्न, माटी मिठाइयां। चंडीगढ़ में कांग्रेस के समर्थकों और छात्रों ने मिठाइयां बांटी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जश्न मनाया। प्रधान के इस्तीफे के बाद पूर्वांचल में युवाओं का जश्न, चंदौली में एक दूसरे को मिठाई खाकर खिलाकर जश्न मनाया गया।
लखनऊ में भी समर्थकों में खुशी की लहर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चॉकलेट्स बांट दिए। विशाखापट्टनम में छात्रों ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न, एंटी के खिलाफ भी गुस्से का इजहार किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नागपुर में छात्रों का जश्न, संविधान चौक पर नाचते गाते नजर आए। महाराष्ट्र ईटी पेपर लीक में मास्टरमाइंड समेत दो की गिरफ्तारी, महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार से किया अरेस्ट। यूपी के फतेहपुर पेपर लीक मामले पर सीएम योगी बोले, नकल माफिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की देर है, नकल माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान से सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए दुष्प्रचार के बाद चार पाकिस्तानी हैंडल्स को ब्लॉक किया। आज करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल की भव्य सजावट। रक्षा मंत्री ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, ऑपरेशन विजय के शहीदों के बलिदान को किया गया याद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित हुई नई एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हुई तीन आईपीएस की एसआईटी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इससे पहले यूपी सरकार ने एससी के निर्देश पर अधिकारियों तक नाम सुप्रीम कोर्ट को बताने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में बाढ़ को लेकर सीएम हेमंत बिस्व सरमा से बात की, केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। असम में बारिश कम होने के बाद बाढ़ की स्थिति में सुधार के संकेत हैं, प्रशासन प्रभावित इलाकों में जरूरी मदद पहुंचा रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने शिवसागर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, स्वास्थ्य सेवा, भोजन पानी और अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा। असम में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई, अब तक 61 लोगों की जान गई। अहमदाबाद के गैलॉब्स इंडस्ट्रियल पार्क में जलभराव के बीच राहत और बचाव का काम जारी, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं जवान। इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर काम करने वाले 400 से ज्यादा कर्मचारियों को बाढ़ में फंसे हुए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू चलाकर बाहर निकाला है। अहमदाबाद में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, फैक्ट्रियों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम जारी। नवसारी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने दौरा किया, हालात का जायजा लिया। गुजरात में बाढ़ बारिश से अब तक 56 लोगों की जान गई है, पिछले दो दिनों में ही 25 लोगों की मौत हुई। गुजरात में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच देवदूत बन गए हैं सेना के जवान, राज्य भर में देवदूत बनकर लोगों की बचा रहे हैं जान, रेस्क्यू ऑपरेशन को दे रहे हैं अंजाम। दिल्ली में अलग दो दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, 36 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया तापमान। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद पीर की गली और पोशान के बीच मुगल रोड पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड, बीआरओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम शुरू किया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने के बाद घटनाओं से कई इलाकों में बाढ़ और बुरे हालात हैं, शोपियां में उफनती हुई धाराओं के बीच बागों और फसलों को नुकसान। श्री जगन्नाथपुरी में उमड़ा आस्था का जन सैलाब, महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों के लिए उमड़े भीड़। आज जगन्नाथपुरी में निभाई जाएगी अधर पाना की रस्म, बड़ी मिट्टी के पात्रों में अर्पित किया जाएगा विशेष मीठा पेय। रथों पर विराजमान देवताओं को अर्पित होगा खास पेय, इन पारंपरिक रस्मों का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आते हैं लाखों श्रद्धालु। कल निभाई जाएगी नीलाद्री बीजे की परंपरा, नीलाद्री बीजे से पूरी रथ यात्रा का अंतिम और समापन अनुष्ठान। नीलाद्री बीजे में मां लक्ष्मी को भोग कराते हैं महाप्रभु, मां लक्ष्मी का गुस्सा शांत करके महाप्रभु गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। जंतर मंतर पर जा रहे छात्रों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, गाजियाबाद के युवक पर कार्रवाई की मांग की गई। बागपत में सुशील गैंग का कुख्यात अपराधी, शार्प शूटर ढेर किया गया अपराधी और एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया आरोपी। ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे हुए गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत हुई, इलाके में अफरा तफरी। हरदोई पुलिस ने व्यापारी के घर पर चोरी का खुलासा किया, 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के एटा में खुद को गोली मारकर शख्स ने आत्महत्या की, मामले की जांच जारी। यूपी के बांदा में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, चित्रकूट जाने वाले नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर लगाई गई रोक। श्रद्धालु सड़क मार्ग से पैदल चलकर चित्रकूट धाम पहुंचते हैं, वहां से जल लेकर शिव मंदिर में अर्पित करते हैं, ऐसे रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। सहारनपुर में कावड़ रूट पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी, खाने की चीजों की गुणवत्ता और साफ सफाई पर नजर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर मरम्मत और रेस्टोरेशन के काम का रिव्यू किया है, काम के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पक्की करने और माउंटेन रेस्क्यू टीम को तैनात करने के निर्देश भी दिए, मौसम का रियल टाइम अपडेट देने के लिए भी कहा।
बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह ने जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह। पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मेजबान स्कॉटलैंड के आरोन को 5-0 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बाई मिलने से सेमीफाइनल में पहुंच गई, उनका एक पदक पक्का हुआ। जिम्बाब्वे को 90 रन से हराकर टीम इंडिया ने जीती है T20 मैचों की सीरीज श्रृंखला में, भारत 2-0 से आगे। भारत की अनाहा सिंह बनी जूनियर स्क्वैश विश्व चैंपियन, फाइनल में विश्व की रुकैया को हराया। विश्व जूनियर स्क्वैश में भारत का ऐतिहासिक स्वर्ण अनाहा सिंह ने फाइनल 3-0 से जीतकर इतिहास रचा। सितंबर अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज में बिना स्टार खिलाड़ियों के उतरेगी टीम इंडिया, बीसीसीआई चुनेगी अलग टीम। कुलाड़ खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं होंगे उपलब्ध, सूची में श्रेयस अय्यर, बुमराह, ईशान किशन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल हैं। एक ही समय में आयोजित हो रहे 2 टूर्नामेंट 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारत वेस्टइंडीज की सीरीज है। एशियन गेम्स में 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक क्रिकेट प्रतियोगिता चलेगी। T20 सीरीज के बीच टीम इंडिया को मिला है खास निमंत्रण, हरारे के इंडिया हाउस में भारत के राजदूत महामहिम ब्रह्म कुमार से की टीम ने मुलाकात। मुलाकात के दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर और अंतरिम मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण को सम्मानित किया गया। बीसीसीआई ने इस खास मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया। ईरान की समुद्री नाकेबंदी के बीच यूएस का बड़ा एक्शन, टैंकर निष्क्रिय करने का दावा किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांडोज ने एक बड़ा वीडियो जारी किया, लिखा चेतावनी नहीं मानी तो कार्रवाई की गई। अरब सागर में बढ़ गया है तनाव, ईरान की नौसेना एक नाकेबंदी लागू की गई, 12 व्यावसायिक जहाजों ने बदला है रास्ता। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, सऊदी हवाई हमलों को बताया जवाबी हमला। सऊदी सिविल डिफेंस का बयान, कहा यनबू और जिजान में कई बार सायरन बजे लेकिन हमले का कुछ नहीं कहा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन माना जाता है और अगर आप रविवार को सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य देव की पूजा करें, तो आप सूर्य संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो कौन कौन से उपाय आप रविवार को करें जिससे सूर्य का वरदान आपको मिले, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 1:57 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः 7:34 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:34 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन

करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपको आज ये बता रहे हैं कि अगर आप रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना करें तो सूर्य की विशेष कृपा और वरदान आपको मिल सकता है। रविवार को सूर्य देव की उपासना का महत्व क्या है? देखिए, रविवार का संबंध सूर्य देव से माना जाता है और इस दिन सूर्य देव की उपासना विशेष फलवती होती है, विशेष शुभ मानी जाती है। अगर आप सप्ताह में किसी भी दिन सूर्य देव की उपासना नहीं कर पाते तो केवल रविवार के दिन अगर आप सूर्य देव की उपासना करें या पूजा करें तो केवल रविवार की पूजा से भी आपको लाभ होगा। रविवार को सूर्य के विशेष उपाय करना लाभकारी होता है। सूर्य से संबंधित अगर जीवन में कोई बाधा है, कोई समस्या है और उसके लिए आप रविवार को उपाय करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए, सूर्य आरोग्य का, स्वास्थ्य का स्वामी है। सूर्य का गड़बड़ होना आपके स्वास्थ्य को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। तो रविवार को सूर्य देव की उपासना कैसे करें जिससे अच्छे स्वास्थ्य का वरदान जीवन में प्राप्त हो? सुबह के समय स्नान करके रविवार को सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और जल में थोड़ी सी रोली मिलाइएगा। इसके बाद जो सूर्य देव का मुख्य मंत्र है, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिएगा। लोटे के किनारे जो रोली लगी रह जाती है उस रोली का तिलक अपने माथे पर, अपने कंठ पर लगाइएगा। ऐसा हर रविवार के रविवार अगर आप करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सूर्य देव की कृपा पाने के और उपायों पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें।
गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, सूर्य अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ है, सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आपको हृदय रोग हो सकता है। अगर हृदय रोग की संभावना है तो भी, और अगर हृदय रोग है तो भी, रविवार को सूर्य देव की पूजा कैसे करें कि हृदय रोग से राहत मिले। रविवार को प्रातः काल सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, जल में लाल फूल डालिएगा। अगर गुड़हल का फूल हो, जवा पुष्प हो तो ज्यादा अच्छा होगा। सूर्य देव को गुड़ का भोग लगाइएगा और इसके बाद 108 बार एक माला या तीन माला ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। और किसी भी रविवार को एक लाल चंदन की माला सूर्य देव को अर्पित करके इसको गले में हमेशा धारण किए रखें। एक ही बार आप लाल चंदन की माला अर्पित करके इसके बाद इसको पहने रखिएगा। ऐसा करने से हृदय संबंधित स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। सूर्य देव के अन्य उपायों पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं।

योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनिल जी ने हमें लिखा है और अनिल जी हमें मेल लिखते हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 8 अक्टूबर 1975, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म का स्थान है भोपाल। ये कह रहे हैं कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में लगभग पिछले 15 साल से काम कर रहा था लगातार, और अब वहां पर मेरी नौकरी जाने की नौबत आ गई है, तो क्या भविष्य में मुझे कोई और बेहतर नौकरी मिलेगी या ये नौकरी छूटने के बाद मुझे व्यापार में जाना चाहिए? अनिल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय चल रहा है। इस समय आपकी नौकरी में बदलाव होगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्थान में परिवर्तन हो, आपको भोपाल से थोड़ा दूर जाना पड़े। नौकरी और स्थान में परिवर्तन होने की संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। करियर में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसकी चिंता आप करिए। दो उपाय करिए अपने करियर को बेहतर करने के लिए। एक

करने से आपको विजय अवश्य मिलेगी। देखिए, अगर जीवन में सूर्य की कृपा हो तो व्यक्ति को बड़ी आसानी से मान सम्मान मिलता है, नाम और यश मिलता है। छोटी उम्र में आदमी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मान सम्मान मिले, नाम और यश मिले, तो क्या करेंगे? रविवार को एक लोटा जल ले लें, इसमें रोली डालें, लाल चंदन डालें और लाल फूल डाल करके इस जल को सूर्य देव को अर्पित करिएगा। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा किसी भी रविवार को सूर्य देव को अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का एक माला या तीन माला जप करिएगा और इसके बाद तांबे का चौकोर टुकड़ा गले में धारण कर लें या हमेशा अपने पास रखें। तांबे का चौकोर टुकड़ा केवल एक रविवार को अर्पित करके प्रयोग करिए, बाकी हर रविवार को रोली चंदन फूल मिलाकर सूर्य देव को सुबह जल चढ़ाइए और सुबह के समय एक या तीन माला ओम भास्कराय नमः का जप करिएगा, आपको नाम यश की प्राप्ति अवश्य होगी। सूर्य के उपायों पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, यात्रा में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना अगर आप श्रद्धा से करें, तरीके से करें, तो आपको सूर्य से कृपा मिलेगी और सूर्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो रविवार के दिन कौन कौन से काम करना अच्छा होगा? संभव हो तो रविवार को भगवान सूर्य को जवा

का पुष्प या आक के पुष्प अर्पित करिएगा। अगर सूर्य की वजह से जीवन में दिक्कतें ज्यादा हैं तो गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का रविवार को दान करिएगा। रविवार को आप उपवास रखिए, बहुत अच्छा होगा, या केवल सात्विक आहार ग्रहण करिए, प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करेंगे। और अगर आपका सूर्य कमजोर है, आप उसको ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो सलाह लेकर रविवार के दिन माणिक्य धारण करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान की चिंता रह सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि सूर्य की पूजा या सूर्य के मंत्र का जप सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा सही है? देखिए, सूर्य दिन में बलवान होते हैं, दीपावली है, इसीलिए सूर्य की ज्यादातर जो पूजा है, सूर्य को जल चढ़ाना, उनके मंत्र का जप करना, इसके लिए ज्यादातर दिन में करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दिन के हिस्से पर अधिकार सूर्य का होता है। सूर्यास्त के बाद सूर्य का अधिकार नहीं होता, उसके बाद शनि, चंद्रमा, इन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है। तो सामान्यतः सामान्य स्थिति में आपको सूर्यास्त के बाद सूर्य का मंत्र जप करना या सूर्य की पूजा करना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर कोई स्वास्थ्य की गंभीर परिस्थिति है या जीवन में कोई बड़ा गंभीर संकट सूर्य की वजह से पैदा हो गया है, तब ऐसी स्थिति में आप सूर्य की पूजा दोनों वेला दोनों समय कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।
हमारे चोट चपेट से बचाव करें, नंबर दो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नंबर तीन यात्रा के योग बन रहे हैं, नंबर चार धन लाभ के योग हैं, नंबर पांच करियर में लापरवाही ना करें, नंबर छह परिवार में शुभ कार्य होंगे, नंबर सात करियर में बदलाव होगा, नंबर आठ रुके हुए काम पूरे होंगे, नंबर नौ लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करेंगे, आपको जीवन में नाम और यश की प्राप्ति होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न भास्कर जी ने हमें लिखा है और भास्कर जी हमें गुड़गांव से मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 मई 1981, दोपहर के 2 बजे, अमृतसर पंजाब में लिखते हैं गुड़गांव से। भास्कर कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहता हूं, क्या नौकरी छोड़ करके मेरा व्यापार में जाना बेहतर रहेगा? भास्कर जी, आपकी कुंडली कहती है कि आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में आगे चल करके अपना काम करेंगे, इंडिपेंडेंट काम करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। फरवरी 2027 के बाद इसकी बेहतर संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी प्लेन वाटर, और एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। आज द्वादशी तिथि है, द्वादशी के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं, तो आज श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करिएगा। और रविवार के दिन जब ऐसी तिथि आती है तो ककरच नामक योग बनता है और इस तिथि पर किए गए कार्य मध्यम हो जाते हैं, तो आज जो भी शुभ काम करेंगे उसका मध्यम फल आपको प्राप्त होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
2: और अब बात करेंगे छात्र आंदोलन की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली का जंतर मंतर अब खाली हो चुका है। कल देर रात तक वहां छात्रों का जश्न चला, लेकिन आज सुबह वहां कुछ भी नहीं नजर आया, क्योंकि तमाम छात्रों को यहां से हटाया जा चुका है। ज्यादातर लोग खुद ही जश्न मनाने के बाद अपने अपने घरों को वापस चले गए। रास्ते खुल चुके हैं, मेट्रो स्टेशन खुल गए हैं, इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया और अब सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है।
3: एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्ग है, पिछले कई दिनों से ट्रैफिक के लिए बंद था, उसे खोल दिया गया है। और मैं आपको अभी सुबह की तस्वीरें दिखाऊंगा जंतर मंतर से। ये वही जगह है जहां पर स्टेज लगा हुआ था पिछले करीब एक महीने से। अभिजीत दिप के, सोनम वांगचुक सब यहीं पर बने हुए स्टेज पर बैठे हुए थे। लेकिन अगर आज आप सुबह की तस्वीरें देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहां पर कभी भी कोई स्टेज था। रातों रात पूरे स्टेज को यहां से खाली करा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहां कल देर रात से ही एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो यहां पे सफाई अभियान में लगे हैं, क्योंकि पिछले करीब एक महीने से यहां पर किसी भी तरह की सफाई नहीं हो पा रही थी। हां, कुछ वॉलंटियर्स थे कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, ऐसे थे जो साफ सफाई करने का काम कर रहे थे, लेकिन जो पूरा इलाका है काफी ज्यादा गंदा हो गया था। और कल देर शाम से ही और देर रात से ही जो एनडीएमसी के कर्मचारी हैं वो पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। अभी सड़कों की धुलाई की जा रही है, सुबह झाड़ू लगाया गया यहां पर, कूड़ा हटाया गया और अब सड़कों की धुलाई चल रही है। और आज सुबह से ही पिछले कई दिनों से जिस तरीके से हम देख रहे थे कि यहाँ पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो थे वो काफी भारी संख्या में तैनात थे, तो आज सुबह उनके लिए भी ये राहत की खबर है कि आज वो भी थोड़ा आराम कर सकते हैं और आज यहाँ जंतर मंतर आने की जरूरत नहीं है या ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, क्योंकि आज सुबह से कोई भी प्रदर्शनकारी यहाँ जंतर मंतर नहीं आया। हाँ, एक दो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं जो ये देखने के लिए उत्सुकता से पहुंच रहे हैं कि आखिर जंतर मंतर पे हो क्या रहा था। लेकिन कल देर शाम से ही जिस तरीके से अभियान चलाया गया है, स्टेज साफ कर दिया गया है, सड़कें साफ कर दी गई हैं, ट्रैफिक खोल दिया गया है और स्थिति एक बार फिर से यहां पर सामान्य दिख रही है।
2: तो पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 50 दिन से ज्यादा जारी छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है और सरकार ने छात्रों की तमाम शर्तों को मान लिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल उस मुद्दे का है जिसकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ था। क्या पेपर लीक अब रुक जाएगा? क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा? अब

0: की मांग कॉकरोच पार्टी का अनशन, राहुल गांधी की जिद, विपक्ष का प्रदर्शन, आखिरकार शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते हुए कुछ यूं लिखा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा। जंतर मंतर पर पिछले 50 दिनों से चल रहे ऐतिहासिक छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सौंपते ही कॉकरोच जनता पार्टी झूम उठी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: अतः से सरकार ने ये कदम ली है, वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
0: आज सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के तीसरे राउंड की बैठक थी, जिसमें सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपना पक्ष रखना था, लेकिन बैठक से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी और सरकार के बीच तीसरे राउंड की बात हुई। सरकार ने तीनों शर्तें मानी और आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया।
3: मेरे ख्याल से इन्होंने जो भी बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
0: सरकार के सामने कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मांगे रखी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
4: सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटर्न में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूजडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूजडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग FIR के बारे में और इन एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बदलने से भारत का परीक्षा तंत्र सुधर पाएगा या फिर छात्रों को न्याय मिलने तक ये आंदोलन एक नया रूप लेगा। आज तक ब्यूरो।
5: और बिहार से बड़ी और अहम खबर, नीट पेपर लीक के विरोध में हुए बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन में शामिल होने के बाद तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पटना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के बाद देर रात को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। पुलिस का आरोप यह है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों को उकसाने और साथ ही कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश उन्होंने की थी। वहीं तेज प्रताप के वकील का दावा यह है कि गिरफ्तारी बिना वारंट के की गई है और FIR भी बाद में दर्ज की गई। इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। और यह खबर है विदेशों में लगी हुई आग के बारे में, क्योंकि यूरोप से लेकर कनाडा में जंगल की आग भारी तबाही मचा रही है। इंसानी बस्तियों तक जंगल की आग पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल है स्पेन और फ्रांस का, जहां बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्पेन में तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा है।
6: रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के साथ जंगल की आग यूरोप से लेकर कनाडा में कहर बरपा रही है। स्पेन और फ्रांस के साथ साथ पश्चिमी कनाडा में जंगल की आग से अब तक भारी नुकसान हो चुका है और अगर जल्द हालात पर काबू नहीं पाया गया तो हालात और भयावह हो सकते हैं। फ्रांस में तो जंगल की आग घरों को तेजी से निशाना बना रही है। सबसे बुरा हाल दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के गिरोंद और लांद प्रांत का है। फ्रांस के अधिकारियों ने शुक्रवार को अटलांटिक तट के लोकप्रिय पर्यटन स्थल कैप फेरे प्रायद्वीप को पूरी तरह खाली कराने का आदेश दे दिया। यहां अब तक 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल को आग जला चुकी है। आग में 80 घर जल गए हैं, जिनमें करीब 50 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। 63,000 लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया गया है। इनमें बड़ी संख्या में पर्यटक भी शामिल हैं। जंगल की आग से निपटने के लिए अग्निशमन और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर बढ़ते दबाव के बीच फ्रांस और स्पेन ने यूरोपीय संघ से मदद मांगी है। फ्रांस की तरह पड़ोसी देश स्पेन भी जंगल की आग में जल रहा है। यहां मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्से में भयावह आग लगी हुई है। राजधानी मैड्रिड क्षेत्र में सबसे भीषण आग लगी हुई है। इसके अलावा स्पेन के कई और प्रांत जंगल की आग से जूझ रहे हैं। यहाँ भी मैड्रिड के पश्चिमी क्षेत्र में कई घर जंगल की आग में जलते नजर आए। बिगड़ते हालात को देखते हुए स्पेन ने जंगल की आग को लेकर पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। 2000 से ज्यादा फायर ब्रिगेड के सदस्य और 10 विमानों को आग पर काबू पाने के लिए लगाया गया है। फ्रांस और स्पेन की तरह पश्चिमी कनाडा में जंगल की आग के नए मामले सामने आए हैं, जबकि ओंटारियो में जंगल अब भी जल रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे देश में अब तक के सबसे भीषण जंगल की आग के मौसमों में से एक बताया है। गर्मी और बिजली से भड़की इन जंगल की आग ने इस गर्मी में कनाडा के दूर दराज के जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया। पिछले हफ्ते कनाडा के जंगल की आग से धुएं का असर अमेरिका के पूर्वी तट और मध्य पश्चिमी हिस्सों के कई बड़े शहरों तक भी पहुँचा था। आज तक ब्यूरो।
5: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं हेडलाइंस।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। बोले, निष्ठा से निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से ज्यादा जरूरी है देश। विपक्ष ने छात्रों की थपथपाई पीट। राहुल गांधी बोले, संसद में उठाएंगे पैलेट गन का मुद्दा। प्रदर्शन खत्म होने के बाद दिल्ली में जंतर मंतर से हरे बैरिकेडिंग। सभी मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बहाल। पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन को लेकर नपे लालू के बेटे तेज प्रताप यादव 14 दिन के लिए भेजे गए जेल। कोलकाता प्रोटेस्ट पर 11 लोग गिरफ्तार, 10 आरोपी मुसलमान। अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में नए एसआईटी का गठन। 2 आईपीएस ऑफिसर्स की एंट्री। विजय विश्वास और नील रतन बाहर। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देगी योगी सरकार। और गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़ गए हालात। अहमदाबाद, नवसारी और सूरत का बुरा हाल। अब तक 56 लोगों की मौत। असम भी पानी पानी। अब तक 61 ने गवाई जान। हजारों लोग बेघर।

असम में बाढ़ ने बारिश ने भारी तबाही मचाई है, तक 61 लोगों की जान गई है। अहमदाबाद के गैलॉब इंडस्ट्रियल पार्क में जलभराव के बीच राहत और बचाव का काम जारी है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर कम से कम 400 लोगों को बाहर निकाला गया, फंसे हुए सेना के जवानों ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। अहमदाबाद में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, फैक्ट्री में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नवसारी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने दौरा किया, हालात का जायजा लिया। गुजरात में बाढ़ और बारिश से अब तक 56 लोगों ने गवाही है अपनी जान, पिछले दो दिनों में 25 लोगों की मौत की खबर। गुजरात में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए देवदूत बने हैं सेना के जवान, राज्यभर में देवदूत बनकर लोगों की बचा रहे हैं जान, ऑपरेशन जारी। दिल्ली में अगले दो दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान, 36 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से पीर की गली और परपोषान के बीच मुगल रोड पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड, बीआरओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम शुरू किया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बीच इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, शोपियां में उफनती धाराओं के और बागों में पानी ही पानी। जंतर मंतर पर जा रहे छात्रों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, गाजियाबाद के युवक पर कार्रवाई की मांग तेज। बागपत में सुशील गांगा कुख्यात अपराधी और शार्प शूटर डेरुआ अपराधी और एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया आरोपी। ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे हुए गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत हुई, इलाके में अफरा तफरी। हरदोई पुलिस ने व्यापारी के घर चोरी का किया हुआ खुलासा, 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के एटा में खुद को गोली मारकर शख्स ने की आत्महत्या, मामले की जांच जारी। ग्रेटर नोएडा की अर्लेगो सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, एसटीएफ टैंक की सफाई के दौरान कर्मचारी सिक्योरिटी गार्ड की दम घुटने से मौत। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों का आतंक, इंदिरानगर में किराना कारोबारी के घर पर डकैती, परिवार पर जानलेवा हमला। सहारनपुर में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, अदालत ने लगाया 1,00,000 रुपए का जुर्माना, 7 साल पुराने मामले में फैसला। सहारनपुर में दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया, पत्नी को जहर देकर मारने के आरोप में पुलिस ने जेल भेजा। चित्रकूट में गैंगरेप के आरोपियों से पुलिस मुठभेड़ में, बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती। आज करगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल की भव्य सजावट, प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के वीरों को सलाम किया। रक्षा मंत्री ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, ऑपरेशन विजय के शहीदों के बलिदान को भी याद किया। जौजिला में सेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैनिकों का बढ़ाया हौसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में 60 दिनों तक चला था करगिल युद्ध, 26 जुलाई को हुआ था अंत, भारतीय सेना ने शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान को हराया था। यूपी के बांदा में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, चित्रकूट जाने वाले नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। श्रद्धालु सड़क मार्ग से पैदल चलकर चित्रकूट धाम पहुंचते ही वहां से जल लेकर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं, ऐसे रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री बैन। सहारनपुर में कावड़ रूट पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी, खाने पीने की चीजों और गुणवत्ता पर नजर रहेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर मरम्मत और रेस्टोरेशन के कामों का रिव्यू किया है, कैंप के अधिकारियों के साथ ही बैठक की। मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षा पक्की करने और माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात करने के निर्देश दिए, मौसम का रियल टाइम अपडेट शेयर करने के लिए कहा। जंतर मंतर पर रात भर चला क्लीन अप ऑपरेशन, प्रदर्शन समाप्त होने के बाद सड़कें और आसपास का क्षेत्र साफ करने में जुटी एनडीएमसी। दिल्ली मेट्रो सेवा पूरी तरह से बहाल हुई, डीएमआरसी ने कहा कि सभी स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट फिर से शुरू। रेवंत रेड्डी का बड़ा राजनीतिक बयान, कहा राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर जेन जी प्रतिनिधि को शिक्षा मंत्री बनाने की कोशिश करूंगा। डीएससी परीक्षा को लेकर जगन पर एनडीए सरकार का हमला, नारा लोकेश से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग। पंजाब में भर्ती घोटाले की स्वाति मालीवाल का आरोप, आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा मंत्री से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रहलाद जोशी को मिला है अतिरिक्त प्रभार, शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद बोले निष्ठा के साथ निभाऊंगा जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर से बोले अभिजीत दीप के, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। नड्डा जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रवक्ताओं के साथ किया संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, नड्डा बोले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस ली जाएगी, मुआवजे पर नियमों के मुताबिक फैसला। मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीजेपी के प्रवक्ता, मंगलवार को मिलेगी सरकार की तरफ से लिखित गारंटी, 4 हफ्ते के बाद शिक्षा सुधारों पर फिर से सरकार से बात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तेजस्वी यादव ने बताया सच का हक की और जीत की और झूठ के पैतरों की हार हुई, अहंकार की हार हुई। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भेजा गया जेल, 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
पटना के गांधी मैदान में प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे तेज प्रताप यादव, वहीं से उन्हें हिरासत में लिया गया। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास बोले, अगर समस्या का हल नहीं मिला तो फिर से लौटेंगे जंतर मंतर पर। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आज तिरंगा यात्रा का ऐलान किया है, कहा मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी यात्रा, युवाओं को जीत का जश्न। पेपरली के खिलाफ सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा बिल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान की सराहना की, कहा धर्मेंद्र प्रधान का काम सराहनीय, छात्रों के हित में काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे की छात्रों की भावनाओं का बताया है सम्मान, कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए छात्रों की भावनाएं सर्वोपरि। धर्मेंद्र प्रधान की बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सराहना की, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा इस्तीफे का बड़ा फैसला, लोगों के हित में, पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने स्वागत किया, सोशल मीडिया पर लिखा दे रहा है दुरुस्त आए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की, कहा राष्ट्रहित में इस्तीफा दिया, उन्होंने हर दायित्व निभाया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में कसीदे पढ़े, बोले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में अहम भूमिका निभाई, व्यापक समाज हित में फैसला लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा बोले, इस्तीफा देना उनका फैसला लेकिन उन्होंने असम की बड़ी मदद की। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इस्तीफे के बाद बताया इसे दिखावा, दबाव में सरकार के पीछे हटने पर तंज कसा। केंद्र सरकार को असदुद्दीन ओवैसी ने घेरा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले सरकार किसी को नहीं दबा सकती, सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारियों ने खुशी मनाई, छात्रों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। बिहार के समस्तीपुर में ऐसा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, बिहार बंद के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जताई। सूरत में कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी गई। चंडीगढ़ में कांग्रेस के समर्थकों और छात्रों ने बांटी मिठाइयां, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जीत का जश्न। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूर्वांचल में युवाओं का जश्न, चंदौली में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। लखनऊ में भी समर्थकों में खुशी की लहर है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बांटी गई चॉकलेट्स। विशाखापट्टनम में छात्रों ने पटाखे फोड़कर बनाया था अपना जश्न, एंटी के खिलाफ भी गुस्से का इजहार किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नागपुर में छात्रों का जश्न, संविधान चौक पर नाचते गाते नजर आए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित हुई है नई एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हुई 3 आईपीएस की एसआईटी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इससे पहले यूपी सरकार ने एससी के निर्देश पर अधिकारियों तक नाम सुप्रीम कोर्ट को बताने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में बाढ़ को लेकर सीएम हेमंत बिस्व सरमा से बात की, केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। असम में बारिश कम होने से बाढ़ की स्थिति में सुधार के संकेत, प्रशासन प्रभावित इलाकों में जरूरी मदद पहुंचाने में जुटा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिवसागर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों का दौरा किया, स्वास्थ्य सेवा, भोजन पानी और अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा। श्री जगन्नाथ पुरी में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु। जगन्नाथपुरी में निभाई जाएगी अधर पाना की रस्म, बड़ी मिट्टी के पात्रों में अर्पित किया जाएगा विशेष मीठा पेय। रथों पर विराजमान देवताओं को अर्पित होगा खास पेय, इन पारंपरिक रस्मों का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आते हैं लाखों श्रद्धालु। कल निभाई जाएगी नीलाद्री विजय की परंपरा, नीलाद्री विजय से पूरी रथ यात्रा की अंतिम और समापन अनुष्ठान। नीलाद्री विजय ने मां लक्ष्मी की भोग कराते हैं महाप्रभु, मां लक्ष्मी को गुस्सा शांत करके महाप्रभु गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह ने जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। पुरुष 55 किलो वर्ग्राम के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मेजबान स्कॉटलैंड के ऑरेन को 5-0 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बाई मिलने से सेमीफाइनल में पहुंच गई, उनका पदक पक्का। जिम्बाब्वे को 90 रन से हराकर टीम इंडिया ने जीती है T20 मैचों की सीरीज, श्रृंखला में 2-0 से आगे। भारत की अनाहा सिंह बनी जूनियर स्क्वैश विश्व चैंपियन, फाइनल में मिस्र की रुकैया को हराया। विश्व जूनियर स्क्वैश में भारत का ऐतिहासिक स्वर्ण, अनाहा सिंह ने फाइनल 3-0 से जीतकर इतिहास रचा। सितंबर अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज में बिना स्टार खिलाड़ियों को उतरेगी टीम इंडिया, बीसीसीआई ने ऐलान किया। कुल 8 खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं होंगे उपलब्ध। इस सूची में श्रेयस अय्यर, बुमराह, ईशान किशन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी।
एक समय में आयोजित हो रहे हैं दो टूर्नामेंट 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारत वेस्टइंडीज सीरीज है। एशियन गेम्स में 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी क्रिकेट प्रतियोगिता। टी20 सीरीज के बीच टीम इंडिया को मिला एक खास निमंत्रण। हरारे के इंडिया हाउस में भारत के राजदूत महामहिम ब्रह्म कुमार से टीम ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर और अंतरिम मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण को किया गया सम्मानित। बीसीसीआई ने इस खास तस्वीर को शेयर किया। ईरान की समुद्री नाकेबंदी के बीच बड़ा एक्शन, टैंकर निष्क्रिय करने का दावा किया गया यूएस की तरफ से। अमेरिकी सेंट्रल कमांडोज ने एक वीडियो भी जारी किया, लिखा चेतावनी नहीं मानी तो कार्रवाई की जाएगी। अरब सागर में बढ़ गया है तनाव, ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी लागू, 12 व्यावसायिक जहाजों ने रास्ता बदला। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया, सऊदी हवाई हमलों को बताया जवाबी हमला। सऊदी सिविल डिफेंस का बयान, कहा यनबू और जिनान में कई बार सायरन बजे लेकिन हमले के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

0: आज पूरा देश करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को नमन करने का अवसर है जिन्होंने 1999 के करगिल युद्ध में दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराकर भारत की आन मान शान की रक्षा की थी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास में हैं। वहां उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, उनके बलिदान को नमन किया है।
1: वक्फ पोर्टल का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश विदेश में बैठे सभी नागरिक इस शौर्य स्थली का वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे तथा हमारे वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी शौर्य गाथाओं से प्रेरणा ले सकेंगे। अब हम माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि पैप द्वारा इस पोर्टल का उद्घाटन करें माननीय रक्षा मंत्री महोदय।
2: कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर शौर्य एवं बलिदान की इस पावन धरती पर कारगिल वॉर मेमोरियल को अब सीमाओं से परे अनुभव कीजिए। कारगिल वॉर मेमोरियल 360 वर्चुअल वॉकथ्रू में आपका स्वागत है। एक ऐसा अनुभव जो इस शूर वीरों के स्मारक की एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से विश्व भर में पहुंचाएगा। इस वेबसाइट में एकीकृत इस इमर्सिव और इंटरैक्टिव अनुभव के माध्यम से वीरों की शौर्य गाथाएं सुनी जा सकती हैं। मेमोरियल के विभिन्न
0: तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली और द्रास की तस्वीरें। देखिए किस तरीके से 1999 के करगिल युद्ध में दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराकर भारत की आन बान और शान की रक्षा की थी हमारे जवानों ने। रक्षा मंत्री इस वक्त द्रास में हैं, वहां उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, उनके बलिदान को नमन किया है।
2: शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के इस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। कारगिल के अमर बलिदानियों को नमन करते हुए
0: और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ गई हैं। शिवानी, आज का दिन हर भारतीय को याद है और जैसा कि हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खास हो जाता है आज का दिन, इसलिए भी क्योंकि उस युद्ध में दुर्गम चोटियों पर तिरंगा फहराना वाकई में बहुत बड़ी बात, आन बान शान किस तरीके से हमारे जवानों ने उसकी रक्षा की थी, आज एक बार फिर से उन्हें नमन किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है, उनकी शौर्य गाथाएं सुनाई जा रही हैं।
3: ऐसे देखिए, कारगिल के युद्ध की जब बात होती है तो विश्व की सबसे दुर्गम युद्ध की बात होती है, क्योंकि ये जो चोटियां हैं जिसे हम देख रहे हैं, ये 15,000-16,000 फीट की चोटियां हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे और सीधी इन चोटियों पर चढ़ना, उनका सामना करते हुए, उनकी गोलियों का सामना करते हुए और उसके बाद लगातार अपने प्राणों की चिंता किए बिना लगातार उनका सामना किया गया और 527 हमारे भारत के वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन अपने प्राणों की आहुति देने के बाद भी लगातार यही मन में रहता था आखिरी गोली के तक कि किस तरह से हम अपनी माँ की रक्षा करेंगे। और आप देखिए, अब 27 वर्ष बीत चुके हैं, 27 वर्षों में भारत की सेना बहुत बदली है, किस तरह से हम लगातार ताकतवर हो रहे हैं आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ, किस तरह से हमारे प्रोक्योरमेंट सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शिवानी आपका। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
7: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के युवाओं को जेन जी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगले साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद।
3: जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले एक महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पर युवाओं ने कहा था, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी, पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ दो वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा, एक किसानों का आंदोलन, एक साल के बाद सरकार झुकी, दूसरा नौजवानों का आंदोलन जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: मिडिल ईस्ट सुलग रहा है और इसकी तपन में दुनिया भर के बाजारों में बेचैनी बढ़ गई है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव फिर से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाने की आशंका पैदा कर रहा है। दरअसल जब भी किसी बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, सबसे पहले कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ जाती है। इस बार भी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने ऊर्जा बाजारों की धड़कनें तेज कर दी हैं। गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज में सप्लाई संकट लंबा खिंचता है तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और चौथी तिमाही तक ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। तनाव लंबे समय तक जारी रहने पर कुछ विश्लेषकों ने $150 से $200 प्रति बैरल तक जाने की आशंका जताई है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड करीब $91 और WTI क्रूड लगभग $83 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। तेल बाजार में बढ़ती इस बेचैनी का असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसकी वजह है कि देश अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है और पश्चिम एशिया ग्लोबल क्रूड सप्लाई का खास हिस्सा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। वहीं पश्चिम एशिया में दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार की आवाजाही होर्मुज के रास्ते होती है और होर्मुज में बाधा आने पर भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। यही वजह है कि होर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट भारत जैसे बड़े आयातक देशों की चिंता बढ़ा देती है। तेल महंगा होने से ऊर्जा लागत बढ़ सकती है और महंगाई पर भी दबाव बन सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय रिफाइनरियां अपनी खरीद रणनीति में बदलाव करती नजर आ रही हैं, जिसके चलते जून तिमाही में रूस और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल खरीद बढ़ाई गई, क्योंकि रिफाइनरियां वैकल्पिक स्रोतों पर फोकस बढ़ा रही हैं और उनका मकसद किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करना है। फिलहाल बाजार की नजर अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक कोशिशों पर है। अगर तनाव कम होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर संकट लंबा खिंचता है तो इसका असर पेट्रोल डीजल महंगाई और शेयर बाजार तक महसूस किया जा सकता है। यानी पश्चिम एशिया का ये तनाव हजारों किलोमीटर दूर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के बजट पर भी असर डाल सकता है। आदित्य राणा, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

करगिल विजय के 27 साल द्रास में शहीदों को राष्ट्र का नमन। रक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वीर जवानों के अदम्य साहस को किया सलाम। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। बोले, पूरी निष्ठा से निभाऊंगा जिम्मेदारी। अमित शाह ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पद से ज्यादा जरूरी है देश। पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन को लेकर नपे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। 14 दिन के लिए भेजे गए जेल। कोलकाता प्रोटेस्ट पर 11 लोग गिरफ्तार। 10 आरोपी मुसलमान।

0: खुद को तैयार। देखिए करगिल महाविजय के 27 साल बाद नए भारत की नई ताकत। है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा, उनसे है मां की कोख धन्य, उनको पाकर है धन्य धरा। गिरता है उनका रक्त जहां वो ठौर, तीर्थ बन जाते हैं वो रक्त बीज, अपने जैसों की नई फसल दे जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। हम करगिल में हैं इस समय, वो करगिल जहां का युद्ध हमने ऐसे जीता कि उसके बाद पाकिस्तान हिम्मत ही नहीं कर सका एक पूर्ण युद्ध भारत से लड़ने के लिए। लेकिन दुनिया के बाकी जो देश हैं वो अपनी हार में सबक सीखते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है दुनिया का जो अपनी जीत से भी सबक लेता है। ये युद्ध भूमि के टुकड़े के लिए नहीं था, ये भारत माता के आंचल के सम्मान की जंग थी। ये हिंदुस्तान के अभिमान की जंग थी, ये हमारे अधिकार की जंग थी, ये पाकिस्तान को उसका हद बताने की जंग थी, ये सरहद पर स्वाभिमान की जंग थी। करगिल युद्ध को 27 साल बीत चुके हैं। भारत की सेना ने यहां पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दी थी कि वो दशकों से भूल नहीं पा रहा। लेकिन विजयी दबदबे के अति आत्मविश्वास की जगह भारत ने जीत से भी सीख लेते हुए इस मोर्चे को अभेद बनाया है। जहां भी गुंजाइश थी वहां सुधार किया है।
1: फिर एक बार उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां हम एक बार 1999 में हुआ करते थे। उस समय की हालात को देखते हैं और आज की हालात को देखते हैं तो हर एक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में काफी ज्यादा बदलाव लाए गए हैं। पहाड़ियों के बीच भी छोटे छोटे ट्रैक्स बना दिए गए हैं जिनकी मदद से हमारे छोटे व्हीकल हमारे फॉरवर्ड पोस्टों तक जाने की कार्रवाई कर सकते हैं।
0: भारत ने करगिल युद्ध में महाविजय हासिल की थी, लेकिन ये भारतीय सेना की परंपरा रही कि युद्ध के उपरांत हर सीख को आगे की पीढ़ियों के लिए दर्ज किया जाता है। जहां कमी लगती है उसे दूर किया जाता है, जो सफलता मिलती है उसे आगे के लिए ट्रेनिंग में शामिल किया जाता है। ठीक इसी तरह जहां कमी पाई गई उनमें ऐसा सुधार किया गया कि दुश्मन को हमारी रक्षा में अब एक भी दरार नहीं मिलेगी। जैसे करगिल के समय दुश्मन की जिस चालबाजी का पता चलने में वक्त लगा था उसे दूर करने के लिए जानकारी हासिल करने का तंत्र दुरुस्त किया गया है। हाई ऑल्टीट्यूड की ट्रेनिंग और इन परिस्थितियों में सैनिकों के साजो सामान को बेहतर किया गया है। संचार प्रणाली को पुख्ता और मजबूत किया गया है। हथियार प्रणालियों को जरूरत के अनुसार अपग्रेड किया गया। स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाया गया। जल थल वायु सेना का समन्वय बेहतर हुआ है और सबसे बढ़कर उपकरणों और हथियारों का स्वदेशीकरण हुआ है। करगिल विजय दिवस पर हम आपको दिखाएंगे क्यों अब इस मोर्चे पर दुश्मन आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता।
2: 1999 तक इंसास राइफलों का इस्तेमाल, LMG जो बहुत अपडेटेड नहीं थी, नाइट विजन का उतनी बहुतायत में नहीं था, लेकिन अब किस तरीके के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल होते हैं।
0: 27 साल पहले जिन हथियारों से हमने युद्ध लड़ा था वो अब इतिहास की कहानियां हैं। आधुनिक हथियारों की इस तस्वीर में हमारा हुनर, हमारी आशा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भरोसा नजर आता है। ये नया अजय जो असॉल्ट राइफल है, ग्रेनेड लॉन्चर्स और उसी में कुछ ऐसी चीजें जो आज भारतीय सेना की तरक्की आपको और ज्यादा दिखाती है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये भारत में निर्मित है। इससे पहले रूस में निर्मित एंटी टैंक मिसाइल हम यूज करते थे, लेकिन अब भारतीय निर्माण जो है, जो स्वदेशी हथियार ये है, उसमें जो रेंज है वो लगभग डबल हो गया है। 3 किलोमीटर से अधिक तक ये निशाना साध सकता है, 75 मीटर से लेकर
2: 3000 मीटर के ऊपर तक।

0: इसका इसका रेंज होता है। और ये जो हथियार है इसे चार लोग कुल मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि एक जो टुकड़ी है वो साथ लेकर इसे चल सकती है। इसी तरीके से आप हमारी स्नाइपर राइफल को देख लीजिए, कहीं भी किसी भी दूरी से सटीक निशाना बिल्कुल लगाने में सक्षम।
1: आज भारतीय सेना ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रही है जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इनमें कुछ दूसरे देशों में निर्मित है तो कुछ का उत्पादन भारत में हो रहा है। रूस के साथ रक्षा समझौते के तहत AK-203 का उत्पादन भारत में हो रहा है। काउंटर टेररिज्म से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर तक AK-203 विस्तृत कॉम्बैट परिस्थितियों में प्रयोग के लिए बेहतरीन। ये राइफल दुनिया के सबसे एडवांस और भरोसेमंद असॉल्ट राइफल्स में से एक है।
2: इसका नाम है AK-203 असॉल्ट राइफल। हाँ। ये पहले सेना के अंदर AK-47 का इस्तेमाल किया जाता था, अभी इसका लेटेस्ट वर्जन AK-203 को सेना के अंदर शामिल किया गया है। AK-47 के बनिस्पत इसका रिकॉइल कम और एक्यूरेसी ज्यादा होने के कारण हम लंबे रेंज पर निकलने वाले टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। इसके साथ पांच मैगजीन आते हैं, उससे हम लड़ाई में ज्यादा एमिनेशन कैरी कर सकते हैं और इसका फायर पावर भी बढ़ जाता है।
1: इसके अलावा भारतीय सेना फ्रंटलाइन ट्रूप्स, स्पेशल फोर्सेस, घातक प्लाटून के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार राइफलें इस्तेमाल करती है।
3: ये एक स्नैपर है, इसका नाम है 8.6 mm साको स्नैपर राइफल। अभी इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर बाइपॉड की सुविधा दी गई है, इसके अलावा इसके अंदर बोल्ट एक्शन है, जिसके वजह से क्या है इसके अंदर पुर्जे की मूवमेंट नहीं होती, जिसके अंदर वजह से क्या है इसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है। दूसरी बात है इसके अंदर पिकातनी रेल की सुविधा दी गई है, जिसके वजह से दिन के समय जिस प्रकार से हम साइट लगा के फायर करते हैं उसी हिसाब से क्या है इसके अंदर नाइट के समय भी हम TI साइट लगा के उसको हम फायर के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिसके वजह से दिन और रात के समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: साथ ही जो नाइट विजन और थर्मल वेपन साइट्स हैं वो बेहद कारगर हैं।
4: इस साइट का नाम है लॉन्ग रेंज थर्मल इमेजर कैमरा। ये एक नाइट साइट है जो कि भारत में बेल कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह साइट थर्मल इमेजर के सिद्धांत पे काम करती है। इस साइट के साथ एक TFT की सुविधा दी गई है, जिसकी मदद से एक ऑपरेटर साइट को किसी डोमिनेंट हाइट पे और या फिर बंकर पर खुद ऑपरेटर बंकर के अंदर बैठकर अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की निगरानी आसानी से कर सकता है। साइट लाइट वेट होने के कारण एक ऑपरेटर इस साइट को एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से कैरी कर सकता है।
1: बुलेट प्रूफ जैकेट्स की क्षमता भी बढ़ी है और वजन घटा है। ठंड में इस्तेमाल में आने वाला गियर भी पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हुआ है। हम आपको वो उपकरण भी दिखाते हैं जो 1999 में इस्तेमाल किए जाते थे।
0: भारतीय सेना के हाथों में आज आप अलग अलग तरह के हथियार देखते होंगे, लेकिन उस समय कौन से हथियार, कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था? ये AK-47 राइफल्स, हालांकि इनमें कई ऐसे हैं जो कि दुश्मन से कैप्चर भी किए गए हैं, दुश्मन के दांत किस तरह से खट्टे किए थे आप सबको याद है। ये मैगजीन्स हैं, वो नेजा है, वो बेनेट है, जिसके अलग अलग तरह के इस्तेमाल हो जाते हैं। उस समय भी आपने देखा होगा कि चाहे गोलियां बचे ना बचे लेकिन दुश्मन नहीं बचता था। बंदूक के सामने के हिस्से में इसे फिट भी किया जा सकता है और अलग अलग अवरोध को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी चीज़ को खोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो ग्रेनेड है, हैंड ग्रेनेड, इसका इस्तेमाल किया गया था, Type 36 से कहते हैं। और साथ ही जो मोटोरोला सेट्स थे जो कि उस समय डिजिटल नहीं बल्कि एनालॉग, और ये जितने भी उपकरण आप देख रहे हैं वो जो पहाड़ियों को पार करने के लिए जिनका प्रयोग किया गया था उन सब को अर्जित किया गया था। और जब भी एक सैनिक युद्ध भूमि के लिए निकलता था तो वो जो फील्ड ड्रेसिंग होती है, क्योंकि उस समय आपको जिस तरह की चोटें आ रही हैं उसके लिए सबसे पहले किस तरह से जल्दी फौरी उपचार मिल जाए उसके हिसाब से, तो ये सारे उपकरण मोटे तौर पर जो एक योद्धा हमारा 1999 करगिल युद्ध में लेकर निकला था।
1: दरअसल 1999 में जब युद्ध छिड़ा तो भारत को जरा भी आशंका नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद से भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण को अपनी मुहिम बनाया। खासकर पिछला एक दशक इस दिशा में बेहद निर्णायक रहा है। इस बोफोर्स को जब आप द्रास करगिल की चोटियों के बीचों बीच देखते हैं तो अपने एहसास में आपको 1999 की उसकी गर्जना भी सुनाई देती है। गेम चेंजर था उस युद्ध में, जिस तरीके से इसने दुश्मन को अपनी हदों में रहने को मजबूर किया था, ये गेम चेंजर था। और अब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से बढ़ते हुए, बोफोर्स की खूबियों को रखते हुए, बोफोर्स की कमियों को दूर करते हुए हथियारों के साथ लैस हैं। करगिल की लड़ाई में बोफोर्स तोप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित हुआ जिसने घुसपैठियों को बेबस कर दिया था। करगिल युद्ध में पहली बार इन तोपों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब ढाई दशक बाद 15,000 फीट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस धनुष हाउइट्ज़र भी मोर्चे पर लगाए गए हैं। किसी भी मौसम में, कैसे भी हालात में, ये दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकते हैं। हजारों मील में फैली घाटी में धनुष भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रहा है। आज इन ताकतों के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। न्यू इंडिया की बदलती तस्वीर की वजह से भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। 1999 करगिल युद्ध में बोफोर्स के दम ने दुश्मन का सर कुचल दिया था। 155 एमएम की ये गन ऊंची चोटियों पर फतेह में निर्णायक थी, लेकिन भारतीय सेना ने मोर्चे की बदलती जरूरतों पर ध्यान रखते हुए अपने तोपखाने के आधुनिकीकरण पर निरंतर जोर दिया।
5: मेक इन इंडिया के तहत जो भी हमारे डिफेंसिव इक्विपमेंट अब भारत में तैयार किए जा रहे हैं वो पहले के मुकाबले काफी बेहतर हैं। जे हमारी जमीनी बनावट और हमारे ऑपरेशनल टास्क को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं, जैसे हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट और असाल्ट राइफल और ड्रोन्स, जे सब अब भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। इनकी सबसे खास बात ये है कि इनमें अगर कभी भी कोई टेक्निकल फॉल्ट या कोई इशू आ जाता है तो हम इनको जल्द से रिपेयर करके और अपने ऑपरेशनल टास्क में शामिल कर सकते हैं। इनकी वजह से हमारी ऑपरेशनल पावर भी बढ़ी है और ये भारत के डिफेंस सिस्टम में एक मजबूत कदम है और ये हमारे लिए गौरव की बात है।
1: आज भारत के पास धनुष है, M777 अल्ट्रा लाइट हाउइट्ज़र है, K9 वज्र है, स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी है, DRDO द्वारा विकसित एटैक्स हैं। एक तरह से समझिए कि भारत में फायर पावर के लिहाज से क्रांति है।
6: उस समय पर यदि मैं हथियार की बात करूं तो हमने 99 के अंदर SLR और LMG 7.62 से लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन हमने उसके बाद में इंसास परिवार को भी पीछे छोड़ दिया। अभी हमारे पास में AK-203 6-0 राइफल, निगेव LMG और साको स्नाइपर जैसे आधुनिक हथियार आज हमारे पास में, जिनको इस इलाके में ऑपरेट करना, साथ ही उनका रखरखाव करना काफी आसान है, तो आसानी से एक जवान उनका इस्तेमाल कर सकता है।
1: इस इलाके में बहुत बदलाव हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में अब सेना ने ज्यादातर ऊंची चोटियों तक पहुंचने के लिए रास्ते और सड़कें बना ली हैं। टाइगर हिल, तोलोलिंग जैसी ऊंची चोटियों पर सेना ने मजबूत पोस्ट कायम कर ली है। जिन जगहों से पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी वहां घुसपैठ रोधी ग्रिड बना दिए गए हैं। जिन पहाड़ी चोटियों को बर्फबारी के मौसम में खाली कर दिया जाता था अब वहां पूरे साल सैनिकों की तैनाती रहती है। किसी भी वक्त तुरंत सैन्य तैनाती और मदद के लिए LOC पर जगह जगह हेलीपैड्स का निर्माण हुआ है। आम नागरिकों के लिहाज से भी इलाके की सूरत ही बदल दी गई।
7: कारगिल पर विजय हासिल करने के बाद भारतीय सेना और सरकार दोनों ने एक साथ मिलकर इस इलाके में नए विकास का एक नया दौर शुरू किया है। पहले यह इलाका काफी आइसोलेटेड माना जाता था, लेकिन अब इस इलाके में सिविल और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में भी काफी सुधार हुआ है। 4G, 5G ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट इंटरनेट जैसे अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ के युवा को नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ जोड़ दिया है।
8: अब हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस इलाके के अंदर पूरे साल एक्टिव रहने वाली सड़कों को बना दिया है। इसके साथ ही जोजिला टनल मेगा प्रोजेक्ट ने हमारे पूरे लद्दाख रीजन को राउंड द ईयर असेसिबल बनाया है। इससे क्या हुआ है कि हमारी सेना का जो मूवमेंट है वो और भी आसान हो गया है, और अगर जरूरत पड़ती है कि हमें प्रतिक्रिया करनी है तो हमारी प्रतिक्रिया भी पहले के बजाय अब तेज हो गई है।
1: इसके अलावा LOC पर सर्विलांस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सैटेलाइट और टोही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन्स अलग अलग भूमिकाओं में हैं भारतीय सेना में, सर्विलेंस बहुत प्रमुख रोल इसका हो जाता है, जैसे ये त्रिनेत्र जिसका नाम है, और केवल नाम भारतीय नहीं होता है बल्कि उसमें भारत का अंश होता है, उसके चाहे असेंबली को ले लीजिए या फिर उसके निर्माण को ले लीजिए, अलग अलग तरह के ड्रोन्स, ये एक सर्वेलेंस ड्रोन है, वैसे कॉम्बैट ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत क्या है कि ये दिन में और रात में दोनों समय में हमारी सेना की आंखें बनकर हमें वो तस्वीरें सीधे भेजता है। ये गर्व की बात है कि उस युद्ध के दौरान की चुनौतियों को अनुभव करने के बाद उन सभी को दूर करने की बारीक कोशिशें आप यहाँ पर देखेंगे। करगिल युद्ध के बाद से भारतीय सेना में आधुनिकीकरण की रफ्तार और तेज हो रही। युद्ध के स्मारक पर एक ओर आप करगिल दौर के हथियारों को शान से सजा देखते हैं, तो नए भारत की नई ताकत का बखान करते उपकरणों से भी गर्व महसूस करते हैं।
9: इस राइफल का नाम 6 और 716 असॉल्ट राइफल है। ये USA का बना हुआ है। इसकी ये खासियत यह है, हम 500 से लेकर 800 मीटर तक आसानी से दुश्मन को सिंगल शॉट और ब्रश राउंड फायर से बर्बाद कर सकते हैं। इस हथियार की कुछ एक विशेषताएं जो इस प्रकार से हैं, इसमें मैगजीन कैच और फायर सेफ्टी कैच लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों दे रखा है। अच्छा। अगर कोई बंदा लेफ्ट हैंड फायरर है, कोई राइट हैंड फायरर है, वो इसका आराम से इस्तेमाल कर सकता है। कई बार क्या होता है कि हाइट अलग अलग होने के कारण कि बट को एडजस्ट करना पड़ता है, इसमें एडजस्टिंग बट की सुविधा दे रखी है। साथ में क्या होता है कि फायरिंग के दौरान धूल वगैरह उड़ती है, इसमें एजेक्शन स्लॉट के ऊपर ना कवर के लिए डस्ट कवर की सुविधा दे रखी है। अच्छा। साथ में इसमें क्या है कि जो ओपन साइड और रियर साइड दोनों है ना, इनमें जीरो करने के लिए हमें किसी भी जीरोइंग टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ में इसके पिकनोटिंग रेल दे रखी है जिसके ऊपर हम डे साइड और नाइट साइड आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना भी इस्तेमाल करें, हम जरूरत अनुसार इस्तेमाल करके उसको उतार के रख सकते हैं।
1: विजय का अहंकार नहीं बल्कि चुनौतियों को परख कर व्यवस्था में सुधार ही भारत का ध्येय है, उद्देश्य। द्रास करगिल की इन पहाड़ियों पर कभी गोलियों और गोलाबारी के बीच हमारे सैनिक चढ़े थे। इन ऊंची चोटियों से दुश्मन को बेदखल किया था, तिरंगा लहराया था। इसके बाद से भारत ने कभी अपनी तैनाती यहां कमजोर नहीं पड़ने दी। आज सैनिकों के सहयोग के लिए यहां ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, जो अलग अलग जरूरतों के अनुसार ट्रूप मूवमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स में काम आते हैं।
0: एक तो यहाँ का भूगोल, यहाँ का टेरेन, और दूसरा यहाँ का जो कर्कश मौसम है, मोबिलिटी बड़ी जरूरी होती है। सब इस व्हीकल के बारे में बताएं, क्योंकि ज्यादातर समय तो यहाँ पर स्नो रहता है पूरे इलाके में। जी,
10: ये मैम ये पोलारिस 550, ये पोलारिस कंपनी से बना हुआ है। ये सेना में इसीलिए दिया गया है कि मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, जहाँ पे फोर व्हील व्हीकल जा नहीं पाता है वहाँ पे ये ले जाके हम आराम से ट्रूप्स को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब जब पूरा बर्फ रहती है
10: जी,
0: तो उसमें बहुत
10: जी जी, और स्टार्टिंग में जो माइनस डिग्री है उसमें भी आसानी से स्टार्ट हो जाता है। जो एविएशन का फ्यूल इसमें डालते हैं, इसीलिए
0: अच्छा
10: माइनस डिग्री में भी वो आसानी से स्टार्ट हो सकता है।
0: अच्छा अच्छा, वैसे भी तो द्रास को जो दुनिया की सबसे दूसरी नंबर पर आने वाली ठंडी जगह है, जो कि आबाद जगह है, मतलब एक ऐसी रिहायशी जगह जो दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे ठंडी जगह है, वो है द्रास। यहाँ पर माइनस में भी तापमान रहता है और बर्फ से ढके हुए पहाड़ रहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण इस हिसाब से हो जाता है हमारे फोर्सेस के लिए।
1: इन ATV में भी कई भारत में निर्मित है, ये खड़ी चढ़ाई पर भी फर्राटे से भागते हैं, भारी वजन ले जाने में सक्षम।
0: जब आप एक विजय गाथा को बार बार दोहराते हैं, जब एक उत्सव बार बार मनाते हैं, तो उसके मायने कई होते हैं, न केवल देश के सैनिकों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए भी। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद वंदे मातरम। 1947-48 से लेकर कई ऐसे वर्ष आए जब पाकिस्तान ने भारत पर धोखे से आक्रमण किया और उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन 1999 का करगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था
1: जिस युद्ध में पाकिस्तान को इतनी तगड़ी शिकस्त मिली कि उसके बाद वो कभी भी दोबारा सर नहीं उठा सका, कभी भी एक पूर्ण युद्ध भारत के खिलाफ छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सका।

0: आज हमें टाइगर हिल पर डिप्लोमेट दुश्मन के ऊपर हमला करके उसे बर्बाद करने का टास्क मिला हुआ है। क्या आप उस टास्क को पूरा करने के तैयार हो?
1: वो ऐसा युद्ध था जिसने पाकिस्तान को सर उठाने लायक नहीं छोड़ा।
2: इस लड़ाई में अहम रोल था हमारे जवानों का अदम्य साहस, हमारी टीम स्पिरिट और हर जवान का जोश और जज्बा।
1: वो ऐसा युद्ध था जिसने भारत के पराक्रम का परचम बुलंद किया।
3: दुश्मन चाहे हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन दुश्मन के ऊपर हमारी कड़ी नजर रहते हैं ताकि हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं।
1: वो ऐसा युद्ध था जो छल कपट विश्वासघात की बुनियाद पर शुरू हुआ।
2: यहाँ की चोटियों में बलिदान वीर गाथाओं जैसी बहुत सारी कहानियां हैं जो इन चट्टानों में बसी हुई।
1: वो ऐसा युद्ध था जो वीरता, विश्वास और भारत की विजय के साथ समाप्त हुआ।
4: ग्रेनेड से जो मरे वो 48 थे और मेरे साथियों गोलियों से मारे वो अलग थे, तकरीबन 70-80 आदमी। उस ओलोलिंग को मारे पूरी कंपनी खत्म करी थी वहां। पाकिस्तान की 5 नॉर्थ लाइट एंड फिटिंग की एक कंपनी थी, उसको पूरी को खत्म किया गया।

0: युद्ध केवल जय और पराजय का पैमाना नहीं है, युद्ध तय करता है इतिहास, युद्ध निर्धारित करता है भूगोल। ये एक ऐसे युद्ध की कहानी है जहां हर बात दुश्मन के पक्ष में थी लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं रहा।
1: जब हमारे जवान 5140, टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसे नाम सुनते हैं तो उनके मन में एक अलग ही गर्व और अलग ही श्रद्धा भाव पैदा होता है।
2: हमारी बटालियन ने 5140 और 4875 के ऊपर कब्जा करके दुश्मन का मोराल बुरी तरह से तोड़ दिया था।
3: हम आज भी 26 साल बाद जब महसूस करते हैं कि जब वही मिट्टी है जहां पर हमारे सीने ने अपने खून को बलिदान किया था।
4: दुश्मन ऐसी तैयारी से आया, ऐसे धोखे से घात लगाया, ऐसी अभेद रणनीति बनाई कि उसको पीछे धकेलना नामुमकिन लग रहा था। पर भारत के रणबांकुरों ने न तो सुना है ये शब्द, न सीखा है हारना। वो तो हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं, पर्वतों को चुनौती देते हैं, कड़कड़ाती ठंड को पिघलाते हैं, जज्बातों में देशभक्ति का उबाल लाते हैं।
5: जब एक जवान पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तब ही वह एक असली सोल्जर बनता है।
6: हर एक जवान जानता है कि ये मुश्किल आते ही हमारे कर्तव्य का एक हिस्सा ही है।
0: जोश, जज्बा और जुनून नहीं बदला, लेकिन समय के साथ भारतीय सेना में तकनीक बदली है, हथियार बदले। आक्रमण के हथियार कैसे बदली ये हमने आपको दिखाया। अब इस क्षेत्र में बचाव का भी एक नमूना देखिए। स्वाति, ये एक ऐसा रडार है जो पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर, जंगलों में छिपे हथियारों को खोजकर लोकेशन बताती है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को इसीलिए बनाया गया ताकि अपनी ओर आते दुश्मन के गोले, रॉकेट या मोर्टार्स को ट्रैक किया जा सके। स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार दूर से आते आर्टिलरी को पहचान लेता है, उसकी दिशा और गति बता देता है, रॉकेट या छोटे मिसाइल को ट्रेस कर लेता है, साथ ही मोर्टार के गोले को भी पहचान लेता है और नष्ट करने में मदद करता है।
7: अगर इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे से कहीं से दुश्मन का फायर आ रहा हो, उनका आर्टिलरी फायर, रॉकेट कहां से आ रहा है ये निर्धारित करना हो ताकि उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो वो कैसे पता लगाया जाए, उसके लिए भारत का ये वेपन लोकेटिंग रेडार स्वाति। बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। भारतीय सेना की ताकत को अगर हम आज के दौर में समझना चाहते हैं तो स्वदेशी निर्मित हथियार और उपकरण उसमें बहुत अहम हो जाते हैं।
0: भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत हमेशा हमारे सैनिक ही होंगे, लेकिन उनके जो साथी होते हैं, उनके जो हथियार होते हैं, उनका बेहतर होना, उन्नत होना उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि तिरंगे की शान अगर हर एक हिंदुस्तानी के दिल में है तो वो सब इन्हीं भारतीय सैनिकों के कारण।
8: ये पूरा क्षेत्र जब आप देखते हैं तो देखकर ही सोच में डूब जाते हैं कि आखिर कैसे इन पहाड़ी चोटियों पर हमारे सैनिकों ने वो युद्ध लड़ा होगा, वो विजय हासिल की होगी। मेरे पीछे टाइगर हिल देखिए, 0.4875 जिसे आप बथरा टॉप के नाम से जानते हैं, राइनोज हॉर्न देखिए, 18,000 फीट से अधिक की ऊंचाइयां हैं ये। और जब हम इन ऊंचाइयों की बात करते हैं तो सबसे बढ़कर बात क्या हो जाती है कि हमारे सैनिकों के लिए सुविधाएं किस तरीके से बदली हैं 1999 से लेकर अब तक, किस तरीके से उस ऊंचाई से, उस ठंड से जूझने के लिए उन्हें मजबूत किया गया है, उनके उपकरण उस हिसाब के, उनका पहनावा उस हिसाब का किया गया है।
0: रण क्षेत्र की रणनीति भारत के सैन्य नेतृत्व की ताकत है और युद्ध भूमि पर हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे सैनिकों का जज्बा है। हथियारों के बल पर उस जज्बे को हरा पाना असंभव। इस देश की मिट्टी ऐसे वीरों को उपजती है जो बलिदान की परंपरा को साथ लेकर युद्ध भूमि में उतरते हैं।
9: इस युद्ध में हिंदुस्तान का हर सैनिक परमवीर था। रणभूमि की जटिलताओं को समझते हुए, रण की चुनौतियों को जानते हुए अपना सर्वस्व झोंक देने को तत्पर।
1: द्रास हमारे लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये एक हमारे लिए सम्मान, एक जिम्मेदारी और हमारे लिए एक जज्बात है, क्योंकि यह वही जगह है जहां सन 1999 के अंदर हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ यहां पर न्योछावर कर दिया। इस धरती पर उन्होंने अपना खून बहाया है। जब भी कोई जवान यहां पर आता है तो सबसे पहले वो यहां द्रास की मिट्टी को महसूस करता है और यहां पर बड़े गर्व के साथ वो अपने आप को बाद में और अपने कर्तव्य को पहले मान करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और अपनी ड्यूटी करता है।
9: अगर हमारे सैनिकों की हिम्मत नहीं होती तो महीनों की तैयारी के साथ मैदान में उतरा पाकिस्तान नहीं हारता। अगर हमारे सैनिकों की ताकत नहीं होती तो हजारों फीट की ऊंचाई पर मजबूती से काबिज पाकिस्तान के पांव नहीं उखड़ते। अगर हमारे सैनिकों का हौसला नहीं होता तो करगिल की कठिन जंग में केवल 2 महीनों में नतीजा नहीं निकलता, लेकिन हिंदुस्तान के बेटों की हुंकार के आगे बड़े बड़े दुश्मन पस्त हो जाते हैं। करगिल युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। और फिर आती है एक राष्ट्र की जिम्मेदारी कि इन वीर सपूतों के लिए कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करने में साजो सामान का सहयोग बढ़ाया जाए।
10: भरवाड़ इलाका पर बने गए तकनीकी से बने गए शेल्टर वहाँ काफ़ी मजबूत हैं और उसके अंदर फिट किए गए हीटिंग सिस्टम जो कि कैरो हीटर बुकारी जवानों को सर्दी से काफ़ी राहत मिलती है।
11: सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन -35 डिग्री से लेकर -40 डिग्री के नीचे चला जाता है। क्लाइमेट में ढलने के लिए हमें एक्सट्रीमली कोल्ड गियर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड स्नो बूट्स, इनरवेयर, स्नो गॉगल्स, बालाक्लाव्स। इसे एक जवान के बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है।
9: युद्ध का परिणाम केवल जय और पराजय नहीं होता है, युद्ध का परिणाम पराक्रम से होता है। तिरंगे की शान और भारत माता की आन के आगे हमारे देश का कोई सिपाही अपनी जान की तनिक भी परवाह नहीं करता। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ ही ऑपरेशन विजय को सफल घोषित कर दिया गया। रणभूमि में तैनात हर एक वीर ने शौर्य की अनमोल विरासत हर देशवासी के लिए छोड़ी।
12: करगिल विजय दिवस का जश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है हर एक भारतीय के लिए, लेकिन इस साल क्यों और ज्यादा अहम हम है कह रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर और आज हम आकलन यही कर रहे हैं कि करगिल विजय दिवस से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के विजय के एक वर्ष बाद कितना आगे भारत बढ़ा है। और हम कह सकते हैं कि बहुत आगे भारत बढ़ा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय के वो उपकरण आपको बताते हैं कि जय जवान के साथ जब जय विज्ञान जुड़ जाता है तो तस्वीर भारत की शक्तिशाली ऐसी रहती है जो विश्व विजय के संकेत देती है। हमारे साथ इस समय एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसे उपकरण दिए जो भारतीय सेनाओं ने इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर के समय, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी बहुत फख्र की बात होगी। पुनीत कौरा जी हैं जो कि MD और CEO हैं सैम्पल एवियोनिक्स के। ये समझाइए कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर और एक तरीके से एक टेलीवाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट था जिसे भारत में बैठा बच्चा बच्चा देख रहा था, उस समय आपकी ही जो कंपनी है उसके बनाए हुए जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले थे उनका इस्तेमाल हो रहा था, क्या क्या मायने रखते हैं कि आप मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल भारत की तरफ से उन सेनाओं के हाथ मजबूत करने के लिए दे रहे हैं?
13: श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज इस बात पे चर्चा कर रहे हैं और आई थिंक अगर आप देखो दुनिया में आज की डेट पे कई जगहों पे डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण योगदान प्ले कर रही है ये इंडस्ट्री वो सामने आ रहा है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। जितने भी फाइटर जेट्स उड़ रहे थे जिन्होंने उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया उनमें हमारे डिस्प्ले सिस्टम्स कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम्स लगे हुए थे, उनको हम ईगल आईज भी बोलते हैं एयरफोर्स की। अच्छा। क्योंकि उनके थ्रू ही आप देख पाते हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि उसके बिना प्लेन उड़ नहीं सकता। बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन उन डिस्प्लेस पे आती है जो कि कॉकपिट्स में के थ्रू देखी जाती है, तो इसीलिए उनको आंखें भी कहा जाता है, तो ईगल आईज ऑफ द एयरफोर्स। एंड बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए और बहुत ही गर्व की बात है। हम बहुत इस बात से गर्व फील करते हैं कि हमारे आप प्रोडक्ट्स उसमें यूज हो पाए और देश के लिए योगदान दे पाए।
12: बहुत इंटरेस्टिंग ये हो जाता है अगर हम पुराने वॉर से कंपेयर करते हैं। कई दफ़ा हमने देखा कि युद्ध के बीचों बीच आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और जो जिस देश से आप उसे आयात करते हैं वो देश आपको देने में देरी कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, अलग अलग एक्सेस हैं इस दुनिया में। आज जब एक कॉन्फ्लिक्ट के समय भारत में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो हमें एक तो नंबर वन स्वतंत्रता देती हैं कि हमें किसी से उसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा हमारी फोर्सेस की जरूरत शायद हमारी कंपनियां बेहतर समझेंगी।
13: आज की डेट पे जब पूरे दुनिया में सब अपने आप के बारे में सोच रहे हैं और अपनी कंट्रीज को पहले, कंट्री फर्स्ट वाला जो एक मूवमेंट है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, उसमें हम लोग अब जो कैपेबिलिटीज डेवलप कर पाए पिछले 12 साल में बहुत काम आने वाली। आई थिंक जहां तक कि हमारे प्रोडक्ट का सवाल है मैं कुछ और आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, बट जनरली हम लोग कई ऐसे क्षेत्रों में और घुस रहे हैं जो कि स्ट्रेटेजिक क्षेत्र माने जाते हैं, जहां पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बने और उसमें ऑफ कोर्स हम लोग अपना जो भी योगदान हो सकता है वो दे रहे हैं।
12: एवियोनिक्स अगर हमारे आम दर्शकों के लिए आप एक्सप्लेन कर सकें और उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी जिनका आपने जिक्र किया कि सरल भाषा में लोग समझ सकें कि क्या बन रहा है।
13: बड़ा सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि अगर आप कोई भी हवाई जहाज देखते हैं, फाइटर प्लेन देखते हैं या फिर सिविलियन जेट देखते हैं, 35-25% के बीच एवियोनिक्स होता है। मैं एवियोनिक्स का मतलब होता है एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो भी एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं वो इस 25-35% की रेंज में होते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं वो इसी 25-35% के एरिया में काम करते हैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ हवाई जहाज को उड़ाने के लिए काम आते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पायलट को दिखाते हैं कि उनको कहाँ पे उड़ना है और कहाँ पे दुश्मन का प्लेन है, कहाँ पे हमारा प्लेन है, जैसे फ्रेंड एंड फो बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसको बोला जाता है, वो एक और एरिया है जहाँ पे हम लोग काफ़ी सिग्निफिकेंट काम कर रहे हैं। और इस तरह के कई और एरिया, रेडार होता है जो कि फिर से आपका यू नो सिग्नेचर बोला जाता है, जो कि एयरक्राफ्ट अगर उड़ रहा है तो वो कैसे उसको हम लोग, अब आजकल एक टेक्नोलॉजी आई है ऐसा रेडार करके जिसमें बेसिकली हम चाहते हैं कि दुश्मन हमें नहीं देख पाए, हमारे को एयरक्राफ्ट को नहीं देख पाए पर हम उनको देख पाए। इस तरह के बहुत सारे आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज इस देश में अब डेवलप हो चुकी हैं और हम लोग काफी हद तक आत्मनिर्भर बन गए और एवियोनिक्स ये सारा एरिया जो है वो कवर करता है।
12: DRDO हो गया जो इतने सालों से भारतीय सेनाओं के लिए चीज़ों को डेवलप कर रहा है, HAL है जो एविएशन के क्षेत्र के लिए बहुत काम, अब ड्रोन्स भी बहुत बना रहे हैं। अगर मैं DRDO, HAL और प्राइवेट इंडस्ट्री के समन्वय की बात करूं, तालमेल की बात करूं, ये कितना ज़रूरी है?
13: बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने खुद DRDO के साथ ही शुरुआत की, हमारा पहला प्रोडक्ट जो बना वो DRDO ने फंड किया था डेवलपमेंट उसका, MFD उन्हीं का बनाया हुआ, उनके साथ बनाया हुआ प्रोडक्ट है। आज की डेट में हम उसको नॉट ओनली अपना हिंदुस्तान बट पूरे विदेश के बहुत सारे एयरफोर्सेज इसको यूज़ कर रहे हैं। मलेशियन एयरफोर्स हमारा कस्टमर है, फ्रेंच एयरफोर्स हमारा कस्टमर है और ऐसे कई और कस्टमर्स बन गए हैं हमारे, जहाँ की ये देश का झंडा लेके हमारे प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं। तो जब हम साथ में होते हैं तो 1+1=11 बन सकते हैं, मेरे को इसकी पूरी उम्मीद है।
12: मुझे इसी थॉट के साथ बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि पूरा देश को भी एक साथ मिलना होगा। जिस तरीके से सरकारी और प्राइवेट एक साथ आकर देश की सेनाओं के हाथ को मजबूत कर रहे हैं, उसी तरीके से हर एक व्यक्ति दूसरे का हाथ थामे तभी भारत सशक्त रहेगा। और करगिल विजय दिवस पर इससे बेहतर संदेश क्या हो सकता है?
14: करगिल की विजय ने बहुत कुछ बदला।
4: सरहद पर हमारी तैनाती से लेकर विश्व में हमारे रुतबे तक भारतीय सेना कठिन से कठिन इलाकों में मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी तैनात रहती है। पाकिस्तान करारी हार के बाद फिर युद्ध छेड़ने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया।
14: मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। द्रास करगिल की ऊंची पहाड़ियों को देखकर और करगिल के उस युद्ध को याद करके यही ख्याल मन में आते हैं। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन अमित बदवार और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।

0: the mangled wreck of the two-wheeler used in an attempt on the life of Uttar Pradesh Minister Nand Gopal Nandi.
1: गुंडों और अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ कि मेरे ऊपर आरडीएक्स रिमोट बम से भी हमला हुआ।
2: वर्ष 2010, 12 जुलाई प्रयागराज की सड़कों पर एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। भगवान शिव के मंदिर जलाभिषेक के लिए जा रहे तत्कालीन कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के रास्ते पर आरडीएक्स से लदी स्कूटी को रिमोट कंट्रोल से विस्फोट कर उड़ा दिया गया। इस भीषण हमले में एक सुरक्षाकर्मी और एक पत्रकार शहीद हो गए, जबकि नंदी बेहद गंभीर रूप से घायल होकर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करने लगे। 7 दिन कोमा, 7 महीने तक अस्पताल में रहने, 14 सर्जरी और फिर जीवन की सबसे लंबी लड़ाई जीत कर वे लौटे। समर्थकों का विश्वास है कि ये भगवान भोलेनाथ की कृपा और लाखों लोगों की प्रार्थनाओं का परिणाम था।
1: कोई गुंडा, बनमास, अपराधी व्यापारियों को तंग करता तो मुझे बोलते, तो उन अपराधियों को सजा मिलती थी। तो उन लोगों ने ऐसा एक प्लान बनाया कि अगर हम मंत्री को ही बम से उड़ा देंगे तो आज जो हम जिले के और प्रदेश के माफिया हैं, देश भर में मेरा नाम हो जाएगा और देश से वसूली करेंगे, देश भर के व्यापारियों से वसूली करेंगे। लेकिन वो कुदरत का करिश्मा, भगवान का चमत्कार, जाको राखे साइयां मार सके न कोई।
2: बताया जाता है कि ये हमला व्यापारियों से रंगदारी वसूलने वाले माफिया तत्वों द्वारा कराया गया था, क्योंकि नंदी उनके विरुद्ध मुखर होकर आवाज उठा रहे थे।
3: जैसे ही वो मंदिर की तरफ जाने लगे, आधे रास्ते पे जो है एक बार की विस्फोट हुआ। जब धुआं छटा तब उसमें दिखाई पड़ा कि बुरी तरह घायल हो गए थे, तो उनको निकाल के हम लोग जो है समीप के ये जीवन ज्योति हॉस्पिटल वगैरह उनको भिजाने का इंतजाम करने लगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि समझ लीजिए कि एकदम से मौत के मुंह से वापस आए।
2: व्यापारी समाज इस दिन को व्यापारी साहस दिवस के रूप में भी मनाता है। समय बीतता गया, लेकिन ये दिन केवल स्मृति नहीं रहा, ये जन आस्था और जन सहभागिता का महापर्व बन गया। इस वर्ष मंत्री नंदी के पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव पर प्रयागराज में ऐसा आयोजन हुआ जिसने नया इतिहास रच दिया। एक ही स्थान पर 4,35,312 लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण कर नया कीर्तिमान बनाया। देश और विदेश के साथ प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से लाखों समर्थक और चाहने वाले प्रयागराज पहुंचे। राम भवन से चंद्रलोक, चंद्रलोक से मानसरोवर और मानसरोवर से सुलाकी चौराहे तक विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई। 6 विशाल किचन बनाए गए। 1,075 कारीगरों और 612 वेटरों की टीम लगातार सेवा में जुटी रही। लाखों लोगों के लिए देसी घी, चावल, दाल, आटा, पनीर, हरी मटर सहित सैकड़ों क्विंटल खाद्य सामग्री का उपयोग किया गया। पूरे आयोजन को किसी भव्य राष्ट्रीय आयोजन जैसी व्यवस्थाओं के साथ संचालित किया गया। आस्था के इस महोत्सव में भक्ति का रंग भी खूब दिखाई दिया। प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी और भजन गायिका स्वाति मिश्रा की प्रस्तुति पर हजारों श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव आज केवल एक स्मृति या वार्षिक आयोजन नहीं रह गया है, ये समाज को जोड़ने और सेवा का संकल्प मजबूत करने का एक सशक्त अभियान बन चुका है। नंदी सेवा संस्थान के साथ 1 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं।
1: नंदी सेवा संस्थान से कोई व्यापारी के यहाँ किसी वजह से हत्या, लूट, डकैती या एक्सीडेंटल डेथ हो गई, उसके बच्चे छोटे हैं, तो 10,000 रुपये महीने आजीवन, जब तक वो जीवित हैं, जब तक हम जीवित हैं, 10,000 रुपये महीने उनको पेंशन के रूप में दी जाती है।
2: संस्थान के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाने, व्यापारी वर्ग के हितों को सशक्त करने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और विपरीत परिस्थितियों में लोगों के साथ खड़े रहने जैसे अनेक सामाजिक कार्य निरंतर संचालित किए जा रहे हैं।
4: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
5: हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है
6: और टियर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टियर गैस का इस्तेमाल पुलिस करते हुए नजर आ रही है।
5: पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टियर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
7: कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली। आज
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर द्रास स्थित करगिल वॉर मेमोरियल को भव्य रूप से सजाया गया है। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध स्मारक पहुंचकर ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान को याद किया। इसके बाद उन्होंने जौजिला में तैनात सेना के जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला भी बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 60 दिनों तक चले करगिल युद्ध का अंत हुआ था। 26 जुलाई को भारत ने जीतकर इस युद्ध का खात्मा किया था। तो करगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। आज के खास मौके पर यह कहा गया है भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से। पाकिस्तान की नीति में आतंकवाद है और इसीलिए पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों की मददगार है और यह बार बार साबित होता रहा है। हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवादी बना रहा है। पाकिस्तान से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, रक्षा मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया। विजय शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद ये तमाम बातें उनके बलिदान को याद करने के बाद रक्षा मंत्री की तरफ से कही गई हैं। जौजिला में सेना के जवानों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया है।
1: साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए हैं और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशंस के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: तो रक्षा मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बात होगी, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। थलसेना प्रमुख ने इस मौके पर क्या कहा, सुनिए।
2: करना चाहता हूं, मरना सभी को है तुम भले मरे, मरना सभी को है तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शकल, सफ़े जमी पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है।
0: तो थल सेना प्रमुख या देश के रक्षा मंत्री अलग अलग जगहों पर जिन वीरों ने 27 साल पहले करगिल युद्ध में अपनी जान गवाई, शहीद हुए, उन्हें याद किया जा रहा है नम आंखों के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ।
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
7: Sanitary solutions.

0: Hexa.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है, वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय

दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इससे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद
छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। दो कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को
35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें। एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की
एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: तो प्रधानमंत्री के मन की बात आपने सुनी और आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे हेडलाइंस।

करगिल विजय दिवस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी बात, द्रास में शहीदों को राष्ट्र का नमन, प्रधानमंत्री ने वीर जवानों को किया सल्यूट। प्रदर्शन में फायरिंग पर दिल्ली से पटना तक घमासान, राहुल गांधी ने पैलेट गन पर अमित शाह को लिखी चिट्ठी तो पूछा कहां से आया आदेश, तेजस्वी ने सीवान में AK-47 से गोली चलाने के लगाया आरोप। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, बोले पूरी निष्ठा से निभाऊंगा जिम्मेदारी, कल संसद में पेपर लीक पर संशोधन बिल। अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में नई एसआईटी का गठन, दो आईपीएस ऑफिसर्स की एंट्री, विजय विश्वास और नील रतन बहार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी योगी सरकार। और गुजरात में बारिश और बाढ़ ने बिगाड़े हालात, अहमदाबाद, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम में भी सब पानी पानी, अब तक गई 61 की जान, हजारों लोग बेघर।

0: और अब बात करेंगे प्रदर्शन में गोलीकांड पर घमासान के बारे में, क्योंकि जंतर मंतर से बिहार के सीवान तक प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग को लेकर एक्शन है। बिहार में जहां तेजस्वी यादव ने पुलिस पर AK-47 से गोली चलाने के आरोप लगाए, तो वहीं राहुल गांधी ने भी जंतर मंतर पर पैलेट गन से गोलियों की बौछार पर गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने चिट्ठी में सवाल उठाए कि पैलेट गन का आदेश आया कहां से था, इसका जवाब दिया जाए। तो 25 जुलाई तक चले छात्रों के आंदोलन की दो तस्वीरें हम आपको दिखा दें। सबसे नई जो तस्वीर आई है वो बिहार के सीवान से, जहां कल पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 जैसा अत्याधुनिक हथियार तान दिया था। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस वालों ने ऐसे अत्याधुनिक हथियार ताने तो सियासत हो गई है जबरदस्त तरीके से तेज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप यह है कि सीवान में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने AK-47 से सीधी फायरिंग की थी। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि ये कितना चिंताजनक है आप खुद अंदाजा लगाइए। जो वीडियोस और पिक्चर्स है वो भी जारी कर दिए गए हैं और कहा यह गया है कि देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर, छात्रों पर AK-47 से गोलियां दागी जा रही हैं। तो बिहार के सीवान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पुलिस ने कल की ही बात है प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 जैसा अत्याधुनिक हथियार तान दिया था। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस वालों ने ऐसे अत्याधुनिक हथियार ताने तो सियासत जबरदस्त तरीके से तेज हो गई है। इसके वीडियोस और फोटोज सामने आए हैं जिसमें कई सवाल अब पूछे जा रहे हैं सरकार से, प्रशासन से। ये देखिए, ये जो हम आपको AK-47 दिखा रहे हैं इसी को लेकर सवाल है। अत्याधुनिक इसी हथियार को तानने और इससे गोली चलाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से साफ साफ पूछा गया है कि इस पूरे मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, वो भी तुरंत। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जुड़ गए हैं। शशि भूषण, क्या इस मामले में प्रशासन की तरफ से कोई सफाई आई है, क्योंकि वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है?
1: देखिए, सिवान जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई उस पर आधिकारिक बयान तो नहीं आया है जो तेजस्वी यादव क्लेम कर रहे हैं उसको लेकर के, लेकिन एक बात जरूर है कि कल जो बिहार में बंद कॉल किया गया था छात्र संगठनों की तरफ से, जिसमें लेफ्ट के संगठन ज्यादा थे, उस दौरान जबरदस्त से हिंसा हुई हर जगह पे। हमने कई जिलों से तस्वीरें देखी, पटना में तो पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन सिवान, भागलपुर और सबेत, छपरा, तमाम जगहों पे जबरदस्त तोड़फोड़ हुई थी। और इसी दौरान जो सिवान में SP हैं सिवान के, वो भी घायल हुए थे। पुलिस ने भी बाद में बल प्रयोग किया था, हालांकि शुरुआत में पुलिस की तरफ से बल प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन जो बल प्रयोग पुलिस की तरफ से किया गया उसके बाद मामला कहीं न कहीं जाकर के कंट्रोल में आया। अब तेजस्वी यादव जो वीडियो शेयर करके सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगा रहे हैं कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया, उससे गोलियां चलाई गई छात्रों के ऊपर, इस मामले पे बिहार पुलिस या जिले की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि वहां पर इंटरनेट सेवा को भी बाधित किया गया था, प्रशासन ने एहतियातन ये कदम उठाया था और अब स्थिति वहां पर नियंत्रण में भी है। शशि,
0: जिन हथियारों को हम लगातार दिखा रहे हैं, जो वीडियोस वायरल हुए हैं, AK-47 इन्हें कहा जा रहा है, अत्याधुनिक हथियार इन्हें कहा जा रहा है, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि ये सिर्फ हथियार ताने नहीं गए हैं भीड़ पर, काबू में करने के लिए फायरिंग भी की गई है। क्या इसके बारे में कुछ साफ किया गया है कि कौन से अत्याधुनिक वेपन्स के साथ यहां पर तमाम पुलिस के अधिकारी थे?
1: देखिए, एक सर्टेन वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल है और उसको तेजस्वी यादव ने शेयर किया है, तो एक तो इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि सबसे पहले, और दूसरे ये कि जो वीडियो में वेपन दिख रहा है उस पर आधिकारिक तौर पे क्या वर्जन आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि पुलिस के सामने ऐसी परिस्थितियां रही कि पुलिस ने बल का प्रयोग किया, और फायरिंग की पुष्टि अभी तक सिवान जिला पुलिस या जिला प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। जी,
0: तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें, और ये तस्वीरें जिस पर जबरदस्त सियासत और हंगामा जारी है। तेजस्वी यादव की तरफ से इसे ट्वीट करके पूछा गया है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि शशि भूषण, जो हमारे संवाददाता हैं, वो बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर हालात जबरदस्त तरीके से बेकाबू हो गए थे, क्योंकि बंद जिस तरह से बुलाया गया था, जिस तरह से लोग इकट्ठा थे, भीड़ बेकाबू थी, उस पर काबू पाने के लिए अलग अलग इस तरह से पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा है। लेकिन ये जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा विवादों में आ चुकी है। कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि AK-47 है और ये सिर्फ तानी नहीं गई है, गोलियां दागी गई हैं इससे। तो आरजेडी नेता ने सवाल उठाए और उनका कहना यह है कि इस पूरे मामले में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से सीधी फायरिंग हुई है, दोषियों को अधिकारियों को तुरंत उन पर सीधी कार्रवाई हो। तो इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है, राहुल गांधी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है अमित शाह को। जिस तरीके से पैलेट गन चलाया गया था, इस्तेमाल किया गया था जंतर मंतर पर, उसे लेकर राहुल गांधी की तरफ से सवाल पूछे गए कि आखिर आदेश दिया किसने था, किसके आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई थी जहां स्टूडेंट्स पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। तो राहुल गांधी ने पैलेट गन पर सवाल उठाए हैं और देश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर सवाल पूछे हैं कि आखिर किसके आदेश पर स्टूडेंट्स पर पैलेट गन जैसे घातक हथियार को इस्तेमाल किया गया, इसकी मंजूरी दी किसने थी। तो कल सदन का दिन बहुत ज्यादा खास होने वाला है, रेजिग्नेशन के बाद भी अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पैलेट गन को लेकर सवाल पूछे गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी है उन्होंने और पूछा है कि आखिर इसकी मंजूरी किसने दी थी। तो छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है, जंतर मंतर खाली हो चुका है, अब वहां सन्नाटा पसरा है, लेकिन सियासी शोर अभी खत्म नहीं हुआ। ये बात जरूर है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब स्थिति थोड़ी बदली है। अब तक शोर मचा हुआ था, विपक्ष सरकार को घेरने की अपनी नई नई रणनीति बनाने पर विचार कर रही थी, तो सरकार और बीजेपी एक सुर में अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है।
2: जंतर मंतर पर अब ना तो आंदोलन की तस्वीर दिख रही है, ना आंदोलनकारी दिख रहे हैं और ना ही वो सुरक्षा घेरा और बैरिकेड्स। अब वहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ, दिल्ली अभी भी उसकी सियासी तपिश महसूस कर रही है। मानसून सत्र शुरू होने के बाद से अब तक विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है, लेकिन अब इस्तीफे के बाद बीजेपी विपक्ष को आईना दिखा रही है। पार्टी खुलकर बतौर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की तारीफ कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है। अमित शाह ने यह भी लिखा कि मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है, सरकार पेपर लीक के खिलाफ जरूरी सुधारों के लिए कटिबद्ध है, पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिले इसके लिए मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कदमों से नीट परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के साथ पूरा न्याय होगा। अन्य केंद्रीय मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष सरकार को नसीहत दे रहा है और संसद में केंद्र को घेरने की तैयारी भी चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कह रही है कि पार्टी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी और सवाल करेगी।
3: वी होल्ड मिस्टर अमित शाह डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns, on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament.
2: सोमवार को एक बार फिर संसद के मौजूद सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सोमवार को ही केंद्र सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये बिल पेश करेंगे। इसका मकसद सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। बिल पेश होने के बाद वो सदन में इस पर विचार करने और इसे पारित कराने के लिए एक प्रस्ताव भी रखेंगे। 36 दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद सरकार पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर गंभीरता दिखाते हुए सख्त कानून बनाने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हमले जारी हैं।
3: There is still two demands outstanding. The first one and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked.
4: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
5: उधर सरकार ने छात्रों की सभी 3 मांगे मान ली है और भरोसा जताया है कि मंगलवार तक लिखित में ड्राफ्ट को साझा भी कर दिया जाएगा। अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो 36 दिनों तक सीजेपी आंदोलन के बाद अब काफी कुछ बदल चुका है। सबसे अहम ये है कि शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दे दी गई है। प्रधान के इस्तीफे के साथ ही साथ सीजेपी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन अभी सरकार के सामने चुनौती कम नहीं हुई।
5: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो जंतर मंतर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजा। ऐसे जोश और जश्न के बीच सीजेपी ने ऐलान कर दिया कि अब उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है।
6: तो सभी लोग शांति पूर्वक अपने घर लौटे, आराम करें, खुशी मनाएं और जरूर से उन परिवारों को याद करें जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया। उन लाखों करोड़ों युवाओं के बारे में जरूर सोचिएगा जिनका पिछले कुछ सालों में पेपर लीक ने भविष्य बर्बाद किया है।
5: प्रदर्शन के 36वें दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए कहा कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया है।
7: ये बस शुरुआत है, बहुत लंबा सफर है, हम लोग सब एक साथ मिलकर देश को भारत बनाएंगे। सारे जो हमारे डिमांड है सब मान लिए गए हैं एंड हम लोगों ने इस पीसफुल प्रोटेस्ट को विड्रॉ करने के लिए आग्रह किया। आपने
8: सारी FIRs वापस लिए जाएंगे, सारे FIRs विड्रॉ होंगे।
5: इसके साथ ही दिल्ली में जारी सियासी संकट में नया मोड़ आ गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कुर्सी छोड़ी तो चंद घंटे के अंदर उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई, यानी अब तमाम परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने और शिक्षा से जुड़े बदलाव की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी संभालने जा रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।
9: नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।
5: छात्रों की 3 मांगे थी जिन्हें सरकार ने मान ली है। पहली मांग ये कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, दूसरी मांग थी कि पीड़ित छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले और तीसरी अहम मांग थी प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो।
10: ये इनकी डिमांड्स थी, मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है।
5: सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है तो देश की अपेक्षाएं भी बढ़ी है।
11: सुधार पर काम करने की जरूरत है, केवल एक इस्तीफा से रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है, तो शिक्षा में सुधार हो इस पर भी आगे काम हो, मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा।
5: सोनम वांगचुक ने 24 जुलाई को अपना अनशन तोड़ा था, लेकिन सीजेपी ने सरकार को बता दिया कि जब तक उनकी तीन मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, आंदोलन को शांत करने की कोशिशें जारी थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी दो बार इस्तीफे की पेशकश की थी, तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब प्रधान ने कहा था कि वो शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व जारी रखेंगे, लेकिन सीजेपी के दबाव का असर दिखा। सूत्रों की माने तो बातचीत के अंतिम दौर से पहले सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी मकसद के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। विपक्ष इसे छात्रों की बड़ी जीत और सरकार की करारी हार बता रहा है।
3: हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है।
5: तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। अभी वो उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। अब आने वाले समय में उनके सामने छात्रों के हित में अहम बदलाव की बड़ी चुनौती है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: तो दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन खत्म हो चुका है। उसके बाद आज शिवसेना, उद्धव गुट और एमएनएस ने आज मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली आयोजित की है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सभी मांगों को माने जाने के बाद इस रैली को बुलाया गया है, जिसके जरिए दोनों ही दलों के छात्रों की जीत बताते हुए इसे बुलाया है। और आपको ये भी बता दें कि कुछ ही देर पहले ये रैली अभी खत्म हुई है।
12: भाई से टच में रहे क्योंकि तुम लोग का जॉब रिलेटेड था ना, मतलब बराबर 9, 9, 6, 7, 8, 9.
0: तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिवाजी पार्क की तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि जीत के जश्न में इस रैली को आयोजित किया गया था। एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस रैली का आयोजन किया गया था। और उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जेनजी को लेकर अहम ऐलान कर दिया है। कहा है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व तो कोई जेनजी करेगा।
13: आने वाले दिनों में केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मंत्रिवर्ग में यही जेनजी को विद्या मंत्री बनाने का वादा करता हूं। ये जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं बात करूंगा इंडिया अलायंस से, मैं मिलूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी नेता लोगों से। आज ये लोग सड़क में आवाज देकर घर वापस जाने का नहीं है, आज ये युवा ये सड़क से निकलकर संसद तक जाना, संसद में इनका आवाज सुनाना पूरा दुनिया को।
0: और इसी के साथ हम यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
14: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
15: Bharat ki apni electric sawari.
16: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
17: Drive home a new 26 Volkswagen Tiguan S, front-wheel drive, 229 for 36 months with $3,999 due at signing.
16: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
17: Offer ends 8/31/26. See dealer for details.
18: When your cat is acting weird-er, or your dog is being loud-er, your turtle moves slow-er.
19: Hello, Ted.
18: Your cat seems thirsty-er.
20: Whoa, slow down, buddy.
18: Or your puppy is acting clumsy-er. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
19: Veg ER for pets. This is Kate.
18: Veg, the better, kinder ER for pets.
21: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search audio on TuneIn to start exploring. Sokudo.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंड बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

करगिल विजय दिवस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, कहा सिर्फ पीओके पर बात होगी, द्रास में शहीदों को राष्ट्र का नमन, प्रधानमंत्री ने वीर जवानों को किया सल्यूट। प्रदर्शन में फायरिंग पर दिल्ली से पटना तक घमासान, राहुल गांधी ने पैलेट गन पर अमित शाह को चिट्ठी लिखी, पूछा कहां से आया आदेश, तेजस्वी ने सीवान में AK-47 से गोली चलाने का लगाया आरोप। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, बोले पूरी निष्ठा से निभाऊंगा जिम्मेदारी, कल संसद में पेपर लीक पर संशोधन बिल। अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में नई एसआईटी का गठन, दो आईपीएस ऑफिसर्स की एंट्री, विजय विश्वास और नील रतन बाहर, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देगी योगी सरकार। और गुजरात में बारिश, बाढ़ से बिगड़े हालात, अहमदाबाद, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम में भी पानी, अब तक 61 ने गवाई जान, हजारों लोग बेघर।

0: चुपती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: जो विवाद रखती थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है।
2: Anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable.
3: ये बड़ी चीज है नई पीढ़ी के लोगों की।
4: आज जनता के सामने झुकना पड़ा, ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है।
5: आज तो वही हुआ, उनके जज्बे की समाप्ति, आपको झुकना पड़ा।

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज आखिरकार जो छात्रों का आंदोलन था वो खत्म हो गया। वो खत्म इसलिए हो गया क्योंकि जो उनकी सबसे प्रमुख मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो हो गया। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर जब लगातार ये खबरें आती रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, जब ये दावा सरकार के सूत्र करते रहे कि इस्तीफा किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का हो नहीं सकता है, तो ये हुआ कैसे? आज हम आपको इस त्याग पत्र की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे।
1: शनिवार दोपहर तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक वो होगा जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। पेपर लीक के बाद 36 दिन से चलते जंतर मंतर के धरने वाले मंच पर आई इस आवाज ने बताया कि अगर त्याग करते हुए अपनी मांगों को मजबूती से युवा रखते हैं, तो बड़े बड़े चुनाव जिताने वाले संगठन शिल्पी भी अपनी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं निभा पाने पर अपनी कुर्सी नहीं बचा पाते हैं।
2: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: जिस सरकार में 12 साल के कार्यकाल में अब तक आंदोलन प्रदर्शन किसी मंत्री को कुर्सी से डिगा नहीं पाया था, जिस सरकार में तीसरे कार्यकाल में सीटें घटने के बावजूद बड़े मंत्रालय पर उन्हीं मंत्रियों को जगह देकर ये संदेश दिया गया कि सरकार की मजबूती पर रत्ती भर असर नहीं आया, उस सरकार में 12 साल का रिकॉर्ड बनाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र इस बात की गवाही है कि जब अन्न त्याग कर अपनी मांग रखी जाती है, जब धैर्य और संयम के साथ मार्च करते युवा पुलिस की लाठी सहकर भी रास्ते से भटकते नहीं, छात्रों के हक में धरने प्रदर्शन के साथ त्याग के जंतर मंतर पर जुटे रहते हैं, जब देश के अलग अलग राज्यों तक, शहरों तक प्रदर्शन के साथ युवाओं ने अपने रोज के कामों को त्याग कर अपनी आवाज उठाने की ठानी, तब जाकर मोदी राज के हर कार्यकाल में

0: जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। टू द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज हाउ अ डेमोक्रेसी शुड बी। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है।
1: जंतर मंतर पर 5 हफ्ते तक चले इस धरने में सबसे अहम यही 20 तस्वीरें। असल में ये 20 तस्वीर नहीं बल्कि वो 20 सवाल रहे जो सरकार और सिस्टम की नाकामी की वजह से लीक हुए नीट पेपर के बाद अपनी उम्मीदों के टूट जाने के डर के साए में जान दे देते हैं। और तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आकांक्षा जैसी बेटियों के परिवारों को, उनकी बेटी तो नहीं लौटा सकता लेकिन ये विश्वास दिला सकता है कि जवाबदेही तय की गई है। आकांक्षा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मम्मी पापा आपका मुझ पर भरोसा था, मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। 19 साल की आकांक्षा चतुर्वेदी जैसे देश के 20 बच्चों ने 3 मई को हुई नीट परीक्षा के बाद सोचा था अब की बार डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, लेकिन पेपर लीक और फिर नीट पेपर रद्द की खबर मिलने के बाद वो ऐसा टूटे, परिवार का सब कुछ उजड़ गया था।
2: जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मानो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा। और जब पेपर लीक हो गया तो बच्ची काफी सदमे में आ गई, काफी दुख में आ गई, खाना पीना सब बंद कर दी थी और किसी से बात करने में भी ज्यादा उत्सुक नहीं रहती थी।
3: बहुत बड़ा नाम होगा
4: ऐसा बोल के
3: कितने सारे सपने दिखा के चली गई थी, उसके नाम की आगे डॉक्टर लग जाए।
1: इन्हीं परिवारों को न्याय दिलाने, नीट पेपर लीक के बाद अकाउंटेबिलिटी तय करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सोशल मीडिया से जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी ने धरना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू किया, जो 36 दिन बाद अंजाम पर पहुंचा है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। शनिवार दोपहर 2:18 पर 2 सफेद पन्ने पर 575 शब्दों की काली इबारत लिखकर धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट की। अपनी गलती खुलकर नहीं मानी बल्कि लिखा कि पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी, ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं। धर्मेंद्र प्रधान अपने त्याग पत्र में लिखते हैं कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाएं, देश की एकता बनी रहे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात का विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है।
5: ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले।
1: इस बात से कोई रत्ती भर इनकार नहीं कर सकता है, नीट पेपर लीक के जिस मामले पर चारों तरफ से उठते तमाम सवालों पर प्रधान इस्तीफा प्रूफ बने रहे, जहां विपक्ष का प्रदर्शन भी पहले धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर चुनौतियों का बादल नहीं ला पाया, वहां 16 मई को बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने 2.25 महीने से कम वक्त में आंदोलन करके युवाओं को जोड़कर प्रधान को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया।
6: सोमवार को पेपर लीक के खिलाफ बिल पेश किया जाएगा। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक का प्रस्ताव जितेंद्र सिंह रखेंगे, वो विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी रखेंगे। सोमवार यानी परसों ये कार्रवाई होने वाली है लोकसभा में। सोमवार को पेपर लीक के खिलाफ वो बिल आएगा जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था। इधर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उधर जंतर मंतर पर जश्न मनने लगा लोकतंत्र की।

0: जीत की बात हर शहर में कही जाने लगी, लेकिन ये जीत और जश्न यूं ही इस मंजिल तक नहीं पहुंचा है। सरकार और सीजेपी के बीच 3 मुलाकातें हुई, थोड़ी खींचतान हुई, लेकिन जब सीजेपी एक कदम भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटी तो शुक्रवार तक बातचीत में जिन्हें सोफे की जगह कुर्सी बैठने को दी गई उन्हीं लोगों के आंदोलन की वजह से शनिवार को मंत्री की कुर्सी चली गई।
1: जंतर मंतर से संसद मार्ग तक की 2 तस्वीरें 5 दिन के भीतर बदलाव की मांग करते युवाओं की मांगों पर बदली हुई तस्वीर की गवाही देती। जहां 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद मार्च करते निकलते युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, वहीं 25 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर आसपास के इलाके में वही युवा जश्न मनाते दिखते हैं, नाचते गाते दिखते हैं। क्योंकि पुलिस की लाठी से मिली लोकतंत्र की हार पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ने जीत दिला दी है।
2: एक लंबा आंदोलन, उसके बाद वो जेनरेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिद्दी है, जेन जी, और उठा करके मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम टूल, रील, पता नहीं क्या क्या लेकर के आए। तो ये बताइए, आप लोगों ने तो रील से ही मार दिया सब कुछ इस बार है?
3: अब वो तो क्या है?
2: हो गया खत्म या यहाँ पे जमावड़ा चलेगा?
3: अभी भी है। अभी बहुत ज्यादा है कि अभी तो ये तो छोटी सी शुरुआत थी। हाँ,
2: व्हेन यू हर्ड दिस की रेजिग्नेशन हो गया, पहला थॉट मन में क्या आया था? सबसे बड़ा वेपन क्या था इस पूरे प्रोटेस्ट में आप लोगों का?
4: आई थिंक सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया पे कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर सकते,
3: क्योंकि ऑल्सो यूनिटी, बिकॉज कितना भी सरकार ने इतना ज्यादा तोड़ने की कोशिश करी, इतना ज्यादा अलग करने की कोशिश करी, हर एक एड़ी से छोटी तक का जोर लगा लिया।
2: व्हेन यू हर्ड दैट पाकिस्तान पैसा, अमेरिका, चाइना, ये कहाँ के लड़के हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं,
3: हम लोग को गुस्सा इतना नहीं आ रहा था, हम लोग को हंसी आ रही थी कि यार मतलब किस तरीके की ये चीजें सोच रहे हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट्स इतने बेवकूफ होकर नहीं बैठे।
1: ये जश्न यूं हंसते हंसते नहीं आया, ये जश्न तब हो पाया जब 36 दिन आंदोलन चला। ये जश्न तब हो पा रहा है जब इसके लिए 26 दिन सोनम वांगचुक को अनशन करना पड़ा। जंतर मंतर जश्न का गवाह तब बन पाया है जब इसके लिए सोनम वांगचुक को कोर्ट के आदेश की आड़ में पुलिस सादी वर्दी में सफेद चादर से ढककर अचानक जंतर मंतर से हटा देती है और युवा गुस्से में आ जाता है। संसद मार्च में लाठी, पैलेट गन के दावे और आंसू गैस के गोले तक खाने के बाद भी जब अडिग रहे युवा, तब जाकर 20 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई इन 3 मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की राह बनती है। और इन्हीं सीजेपी और सरकार के बीच मुलाकात की 3 तस्वीरों में बहुत कुछ कहानी पता चलती है। 20 जुलाई की पहली मुलाकात याद करिए, जब सीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि 2 घंटे इंतजार करा के मंत्री जी ने केवल 10 मिनट बात की। ये वो मुलाकात थी जिसमें कोई बात बनती नहीं दिखी। इसके बाद जब लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी डटे रहे, टस से मस नहीं हुए, तब 24 जुलाई यानी शुक्रवार को दूसरे राउंड की बातचीत सरकार और सीजेपी के बीच होती। अब इस वीडियो को देखिए। सोशल मीडिया पर शुक्रवार को हुई इस बातचीत में चर्चा ये होने लगी कि सरकार के मंत्री तो सोफे पर बैठे रहे, लेकिन सीजेपी के 2 प्रवक्ता जो बातचीत करने पहुंचे उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया। हालांकि ये वो मुलाकात रही जिसने आगे धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खिसकने की जमीन तैयार की, क्योंकि इसी मुलाकात में सीजेपी ने साफ कर दिया कि भले सरकार ने मृतक छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने पर सहमति जताई हो, लेकिन प्रदर्शनकारी बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के झुकने और रुकने को तैयार नहीं।
5: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। हमने सरकार को न सिर्फ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रही है, बल्कि जो देश भर में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, 150-200 से ज्यादा शहरों में समय प्रदर्शन चल रहे हैं, सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त की। ये सेंटिमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा।
1: इसी के बाद 25 जुलाई को जब सरकार से तीसरे राउंड की बातचीत होती है और 24 जुलाई की मुलाकात के मुकाबले कुर्सी की जगह सोफा सीजेपी के प्रवक्ताओं को भी बैठने के लिए मिलता है, तो इस मुलाकात से पहले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री वाली कुर्सी छोड़ देते हैं और सीजेपी के लोग भी सरकार के सामने सोफे पर आ जाते हैं। इसी मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीजेपी ने बताया कि 3 मांग मंजूर हुई है, आंदोलन खत्म हुआ है।
6: डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक फोर पॉइंट्स था उसका लबोलबाव ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस केस इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
7: हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट है कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड्स है कोई रेवोल्यूशनरी कोई रेडिकल डिमांड नहीं है, जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी, जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड एक्सेप्ट हुए।
0: इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नए शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी दिख सकते हैं। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल सरकार में वो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मंत्रालय संभालते हैं, उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की दी जा रही है। आज सुबह धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा हुआ दिन में, उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया और अब अपने मौजूदा मंत्रालय के साथ प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। हिमांशु
8: देखिए बिल्कुल, प्रहलाद जोशी जो है वो अब नए शिक्षा मंत्री होंगे, उनके पास पहले से दो विभाग है, एक कंज्यूमर अफेयर है और उसके साथ साथ जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उनके पास विभाग है, क्योंकि आज ही दोपहर जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और क्योंकि कोई कैबिनेट रिशफल नहीं है तो जो वर्तमान में कैबिनेट है उन्हीं में से किसी एक को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, तो प्रहलाद जोशी को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है नए शिक्षा मंत्री के तौर पर। वो अब कार्यभार देखेंगे और जब भी कैबिनेट रिशफल होगा तो हो सकता है प्रहलाद जोशी की जगह कोई और कैबिनेट शिक्षा मंत्री हो या फिर प्रहलाद जोशी परमानेंट हो और उनके जो बाकी दो डिपार्टमेंट है वो किसी और मंत्री को फेरबदल और विस्तार में दे दिए जाए।
0: हालांकि कुछ ही देर पहले प्रहलाद जोशी की तरफ से भी बाकी मंत्रियों ने भी अपने कैबिनेट को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के बारे में लिखा। प्रहलाद जोशी ने भी लिखा कि उनके कार्यकाल के दौरान जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसका क्रियान्वयन हुआ है 2020 की, और अब प्रहलाद जोशी भी समझ रहे होंगे कि अभी इस समय जो सबसे कठिन एक मंत्रालय हो सकता है वो शिक्षा मंत्रालय ही है, शिक्षा विभाग ही है। हिमांशु
8: देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में अगर जितने विवाद आप देखेंगे पिता तो वो ज्यादातर विवाद शिक्षा मंत्रालय से होंगे। आप यूजीसी का जब मैटर उसके अंदर जो है शिक्षा मंत्रालय है, सीबीएसई के अंदर जिस तरीके से मार्कशीट का इशू आया जो है ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, नीट पेपर लीक का मामला जो है वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। तो एक तरीके से लगातार जो है कई ऐसे विवाद है जो इस सरकार में आए वो शिक्षा मंत्रालय से ही जुड़े हुए थे। तो प्रहलाद जोशी के लिए एक कठिन राह जरूर होगी, लेकिन क्योंकि प्रहलाद जोशी एक लंबे से राजनीति में है, सांसद है, मंत्री है, 2019 से 20 वो जो है मंत्रालय देखते थे, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर, उसके बाद जो है उनको जब 24 में सरकार बनी है तो कंज्यूमर अफेयर और रिन्यूएबल एनर्जी का मंत्रालय दिया गया है। उसके साथ साथ जो है लगातार वो कर्नाटक के अंदर भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक। एक तरीके से एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, मंझे हुए राजनेता है,
0: और उम्मीद उनसे अब सरकार को रहेगी, प्रधानमंत्री को रहेगी कि वो शिक्षा मंत्रालय इस कठिन समय में अच्छे से संभाल पाए। लेकिन ये भी देखना है कि ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है या फिर शिक्षा विभाग उन्हीं के अधीन रहेगा। बहरहाल, आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर जब लगातार ये खबरें आती रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो फिर आखिर क्या हुआ? परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, वो काम करने में सरकार जुटी है, तो फिर अचानक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे दिया? आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। इस इनसाइड स्टोरी का शीर्षक है कि क्या 72 घंटों के अल्टीमेटम के कारण हुआ प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि खबर है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए सीजेपी ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया था। शुक्रवार को जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत में ये अल्टीमेटम दिया गया था। सीजेपी की तरफ से कहा गया था कि उनकी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सीजेपी की ओर से कहा गया था कि अगर 72 घंटों में इस्तीफा नहीं होता है तो फिर से संसद की ओर मार्च किया जाएगा। सीजेपी के प्रवक्ता ने साफ कह दिया था कि दोबारा संसद मार्च करने की बाहर जाकर घोषणा कर देंगे। इस पर दोनों मंत्रियों ने कहा कि हम आपके आपको बात करके बताते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी। इस बीच एनटीए के 47 अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई। एनटीए के पुनर्गठन के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इसके बावजूद सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। आज जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर अमित शाह से मुलाकात की। खबर है कि उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा। इसी के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी नेताओं से मिले और फिर आंदोलन खत्म हुआ। हिमांशु, ये जो पूरी जानकारी सामने आ रही है, जाहिर है कि शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि चूंकि सीजेपी लगातार अड़ी हुई थी, भले ही विपक्ष की तरफ से भी यह मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार के लिए ज्यादा बड़ी चिंता जो छात्र हैं उनकी तरफ से ये मांग और उस पर एक कदम भी पीछे नहीं खींचने को वो तैयार हो रहे थे। हिमांशु,
8: देखिए कल जब दूसरे राउंड की मुलाकात हुई थी सीजेपी के जो प्रोटेस्ट का प्रदर्शनकारियों के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ, तो उस वक्त दो मुलाकातों पे आम सहमति जो है वो बन चुकी थी। एक कि जो छात्रों पर किसी भी तरीके के केस रजिस्टर हुए हैं उनको वापिस ले लिया जाएगा 20 जून से कल तक। उसके साथ साथ जो है वो जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनको मुआवजा देने के लिए सहमति बन गई थी। अमाउंट कितना होगा ये सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने कहा था जो भी होगा बस वो हम करेंगे, जिसकी घोषणा आज जेपी नड्डा और सौरभ ने की है। लेकिन एक चीज थी, उन्होंने ये कहा ये दो सहमतियां ठीक है, हमारी जो मुख्य मांग है वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उनको इस्तीफे से कम कोई चीज स्वीकार नहीं है। तब जो है दोनों ही मंत्रियों ने ये साफ साफ कह दिया ये हमारा, हम इसका डिसीजन नहीं ले सकते, हम प्रधानमंत्री तक आपकी बात को पहुंचाएंगे, जो भी कुछ होगा उसके लिए आपको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम बाहर जाकर जो है अभी मार्च की और अन्य किसी प्रोग्राम की जो है वो घोषणा कर दे। तो उन्होंने कहा नहीं आप रुकिए, हम बात करके जब अगली मुलाकात होगी आपको अपडेट देंगे। 72 घंटे का समय था, उस समय के अंदर अगर आप देखेंगे तो आज ही 24 घंटे हुए होने तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उन्होंने खुद से जिम्मेदारी ली, उन्होंने कहा कि पहले दिन से मैंने इसकी जिम्मेदारी ली थी और जो कुछ बेस्ट हो सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। श्वेता, उनका पूरा पत्र है जो उन्होंने युवाओं को एड्रेस करते हुए लिखा है। उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है इस प्रदर्शन का, इस धरने का फायदा उठा सकती थी, मैंने इसी लिए जो है इस्तीफा दिया है, मैं नीट के दोबारा पेपर एग्जाम कराए, वो सारी चीजें हैं।
0: लेकिन आप देखिए लगातार सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि जब लोग ये सोच रहे थे कि क्या इस्तीफा होगा, इस्तीफा अचानक आज उनका सामने आ जाना, और उसके बाद जो सीजेपी की तरफ से भी जो 72 घंटे की डेडलाइन दी गई थी वो सारी चीजें अब पीछे रह गई, इस्तीफा हो गया। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या विपक्ष पहले से ज्यादा हमलावर होगा? प्रधान के त्याग पत्र के बाद अब ये सबसे बड़ा सियासी सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल से लेकर अखिलेश तक उनके इस्तीफे को पीएम मोदी और बीजेपी का झुकना बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जंतर मंतर पर जो आंदोलन खत्म हो चुका है वो दूसरे रूप में संसद में लड़ा जाएगा?
9: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सवाल है कि क्या ये मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा या फिर सरकार के लिए सियासी मैदान में भी आगे बड़ी लड़ाई लड़ने की चुनौती रहेगी। इस सवाल पर सबसे बड़ा संकेत लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी देते हैं।
10: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा, हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उस पर रिएक्शन था।
1: राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे को बेरोजगारी से जोड़ते हुए सरकार के साथ आरएसएस को भी घेरना शुरू कर दिया और बता दिया कि उनके लिए मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ है।
10: प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल, उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है।
1: इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी दो मांगे रखी, बताया कि संसद में इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी तक पर हमले करते रहेंगे।
10: मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए।
1: तो कॉकरोच जनता पार्टी ने भले ही अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इसने विपक्ष को ताकत देने का काम किया है, जिससे लगने लगा है कि सरकार को झुकाया जा सकता है।
11: ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंततः भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया है। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों उनको ठोस बना करके ही, कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोले।
1: अखिलेश यादव को 2027 में बदलाव के लिहाज से छात्रों के आंदोलन में सरकार का झुकना शुभ संकेत लगने लगा है, जिससे यह सवाल और मजबूत होता है, क्या ये लड़ाई एक इस्तीफे पर ही जाकर खत्म हुई है या आगे और लंबी चलेगी?
12: आई बिलीव that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them. Each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
13: तो विपक्ष का सारा जोर नौजवानों को बधाई देने के बाद ये बात बार बार दोहराने में लग गया है कि सरकार और बीजेपी को तो जनता ने आंदोलन करके झुका दिया।
14: आप सबको बहुत बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेन जी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है।
13: छात्रों की जीत बताने के साथ अब धीमे धीमे ही सही इसका श्रेय लेने की भी होड़ शुरू होने लगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी जेन जी की बहुत दिनों से बात कर रहे थे, जिनकी ताकत का एहसास अब सरकार को हुआ है।
15: देश की जेन जी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, और आज उसकी परिणति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया।
13: शरद पवार ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नौजवानों की जीत बताया और पीएम के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया और लिखा कि बातचीत के 2-3 दौर पहले ही हो चुके थे। मैं खुद प्रधानमंत्री से मिला, मैंने उनसे अनुरोध किया कि लोकतंत्र में संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, या तो इस्तीफा देना चाहिए या फिर बातचीत करके उनकी क्या बातें हैं उन्हें सुनना चाहिए। इसके लिए आप केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2-3 मंत्रियों, संभव हो तो वरिष्ठ मंत्रियों को नियुक्त करें। तो सड़क पर छात्रों की लड़ाई भले ही अब पूरी हो गई हो, लेकिन अभी संसद में जंग बाकी है।
16: ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसके तहत चलाना पड़ेगा।
13: सरकार सोमवार को पेपर लीक पर सख्त कानून का बिल पास करने की तैयारी में है। ड्राफ्ट तैयार है, चर्चा भी तय हो चुकी है, जहां विपक्ष की पहली बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में पूरी हो चुकी है। इसलिए सरकार और बीजेपी अब विपक्ष से भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत देने लगे।
17: अब ये एक कसौटी होगी विपक्ष की, क्या वो संसद में चलने देती है संसद और अपनी बात संसद के पटल पर रखती है धारदार तरीके से, या फिर भागने का प्रयास करती है, या अगले 48 से 72 घंटे में साफ हो जाएगा।
13: लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या कानून और इस्तीफे से इस समस्या का समाधान निकलेगा, क्या छात्रों को पेपर लीक की बीमारी से मजबूत छुटकारा मिल पाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, यूं तो रोज देश में अलग अलग मुद्दे समस्या पर होता आया है, लेकिन ये आंदोलन क्यों अलग है? क्योंकि यहां नारे अलग रहे, यहां प्रदर्शन करने वाले पोस्टर अलग हैं। जंतर मंतर पर जेन जी ने विरोध की नई स्क्रिप्ट लिख दी, जिसमें मीम, व्यंग और छोटी छोटी पंचलाइन से कही गई बातों ने आंदोलन को पिछले सभी आंदोलनों से अलग कर दिया।
18: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक
13: आंदोलनकारी जेंजी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम से अपने संदेश दिए, जो कुछ ही समय में करोड़ों लोगों तक पहुंचे। ये सिर्फ एक मोबाइल वीडियो नहीं बल्कि इस बात का कबूलनामा रहा कि जनता अगर डिजिटल मंचों पर सक्रिय है तो लोकतांत्रिक संवाद भी उसी भाषा और माध्यम से होना सियासत की नई जरूरत।
18: खुशियों की खबरें भी आ रही। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात
13: पहले किसी आंदोलन की सफलता उसकी भीड़ और मीडिया कवरेज से आंकी जाती रही, लेकिन अब किसी भी प्रदर्शन का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी तस्वीरें, वीडियो और संदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कितनी तेजी से फैलते हैं।
18: थैंक्स टू एवरीबॉडी।
19: तो आपको कैसा मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे को बहुत वो है, लग रहा है मेरे को समोसा खा के फिर करना चाहिए।
3: यहाँ तो फ्री में
13: जंतर मंतर पर चलता रहा छात्रों का प्रदर्शन। सिर्फ नारों का आंदोलन नहीं रहा बल्कि विरोध की बदलती भाषा का एक नया चेहरा भी रहा। जहाँ हाथों में तख्तियाँ हैं लेकिन उन पर लंबे भाषण नहीं बल्कि मीम, तंज कस्त व्यंग, छोटे छोटे पंच लाइन और इंटरनेट कल्चर से निकले मैसेजेस लिखे गए। यही वजह है कि ये प्रदर्शन पिछले बहुत आंदोलनों से बिल्कुल अलग नजर आया।
19: गवर्नमेंट और पुलिस से इस जेन ज़ी के प्रोटेस्ट को जो रात के 3 बजे क्लब पार्टी हो रही है, इसको आप कैसे रोकोगे? आप रोक के दिखाओ, नहीं रोक सकते।
20: जी लखनऊ से ये अभी दिल्ली के प्रोटेस्ट में आ नहीं पाई है, तो आज इनका डिजिटल प्रोटेस्ट कराने लाया है यहाँ पे। आप
13: पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में नौजवान सोशल मीडिया के दौर में बड़े, इसलिए आंदोलन उन्होंने उसी शैली में बात की जिसमें हास्य, व्यंग और रचनात्मकता को हथियार बनाकर गंभीर मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुँचाया गया। प्रदर्शन के दौरान कई सोशल मीडिया रील्स वायरल जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। उनमें से एक रील में एक लड़की अपने मेकअप की बात करते करते पेपर लीक पर तंज कसती।
3: स्टूडेंट रही नहीं हूँ, स्टूडेंट बनने का था कि सपना था कि बनूंगी, नीट की तैयारी करूंगी, पर अब नीट के बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है तो लग रहा है कि नहीं बनना चाहिए।
13: प्रदर्शन में पॉप कल्चर की झलक भी खूब दिखाई। कोई दुल्हन बनकर कुछ पुछू अब तो रिजाइन कर दो का पोस्टर लेकर पहुंचे। बैटमैन, स्पाइडरमैन, गोरिल्ला अवतार भी चर्चा में रहे।
2: मिलेनियल्स और जनरेशन जी में जो फर्क है ना, वो है उनकी क्रिएटिविटी का। अब जंतर मंतर पर भी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया, ऐसे ऐसे पोस्टर, ऐसे ऐसे रील दिखाई दिए ना, हमने तो कभी अपनी पीढ़ी में नहीं देखा, नहीं पढ़ा। अब रेजिग्नेशन हो गया ना, जरा क्या लिखा पढ़ के बताइए।
3: आप पढ़ के बताइए भैया।
2: ये सबसे ज्यादा ये वाला वायरल हो रहा था और उसके बाद फिर अब इस्तीफा हो गया तो फिर बना, ये तुरंत बना के लेके भी आ गए आप लोग। यहाँ क्या लिखा है, मान लिया तो हार गए, ठान लिया तो पार गए। तो आप लोग नहीं बैठे बैठे बना लिया?
3: नहीं, घर से
2: बना करके।
3: जल्दी जल्दी कोई तो जल्दी जल्दी काम कर।
2: ये वाला आइडिया कौन लाया था, ये लिखना है, ये किसका आइडिया था? ये
3: मेरा ही था वैसे।
2: आपने खुद से बना लिया? ये जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा क्रिएटिव है और ऐसे ऐसी चीज आपको एक बार पढ़ने में हंसी आ जाएगी, लेकिन वो हंसी लाकर मंच। अच्छा, यहाँ पोस्टर्स का बड़ा रोल रहा है, इंडिया नीड्स टोटल रेवोल्यूशन। अब ये भी है कि अब नीट का मामला था तब से लेकर के छात्र जो हैं वो टोटल रेवोल्यूशन लेकर आ गए।
3: मेन है कि अब आज के टाइम में माता पिता।
13: दुल्हन की ड्रेस में जंतर मंतर पर पहुंची इस महिला ने सबका ध्यान खींचा। महिला ने कहा कि अब करियर तो बनने से रहा, शादी ही कर लो।
3: तो आपके साथ भी ऐसे ही हो? हाँ जी, बस मेन मोटिव यही था कि करियर तो बनने से रहा, आप शादी कर लो आज ही, मैं यही बोलूंगी। स्टूडेंट रही नहीं हूँ, स्टूडेंट बनने का था कि सपना था कि बनूंगी, नीट की तैयारी करूंगी, पर अब नीट के बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है तो लग रहा है कि नहीं बनना चाहिए। और मेन है कि अब आज के टाइम में माता पिता जो सोच रहे हैं कि हम इतना अच्छा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अब वो ये सोच रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के साथ, इतने सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, तो अब शादी करा रहे हो लड़कियों के।
13: तो इस आंदोलन में कई सारी ऐसी चीजें हुई जो पहले कभी नहीं हुई। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया। क्योंकि ये युवाओं का प्लेटफॉर्म जिससे प्रदर्शनकारियों के साथ देश भर के नौजवान इस्तेमाल करते हैं, जिनसे सीधी बात करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म को चुना।
4: थैंक यू दोस्तों।
0: सवाल ये भी आता है कि क्या इस बात को सत्ता ने समझा कि जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन शहर शहर जंतर मंतर बनाने लगा है, जहां यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान तक युवा सड़क पर उतरते दिखने लगे थे। पेपर लीक के खिलाफ शनिवार को भी देश भर में प्रदर्शन होते रहे, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, सभी जगह जश्न मनाया गया। हालांकि कई शहरों में ये विरोध उग्र भी होता दिखा। तो सवाल ये भी है कि क्या ऐसे ही शहर शहर आंदोलन की चिंता ने इस्तीफा कराया?

0: दिल्ली की तरह लखनऊ में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी झूम उठते हैं, विरोध जश्न में बदल जाता है।
1: पैरामिलिट्री के जो जवान है वो अब धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी है उनको घर वापस जाने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से ही कनॉट प्लेस पर जबरदस्त भीड़ जो थी देखी जा रही थी। मेट्रो से तमाम लोग आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन को खोला गया, उसके बाद की ये तस्वीर है कि किस तरीके से कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे थे। अब धीरे धीरे पुलिस जो है वो उनको वापस जाने की अपील करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इनर सर्कल की तस्वीर है, अभी भी आपको जबरदस्त प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में माहौल खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अब तमाम लोगों से ये अपील कर रही है कि वो अपने घर जो है वो वापस जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं।
0: देश के बाकी राज्यों की तरह पेपर लीक के खिलाफ छात्रों में लखनऊ में आक्रोश था, जिसमें वो छात्र छात्राएं शामिल हुए जो अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।
2: ना घर से पता गया है?
3: नहीं।
2: घर पे नहीं बोला है?
3: नहीं।
2: घर पे क्या बोला है?
3: अभी जाकर बता देंगे, हमें पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो रहा है।
2: अच्छा, अब रास्ते से निकले देखा कि हो रहा है, पहुंच गए?
3: प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए हम उनको जानते भी नहीं थे।
0: लखनऊ में जहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रयागराज में इस्तीफे की खबर आते ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, वहीं कुछ ने तोड़फोड़। हालांकि पुलिस ने यहां संयम से काम लिया और कार्रवाई नहीं। ऐसा ही हंगामा पटना में भी देखने को मिला, यहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस में भिड़ंत हो जाती। पुलिस पर पथराव हुआ जिसके जवाब में लाठीचार्ज पुलिस ने किया।
4: ये लोग कहाँ से हैं सर?
5: कहाँ से? पटना के ही है, लोकल है जो कि
4: बाहर से भी पकड़ा रहे। बाहर के लोग
5: बाहर से भी आया है, बाहर से भी। तो आप लोग को भी तो ऊपर चलाया, हम लोग को ऊपर भी चलाया, वही तो पकड़ाया। चलिए चलिए, उपद्रवी है ना।
6: यहाँ पर धरना प्रदर्शन सब विद्यार्थी लोग है जो ढेला देखिए तो ढेला चलाए, उसे फोड़ फाड़ दिए।
7: चोट भी लगा?
6: यहाँ हम तो रोड पर थे तो उधर भाग गए, ऊपर थे इसमें न थे, इसमें होगा तो हो ही गया, हम उस सुलभ शौचालय में भाग गए थे।
0: बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, पुलिस ने बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्णिया में भी सड़कें रणभूमि बन गई, अलग अलग संगठनों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला लेकिन फिर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस ने बार बार समझाने की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी और बात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर खुशी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी उनकी एक मांग पूरी हुई, वो अब चाहते हैं कि पूरा शिक्षा तंत्र सुधरे।
8: पहली बार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने और मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और देख लो,
9: ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ने बोली थी कि तुम जा तो रहे हो, घर जब भी आना, जब इस्तीफा लेके आना, और मैम इस्तीफा लेके हम घर जाएंगे।
0: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का असली मकसद तब पूरा होगा जब शिक्षा के पूरे शैक्षिक तंत्र में सुधार होगा।
10: शिक्षा मंत्रालय, मोदी सरकार का ये वो विभाग है जिसके साथ एक अलग ही खबर का रिश्ता है। मोदी सरकार के 12 साल में 4 लोग शिक्षा मंत्री रहे और इसी से आप समझ जाइए कि इन 12 साल में कोई शिक्षा मंत्री 5 साल तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल पाया। सबसे पहले स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री बनी जिनका कार्यकाल 771 दिन का रहा। इसके बाद प्रकाश जावड़ेकर 1060 दिन तक शिक्षा मंत्री रहे। रमेश पोखरियाल निशंक तीसरे मंत्री बने लेकिन शिक्षा विभाग में 770 दिन तक रह पाए। धर्मेंद्र प्रधान 7 जुलाई 2021 से अब तक 1845 दिन शिक्षा मंत्री रहे। एक बात यह भी पता चली है कि मोदी राज में 4 शिक्षा मंत्रियों में से 3 को जुलाई के महीने में ही बीच कार्यकाल पद छोड़ना पड़ा। जैसे इस बार धर्मेंद्र प्रधान जो खुद कभी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करते रहे, इस बार खुद लीक पर आंदोलन से कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ी।
7: ये तस्वीर अब याद करना जरूरी है, जरूरी इसलिए क्योंकि ये शख्स अभी देश की हर खबर में दर्ज है। ये तस्वीर बताती है कि आंदोलन से निकले नेता अगर आंदोलन का हासिल भूल जाएं, तो फिर आंदोलन ही उनके लिए भी भारी पड़ जाता है। 29 साल पहले 1997 की तस्वीर, पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने तब ओडिशा में विरोध प्रदर्शन किया। प्रधान के सहयोगी रहे प्रशांत राउत अंग्रेजी अखबार को बताते हैं कि 1997 में ओडिशा में एक पेपर लीक हुआ था, तब धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शन किया जिसमें करीब 150 छात्र शामिल हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान को बुरी तरह पीटा गया। 29 साल बाद नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हुए आंदोलन ने उन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जो संगठन और सरकार के सबसे मजबूत सिपाही बनकर चलते रहे। तारीख 15 मार्च 2025 बिहार में चुनावी हलचल से महीनों पहले पटना के डीएम दफ्तर में माता पिता के साथ बैठी 10वीं पास खुशबू को एक फोन कॉल आता है।
11: आपकी चिंता न करो, बिहार शासन आपके साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों आपको पढ़ाएंगे।
7: 10वीं में तब पास हुई खुशबू को गरीबी की वजह से पढ़ाई आगे न कर पाने और उसके डॉक्टर बनने के सपने में रुकावट की खबर मिलने पर एक फोन तब अब तक के शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने ही किया था।
11: डॉक्टर बनोगे?
12: यस सर।
11: बिल्कुल बनोगे?
12: यस सर।
11: प्रभु के आशीर्वाद आपके ऊपर है और आप सभी के शुभेच्छाएं, आप चिंता ना करो, देश की बेटियों को मोदी जी के शासन में और बिहार में तो नीतीश जी ने बहुत चिंता की बेटियों के बारे में, आप भरोसा रखो।
10: अभी देखना होगा कि आगे क्या इस पर कहा जाता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
15: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
16: Sokudo.
17: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को आरडीएक्स रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
7: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: The mangled wreck of the two-wheeler used in an attempt on the life of Uttar Pradesh Minister Nand Gopal Nandi.
9: गुंडों और अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ कि मेरे ऊपर RDX रिमोट बम से भी हमला हुआ।
2: वर्ष 2010, 12 जुलाई प्रयागराज की सड़कों पर एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। भगवान शिव के मंदिर जलाभिषेक के लिए जा रहे तत्कालीन कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के रास्ते पर RDX से लदी स्कूटी को रिमोट कंट्रोल से विस्फोट कर उड़ा दिया गया। इस भीषण हमले में एक सुरक्षा कर्मी और एक पत्रकार शहीद हो गए, जबकि नंदी बेहद गंभीर रूप से घायल होकर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करने लगे। 7 दिन कोमा, 7 महीने तक अस्पताल में रहने, 14 सर्जरी और फिर जीवन की सबसे लंबी लड़ाई जीत कर वे लौटे का परिणाम था।
9: कोई गुंडा, बनमास, अपराधी व्यापारियों को तंग करता तो मुझे बोलते, तो उन अपराधियों को सजा मिलती थी। तो उन लोगों ने ऐसा एक प्लान बनाया कि अगर हम मंत्री को ही बम से उड़ा देंगे तो आज जो हम जिले के और प्रदेश के माफिया हैं, देश भर में मेरा नाम हो जाएगा और देश से वसूली करेंगे, देश भर के व्यापारियों से वसूली करेंगे। लेकिन वो कुदरत का करिश्मा, भगवान का चमत्कार, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई।
2: बताया जाता है कि ये हमला व्यापारियों से रंगदारी वसूलने वाले माफिया तत्वों द्वारा कराया गया था, क्योंकि नंदी उनके विरुद्ध मुखर होकर आवाज उठा रहे थे।
10: जैसे ही वो मंदिर की तरफ जाने लगे, आधे रास्ते पे जो है एक बार की विस्फोट हुआ। जब धुआं छटा तब उसमें दिखाई पड़ा कि बुरी तरह घायल हो गए थे, तो उनको निकाल के हम लोग जो है समीप के ये जीवन ज्योति हॉस्पिटल वगैरह उनको भिजाने का इंतजाम करने लगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि समझ लीजिए कि एकदम से मौत के मुंह से वापस आए।
2: व्यापारी समाज इस दिन को व्यापारी साहस दिवस के रूप में भी मनाता है। समय बीतता गया, लेकिन ये दिन केवल स्मृति नहीं रहा, ये जन आस्था और जन सहभागिता का महापर्व बन गया। इस वर्ष मंत्री नंदी के पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव पर प्रयागराज में ऐसा आयोजन हुआ जिसने नया इतिहास रच दिया। एक ही स्थान पर 4,35,312 लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण कर नया कीर्तिमान बनाया। देश और विदेश के साथ प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से लाखों समर्थक और चाहने वाले प्रयागराज पहुंचे। राम भवन से चंद्रलोक, चंद्रलोक से मानसरोवर और मानसरोवर से सुलाकी चौराहे तक विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई। 6 विशाल किचन बनाए गए। 1,075 कारीगरों और 612 वेटरों की टीम लगातार सेवा में जुटी रही। लाखों लोगों के लिए देसी घी, चावल, दाल, आटा, पनीर, हरी मटर सहित सैकड़ों क्विंटल खाद्य सामग्री का उपयोग किया गया। पूरे आयोजन को किसी भव्य राष्ट्रीय आयोजन जैसी व्यवस्थाओं के साथ संचालित किया गया। आस्था के इस महोत्सव में भक्ति का रंग भी खूब दिखाई दिया। प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी और भजन गायिका स्वाति मिश्रा की प्रस्तुति पर हजारों श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव आज केवल एक स्मृति या वार्षिक आयोजन नहीं रह गया है, ये समाज को जोड़ने और सेवा का संकल्प मजबूत करने का एक सशक्त अभियान बन चुका है। नंदी सेवा संस्थान के साथ 1 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं।
9: नंदी सेवा संस्थान से कोई व्यापारी के यहाँ किसी वजह से हत्या, लूट, डकैती या एक्सीडेंटल डेथ हो गई, उसके बच्चे छोटे हैं, तो 10,000 रुपये महीने आजीवन, जब तक वो जीवित हैं, जब तक हम जीवित हैं, 10,000 रुपये महीने उनको पेंशन के रूप में दी जाती है।
2: संस्थान के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाने, व्यापारी वर्ग के हितों को सशक्त करने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और विपरीत परिस्थितियों में लोगों के साथ खड़े रहने जैसे अनेक सामाजिक कार्य निरंतर संचालित किए जा रहे हैं।
11: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
12: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
13: I have no idea how this election is going to play out,
12: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach. In association with
4: Bharat Ki Apni Electric Sawari.
14: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
15: To right field, and it will leave.
14: From the first pitch of the season to the stretch run.
15: And that's the ball game.
14: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: Sokudo.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
3: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

करगिल विजय दिवस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, कहा सिर्फ पीओके पर बात होगी। द्रास में शहीदों को राष्ट्र का नमन, प्रधानमंत्री ने वीर जवानों को किया सल्यूट। प्रदर्शन में फायरिंग पर दिल्ली से पटना तक घमासान, राहुल गांधी ने पैलेट गन पर अमित शाह को लिखी चिट्ठी, पूछा कहां से आया आदेश। तेजस्वी ने सीवान में AK-47 से गोली चलाने का लगाया आरोप। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, बोले पूरी निष्ठा से निभाऊंगा जिम्मेदारी, कल संसद में पेपर लीक पर संशोधन बिल। अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में नई एसआईटी का गठन, दो आईपीएस ऑफिसर्स की एंट्री, विजय विश्वास और नील रतन बाहर, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देगी योगी सरकार। और गुजरात में बारिश, बाढ़ से बिगड़े हैं हालात, अहमदाबाद, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम में भी पानी पानी, अब तक 61 ने गंवाई जान, हजारों लोग बेघर। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। किसी भी लोकतंत्र में सड़क सिर्फ आने जाने की जगह नहीं होती है, कभी कभी यही सड़कें वो जगह बन जाती हैं जहां आम आदमी अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाता है, यानी अपनी आवाज। जब शिकायतें दफ्तरों की फाइलों से बाहर निकलकर सड़कों तक पहुंचती हैं तो आंदोलन जन्म लेता है। दिल्ली ने ऐसे अनगिनत आंदोलन देखे हैं जिन्होंने देश की राजनीति और समाज दोनों को प्रभावित किया, लेकिन तमाम आवाजों के बीच एक जगह ऐसी है जहां दशकों से देश के अलग अलग हिस्सों की बेचैनी आकर जमा होती रही है। आज कहानी जंतर मंतर की।

0: हर हिस्से में लोग आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे,
1: लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम हर एक उस महिला के पास जाएंगे।
2: हम चुप बैठने वाले नहीं है, हम अब डंके से डंका बजा देंगे।
3: अभी रोटी खा रहा है ना, तो वो ये सोचे कि वो रोटी आई कहाँ से, तो वो भी रोज आ रहा है।
4: भारत माता की जय।

0: से कभी यहाँ भूख बोलती है, कभी गुस्सा, कभी उम्मीद और कभी पूरा देश।
1: ऐसा नहीं चलेगा, पूरा सिस्टम अकाउंटेबल बनाना, और जब तक ये नहीं होगा संघर्ष चलता रहेगा।
2: 36 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया।
0: यहाँ कोई अजर अमर होकर नहीं आता, न आदमी, न इमारतें, न विचार, न आंदोलन, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो वक्त से बड़ी हो जाती हैं। वहाँ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी आवाजें ठहर जाती हैं। वहाँ चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन सवाल वही रहते हैं।
3: जो बात रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े।
4: हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट है कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है, एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती।
5: जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में।
0: और इन्हीं सवालों के बीच खड़ा है जंतर मंतर। आखिर जंतर मंतर कब बना, इसे किसने बनवाया और क्यों बनवाया? एक खगोलीय वेधशाला आंदोलनों का सबसे बड़ा पता कैसे बन गई? देश में विरोध की सबसे बुलंद आवाज आखिर यही क्यों सुनाई देती है? जंतर मंतर को प्रदर्शन की राजधानी किसने बनाया? और क्या सचमुच यहाँ से उठी आवाजें सरकारों तक पहुंचती हैं? आज कहानी में इन सभी सवालों का जवाब। इन दिनों जंतर मंतर एक बार फिर सुर्खियों में।
6: क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते।
7: इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।
8: धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया।
9: जब एक बार लीक होता है, दो बार लीक, बार बार तो लीक नहीं होता है ना। ये लड़का लड़की लोग पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, एसएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे वो क्लास 10 का एग्जाम क्यों ना हो, अगर कल एग्जाम है, आज पेपर लीक हो जाता है तो कितना दुख होता है। वो दुख एक जन को खाली नहीं होता है, वो अपने मम्मी पापा और भाई बहन सबको दुख होता है। वो एक खाली स्टूडेंट को नहीं दुख होता है, घर के सारे सदस्य को दुख होता है।
0: लेकिन ये पहली बार नहीं है। जंतर मंतर ने ऐसी आवाजें पहले भी सुनी है, ऐसे नारे पहले भी देखे, ऐसे आंसू, ऐसी भूख, ऐसी उम्मीदें सब पहले भी यहां उतर चुकी है। आज की कहानी किसी एक आंदोलन की नहीं, आज कहानी जंतर मंतर की।
10: जंतर मंतर को अगर आप सिर्फ एक सड़क समझेंगे तो शायद इसकी पूरी कहानी को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सड़क ने सिर्फ प्रदर्शन नहीं देखे बल्कि वक्त को बदलता देखा है। कभी कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे तो कभी हजारों लोग, तो कभी पूरा देश इस सड़क पर अपनी आवाज को तलाशता हुआ नजर आया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक खगोलीय वेधशाला लोकतंत्र के सबसे बड़े इंतजार घर में कैसे बदल गई?

0: सरकार ने कहा प्रदर्शन अब जंतर मंतर पर होंगे।
1: बड़ी रैलियां बड़े प्रदर्शन होते थे वो बोट क्लब पे होते थे ये, और बोट क्लब पर आमतौर पर जो बोट क्लब का जो ये आपका जनपथ वाला जो रोड है वो उस पर जो है बोट क्लब पर वहां तंबू लगा करके लोग बैठ जाते थे, और जब बड़ी रैलियां भी वहां होती थी जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे और अयोध्या आंदोलन बहुत चरम पर था, तो दिल्ली में एक रैली बुलाई गई थी विश्व हिंदू परिषद की, और उसमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और सारे विश्व हिंदू परिषद सब ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, और तब वोट क्लब को प्रतिबंधित कर दिया गया था पूरे क्षेत्र को, और ये तय हुआ था कि वोट क्लब पर जो है कोई रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। जंतर मंतर पर छोटे धरनों की और अनशन वगैरह की अनुमति दी गई, और वहां पर उसके बाद से सिलसिला जंतर मंतर पर पूरी तरह से केंद्रित हो गया।
0: शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये सड़क आगे चलकर भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी डायरी बन जाएगी जिस पर हर दौर अपना एक पन्ना लिखेगा।
2: सड़क पर आने वाले लोगों की मांगे अलग हैं, उनके संघर्ष अलग हैं, उनकी कहानियां भी अलग हैं, लेकिन इन सब को जोड़ती है एक उम्मीद कि कहीं ना कहीं कोई उनकी आवाज जरूर सुनेगा। यही वजह है कि जंतर मंतर पर हर प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी उसकी आवाज पूरी तरीके से खत्म नहीं होती। कोई आंदोलन जीतता है, कोई हारता है, कोई बीच रास्ते में रुक जाता है, लेकिन इस सड़क की याददाश्त में हर आवाज दर्ज हो जाती है।
0: यहाँ सुबह किसी किसान के मांग से होती है तो शाम किसी छात्र के नारे पर खत्म होती है। कभी यहाँ पूर्व सैनिक अपने मेडल लेकर बैठ जाते हैं, कभी बेरोजगार अपनी डिग्रियां लेकर, कभी महिलाएं न्याय मांगती हैं।
3: 1955 में कानून बना था जिसके तहत लोगों ने जो आंदोलन किया था देश को भूखा मरने से बचाने के लिए आंदोलन किया था।
0: कभी खिलाड़ी सम्मान, कभी आदिवासी अपने जंगल, कभी मजदूर अपनी मजदूरी, और कभी पूरा देश अपनी सरकार से जवाब। जंतर मंतर सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये लोकतंत्र का इंतजार घर है।
1: ज्यादा असर वाला हाल के वर्षों में पिछले वो अन्ना आंदोलन ही था जिसका सरकार पर सबसे ज्यादा असर हुआ, लेकिन इसके अलावा तमाम सारे जो जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो नर्मदा डैम की दूरी को कम करने को वो उसके लोग भी आज एक्टिविस्ट जंतर मंतर पर बैठते रहे। आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलन उसके भी लोग जंतर मंतर और संसद मार्ग पर प्रदर्शन करते रहे और आते रहे, उनके भी सब असर पड़े हैं। ऐसा नहीं उनका असर नहीं पड़ा सरकार पर, लेकिन फौरी तौर पर तात्कालिक जो है और इमीडिएट इफेक्ट वाला असर जो है वो अन्ना आंदोलन का ही सबसे ज्यादा पड़ा था।
0: कहते हैं इमारतें पत्थरों से बनती है, लेकिन कुछ जगह लोगों की आवाजों से बनती है। जंतर मंतर भी ऐसी ही जगह है। यहाँ हर तख्ती एक कहानी है, हर नारा एक दस्तावेज, हर भूख हड़ताल एक उम्मीद। शायद इसलिए जब भी देश के किसी कोने में कोई नागरिक ये महसूस करता है कि उसकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही तो उसके कदम अक्सर इसी सड़क की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि संसद के दरवाजे भले बंद हों लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा इंतजार घर अब भी खुला है। और इसलिए आज फिर जंतर मंतर सुर्खियों में, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की एक सड़क नहीं भारत के लोकतंत्र की धड़कन है। आज कहानी जंतर मंतर की।
4: दिल्ली का जंतर मंतर आज देश भर के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कभी दिल्ली में विरोध का सबसे बड़ा मैदान बोट क्लब हुआ करता था? बड़े बड़े आंदोलन यहीं से राष्ट्रीय बहस बनते थे। फिर 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में लाखों किसानों के आंदोलन के बाद बोट क्लब पर बड़े प्रदर्शनों को लेकर सरकार की सोच बदली और 1993 में प्रदर्शन का पता जंतर मंतर कर दिया गया।
0: ये तस्वीरें आज की हैं, लेकिन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की कहानी आज से शुरू नहीं होती। दिल्ली लंबे वक्त से देश की राजनीतिक बेचैनी का सबसे बड़ा पता रही है।

दिल्ली में समय सिर्फ इमारतों में नहीं बसता, कुछ सड़कों पर भी रहता है। और संसद से कुछ ही कदम दूर एक सड़क है जहां लोकतंत्र अपनी सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। 1990 के बाद जब बोट क्लब पर बड़े प्रदर्शनों पर रोक लगी, तब विरोध की राजधानी बदल गई

0: आजादी से पहले भी दिल्ली की सड़कों पर बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आजादी के बाद जो आंदोलन हुए उसने हमेशा से सरकार को परेशान किया।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं।
0: 1974 से 1975 जेपी आंदोलन, 1975 से 77 तक आपातकाल विरोधी आंदोलन, 1990 मंडल आयोग विरोधी आंदोलन, 1988 महेंद्र सिंह टिकैत का किसान आंदोलन, 2011 में अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन, दिसंबर 2012 निर्भया केस के बाद प्रदर्शन, 2015 में वन रैंक वन पेंशन आंदोलन, 2017 में तमिलनाडु के किसानों का आंदोलन, 2019-20 में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन, 2020-21 में किसान आंदोलन, 2023 में पहलवानों का आंदोलन। इन सारे आंदोलन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना दिया, लेकिन 1990 के दशक के पहले अगर किसी आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान चाहिए होती थी तो उसकी मंजिल थी बोट क्लब।
2: 25 अक्टूबर 1988 दिल्ली के बोट क्लब में जुटी ये भीड़ सिर्फ किसानों की भीड़ नहीं थी, बल्कि 14 राज्यों के 5 लाख किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट के पूरे इलाके पे अपना कब्जा कर लिया था। बाबा टिकैत के नेतृत्व में किसान कई दिनों तक यहाँ पर डटे रहे। ये वो दौर था जब सरकार को यह एहसास हुआ कि दिल्ली सत्ता केंद्र के इतने करीब बैठी लाखों की भीड़ को नजरअंदाज आसानी से नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन ने दिखा दिया कि बोट क्लब सिर्फ रैली की जगह नहीं बल्कि सत्ता पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा मैदान बन चुका था।
0: इंडिया गेट से विजय चौक तक फैले राजपथ के लॉन का हिस्सा आज जिसे कर्तव्य पथ कहा जाता है उस वक्त बोट क्लब था, मतलब विरोध का सबसे बड़ा मैदान।
3: पहले प्रदर्शनों का, जुलूसों का, धरनों का केंद्र जो था वो बोट क्लब ही था। चाहे किसान संगठन हो, चाहे मजदूर संगठन हो, चाहे शिक्षकों के संगठन हो, कर्मचारियों के संगठन हो, सबकी रैलियां, सबके बड़े बड़े जलसे जो है और विरोध प्रदर्शन बोट क्लब पर ही होते थे, और बोट क्लब तक ही आने दिया जाता था और वहीं रोका जाता था। और महेंद्र सिंह टिकैत की दो बड़ी रैलियां बोट क्लब पर हुई, इसके अलावा चौधरी मंडल आंदोलन के दौरान चौधरी देवीलाल की पहल पर बुलाया गया कि बड़ी एक रैली बोट क्लब पर हुई थी, जो बहुत ही वायलेंट हो गई थी, बहुत हिंसक हो गई थी, तमाम लूटपाट भी हुई थी उसमें।
0: इस जगह की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी लोकेशन, संसद से दूर नहीं, राष्ट्रपति भवन दूर नहीं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भी करीब और टीवी कैमरों के लिए खुला मैदान, यानी हजारों लाखों लोग एक साथ जुटे तो उस आवाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। और फिर आया अक्टूबर 1988। भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में 5 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली पहुंच गए गन्ने के दाम और बिजली पानी पर टैक्स को लेकर। किसानों ने बोट क्लब और राजपथ इलाके में कई दिनों तक डेरा डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय दिल्ली लगभग ठहर गई थी। पूरे इलाके में हजारों की संख्या में गाय भैंस और ट्रैक्टर लगाकर पूरे इलाके को जाम कर दिया गया था। तब सवाल ये था, संसद और राष्ट्रपति भवन के इतने करीब इतनी बड़ी भीड़ को कैसे संभाला जाए। यहीं से सरकार की सोच बदलनी शुरू हुई। विरोध को पूरी तरह रोकना संभव नहीं था, लेकिन सत्ता के सबसे संवेदनशील इलाके से प्रदर्शन को थोड़ा दूर ले जाना एक प्रशासनिक जरूरत माना जाने लगा। और इस आंदोलन के 5 साल बाद 1993 में बोट क्लब पर बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई, और इसके बाद जंतर मंतर रोड को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान बना दिया गया।
2: बाबा टिकैत के इस आंदोलन का असर इतना बड़ा था कि सत्तारूढ़ कांग्रेस को भी अपनी रैली की जगह बदलनी पड़ी। बोट क्लब पर किसानों का कब्जा था और ऐसे में कांग्रेस को अपनी रैली लाल किला मैदान में करनी पड़ी। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर से किसानों की मांगों पर भरोसा मिलने के बाद 31 अक्टूबर को धरना खत्म हुआ। इसके बाद ये तय हो गया कि बोट क्लब पर उसके बाद कोई धरना नहीं होगा।
0: यानी विरोध खत्म नहीं हुआ, बस उसका पता बदल दिया गया। जंतर मंतर दिल्ली के बीचों बीच आसानी से पहुंचने वाली जगह मीडिया की नजरों के करीब, लेकिन बोट क्लब की तरह खुला और विशाल मैदान नहीं। और यहीं से एक खगोलीय वेधशाला धीरे धीरे विरोध की पहचान बनती चली गई।
4: वक्त से ब्रेक का हौसला, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जंतर मंतर पर अब तक हुए प्रदर्शन की इनसाइड स्टोरी। देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
7: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
6: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
8: Williams keeps it. First down. Touchdown.
6: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
9: Sokudo,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: The Sherwin-Williams summer sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice. So.
4: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी हिंड बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
6: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना हेल्थ फिटनेस योगा मेंटल वेलनेस सब कुछ एक ही जगह फिट तक सिंपल टिप्स एक्सपर्ट इनसाइट्स रियल कॉन्वर्सेशंस लाइफ अपग्रेड करो इजी वे वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब
7: हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है
8: और टीयर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आ रही है
7: पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है
6: कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह दिल्ली आज

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आंदोलन किसी भी लोकतंत्र की ताकत होती है, क्योंकि जब जनता की आवाज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती तो वही आवाज सड़कों पर सुनाई देती है। दिल्ली का जंतर मंतर ऐसी ही आवाज का गवाह रहा है। अन्ना हजारे का आंदोलन हो, पूर्व सैनिकों की वन रैन वन पेंशन की मांग हो, तमिलनाडु के किसानों का संघर्ष हो या फिर देश के पहलवानों का प्रदर्शन, हर आंदोलन ने इस जगह की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ा है।
1: जो लिखा जा रहा है आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं।
2: मैं भी आपके साथ हूँ, आप में से ही एक हूँ।
3: कहते हैं आंदोलन सरकारें नहीं चलाती, लेकिन आंदोलन सरकारों की दिशा जरूर तय कर देते हैं। दिल्ली ने इस बात को कई बार सच होते देखा है। रामलीला मैदान में जेपी आंदोलन से लेकर बोट क्लब पर किसानों के बड़े जमावड़े तक, मंडल आंदोलन से लेकर इंडिया गेट पर दिसंबर 2012 के विरोध प्रदर्शन तक, इस शहर ने हर दौर के गुस्से, हर दौर की बेचैनी और हर दौर की उम्मीद को अपनी सड़कों पर उतरते देखा है।
4: प्रॉपर कार्रवाई से पास ही नहीं किए गए, उनके किसी भी अमेंडमेंट में हमें कोई रुचि नहीं है।
3: कभी छात्र सड़कों पर उतरे, कभी किसान, कभी पूर्व सैनिक, कभी खिलाड़ी और कभी आम नागरिक।
5: 3 साल की सजा उसके लिए काफी।
6: सैनिक एकता,
7: सैनिक एकता। सिर्फ न्याय के लिए बैठे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब, लेकिन न्याय दिलवाने के बजाय और बहुत सारी चीजें हो रही हैं।
3: मुद्दे अलग थे, चेहरे अलग थे, जगह अलग थी, लेकिन सवाल एक था, क्या सत्ता जनता की आवाज सुन रही है? आज से 15 साल पहले दिल्ली के जंतर मंतर से एक आवाज उठी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक बुजुर्ग अन्ना हजारे गांधी टोपी पहनकर बैठे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल की मांग लेकर शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते देशव्यापी लहर बन गया था। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जली, तिरंगे लहराए और पहली बार सोशल मीडिया और सड़क एक साथ दिखाई दिए।
8: ग्यारह का अन्ना आंदोलन जंतर मंतर के इतिहास में सिर्फ एक बड़ा आंदोलन नहीं था, ये वो पल था जब इस जगह पर उठी आवाज पहली बार इतनी तेजी से पूरे देश तक पहुंची। सड़क पर बैठे कुछ लोग देखते ही देखते देशव्यापी आंदोलन का चेहरा बन गए। कैमरे यहाँ थे, सोशल मीडिया यहाँ था और देश की जनता भी। जंतर मंतर ने उस आंदोलन को सिर्फ जगह नहीं दी बल्कि उसकी कहानी को दर्ज किया। उसके बाद ये साफ हो गया कि इस जगह पर उठी आवाज दिल्ली की सीमा तक कैद नहीं रहती।
3: जंतर मंतर पर बैठे लोग देश के कोने कोने में दिखाई दे रहे थे। एक आवाज हजारों आवाजों में बदल गई। कई नए चेहरे राजनीति में आए, कई पुराने चेहरे सत्ता से चले गए। एक आंदोलन नेताओं की पूरी नई पीढ़ी लेकर आया।
9: सरकार तो नहीं मान रही है,
10: हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। अगर सब कुछ आपको मेरे अंदर गलती दिखाई दे तो मुझे तुरंत टोक देना कि ये गलत कर रहे हो, आप ये आम आदमी से भटक गए।
3: फिर समय बदला लेकिन जंतर मंतर नहीं बदला। पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की मांग लेकर यहाँ पहुंचे। सीने पर तमगे थे लेकिन आंखों में उपेक्षा का दर्द था। उन्होंने अपने मेडल तक लौटाने शुरू कर दिए थे। देश के लिए लड़ने वाले सैनिक अब अपनी मांग लिए राजधानी की सड़क पर बैठे थे। सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार फैसला लेना पड़ा।
11: बहुत सीधा सा डिमांड है, उसका नाम है एक रैंक एक पेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि 1996 से पहले रिटायर होने वाले सिपाही को और 2006 के बाद रिटायरमेंट होने वाले सिपाही को एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए।
12: फौज में, सेना में कितने जवान काम कर रहे हैं। अरे आजादी के बाद 33,000 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवानों का बलिदान हुआ, हम क्यों भूल जाए उनको। हम उनको कैसे भूल सकते हैं। यही तो लोग हैं जिनके कारण हम सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं, और इसलिए ये पर्व उनके भी नमन करने का है। और कई वर्षों से वन रैंक वन पेंशन का मसला लटका पड़ा था, हम टालने वालों में से नहीं, हम टकराने वालों में, हमने उसको पूरा किया। वन रैंक वन पेंशन हर हिंदुस्तान के फौजी के घर में खुशहाली पहुंचा दी, इस काम को किया।
3: तमिलनाडु से हजारों किसान जंतर मंतर पहुंचे थे। जो तस्वीरें सामने आई थी उन्हें देखकर शायद यकीन करना मुश्किल था। किसान अपने साथ इंसानी खोपड़ियां लेकर बैठे थे, मुंह में चूहे रखे घास खाई और नंगे बदन धूप में बैठे रहे। उनका मकसद सिर्फ एक था कि दिल्ली उनकी तरफ देखे और सत्ता उनकी आवाज सुने। कभी कभी लोकतंत्र में सबसे ज्यादा शोर चुप्पी मचाती है। समय आगे बढ़ा और जंतर मंतर फिर भरता रहा। कभी नागरिकता कानून के खिलाफ आवाजें आई, कभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी पहुंचे और कभी बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठी। जंतर मंतर के साथ दिल्ली के दूसरे हिस्से भी आंदोलनों के गवाह बनते रहे हैं। कभी इंडिया गेट पर लोग जुटे, कभी संसद की ओर जाती सड़कों पर आवाजें उठी और कभी रामलीला मैदान आंदोलन का केंद्र बना। हर सरकार बदली लेकिन विरोध की जरूरत नहीं बदली, क्योंकि मांगे बदलती रही लेकिन इंतजार नहीं। फिर आए देश के पहलवान, जिन खिलाड़ियों ने भारत का तिरंगा दुनिया में लहराया था, उन्हीं खिलाड़ियों ने दिल्ली में न्याय की गुहार लगाई थी।
13: यही दिन देखने के लिए ले गए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो पद्म भूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत मचे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है।
3: सड़कों पर बैठी बेटियां, जमीन पर रखे पदक और टीवी स्क्रीन के सामने बैठा था पूरा देश। जंतर मंतर फिर खबर बन गया था, लेकिन इस बार खबर से ज्यादा एक सवाल बन गया, क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए हर बार सड़क पर बैठना जरूरी है। और अब एक बार फिर जंतर मंतर सुर्खियों में।
14: से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें, हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है।
3: जंतर मंतर सिर्फ धरनों की जगह नहीं है, ये देश के मूड का बैरोमीटर है। जब सरकार और जनता के बीच बातचीत कम होने लगती है तो जंतर मंतर भरने लगता है। यहाँ भाषण कम और बेचैनी ज्यादा दिखाई देती है, यहाँ राजनीति कम और उम्मीद ज्यादा बैठती है। लेकिन दिल्ली में ऐसे कई प्रदर्शन भी हुए हैं जिसका सीधा कनेक्शन तो जंतर मंतर से नहीं था, लेकिन उस आंदोलन की परछाई जंतर मंतर पर नजर आ रही थी। निर्भया की मौत के बाद दिल्ली में गुस्सा सिर्फ सड़कों पर नहीं था, वो हर उस घर में था जहां बेटियों की सुरक्षा को लेकर डर पैदा हो गया था। दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए उस जघन्य अपराध के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने इस गुस्से को एक बड़े जन आंदोलन में बदल दिया। हजारों छात्र, युवा और आम नागरिक हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए थे। इंडिया गेट से लेकर जंतर मंतर तक हर तरफ एक ही सवाल था, आखिर कब तक। लोगों के हाथों में मोमबत्तियां थी लेकिन आवाज में गुस्सा था। प्रदर्शनकारी सिर्फ दोषियों को सजा देने की मांग नहीं कर रहे थे, वो एक ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे थे जहां किसी लड़की को घर से निकलते वक्त डरना ना पड़े। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में शुरू हुआ विरोध धीरे धीरे पूरे देश की बहस बन गया था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शुरू हुआ विरोध दिल्ली के कई इलाकों तक पहुंच गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन हुए, सड़कों पर नारे लगे और जगह जगह लोग इस कानून के खिलाफ अपनी चिंताएं जाहिर करने के लिए जुटने लगे। लेकिन दिल्ली का विरोध सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था। शाहीन बाग में महिलाओं का धरना देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। और इन तमाम आवाजों के बीच जंतर मंतर भी लगातार गूंज रहा था। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जुटे, यहाँ सीए और एनआरसी को लेकर सवाल उठाए गए। दिल्ली उस वक्त सिर्फ विरोध नहीं देख रही थी, दिल्ली नागरिकता, संविधान और देश की पहचान को लेकर एक बड़ी बहस का मंच बन चुकी थी। साल 2020 देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, लेकिन इसी बीच संसद से पास हुए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंच गए थे। सरकार से बातचीत की कोशिश हुई लेकिन बात नहीं बनी, और फिर दिल्ली के बॉर्डर आंदोलन के सबसे दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। कड़ाके की ठंड पड़ रही, बारिश हुई, गर्मी आई, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर वहीं बैठे रहे। आंदोलन की तस्वीरों में सबसे ज्यादा नजर आ रहे थे पुरुष किसान, लेकिन इस आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं थी। किसानों के परिवारों की महिलाएं भी गांवों से निकलकर दिल्ली पहुंची। खेतों में काम करने वाली ये महिलाएं अब राजधानी की सड़कों पर अपने अधिकारों की आवाज उठा रही हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर जहां पुरुष किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, वहीं जंतर मंतर पर महिला किसानों ने मोर्चा संभाल लिया था। और आखिरकार लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया।
15: समाधान चाहते है, ठीक है। किसान वापसी नहीं जाना यहाँ से, सरकार आज सुन ले या 10 दिन में सुन ले।
16: किसाना जैसे मोदी जी ने कानून वापस लिए है, उस बात की खुशी भी है।
17: याद कर रहे हैं वही सारे पल हमारे सामने हैं कि जैसे शुरू किया उस समय इतने टेंट नहीं थे, फिर धीरे धीरे अपने हाथों से टेंट बनाए, सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं भी की, और हमारे बीच में मौसमों का भी रहा, बारिशें हुई, ठंड हुई, सब चीजें देखी। लेकिन आज सभी किसान, क्योंकि जो
18: अंत जीत का श्रेय किसको देंगे आप इस जीत का?
17: मैं समस्त किसान भाई जितने भी हैं जो यहाँ पर हमारे समय समय पर बॉर्डरों पर आते रहे, मैं सभी उन्हें किसान भाइयों को इस जीत का श्रेय दूंगा।
8: जंतर मंतर कई आंदोलन का गवाह रहा। कुछ आंदोलन यहाँ आए, अपनी मांगे रखी और कुछ लौट गए। कुछ ने सरकारों को फैसला बदलने पर मजबूर किया, कुछ आंदोलन इतिहास बन गए और कुछ वक्त के साथ भीड़ में खो गए। लेकिन इस सड़क ने किसी आवाज से ये नहीं पूछा कि वो कितनी बड़ी है, किसकी है और कितने लोग उसके साथ हैं। हर आवाज के लिए यहाँ जगह रही, क्योंकि जंतर मंतर सिर्फ एक प्रदर्शन की जगह नहीं, देश के लोकतंत्र की वो डायरी है जिसमें हर दौर के सवाल दर्ज करता है।
3: यहाँ हर आंदोलन सफल नहीं हुआ, हर मांग पूरी नहीं हुई, हर धरना इतिहास नहीं बना, लेकिन रामलीला मैदान से बोट क्लब तक, इंडिया गेट से जंतर मंतर तक, इस शहर ने हर पीढ़ी को अपनी आवाज उठाने की जगह दी है। और जंतर मंतर आज भी उस आवाज का सबसे पहचान वाला पता है।
0: दिल्ली के दिल में मौजूद जंतर मंतर आज इसकी पहचान धरना प्रदर्शन और आंदोलन की जगह के तौर पर होती है, लेकिन कभी यहाँ पत्थरों से बने विशाल यंत्रों के जरिए सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल को समझा जाता था। करीब 300 साल पहले बनाए गए ये यंत्र बताते हैं कि उस दौर में भारत का खगोल विज्ञान कितना आगे था।
3: भारत की संस्कृति एवं सभ्यता तो पूरे विश्व में विख्यात है। अपनी खोज और आविष्कार के लिए प्राचीन भारत में विज्ञान और खगोल विज्ञान का ज्ञान कितना उन्नत था, इसका एक बड़ा उदाहरण है दिल्ली के दिल में मौजूद ये जंतर मंतर। दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतों के बीच है जंतर मंतर। अपने समय में ये एक अनूठी इमारत थी और आज भी जानकार प्राचीन भारत के वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल कहते हैं।
19: 18वीं शताब्दी में जो खगोल शास्त्री थे उनके बीच में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को और पंचांग निर्माण को लेकर मतभेद थे। उस समय की जो पंचांग सारणियां थी यानी कि जो टेबल थी एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस की वो एक्यूरेट नहीं थी, वो पूर्णतः सही नहीं थी। तो ऐसे में पंचांग निर्माण को लेकर विवाद रहता था। इसी संदर्भ में जयपुर के कछुआ वंशीय एक शासक थे सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, उन्होंने 5 खगोलीय वेदशालाएं बनवाई जिनमें दिल्ली के साथ साथ जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी ये खगोलीय वेदशालाएं बनवाई गई। ये वेदशालाएं उन्होंने 1724 में बनवाई। इनका उद्देश्य ग्रह नक्षत्रों की सही स्थिति बनाना, इनकी जो वास्तुकला है, इनको जो बनाया गया, इनका जो आर्किटेक्चर है वो इस तरह से बनाया गया जिससे कि ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक स्थिति, आकाशीय दृश्य हमें स्पष्ट समझ आ सके और पंचांग निर्माण में सहायता।
20: महाराजा जयसिंह द्वितीय ने संपूर्ण भारत में कुल 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया था जो दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में है। इन सभी वेदशालाओं का निर्माण उस दौर में हुआ जब आधुनिक टेलीस्कोप और कंप्यूटर जैसी तकनीकें मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद खगोल विज्ञानियों ने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को समझने के लिए बेहद सटीक गणनाएं की। जंतर मंतर में समय और ग्रहों की स्थिति को मापने के लिए 13 अलग अलग उपकरणों को स्थापित किया गया है। इनमें से हर यंत्र का अपना अलग महत्व है और हर यंत्र को एक खास वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सम्राट यंत्र। ये करीब 70 फीट ऊंचा और 114 फीट लंबा विशाल ढांचा है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी भी कहा जाता है। सम्राट यंत्र सूर्य रोशनी और उसकी छाया की मदद से समय की गणना करता है, यानी जिस दौर में घड़ी का आविष्कार भी नहीं हुआ था उस दौर में सूर्य की छाया से समय को समझने की कोशिश की जा रही थी। ये यंत्र घंटे, मिनट और सेकेंड तक की सटीक जानकारी देने के लिए बनाया गया था। फिर आता है मिश्री यंत्र जिसे साल के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को निर्धारित करने के लिए खुद महाराजा जयसिंह ने डिजाइन किया था। मिश्री यंत्र को 5 अलग अलग यंत्रों को मिलाकर बनाया गया है। ये यंत्र इस बात को समझने में मदद करता था कि साल का सबसे लंबा दिन कौन सा है और सबसे छोटा दिन कौन सा, यानी आज जिस जानकारी को हम आधुनिक तकनीक और कैलेंडर के जरिए आसानी से जान लेते हैं उसे सदियों पहले इन विशाल पत्थर के यंत्रों की मदद से समझा जाता था। इसके बाद आता है राम यंत्र। महाराजा जयसिंह द्वितीय के दादा राजा राम सिंह के नाम पर बनाए गए इस यंत्र की संरचना भी बेहद अनोखी है। राम यंत्र दो बड़ी बेलनाकार नुमा और एक दूसरे की पूरक इमारतों से बना है। प्रत्येक इमारत के बीच में एक स्तंभ स्थित है और इस स्तंभ के चारों ओर गोलाकार दीवार बनी हुई है और दीवारों और स्तंभ की ऊंचाई इमारत की आंतरिक रेडियस के बराबर है। इसका फर्श लगभग 30 भागों में बांटा गया है। इस यंत्र का उपयोग आकाशीय पिंड, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। जंतर मंतर केवल पत्थरों से बनी कुछ विशाल इमारतें नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का ज्ञान कितना विकसित था।
0: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: और इसी बीच बड़ी खबर है पटना से। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों से मुकदमे वापस लो, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तेजस्वी ने पूरे बिहार में आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने बिहार के सीएम को गुंडा कहा है, साथ ही साथ कहा है कि बिहार के सीएम बिहार पुलिस को भी गुंडा बनाना चाहते हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से चेतावनी दी गई है बिहार के मुख्यमंत्री को, और तमाम जो मुकदमे लगाए गए थे प्रदर्शनकारियों पर उन्हें वापस लेने की चेतावनी दी गई है।
1: हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। और दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है जिसपे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
0: 25 जुलाई तक चले छात्रों के आंदोलन की दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे नई तस्वीर जो आई थी वो बिहार के सीवान से, जहां पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 जैसा अत्याधुनिक हथियार ताना था। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस वालों ने ऐसे अत्याधुनिक हथियार ताने तो सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप यह लगाया कि सीवान में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने AK-47 से सीधी फायरिंग की है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो ये वो तस्वीरें जो जबरदस्त तरीके से वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, उन्हें एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। साफ साफ उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई, इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लिए जाने की जरूरत है। तो ट्वीट किया गया उनकी तरफ से, सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की, AK-47 से भी फायरिंग की गई है। जब सात हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए, तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बार फिर से आज उन्होंने चेतावनी दी है मुख्यमंत्री को, और साफ कहा है कि अगर इन आंदोलनरत छात्रों के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं उन्हें वापस नहीं लिया गया, तो बड़ा आंदोलन बिहार में होगा। इन तस्वीरों और वीडियोस को जारी करते हुए तेजस्वी यादव की तरफ से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है कि कैसे निहत्ते छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान इतने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, अंधाधुंध गोलीबारी की गई। और यह खबर भी बिहार से, ये नीट पेपर लीक के मामले में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शन में शामिल होने के बाद तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया था। पटना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के बाद देर रात में कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। पुलिस का आरोप अब यह है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों को उकसाने और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी तेज प्रताप की तरफ से। वहीं तेज प्रताप के जो वकील हैं उनका दावा यह है कि गिरफ्तारी बिना वारंट के कर दी गई है, FIR बाद में दर्ज की गई है। इस पूरे मामले को लेकर अब बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है।
2: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आज गिरफ्तार कर देखिए कोर्ट में पेश किया गया है, और देर रात 1:15 बजे अब तेज प्रताप यादव को यहां से बेउर जेल भेजा जा रहा है। आज जो पटना के गांधी मैदान में जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में तेज प्रताप यादव भी पहुंच गए थे और गांधी मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज किया है। और उसके बाद तेज प्रताप यादव को अब देखिए जो जजेस आवाज लाकर यहाँ तेज प्रताप यादव को अब पटना के बेउर जेल भेजा जा रहा है। देखिए आप तस्वीरों में साफ तौर पर ये गाड़ी है जिसमें तेज प्रताप यादव है, और सिटी SP की ये गाड़ी है जो आगे पहले निकली है, और तेज प्रताप यादव की गाड़ी ठीक पीछे निकलने वाली है, और उस गाड़ी में तेज प्रताप यादव हैं। आज जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने जो है प्रदर्शन किया CJP के समर्थन में, और पटना के जो राम गुलाम चौक है वहां पर तेज प्रताप यादव ने प्रोटेस्ट किया था और उसी मामले में आज जो है पटना के गांधी मैदान थाने में FIR दर्ज हुआ, जिसके बाद तेज प्रताप यादव को देर शाम पटना के सिटी सेंटर मॉल से गिरफ्तार किया गया।
0: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: सो सॉरी
6: आइए आइए चला

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

करगिल विजय दिवस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, कहा सिर्फ पीओके पर बात होगी, द्रास में शहीदों को राष्ट्र का नमन, प्रधानमंत्री ने वीर जवानों को किया सल्यूट। प्रदर्शन में फायरिंग पर दिल्ली से सीवान तक घमासान, राहुल गांधी ने पैलेट गन पर अमित शाह को चिट्ठी लिखी, पूछा कहां से आया था आदेश, तेजस्वी ने AK-47 से गोली के आरोप लगाए, सीएम को कहा गुंडा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, बोले पूरी निष्ठा से निभाऊंगा जिम्मेदारी, कल संसद में पेपर लीक पर संशोधन बिल। अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में नई एसआईटी का गठन, दो आईपीएस ऑफिसर्स की एंट्री, विजय विश्वास और नील रतन बाहर, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देगी योगी सरकार। और गुजरात में बारिश, बाढ़ से बिगड़े हैं हालात, आप अहमदाबाद, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम भी पानी पानी, अब तक 61 ने गंवाई है जान, हजारों लोग बेघर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दोपहर के 2 बजे हैं और अब बात हम करेंगे प्रदर्शन में गोलीकांड पर घमासान जो मचा हुआ है उसके बारे में, क्योंकि जंतर मंतर से लेकर बिहार के सीवान तक प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग को लेकर एक्शन है। बिहार में जहां तेजस्वी यादव ने पुलिस पर AK-47 से गोली चलाने के आरोप लगाए हैं, वहीं राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर पैलेट गन से गोलियों की बौछार पर गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने चिट्ठी में सवाल उठाए कि पैलेट गन का आदेश आखिर आया कहां से, किसके कहने पर पैलेट गन इस्तेमाल की गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों का प्रदर्शन देश भर से भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिसी एक्शन पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और सियासत भी अब तेज हो चुकी है। सबसे पहले आपको बिहार की तस्वीरें दिखा देते हैं। सीवान की 2 तस्वीरें हैं ये, जहां पुलिस वाले AK-47 ताने हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का आरोप यह है कि 25 जुलाई को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग की थी।
1: जहां हल्के बल प्रयोग से बात बन सकती थी, वहां AK-47 वाले जांबाज पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। जहां छात्रों को समझाया मनाया जा सकता था, वहां बिहार पुलिस ने AK-47 वाला एक्शन करना मुनासिब समझा। तस्वीरें देखिए और देख लीजिए बिहार पुलिस का कारनामा। हर कोई पूछ रहा है, क्या बिहार पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करती है? क्या यही तरीका बचा था बिहार की सीवान पुलिस के पास? दिल्ली में जंतर मंत्र पर CJP के विरोध प्रदर्शन के बाद बिहार के सीवान में भी छात्र गुस्से से भर गए। वो सड़कों पर उतर गए, सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। तस्वीरें 25 जुलाई की हैं। सीवान की मुख्य सड़क पर कई घंटे तक ऐसा बवाल मचा रहा, छात्र मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस लगातार उन्हें पीछे खदेड़ रही थी और हालात काबू में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छात्रों का हुजूम पीछे हटने को तैयार नहीं था। छात्र गुस्से से भरे हुए थे, वो लगातार पथराव कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस भी आंसू गैस के गोले दाग रही थी। इसी प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सीवान पुलिस के अधिकारियों ने अपने AK-47 धारी जवानों को सड़कों पर उतार दिया। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ हाथों में डंडे पत्थर के साथ प्रदर्शनकारी छात्र थे, तो दूसरी ओर AK-47 लेकर पुलिस वाले पहुंच गए। कुछ पुलिस वालों के हाथों में डंडा था, लेकिन AK-47 लिए जवान ने मोर्चा संभाल लिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो बिहार विधानसभा में

0: पुलिस के AK-47 वाले एक्शन को लेकर सियासत तेज है। शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक।
1: और इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, यूरोप के दौरे के बाद तेजस्वी यादव पटना लौटे तो लौटते ही उन्होंने पूरे बिहार में हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार को घेराया। उन्होंने राज्य के अलग अलग जिलों में हुई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि प्रदर्शन के दौरान जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो लगातार हमलावर ने सरकार के ऊपर तेजस्वी यादव उससे पहले भी ट्वीट करके AK-47 का मुद्दा उन्होंने उठाया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो FIR दर्ज की गई है छात्रों के ऊपर, इस पूरे मामले में उन छात्रों को तुरंत ही धाराओं को हटाया जाए और रिहा किया जाए।
2: बिहार के हर एक जिलों में जिस प्रकार से सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की है, कई सैकड़ों हजारों छात्राओं को अभी भी हर जिलों में हिरासत में लेने का काम किया है, गलत धाराएं लगा करके मुकदमा किया है, और कल जब तय हो चुका है कि आंदोलन खत्म हो रहा है तो जितने आंदोलनकारी हैं उन पर से जो है मुकदमा जो है वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को डाला जा रहा है जेलों में। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। और दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है जिसपे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
1: तो तेजस्वी यादव को आपने सुना, और आपको बता दें कि छपरा में कल हुए हंगामे और तोड़फोड़ के बाद सारण पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर उपद्रवियों की सूची जारी की है और लोगों से पहचान करने की अपील भी की गई है। क्योंकि कहा जा रहा था कि अलग अलग जगहों पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था, पुलिस बल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था भीड़ को काबू में लाने के लिए, और इसीलिए कई जगहों पर हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को बिहार के भीतर करना पड़ा था। तस्वीरें आपको बता दें कि फेसबुक पेज पर डाली गई हैं, उपद्रवियों की इन सूचियों को डाला गया है, और साथ ही साथ पुलिस ने जो लोग हैं उनसे अपील की है कि इन तमाम लोगों को, इन चेहरों को पहचानें और पुलिस की हेल्प करें। तो छपरा में जो कल जबरदस्त हंगामा देखा गया था, तोड़फोड़ देखी गई थी, उसके बाद सारण पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन तमाम तस्वीरों को जारी करते हुए लिखा है कि इन लोगों को पहचानने में पुलिस की, प्रशासन की मदद की जाए। तो छपरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको बता दें कि जबरदस्त हंगामे में काफी नुकसान हुआ था, भीड़ को काबू में करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें पेश आई थी प्रशासन और पुलिस को, हल्का बल प्रयोग पुलिस को यहां करना पड़ा था। जबरदस्त हंगामा कल देखा गया था अलग अलग जगहों पर, सिर्फ छपरा या सारण में ही नहीं, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहां कंट्रोल करना इन छात्रों को बहुत ज्यादा मुश्किल में पुलिस के लिए रहा। और अब इन तमाम तस्वीरों को जारी किया गया, तोड़फोड़ करते हुए, हंगामा करते हुए, उत्पात मचाते हुए, इन तमाम तस्वीरों को जारी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस की तरफ से इन लोगों को पहचानने की अपील की गई है, जिससे कि आगे की कार्रवाई में आसानी हो सके। तो जंतर मंतर पर आंदोलन बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन बिहार में जबरदस्त हंगामा अभी भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को गुंडा तक कहा है, AK-47 पर सवाल उठाए, तमाम धाराएं वापस लेने की बात कही है, साथ ही साथ कहा है कि जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को या जिन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है पुलिस उन्हें छोड़े, वरना बड़ा आंदोलन होगा। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ मेरे सहयोगी शशि भूषण जुड़ गए। शशि भूषण, क्या जानकारी मिल रही है? तेजस्वी यादव एक के बाद एक जिस तरह से बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं, और उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें नहीं छोड़ा गया तो बड़ा आंदोलन होगा। दूसरी तरफ पुलिस इन तमाम तस्वीरों को जारी कर रही है और मदद मांग रही है लोगों से कि पहचानने में हेल्प करें जिन्होंने उपद्रव मचाया है, उत्पात मचाया है जबरदस्त तरीके से।
3: सती देखिए पटना में भी जो हिंसा की घटना

0: हुई थी अहिंसा के प्रदर्शन के दौरान, उस दरमियान भी हमने देखा था कि तकरीबन 100 से ज्यादा चेहरों जो उपद्रवी थे उनका उनकी तस्वीरें जारी की गई थी। और अब सारण जिले में जो कुछ हुआ है कल, उसको लेकर के वहां के पुलिस ने जारी की है तस्वीरें। रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव तो इस पूरे घटनाक्रम के खत्म होने के बाद आज ही पटना पहुंचे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उनको ये लग रहा है कि शायद वो चूक गए इस पूरे प्रकरण में। तो अब वो आते आते आनंद फानंद में पहले उन्होंने एयरपोर्ट पे बयान दिया छात्रों के आंदोलन को लेकर के, जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर के, और खासतौर पे जो सिवान में घटना हुई उसको लेकर के वो सम्राट सरकार पे आक्रामक है। इसके बाद वो पटना के उस निजी हॉस्पिटल भी पहुंचे जहां सिवान में जो छात्र घायल हुआ उसका इलाज चल रहा है। तो तेजस्वी यादव को लग रहा है कि शायद थोड़ी देर उन्होंने कर दी, लेकिन अब वो जब आए हैं पटना वापस, बिहार वापस आए हैं, तो वो तुरंत से एक्टिवेट हो चुके हैं। और यही वजह है कि वो ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। हालांकि एक हकीकत, एक पहलू ये भी है शशि, कि बिहार में कल जो अलग अलग जिलों में घटनाएं हुई, वहां जब तक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहा तब तक पुलिस या प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब तोड़फोड़ की घटना होने लगी, चाहे वो भागलपुर में हो, सिवान में हो, सारण के अंदर हो, या फिर समस्तीपुर में हमने देखा, तो फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। तो ये एक जमीनी हकीकत भी है, लेकिन ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्ट था वो सीधे सीधे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड को लेकर के था, और वो इस्तीफा हो चुका है। अब तेजस्वी यादव इसमें एंट्री मार रहे हैं, तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बांकीपुर में विधानसभा चुनाव है यहाँ पे, तो तेजस्वी आए हैं तो अपनी एक्टिविटी
1: को। बहुत शुक्रिया शशिभूषण। शशिभूषण कह रहे हैं क्योंकि देर से पहुंचे तेजस्वी यादव और ताबड़तोड़ उनकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं सरकार के ऊपर, और तमाम सवाल उनकी तरफ से पूछे जा रहे हैं। कल के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जैसा कि शशिभूषण कह भी रहे थे कि जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला था, कई जगह हालात बेकाबू हो रहे थे। खनुआ इलाके में भी पथराव के दौरान पुलिसकर्मी के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं, जिसका एक्सरे आज जारी किया गया है। देखिए जरा, घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए पटना के मेदांता अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन किया है। फिलहाल उनकी स्थिति जो है बेहतर बताई जा रही है, स्थिर बताई जा रही है। तो तमाम सियासत के बीच विपक्ष सरकार को घेरने में अपनी नई रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा है। राहुल गांधी ने तो पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है और जवाब मांगा है।
2: जंतर मंतर पर अब ना तो आंदोलन की तस्वीर दिख रही है, ना आंदोलनकारी दिख रहे हैं, और ना ही वो सुरक्षा घेरा और बैरिकेड्स। अब वहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ, दिल्ली अभी भी उसकी सियासी तपिश महसूस कर रही है। मानसून सत्र शुरू होने के बाद से अब तक विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है, लेकिन अब इस्तीफे के बाद बीजेपी विपक्ष को आईना दिखा रही है। पार्टी खुलकर बतौर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की तारीफ कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश है, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है। अमित शाह ने यह भी लिखा कि मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है, सरकार पेपर लीक के खिलाफ जरूरी सुधारों के लिए कटिबद्ध है, पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिले इसके लिए मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कदमों से नीट परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के साथ पूरा न्याय होगा। अन्य केंद्रीय मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष सरकार को नसीहत दे रहा है और संसद में केंद्र को घेरने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन विपक्ष अभी भी तेवर दिखा रहा है। छात्रों पर 20 जुलाई को हुए एक्शन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। पत्र लिखकर राहुल ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने छात्रों पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया था, घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया। राहुल ने यह आरोप लगाते हुए गृहमंत्री से पूछा कि क्या आपने पैलेट गन या अन्य घातक हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, अगर आपने नहीं दी थी तो किसने दी। पार्टी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी और सवाल करेगी।
3: वी होल्ड मिस्टर अमित शाह डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस दैट हैज टेकन प्लेस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। ही ऑथराइज्ड द शूटिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स। He authorized the use of lethal weapons, pellet guns, on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament.
4: सोमवार को एक बार फिर संसद के मौजूद सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सोमवार को ही केंद्र सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये बिल पेश करेंगे। इसका मकसद सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। बिल पेश होने के बाद वो सदन में इस पर विचार करने और इसे पारित कराने के लिए एक प्रस्ताव भी रखेंगे। 36 दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद सरकार पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर गंभीरता दिखाते हुए सख्त कानून बनाने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हमले जारी हैं।
5: There is still two demands outstanding. The first one and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked.
6: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के शिक्षा को लेकर के और कौन सी शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
4: उधर सरकार ने छात्रों की सभी 3 मांगे मान ली हैं और भरोसा जताया है कि मंगलवार तक लिखित में ड्राफ्ट को साझा भी कर दिया जाएगा। अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: तो 36 दिनों तक सीजेपी आंदोलन के बाद अब काफी कुछ बदल चुका है। सबसे अहम ये कि शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को दे दी गई है। प्रधान के इस्तीफे के साथ ही सीजेपी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन अभी सरकार के सामने चुनौती कम नहीं हुई।
4: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो जंतर मंतर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजा। ऐसे जोश और जश्न के बीच सीजेपी ने ऐलान कर दिया कि अब उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है।
7: तो सभी लोग शांतिपूर्वक अपने घर लौटे, आराम करें, खुशी मनाए और जरूर से उन परिवारों को याद करें जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया। उन लाखों करोड़ों युवाओं के बारे में जरूर सोचिएगा जिनका पिछले कुछ सालों में पेपर लीक ने भविष्य बर्बाद किया है।
4: प्रदर्शन के 36वें दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने एक पोस्ट के जरिए कहा कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया है।
8: ये बस शुरुआत है, बहुत लंबा सफर है, हम लोग सब एक साथ मिलकर देश को भारत बनाएंगे। सारे जो हमारे डिमांड है सब मान लिए गए हैं एंड हम लोग ने इस पीसफुल प्रोटेस्ट को विड्रॉ करने के लिए आग्रह किया।
9: सारी FIRs वापस लिए जाएंगे, सारे FIRs विड्रॉ।
4: इसके साथ ही दिल्ली में जारी सियासी संकट में नया मोड़ आ गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कुर्सी छोड़ी तो चंद घंटे के अंदर उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई। यानी अब तमाम परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने और शिक्षा से जुड़े बदलाव की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी संभालने जा रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।
10: आज उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया है।
11: नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।
12: छात्रों की तीन मांगे थी जिन्हें सरकार ने मान ली है। पहली मांग यह कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, दूसरी मांग थी कि पीड़ित छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले और तीसरी अहम मांग थी प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई ना हो। सोनम वांगचुक ने 24 जुलाई को अपना अनशन तोड़ा था, लेकिन सीजेपी ने सरकार को बता दिया कि जब तक उनकी तीन मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, आंदोलन को शांत करने की कोशिशें जारी थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी 2 बार इस्तीफे की पेशकश की थी, तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब प्रधान ने कहा था कि वो शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व जारी रखेंगे, लेकिन सीजेपी के दबाव का असर दिखा। सूत्रों की माने तो बातचीत के अंतिम दौर से पहले सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी मकसद के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। अभी वो उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। अब आने वाले समय में उनके सामने छात्रों के हित में अहम बदलाव की बड़ी चुनौती है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: उधर कोलकाता में बीते शुक्रवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव के मामले में पुलिस ने एक्शन तेज किया है। इस केस में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले को लेकर लगातार छापेमारी जारी है और जल्द और भी आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।
10: जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे, उसी दौरान 2 दिन पहले कोलकाता की सड़कों पर भी छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब भीड़ उग्र हो गई। जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की गई। छात्रों के प्रदर्शन के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने आंदोलन को हिंसा और उपद्रव का रूप देने की कोशिश की। कोलकाता में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और उपद्रव की कई तस्वीरें सामने आईं। कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए जिन्हें सार्वजनिक रूप से दिखाया नहीं जा सका। इन वीडियो के सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया। अब कोलकाता पुलिस ने उपद्रव फैलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
13: 24 जुलाई को कोलकाता में एसएफआई की रैली के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस मामले में पुलिस ने अब तक लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। 24 जुलाई को एसएफआई की रैली के दौरान कोलकाता के धर्मतल्ला में भारी बवाल हुआ था, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया था, बोतलें फेंकी गई थी और बहुत सारे मीडिया कर्मियों पर हमले हुए थे। मीडिया कर्मियों पर सिर्फ हमले ही नहीं हुए, जो महिला मीडिया कर्मी थी उनके साथ भी बदतमीजी की गई थी। और इसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो मीडिया कर्मी घायल हुए थे अस्पतालों में जाकर उनसे मुलाकात की थी, बातचीत की थी और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था।
10: अब तक जिन आरोपियों को कोलकाता पुलिस ने पकड़ा है उनके नाम है इरफान खुर्शीद, अरशद अली, मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद आलमगीर, इमरान अहमद, खालिद रजा, जमीर अहमद, मोहसिन खान, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद अफरोज, दीपक, मोहम्मद सलमान हुसैन, शहबाज खान और मोहम्मद जहीरुद्दीन।
14: नहीं, यहाँ जो छात्र आंदोलन के नाम पर पथराव हुआ, मीडिया पर्सन्स का ऊपर अटैक हुआ, कैमरा तोड़ा गया, आम आदमी का ऊपर अटैक हुआ है, तो ये कानून का खिलाफ माना जाता है। तुरंत इसका कार्रवाई हुई है। नया जो गुंडा दमन कानून हुआ उसका आधार पर लोगों का और सबका पनिशमेंट भी होगा और कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया गया और पूरी कार्रवाई जारी है, आगे तक चलेगा।
10: कोलकाता पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। इस बीच सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी बड़ा हमला बोला है।
15: शुक्रवार दिन विशेष दिन প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন না শুক্রবার সব ছাড় আছে, ওই শুক্রবারের লোকেরাই করেছে, চিহ্নিত করেছি, চিহ্নিত করেছি, মার্ক করেছি, এদের সঙ্গে নিটের কোন সম্পর্ক নেই। আগের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যিনি এখানে হেরেছেন তিনি বরাবর বলেন না শুক্রবার, শুক্রবার তো ওরা একটু করবে, তাই আজকে সাংবাদিকরা আক্রান্ত হয়েছেন। আমি আপনাকে বলি সব ছাড়ুন, শুক্রবারীরা যারা করেছে চিহ্নিত হয়ে গেছে, কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন, কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন, এদের কি করতে হয় আমি জানি।
16: পুলিশ কে মুতাবিক হিংসা মে শামিল অন্য লোগোঁ কি পহচান করনে কি কোশিশ জারি হ্যায়। वारदात वाली जगह के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कोलकाता से तपस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
1: तो दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद आज शिवसेना और दबगुट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली की है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और सभी मांगे माने जाने के बाद ये रैली आयोजित की गई थी, जिसके जरिए दोनों ही दलों ने छात्रों की जीत से बताया और इस रैली को आयोजित किया। इस रैली में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, रोहित पवार, आदित्य ठाकरे सभी शामिल हुए और जश्न के रूप में इस रैली को आयोजित किया गया था। और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसे, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
18: डायरेक्शंस होम,
19: ओके, एट द नेक्स्ट लाइट टर्न लेफ्ट।
18: व्हाट अ डे,
19: यू मिस्ड एंटरिंग द 66 एक्सप्रेस आउटसाइड द बेल्टवे, रीरूटिंग।
18: ट्रैफिक कांट बी दैट बैड, राइट?
19: ओके, sending a text to your wife that you'll be late.
18: Oh, no. Take me the quickest way home.
20: The 66 Express outside the Beltway was expressly built to save you time. Visit ride66express.com to plan your trip.
21: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
22: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
21: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
22: They score!
21: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
23: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: In association with
8: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: In association with
10: भारत
11: Tunein's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
13: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: In association with
8: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को RDX रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर।
15: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
16: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

गिल विजय दिवस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, कहा सिर्फ पीओके पर बात होगी, द्रास में शहीदों को राष्ट्र का नमन, प्रधानमंत्री ने वीर जवानों को किया सल्यूट। प्रदर्शन में फायरिंग पर दिल्ली से सीवान तक हमासा, राहुल गांधी ने पैलेट गन पर अमित शाह को लिखी चिट्ठी, पूछा कहां से आया आदेश, तेजस्वी ने AK-47 से गोली का लगाया आरोप, सीएम को कहा गुंडा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, बोले पूरी निष्ठा से निभाऊंगा जिम्मेदारी, कल संसद परिसर में पेपर लीक पर संशोधन बिल। अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में नई एसआईटी का गठन, दो आईपीएस ऑफिसर्स की एंट्री, विजय विश्वास और नील रतन बाहर, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देगी योगी सरकार। और गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़ गए हालात, अहमदाबाद, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम में भी पानी, अब तक 61 ने गवाई जान, हजारों लोग बेघर।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच कई राज्यों में मुसीबत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आफत है गुजरात में। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अहमदाबाद में स्थिति बड़ी गंभीर बताई जा रही है। जिले के कई इलाकों में पानी ही पानी है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो अलग अलग
1: शहर के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें डटी हुई हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की हैं, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। इसके बाद संकट के बीच एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए एसडीआरएफ के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं।
2: हम लोग यहाँ पर बावड़ा में हैं और ये गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें करीब कल की स्थिति में 900 जितने लोग फंस गए थे। अंदर 40 से 50 कंपनियां हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर अंदर जो जरूरी सामान था वो सब भी पहुंचवा दिया था। कल अभी तक 900 में से 500 जितने लोगों को बचा भी लिया गया है, बाहर ला दिया गया है। आर्मी की टीमें, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है।
1: अहमदाबाद के इस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी हो रही है।
2: बाहर आने वाले लोग बता रहे हैं कि अंदर का जो पानी की स्थिति है वो कम से कम 6-7 फीट जैसी है, तो इसलिए बोट भी या कोई और ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है। पर धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है और कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअलिटी ना हो, जो अभी तक कहीं से ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तमाम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अंदर रहें, इंडोर्स रहें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सूचना है समय समय पर उसका पालन करें।
1: अहमदाबाद शहर पर आसमानी आफत का हमला हुआ तो भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी हैं। सेना के जवानों के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।
3: रेस्क्यू की कामगिरी चालू है। कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है, तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले हैं और आज के टाइम में आज भी 70-80 आदमी हमने बाहर निकाले।
1: हालांकि भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी काफी ज्यादा भर गया है, जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है।
4: अभी हम जो है बोट से अंदर जब देख के आए तो लगभग कुछ विस्तार में लगभग 10 फीट के आसपास भी पानी है, और लेकिन जिन जिन लोगों को हम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और बाकी 500 लोगों को हमने लोकेट कर चुके हैं और उन लोगों को भी धीरे धीरे हम रेस्क्यू कर पाएंगे जो है। और आपके मार्फत मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहाँ पे तैनात हैं और हमारे पास 3 SDRF की टीम है, NDRF की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है और सभी टीम जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो है हमने कम से कम 4 से 5 टीम यहाँ लगा रखी है, उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है और आज शाम तक जो है हम काफी कुछ जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा अभी हमारा असेसमेंट है।
1: इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है, ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी आज तक।
0: तो सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई शहरों में बारिश इन दिनों मुसीबत बनकर आई है। भारी बारिश के चलते अब तक गुजरात के 56 लोगों की जान जाने की खबर है। सबसे ज्यादा 21 मौत हुई है नवसारी जिले में।

0: भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। सैलाब शहरों तक पहुंच गया है। कई शहरों में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और मुसीबत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में हाल बेहद बुरा है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। भारी बारिश के बाद मलबा बहकर सड़कों पर आ गया है। कई जगहों पर रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के कई शहर भारी बारिश से बेहाल हैं। हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मौसम की मार के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। एक दिन पहले वलसाड़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी उफान पर है, पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही है। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगी।
1: अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये भी वलसाड़ है, गुजरात का वलसाड़। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान हैं। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड़ की है। शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुवन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमन गंगा नदी में 2,59,724 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया।
2: मैं इस वक्त वलसाड़ जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देखकर आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
1: अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए, जहाँ मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में हुई। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रंग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के बारे में, जहां असम में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है, जबकि 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
0: असम में बाढ़ का कहर, बारिश और सैलाब से जनजीवन बेहाल, कई जिलों में हालात गंभीर। आसमानी आफत का असर अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, पूर्वोत्तर में भी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। असम के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। असम बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, कामरूप, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कामरूप, कार्बी, आंगलोंग और तिनसुकिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घरों के अंदर पानी भर चुका है,
1: सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं और कई जगहों पर आवाजाही बंद हो गई है। पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कई परिवार अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की मार सिर्फ लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है, बल्कि इसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ा है। असम में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने का खतरा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। असम में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 3,75,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव में 1,86,000 और जोरहट में 1,15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। घरों से लेकर खेतों तक पानी भर चुका है। राज्य की कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग नदी, शिवसागर की किखोर और देसांग नदी, गोलाघाट की धनसिरी और श्रीभूमि की नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। शिवसागर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश ने असम की राजधानी गुवाहाटी की रफ्तार भी थाम दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें गुवाहाटी के एक पेट्रोल पंप की है, जहां पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर दुकानों, बैंकों और बाजारों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उफनती नदियां गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन रही है, तो दूसरी तरफ शहरों में जल निकासी की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश और बाढ़ के इन हालातों में सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: और उधर पहाड़ों पर भी आसमान से आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें बह चुकी हैं, तो कहीं फ्लैश फ्लड लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है।

0: पहाड़ों पर बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि जिंदगी और सफर दोनों मुश्किल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक कुदरत के कहर की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कहीं हाईवे मलबे में दब गए हैं, कहीं गांवों में पानी घुस गया है और कहीं मौत बनकर टूटे पहाड़ों ने लोगों की जान ले ली है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर लगातार लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन की घटनाएं सामने आ रही हैं। मुगल रोड पर भी भूस्खलन के चलते आवाजाही प्रभावित हुई है। हिमाचल के चंबा, कांगड़ा और राजौरी में बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कई जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं, जबकि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। रामसू इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। कई दिनों तक बारिश से हुई रॉक स्लाइड और मड स्लाइड के कारण हाईवे पर आवाजाही बाधित रही। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक बहाल किया गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आज भी कई जगह शूटिंग स्टोन और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई, जिससे हाईवे पर सफर करना जोखिम भरा बना हुआ है। भारी बारिश का असर जम्मू कश्मीर की वैकल्पिक लाइफलाइन कही जाने वाली मुगल रोड पर भी दिखाई दे रहा है। पीर की गली से लेकर पोशाना तक कई जगह लैंडस्लाइड हुआ, कहीं पहाड़ से मलबा गिरा तो कहीं पेड़ उखड़कर सड़क पर आ गए। हालात ऐसे बने कि कई वाहन सड़क के दोनों तरफ फंस गए। प्रशासन ने बीआरओ की मदद से मलबा हटाने का अभियान शुरू किया है। मुगल रोड दक्षिण कश्मीर के शोपियां को जम्मू संभाग के पुंछ से जोड़ती है और भारी बारिश के बीच इस मार्ग पर लगातार नजर रखी जा रही है। लगातार बारिश और खराब मौसम के बावजूद बीआरओ की 79 RCC प्रोजेक्ट संपर्क टीम सड़क को चालू रखने में जुटी है। पीर की गली और पोशाना के बीच कई लैंडस्लाइड के बाद भी जवान और मशीनरी 24 घंटे तैनात है। बीआरओ ने सड़क को चालू रखा है, हालांकि यात्रियों को सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में भी बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। ओवरफ्लो हुए नालों और फ्लैश फ्लड की वजह से पानी खेतों और बागानों तक पहुंच गया। कई इलाकों में खड़ी फसलें और सेब के पेड़ खराब हो गए हैं। किसानों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में लगातार बारिश के बीच एक मकान गिर गया। भट्टिया गांव में हुए हादसे में 45 वर्षीय शाहिदा परवीन की मौत हो गई, जबकि उनके पति अब्दुल रहमान और बेटे तौफीक रहमान घायल हो गए। तीनों को राजौरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नागरोटा सूर्या के गज नदी क्षेत्र में फ्लैश फ्लड के दौरान एक ट्रैक्टर पानी में फंस गया। ट्रैक्टर पर सवार ड्राइवर समेत 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ये लोग नदी क्षेत्र में अवैध खनन कर रहे थे, जबकि मानसून के दौरान यहां खनन प्रतिबंधित है। ये डराने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर की है। खड़मुख इलाके में NHPC परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते ही देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। गनीमत रही कि जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ, वहां कोई वाहन या व्यक्ति मौजूद नहीं था। चंबा के जनजातीय इलाके पांगी में बारिश ने एक परिवार को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया। कुड्डू नाला के पास पहाड़ से अचानक भारी मलबा गिरा, जिसकी चपेट में एक कार आ गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
1: जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहां मार्ग में उदयपुर के आगे कुड्डू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई, जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहां पर बच पाए हैं।
0: चंबा के सांच पास इलाके में भी मौसम ने भारी तबाही मचाई। बादल फटने के बाद सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थ नाला के पास सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर बहाली के काम में जुटी हैं। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के बीच टिहरी से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें सियालू पुल के पास की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद मलबा सड़कों पर आ गया था और गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी। उसके बाद JCB की मदद से इस मलबे को हटाया गया और रास्ते को खोलने का काम लगातार जारी है। तो ज्यादा मुश्किलें इसलिए भी होती है कि लगातार लैंडस्लाइड के बाद उस आपदा वाली जगह तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किलें प्रशासन को आती हैं और ऐसे में SDRF, NDRF, लोकल प्रशासन लगातार देवदूत बनकर अलग अलग जगहों पर काम में जुटा हुआ है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम, बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
5: सॉरी
6: आइए आइए चला आइए पाइए पाइए सीईओ की नौकरी पाइए आइए आइए

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिवस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा सिर्फ पीओके पर होगी बात, द्रास में शहीदों को राष्ट्र को नमन, प्रधानमंत्री ने वीर जवानों को किया सैल्यूट। प्रदर्शन में फायरिंग पर दिल्ली से सीमांत तक घमासान, राहुल गांधी ने पैलेट गन पर अमित शाह को लिखी चिट्ठी, पूछा कहां से आया आदेश, तेजस्वी ने AK-47 से गोली का लगाया आरोप, सीएम को कहा गुंडा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, बोले पूरी निष्ठा से निभाऊंगा जिम्मेदारी, कल संसद में पेपर लीक पर संशोधन बिल। अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में नई एसआईटी का गठन, दो आईपीएस अधिकारियों की एंट्री, विजय विश्वास और नील रतन बाहर, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देगी योगी सरकार। और गुजरात में बारिश के बाद बाढ़ से बिगड़े हालात, अहमदाबाद, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम भी पानी पानी, 61 लोगों की गई जान, हजारों लोग बेघर।

गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नवसारी में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए राहत और बचाव दल पूरी तरह से जुटा हुआ है। केंद्रीय मंत्री सीआर पांडे ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। अहमदाबाद में सेना की रेस्क्यू टीम अलर्ट पर, लगातार लोगों को बचाने का काम भी जारी है। अहमदाबाद में बाढ़ के बीच में लोगों को सतर्क रहने की सलाह है। घरों में फंसे हुए लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। डांग जिले में हुई भारी बारिश के बाद अब भूस्खलन जारी है। पर्यटकों को जानकारी लेकर ही आगे जाने का निर्देश भी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर दिखा। लैंडस्लाइड से मुगल रोड बंद, कई वाहन फंसे हुए दिखाई दिए। भूस्खलन से मुगल रोड पर यातायात हुआ प्रभावित। सड़क पर गिरे पेड़ और मलबा हटाने में अब टीमें जुटे दिखी। मुगल रोड पर लगातार बारिश के बाद भूस्खलन, कई जगहों पर मलबा गिरा दिखा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आई बाढ़, दरहाली अट्टी इलाके में नुकसान हुआ है। बारिश के चलते दिल्ली में बढ़ा यमुना का भी जलस्तर। पुराने लोहे के पुल और आसपास के निचले इलाकों में प्रशासन की निगरानी। प्रहलाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार। प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कामकाज भी किया शुरू। प्रहलाद जोशी से पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्री मिले हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से प्रहलाद जोशी को यह जिम्मेदारी दी गई। धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को शिक्षा

संरक्षण, पौधरोपण को बढ़ावा देने की अपील की। एक पेड़ माँ के नाम अभियान से पर्यावरण संरक्षण को गति भी। पीएम मोदी बोले कि जल और प्रकृति बचाना हमारी जिम्मेदारी। मन की बात में पीएम मोदी ने की आत्मनिर्भर भारत की चर्चा। आईएनएस महेंद्र गिरी और रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाई। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन, बोले कि देश वीर जवानों के शौर्य को रखे गया। देश भर में लोगों ने सुना पीएम मोदी की मन की बात का कार्यक्रम। बांकीपुर उपचुनाव के कार्यक्रम के से पहले बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी संबोधन सुना। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जान से मारने की उनको धमकी, दो नंबर से कॉल आया। कॉल करने वालों ने पहले गालियां दी, फिर बाद में जान से मारने की धमकी दी। पटना के पाटलिपुत्र थाने में दर्ज हुई शिकायत। तेज प्रताप यादव की बढ़ी मुश्किलें, गांधी मैदान थाना केस में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले जेडीयू अध्यक्ष संजय झा, कहा कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बना, शिक्षा सुधारों का असर अब दिखाई देगा। बांकीपुर उपचुनाव पर संजय झा का दावा कि पटना का हार्ट है ये सीट और विकास के दम पर ही होगी जीत। बांकीपुर उपचुनाव पर प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप, बोले कि जीविका दीदियों का हो रहा चुनाव में इस्तेमाल, 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो धरना दे देंगे। तेज प्रताप की गिरफ्तारी और सीजेपी आंदोलन पर प्रशांत किशोर का बयान, कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी, सरकार के खिलाफ लड़ाई को समर्थन है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज, आगरा दौरे पर सीएम योगी ने जंतर मंतर प्रदर्शन का किया जिक्र, सतर्क रहने की भी अपील। आगरा में सीएम योगी का बड़ा बयान, भारत की प्रगति से कुछ लोग खुश नहीं है, समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश। सीएम योगी की अपील, शिक्षक संस्थान और विश्वविद्यालय राष्ट्रभक्ति का केंद्र बने, इनोवेशन और रिसर्च के केंद्र भी। छात्र आंदोलन पर बिहार में सियासत, तेजस्वी यादव ने पुलिस पर एक के 47 से फायरिंग का आरोप लगाया। सिवान की तस्वीरों पर विवाद, तेजस्वी यादव बोले कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने एक के 47 तानी फायरिंग भी की। छात्र आंदोलन पर घमासान, तेजस्वी यादव ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। बिहार लौटते ही तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, सीएम को बताया सड़क छाप गुंडा, छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव का सरकार को अल्टीमेटम, कल तक छात्रों के केस वापस लें नहीं तो पूरे बिहार में करेंगे आंदोलन। मैनपुरी से सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला, बोले 2017 से पहले नौकरी में योग्यता नहीं, चेहरा और पैसा चलता था। सीएम योगी का आरोप, सपा राज में गुंडों से लेकर लोगों का उन्होंने जीना हराम कर दिया था, व्यापारी तो निवेश से डरते थे। सीएम योगी बोले जीरो टॉलरेंस नीति से इटावा मैनपुरी में संगठित अपराध की हमने कमर तोड़ी, प्रदेश में माफिया मुक्त हुआ। ट्रस्ट के महासचिव पद छोड़ने के बाद से चंपत राय का आध्यात्मिक संकल्प, देवोत्थान एकादशी तक अयोध्या में साधना करेंगे। चंपत राय ने चतुर्मास साधना शुरू की है और 4 महीने तक अयोध्या में रहकर राम भक्ति करेंगे, मौन व्रत भी और मंत्र जाप भी करेंगे। आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल की भव्य सजावट, पीएम मोदी ने सेना के वीरों को किया। रक्षा मंत्री ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, ऑपरेशन विजय के शहीदों के बलिदान को किया याद। जोजिला में सेना के जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैनिकों का उन्होंने हौसला बढ़ाया। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री का पाकिस्तान को संदेश, आतंक और आतंकियों को पालने वालों में अब कोई फर्क नहीं करेगा भारत। द्रास से पाकिस्तान को रक्षा मंत्री की दो टूक, आतंकवाद पर नहीं बदलेगा भारत का कोई रुख, पीओके पर ही होगी बात। ईरान के समुद्री नाकेबंदी के बीच में यूएस सेंटकॉम का बड़ा एक्शन टैंकर निष्क्रिय करने का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया एक वीडियो, लिखा कि चेतावनी नहीं मानी गई तो कार्रवाई होगी। अरब सागर में बढ़ा दावा तनाव, यूएस सेंटकॉम का बड़ा दावा, ईरान की नाकेबंदी अभी भी लागू है, 12 व्यावसायिक जहाजों ने अपना रास्ता बदला है। ईरान समर्थित होते विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया, सऊदी हवाई हमलों को जवाबी हमला बताया। सऊदी सिविल डिफेंस का बड़ा बयान, कहा कि यनबू और जिजान में कई बार सायरन बज रहे हैं, हमलों पर कुछ नहीं कहा गया। जम्मू कश्मीर में पूरे जोश के साथ अमरनाथ की यात्रा जारी है, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश आ गया। भगवती नगर यात्री निवास से 19वां जत्था रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल रास्ते से यात्रा जारी है। जम्मू कश्मीर के

0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर मरम्मत और रेस्टोरेशन के काम का रिव्यू उन्होंने किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात करने का निर्देश दिया। यात्रियों के साथ मौसम का रियल टाइम अपडेट्स शेयर करने के लिए भी कहा। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर पूरी होगी यात्रा। गोंडा में दर्दनाक हादसा, मां की 13वीं पर आई बेटी और मासूम बेटे को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत। अलवर में सड़क हादसे में एएसआई की मौत, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। बिजनौर में प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका ने दी जान, जाति विवाद के चलते रिश्तों में आई थी दरार। चित्रकूट गैंगरेप केस में पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोला मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिमला में कैटल मार्च, सीएम सुक्खू ने युवाओं के समर्थन में ये सारा वो भी मार्च में हुए शामिल, शपथ भी दिलाए। ग्रेटर नोएडा की एलडीगो सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, एसटीपी टैंक की सफाई के दौरान कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड की दम घुटने से मौत हो गए। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों का आतंक, इंदिरा नगर में किराना व्यापारी के घर पर डकैती, परिवार पर जानलेवा हमला भी। सहारनपुर में दुष्कर्म, दोषियों को 10 साल की सजा, अदालत ने लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना, 7 साल पुराने मामले में फैसला। सहारनपुर में दहेज हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, पत्नी को जहर देकर मारने का आरोप, पुलिस ने भेजा जेल। चित्रकूट में गैंगरेप आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी घायल, अस्पताल में भर्ती। कारगिल में पुलिस की तत्परता से बची युवती की जान, फोन पर बहस के बाद युवती ने सुरम नदी में लगा दी छलांग, रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। कारगिल में नदी में कूदी एक युवती का ड्रामेटिक रेस्क्यू हुआ, तेज बहाव वाली सुरम नदी से पुलिस और प्रशासन की टीम ने निकाला सुरक्षित। अमरावती में फूड पॉइजनिंग से 40 बच्चे बीमार, आदिवासी आश्रमशाला में खाना खाने के बाद से बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में ला जा रहे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ, प्रागपुरा फ्लाईओवर पर बड़े कंटेनर से एक बाइक जा टकराई और पति पत्नी की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में बाया नदी में बड़ा हादसा हुआ, नहाने गए 4 किशोरों में 3 की डूबने से मौत, 1 की जान बचा ली गई। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह ने जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह, पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मेजबान स्कॉटलैंड के आरोन कुलेन को 5-0 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाज लवलीना उनको जो है सेमीफाइनल में पहुंची और उनका एक पदक तो पक्का हुआ। जिम्बाब्वे को 90 रनों से हराकर टीम इंडिया ने जीती टी20 मैचों की सीरीज श्रृंखला में, भारत अब 2-0 से आगे। भारत के अनाहत सिंह बने जूनियर स्क्वाश वर्ल्ड चैंपियन, फाइनल में मिस्र की रुकैया को हराया। विश्व जूनियर स्क्वाश में भारत का ऐतिहासिक स्वर्ण, अनाहत सिंह ने फाइनल में 3-0 से जीत कर इतिहास रचा। सितंबर अक्टूबर वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज से बिना स्टार खिलाड़ियों के ही उतरेगी टीम इंडिया, बीसीसीआई चुनेगी अलग टीम। कुल 8 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं होंगे उपलब्ध, और इस सूची में श्रेयस अय्यर, बुमराह, ईशान किशन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल। एक ही समय आयोजित हो रहे हैं 2 टूर्नामेंट, 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारत वेस्ट इंडीज सीरीज, एशियन गेम्स में 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी क्रिकेट प्रतियोगिता। टी20 सीरीज के बीच में टीम इंडिया को मिला एक खास निमंत्रण, हरारे में इंडिया हाउस में भारत के राजदूत महामहिम ब्रह्म कुमार ने टीम के साथ खास मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर और अंतरिम मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण को किया गया सम्मानित, बीसीसीआई ने इस खास मुलाकात की तस्वीरें की शेयर। अब खबर बिहार से। बिहार के सीवान में शनिवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाले AK-47 ताने हुए नजर आए, जमकर वहां पर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों के पथराव में एसपी पूरन कुमार झा भी घायल हुए और इसी दौरान पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लिया, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव हमलावर है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने AK-47 से फायरिंग की है।
1: जहां हल्के बल प्रयोग से बात बन सकती थी, वहां AK-47 वाले जांबाज पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। जहां छात्रों को समझाया मनाया जा सकता था, वहां बिहार पुलिस ने AK-47 वाला एक्शन करना मुनासिब समझा। तस्वीरें देखिए और देख लीजिए बिहार पुलिस का कारनामा। हर कोई पूछ रहा है, क्या बिहार पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करती है? क्या यही तरीका बचा था बिहार की सीवान पुलिस के पास? दिल्ली में जंतर मंत्र पर CJP के विरोध प्रदर्शन के बाद बिहार के सीवान में भी छात्र गुस्से से भर गए। वो सड़कों पर उतर गए, सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। तस्वीरें 25 जुलाई की हैं। सीवान की मुख्य सड़क पर कई घंटे तक ऐसा बवाल मचा रहा, छात्र मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस लगातार उन्हें पीछे खदेड़ रही थी और हालात काबू में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छात्रों का हुजूम पीछे हटने को तैयार नहीं था। छात्र गुस्से से भरे हुए थे, वो लगातार पथराव कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस भी आंसू गैस के गोले दाग रही थी। इसी प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सीवान पुलिस के अधिकारियों ने अपने AK-47 धारी जवानों को सड़कों पर उतार दिया। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ हाथों में डंडे पत्थर के साथ प्रदर्शनकारी छात्र थे, तो दूसरी ओर AK-47 लेकर पुलिस वाले पहुंच गए। कुछ पुलिस वालों के हाथों में डंडा था, लेकिन AK-47 लिए जवान ने मोर्चा संभाल लिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पुलिस को घेरा, साथ ही सम्राट सरकार पर भी हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की, AK-47 से भी फायरिंग की गई। उन्होंने CM पर हमला बोलते हुए कहा कि जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए, तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। तेजस्वी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है।
2: दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है जिसपे खुद 7 हत्या के मुकदमे है, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई, 3 जो सुवान के जो छात्र हैं वो घायल, और हर जगह से ये खबरें आ रही है कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है, लोगों पर लाठियां बरसाई है, लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है।
1: सीवान में पुलिस के AK-47 वाले एक्शन को लेकर सियासत तेज है। शशिभूषण कुमार, पटना आज तक।
0: छपरा में कल हुए हंगामे और तोड़फोड़ के बाद सारण पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर उपद्रवियों की एक सूची जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि आप इनको पहचानिए, इनकी तस्वीरें साझा की गई हैं, हम वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। इस पोस्ट में वो तस्वीरें साफ साफ दिख रही हैं। लोगों से अपील की गई है कि इनके बारे में जो भी जानकारी लोगों को हो वो तो वो बताएं। और पत्थरबाजी इन्होंने पुलिस पर की और उपद्रवियों की पहचान करने की लोगों से अपील की गई है। कल छपरा में प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाले भी घायल हुए। मुस्लिम बहुल खनुमा इलाके में पथराव के दौरान रेविलगंज में BDC रितेश कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सिर में चोट लगी, उनका एक्सरे सामने आ चुका है और घटना के बाद कल उन्हें इलाज के लिए पटना के ही मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन किया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यूरोप के दौरे के बाद से तेजस्वी यादव पटना लौटे, तो लौटते ही उन्होंने पूरे बिहार में हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने राज्य के अलग अलग जिलों में हुए पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं और कहा कि प्रदर्शन के दौरान जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। एक तरफ हमने अभी थोड़ी देर पहले खबर आपको बताई थी जहां पुलिस उपद्रवियों को ढूंढ रही है सारण में, दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे दर्ज हुए उन मुकदमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
2: बिहार के हर एक जिलों में जिस प्रकार से सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की है, कई सैकड़ों हजारों छात्राओं को अभी भी हर जिलों में हिरासत में लेने का काम किया है, गलत धाराएं लगा करके मुकदमा किया है और कल जब तय हो चुका है कि आंदोलन खत्म हो रहा है तो जितने आंदोलनकारी हैं उन पर से जो है मुकदमा जो है वापस लिया जाएगा, लेकिन बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को डाला जा रहा है जेलों में। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। और दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है जिस पे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
0: कारगिल की चोटियों पर 27 साल पहले लिखी गई जीत की इबारत आज फिर से गूंज उठी। द्रास में शहीदों को नमन किया गया, वीरता को सलाम किया गया और उसी रणभूमि से पाकिस्तान को एक संदेश भी गया। भारत शांति चाहता है, लेकिन हर दुस्साहस का जवाब अब पहले से ज्यादा कड़ा होगा। आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट।
3: करगिल वार मेमोरियल, जहां तिरंगे की छाव में अमर जवानों के नाम आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर दर्ज हैं। 27वें करगिल विजय दिवस पर यही स्मारक एक बार फिर पूरे देश की श्रद्धा और सम्मान का केंद्र बना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास वॉर मेमोरियल पहुंचकर ऑपरेशन विजय के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए, वीर जवानों को सलामी दी गई और उनके परिजनों का सम्मान किया। करगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया और उनकी शहादत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश भी दिया। द्रास में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब भारत आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वाली सरकार के बीच कोई अंतर नहीं करेगा। साथ ही पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर भी भारत का रुख साफ कर दिया।
4: पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया।
3: द्रास की धरती से रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना लिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ अब दुनिया से छुपा नहीं है।
4: साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है।
3: करगिल की रणभूमि से दिया गया ये संदेश साफ है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति पहले से अधिक सख्त और स्पष्ट है। पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने की हर कीमत उसे चुकानी है। भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेगा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी पूरी दृढ़ता के साथ जारी रहेगी।
5: आज 27वें विजय दिवस पर उन देश के शहीदों को करगिल वार मेमोरियल, जो कि द्रास में बना है, श्रद्धांजलि देने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। राजनाथ सिंह के साथ साथ सेना के कमांडर और इस युद्ध में शहीद हुए उन परिवारजनों के सदस्य भी शामिल हुए, जिन्होंने करगिल लड़ाई के दौरान देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया था। अशरफानी, आज तक।
0: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
9: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
12: Swing and a foul out of play off to the left.
11: Big 12 Radio.
13: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
11: Talk Sport.
14: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
11: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
15: Trick Savari, Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंड बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
0: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
4: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
5: सवारी शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंड बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

कारगिल विजय दिवस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा सिर्फ पीओके पर होगी बात, द्रास में शहीदों को किया नमन, प्रधानमंत्री ने भी वीर जवानों को किया सल्यूट। प्रदर्शन में फायरिंग पर दिल्ली से सीमांत तक घमासान, राहुल गांधी ने पैलेट गन पर अमित शाह को लिखी चिट्ठी, पूछा कहां से आया आदेश, तेजस्वी ने के 47 से गोली का लगाया आरोप, सीएम को कहा गुंडा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, बोले पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाऊंगा, कल संसद में पेपर लीक पर संशोधन बिल। अयोध्या चढ़ावा चोरी की जांच में नई एसआईटी का गठन, दो आईपीएस अधिकारियों की एंट्री, विजय विश्वास और नील रतन बाहर, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देगी योगी सरकार। और गुजरात में बारिश के बाद बाढ़ से अब बिगड़े हालात, अहमदाबाद, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम में भी पानी, अब तक 61 ने गंवाई जान, हजारों लोग बेघर।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। वो 36 दिन भारतीय राजनीति के लिए एक नया चैप्टर है। सरकार के खिलाफ आंदोलन का नया पन्ना है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिन आंदोलन, टकराव, नारेबाजी, लाठीचार्ज, बातचीत और आखिरकार मांगों पर सरकार का झुकना। छात्र आंदोलन की इस पूरी कहानी में आए ऐसे मोड़ हैं जिन्होंने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। अभिजीत दिपके से लेकर सोनम वांगचुक तक, छात्रों पर कार्रवाई से लेकर सरकार के साथ बातचीत तक, हर दिन आंदोलन ने बिल्कुल नया रंग लिया। आखिर इन 36 दिनों में ऐसा क्या हुआ? कौन कौन इस आंदोलन के साथ जुड़ा? कब सरकार पर दबाव बढ़ा और कैसे आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचा? आइए आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं जंतर मंतर आंदोलन के उन 36 दिनों की पूरी कहानी।
1: तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी अपने घरों से निकलिए, आइए जंतर मंतर।
2: हमारी प्राइमरी डिमांड जो है, जिसे हम पीछे नहीं हटने वाले, दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर।
1: ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दिखते या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है।
3: फ्रेंड्स, जंतर मंतर आंदोलन का 36वां दिन, जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आती है, जंतर मंतर पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी और उसकी अगुवाई में जंतर मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारियों की यही मांग थी, यही जिद थी। लोग तख्तियां लेकर खड़े थे, नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, और जैसे ही इस्तीफा होता है, जंतर मंतर के मंच पर प्रदर्शनकारी एक दूसरे के गले लगने लगते हैं, खुशी से उछलने लगते हैं और जीत का ऐलान करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके माइक थामते हैं और कहते हैं कि उनका आंदोलन सफल हुआ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहे।
4: सल्यूट, सल्यूट। दोस्तों, इस्तीफे नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे FIR भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
3: शनिवार दोपहर 2:18 पर धर्मेंद्र प्रधान दो सफेद पन्नों पर 575 शब्दों के इस्तीफे में कहते हैं कि वो पिछले 10 दिनों से छात्र आंदोलन में जो कुछ हुआ उससे दुखी थे। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जंतर मंतर के मंच पर कॉकरोच जनता पार्टी सरकार से अपनी सभी शर्तों को मनवाने की बात कहती है, और तो और अभिजीत दिपके दिल्ली पुलिस के अफसरों को भी चैलेंज करते हैं।
1: इस्तीफा हो गया है लेकिन हमारी दो और मांगे, दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तो तुम लोग क्या हो।
3: आंदोलन का 36वां दिन गवाह बन रहा था। जंतर मंतर पर डटे प्रदर्शनकारियों की जीत का, उनकी मांगों के आगे सरकार के झुकने का, फिर अभिजीत देव के जंतर मंतर के मंच से फिल्म मुन्ना भाई MBBS का डायलॉग बांटते हैं।
1: मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सुबह हो गई मामो, सुबह हो गई मामो, सुबह हो गई है, डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है, और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है।
3: पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और फिर सरकार CJP की सभी तीनों मांगे मान लेती है। CJP प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच बातचीत के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, जितेंद्र सिंह और CJP के प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका बताते हैं कि सारी मांगे मान ली गई हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जंतर मंतर आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया जाता है।
5: जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें।
3: CJP की जिन 3 मांगों को सरकार ने माना है उनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। नीट पेपर लीक के चलते जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। प्रदर्शनकारियों और छात्रों पर दर्ज मुकदमे FIR वापस होंगी।
6: देखिए, हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट है कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है, एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड थे, कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड नहीं थे, जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी, जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था, एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसी कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे, एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड एक्सेप्ट हुए।
3: भले ही 36 दिन तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा प्रूफ बने रहे, लेकिन छात्रों की जिद ने न सिर्फ सरकार पर दबाव बनाया, अपनी मांगे बनवाई, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही CJP ने आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया। आज तक ब्यूरो।
0: जंतर मंतर, जहां से उठने वाले आवाज सीधे सत्ताधीशों और सत्ता प्रतिष्ठान के कानों तक पहुंचती है, जंतर मंतर आज लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। इस मंच ने इतिहास के कई ऐसे आंदोलनों को आवाज दी जिन्होंने देश की राजनीति और समाज को नई दिशा दी और कई नायक भी दिए।
2: हमारी प्राइमरी डिमांड जो है उससे हम पीछे नहीं हटने वाले, दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दिक्के या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
7: नाम अभिजीत दिक्के, छात्रों के लिए उम्मीद का चेहरा, कद काठी छोटी लेकिन कंधों पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी। अमेरिका से लौटे 30 साल के इस नौजवान ने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन की ऐसी अलग जगाई कि देश के अलग अलग हिस्सों में नौजवान अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। मांग यही कि लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मद्देनजर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ताकि युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर जवाबदेही तय।
8: मेरे साथ सैकड़ों और लोग थे जो यही जंतर मंतर की सड़कों पर सोए। हम किस लिए सो रहे थे सड़कों पर? हम सड़कों पर इस देश के भविष्य के लिए सो रहे थे। हम सड़कों पर उन बच्चों के लिए सो रहे थे जिनको आत्महत्या करनी पड़ी थी धर्मेंद्र प्रधान के फेलियर की वजह से। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी उन लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, नाउ और नेवर, अगर आज आप लोग बाहर नहीं निकले तो इस देश में जो एक उम्मीद जगी है, इस देश में जो एक उम्मीद जगी है सिस्टम को बदलने की, इस देश में जो एक उम्मीद जगी है अकाउंटेबिलिटी लाने की, वो उम्मीद मर जाएगी।
7: दीपके ने जंतर मंतर से यही नारा बुलंद किया, अभी नहीं तो कभी नहीं। शुरुआत में कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखने वाले दीपके के आंदोलन और उनके आंदोलन के मकसद को लेकर सवाल उठे। उनके आंदोलन के भविष्य को लेकर तरह तरह के अटकलों का बाजार गर्म था क्योंकि अमेरिका से लौटे दीपके का चेहरा नया था और छात्रों का भरोसा जीतना मुश्किल था, लेकिन उनके एक विचार ने देश की परीक्षा प्रणाली में छल वाले छेद के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन को आकार दे दिया। सोचिए, एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन पहल से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी बेहद कम वक्त में लाखों युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गई। मानो छात्रों की जिन आवाजों को सिस्टम ने अब तक अनसुना कर रखा था, उन्हीं आवाजों को एक चेहरा मिल गया और कॉकरोच जनता पार्टी के शक्ल में एक बड़ा मंच। डिजिटल अभियान से दीपके धीरे धीरे सड़कों तक पहुंचे और फिर दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए आंदोलन का चेहरा बने। छात्रों की आवाज बनकर दीपके अकेले निकले थे, लेकिन छात्र उनके साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। 28 जून को जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से सोनम वांगचुक जुड़ गए। इसके बाद छात्रों के लिए लड़ी जा रही लड़ाई के लिए जन समर्थन का सैलाब उमड़ पड़ता है। जंतर मंतर की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगती है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करने की उनकी मांग को वांगचुक की भूख हड़ताल से ताकत मिलती है। लोगों को भरोसा होता है कि अभिजीत दीपके बहुत अनुभवी भले ना हो, लेकिन वो छात्रों की जायज मांग को उठाने के लिए जंतर मंतर पर है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होनी थी। देश की सरकार तक छात्रों की मांगों को पहुंचाने के लिए दीपके ने संसद मार्च की घोषणा की, लेकिन मार्च से ठीक चंद घंटे पहले जंतर मंतर पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। सुबह के वक्त बिना वर्दी के दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पहुंचती है और भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अपने साथ ले जाती है। हवाला भूख हड़ताल से बिगड़ी उनकी सेहत का दिया जाता है। सोनम अब जंतर मंतर से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बहुत लोगों को लगा कि छात्रों के लिए किया गया आंदोलन अधूरा रह जाएगा। ये वही वक्त था जब मंच पर दीपके फूट फूट कर रोए थे, लेकिन ये आंसू आंदोलन छोड़ने के लिए नहीं बहते बल्कि आंसू आंदोलन को किसी भी कीमत पर अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं जंतर मंतर पर 36 दिन के इस आंदोलन का वो टर्निंग पॉइंट जहां से सरकार पर दबाव बनता चला गया।

0: 20 जुलाई जंतर बंतर के आंदोलन का 31वां दिन, सीजेपी का संसद चलो मार्च, छात्रों पर लाठीचार्ज, संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी संसद चलो मार्च का ऐलान करती है और संसद मार्च को लेकर अड़ जाती है, जबकि दिल्ली पुलिस कहती है कि इस तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में जंतर मंतर और संसद भवन के बीच 8 लेयर के बैरिकेड लगाए जाते हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके कहते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जा रहा है, संसद जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर जंतर मंतर के पास पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का एग्जिट बंद कर देती है, जहां किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। जंतर मंतर पर पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करती है। ये प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ रहे थे, पुलिस उन्हें रोकने में लगी थी, जिसके बाद लाठी चार्ज किया गया। इस बीच अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले जा चुकी थी। ऐसे में वांगचुक भी अस्पताल को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सीजेपी के प्रदर्शन मार्च में शामिल होना चाहते हैं। और जब सीजेपी के प्रदर्शनकारी रेल भवन पहुंचते हैं तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, पैलेट गन के इस्तेमाल की भी खबरें आती हैं। 2 दिन की भूख हड़ताल के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके अपना अनशन खत्म कर देते हैं और कहा जाता है कि सोनम वांगचुक के अनुरोध पर दिपके ने अनशन खत्म किया। सीजेपी के चलो संसद मार्च को देखते हुए संसद की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी जाती है, अतिरिक्त पुलिस बल वहां तैनात किया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचते हैं। धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन में अमित शाह के कक्ष में ये मुलाकात करते हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो भी प्रदर्शन में शामिल होती हैं। लेकिन संसद के पास प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए भारी फोर्स तैनात रहती है, जो प्रदर्शनकारियों को दूर रखने की मशक्कत करती है। और फिर इस विरोध प्रदर्शन के बीच सीजेपी नेताओं से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मुलाकात होती है, जिसमें सीजेपी अपनी मांगों वाला ज्ञापन जेपी नड्डा को सौंपती है, जिसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी। नंबर 1, सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए। नंबर 2, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। नंबर 3, नीट यूजी 2026 की तैयारी कर रहे जिन अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए।
1: देखिए, 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15, 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले।
0: दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और संयम बरतने की अपील करती है, लेकिन यहां से आंदोलन और तेज हो जाता है। साथ ही सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत की शुरुआत भी होती है। आज तक ब्यूरो।
2: अब लोग छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सर इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: सो सॉरी
7: आइए आइए चला आइए आइए पाइए सीईओ की नौकरी पाइए आइए आइए आइए

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत। पैलेट गन को राहुल गांधी ने बनाया नया मुद्दा। गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। वहीं पटना में भी पुलिस के हाथ में AK-47 को तेजस्वी यादव ने बनाया मुद्दा।

पूरी निष्ठा से निभाऊंगा अपनी जिम्मेदारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मिली थी अतिरिक्त जिम्मेदारी। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों से किया सल्यूट, कहा कारगिल दिवस हर भारतीय का मन गर्व से भर देता है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा सिर्फ पीओके पर बात पर होगी। गुजरात में बारिश, बाढ़ से बिगड़े हालात, अहमदाबाद, नवसारी, सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत। असम में भी पानी, अब तक 61 ने गवाई अपनी जान, हजारों लोग बेघर।

नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। 5 महीने में दूसरी बार है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एकाएक अपने ऑपरेशंस को रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की पेशकश की है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अब ईरान पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की सोची समझी रणनीति है? क्या वो चुप रहकर या शांति के बहाने लगातार अपनी नई तैयारियों में लगे हुए हैं, या फिर सच में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अब अपने हथियारों की खेप को कम होता हुआ देखकर ऐसा करने के लिए मजबूर हो गए? आज रणभूमि में बात होगी इन तमाम विश्लेषणों की। बात करेंगे कि आखिरकार एकाएक डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन की शुरुआत या उसकी रोक क्यों कर दी है। लेकिन अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि रणभूमि में आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के उस फैसले पर फोकस डालेंगे जिसमें दुनिया का चौंका दिया है। रणभूमि स्पेशल में आज की पहली खबर, हम आपको बताएंगे ट्रंप ने ईरान पर हमला करने पर ब्रेक क्यों लगा दिया है और ऐसा करने के लिए क्यों उन्हें मजबूर होना पड़ा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अब ईरान पर आगे वॉर नहीं करने वाले, अपने ऑपरेशंस को रोक दिया। सवाल है कि क्या ये किसी बड़े हमले की तैयारी तो नहीं? रणभूमि स्पेशल की दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कैसे यमन में रहने वाला ईरान का समर्थन गुट हुती अब अमेरिका और खाड़ी में उनके सहयोगी देशों के लिए बड़े परेशानी बनता जा रहा है। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे यूक्रेन में क्यों अपने ही इलाके पर हमला बोला है। और रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर में आपको बताएंगे कारगिल की धरती से सुनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वो हुंकार जिसने दुश्मन को यानी पाकिस्तान से बात करने की राजी रजामंदी तो दिखाई है, लेकिन सिर्फ पीओके को लेकर। रणभूमि स्पेशल में आखिरी खबर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्पेन और फ्रांस में जंगल में आग भड़कती जा रही है। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर होंगे और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर कैसे पिछले 12 दिनों से लगातार जारी डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध को लेकर, बम बरसाने को लेकर अब युद्ध विराम जैसे हालात बन गए? अचानक एक रात में मिसाइलों का शोर थमने का फैसला क्यों ले लिया गया? ऐसा कैसे हो गया कि ईरान पर निस्तनाबूद करने की धमकी देने वाले ट्रंप अब बातचीत के बयान दे रहे हैं? यह मजबूरी है या उनकी सोची समझी रणनीति? क्या कमजोर पड़ते अमेरिकी सेना और कमजोर पड़ते उनके हथियारों के जखीरे को लेकर यह फैसला लिया गया? सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।

रुक गई भीषण बमबारी, 12 दिन में तबाही भारी। ब्रेक की बारी या फिर बड़े हमले की तैयारी। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ बातचीत जारी। अभी भी तल्ख है अमेरिका ईरान, हॉर्मूज में बढ़ा घमासान। पिछले 12 दिनों में अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर खूब बमबारी की। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह

0: के मुताबिक टॉप कमांडरों और कैबिनेट सदस्यों के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप ने सेना को नए हमले रोकने का आदेश दिया। अमेरिकी मीडिया ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से यह भी दावा किया है कि अगर अभियान और बढ़ाया तो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के पास पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और बाकी एयर डिफेंस हथियारों का स्टॉक कम हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरा बढ़ सकता है। वैसे ट्रंप के इस फैसले से हर कोई हैरान है, क्योंकि एक दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के 12 से ज्यादा शहरों में जमकर बम बरसाए थे, जिनमें बंदर अब्बास, जस्क, कुनारक, सुजा, ताफ, खोंदाब, खुर्रमाबाद, अहवाज, खुर्रम शहर, अनारक, फिरोजाबाद और ओमिदी शामिल हैं। सीज फायर टूटने के बाद से कल रात पहली बार अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान में तबाही नहीं मचाई। इसके ठीक पहले वाशिंगटन में मीडिया ने इस युद्ध के बारे में जब उन्हें घेरा था तो उन्होंने खुलासा किया था कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन लगता है तेहरान कोई डील करने के मूड में फिलहाल नहीं है।
1: Where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys.
0: माना कि बातचीत चल रही है और मिसाइलों के साथ साथ मुलाकात के रास्ते भी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कोई डील न हुई तो आने वाले दिनों में क्या युद्ध और भीषण होने वाला है? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने साफ साफ दोहराया कि उनकी सेना पहले से भी भयंकर हमले करने के लिए तैयार है, यानी लॉक्ड एंड लोडेड।
1: Talking to them right now, I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
2: And we can say,
1: I believe, Jeff, they're very serious. Okay. They should be.
2: And when you we're say right. that...
0: इस बीच हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकेबंदी और सख्त कर दी है। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा है कि ओमान की खाड़ी में एक जहाज ने लगातार उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। जवाब में अमेरिकी नेवी ने उसे निष्क्रिय कर दिया। शहरों में बमबारी थमने के बाद लड़ाई का सबसे बड़ा मोर्चा फिलहाल समंदर बन गया है। हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी नौसेना ने ईरान के खिलाफ अपना समुद्री ब्लॉकेड और सख्त कर दिया है, ताकि ईरान की तरफ जाने वाले जहाजों पर लगातार नजर रखी जा सके। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की ये मुलाकात ईरान जंग शुरू होने के बाद पहली बार होगी। आज तक ब्यूरो।
3: तो आपने हमारी ये खास रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद ये आकलन लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार रुकने के लिए मजबूर क्यों होंगे। ईरान के खिलाफ सैन्य हमले बढ़ाने के फैसले से के पीछे हटने के कारण वरिष्ठ सलाहकारों की चेतावनी। दरअसल सलाहकारों ने ट्रंप को कहा कि बड़े सैन्य अभियान से अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का भंडार खतरनाक हद पर पहुंच चुका है और ये कमजोर होता जा रहा है, जो मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत भी है, और अगर ये कम हुआ तो फिर अमेरिका के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। शायद यही सबसे बड़ी वजह इसको बताया जा रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को लेकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके सलाहकारों ने ये चेतावनी दी कि अगर युद्ध लंबा चला, ये ऑपरेशन लंबे चले, तो वो भंडार लगातार कम होता जाएगा। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल इतने बड़ा फैसला लेने के लिए क्यों मजबूर हुए, या सच में ये कोई सोची समझी रणनीति। आइए आपको वजह बताते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की वजह बनी। सबसे पहले वजह, ईरान के साथ तनाव को ज्यादा बढ़ाने से ट्रंप परहेज करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी एक बार कर चुके हैं कि वो इसको बड़े वॉर के अंदर, लंबी वॉर के अंदर तब्दील नहीं करना चाहते। सबसे पहली वजह यही है कि लॉन्ग ऑपरेशंस नहीं करना चाहते। आप बैठक में सलाहकारों ने नतीजों के बारे में भी दी चेतावनी कि आखिरकार नतीजे कैसे होंगे अगर हम लंबी वॉर के लिए जाते हैं। अगर ऑपरेशंस को नहीं रोकते तो फिर हम पर इसका सीधे तौर पर कैसा असर पड़ेगा, आर्थिक भी और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप तीसरी बड़ी बात क्या है, मध्य पूर्व में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स कमजोर होने की चिंता है। दरअसल अगर इसी तरीके से वॉर चलती रही, ईरान भी अटैक करता रहा, तो फिर ईरान के अटैक के दौरान मध्य पूर्व में अमेरिका के

0: एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कम होते जाएंगे और ऐसे में अमेरिका पर बोझ बढ़ता जाएगा अपनी सुरक्षा को लेकर भी और मिडिल ईस्ट के इन तमाम देशों की सुरक्षा को लेकर भी। अब खाड़ी देशों में तैनात पेट्रियट मिसाइल्स का स्टॉक कम होने का डर भी है। ये पहले भी चिंता जताई जा चुकी थी कि देखिए एक तरफ यूक्रेन की तरफ आपने बहुत ज्यादा मिसाइलें दे दी हैं, दूसरी तरफ आपको अपनी सुरक्षा के लिए भी चाहिए और तीसरा अब मिडिल ईस्ट के इन देशों की सुरक्षा के लिए चाहिए क्योंकि ईरान के अटैक्स रैंडम है। बहरेन, कुवैत, कतर, हर जगह पर ईरान जो है वो इस तरीके के अटैक कर रहा है। पांचवा बड़ा कारण क्या है? युद्ध के फैसले और अरब सहयोगियों के कमजोर होने की आशंका है। देखिए अरब देश अगर कमजोर हुए तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने ईरान के साथ समझौता कर ले, और अगर वो कमजोर हुए तो फिर अमेरिका पर उसका बोझ बढ़ेगा। ये तमाम कारण दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं। वैश्विक आर्थिक असर भी है, ऊर्जा संकट और शरणार्थियों का की समस्या का भी डर है। देखिए अगर ये वॉर ज्यादा चली तो फिर निश्चित तौर पर इसका आर्थिक दबाव भी पूरी दुनिया पर बढ़ेगा, ऊर्जा संकट भी बढ़ेगा और सबसे बड़ा संकट होगा शरणार्थियों का। आखिरकार वो शरणार्थी कहां जाएंगे? लेकिन इन तमाम खबरों के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान से जहां पर ईरान की तरफ से एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोक रहे हैं, वहीं ईरान अपनी तैयारियों का नुमाइना या फिर उनका जायजा भी दिखा रहा है दुनिया को। ईरान के जहां पर एक धार्मिक त्योहार के मौके पर लोगों के इकट्ठा होने पर ईरान की घातक मिसाइलों की नुमाइश सड़कों पर की गई। इसे ईरान के उस संकेत के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें वो अमेरिका को अपने नागरिकों को यह संदेश देना चाहता है कि वो आगे के युद्ध के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। और शहरे में इस मौके पर लोगों को भारी हुजूम भी देखा गया जो अमेरिका के विरोध में नारे भी लगाते नजर आए। वैसे अब ईरान के अंदर ऐसी नुमाइश या फिर ऐसी आप कह सकते हैं कि एग्जीबिशन हथियारों की आम बात है क्योंकि अक्सर जब भी लोग जुड़ते हैं तो वो अपनी मिसाइलों को, अपने ड्रोन्स को, उन हथियारों को दिखाते हैं जो पूरी तरीके से ईरान ने हासिल किए हैं या आत्मनिर्भरता के मौके से बनाए हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जहां पर कुवैत और सऊदी अरब के कई बंदरगाहों की खाली कराए जाने की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि कुवैत और सऊदी अरब में बंदरगाह पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। यमन में सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर बमबारी की थी और तेल टैंकरों को वहां से हमला करने के बाद निकाला गया। ईरान के हमलों में कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। आपको बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे लेकिन आपको बता दें एक बड़ा आस्पेक्ट यह आ रहा है कि सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि वहां पर मौजूद जो शिप्स थे, ऑयल टैंकर्स थे, उनको हटा दिया गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर वो सैटेलाइट तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कुवैत और सऊदी अरब के अंदर अपने बंदरगाहों को खाली करा दिया है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनके मायने क्या। अगर आप ये देखें, यह सऊदी अरब के बंदरगाह और यह यमन के हमलों का असर किस तरीके से लगातार यहां पर पड़ता जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए यह कुवैत पूरी तरीके से आपको नजर आएगा, जो इधर की तरफ आप देख रहे हैं छोटे छोटे बोर्ड्स आपको नजर आ जाएंगे। इसके बाद जो सऊदी अरब के बंदरगाह है उनको भी खाली करा दिया गया है और ये इसलिए क्योंकि रेड सी के अलावा अब यमन में हूतियों ने खास तौर पे सऊदी को टारगेट करना शुरू कर दिया और उनका दूसरा टारगेट बहरेन भी है क्योंकि बहरेन में भी अमेरिका की सेना की मौजूदगी बहुत ज्यादा है, उनका फिफ्थ फ्लीट वहां मौजूद है। तो ऐसे में ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि डर और दहशत इस समय मिडिल ईस्ट के देशों में कैसी है क्योंकि ईरान अब लगातार ईरान के साथ साथ उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो भी इन जगहों को, इन इलाकों को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं जिसमें सऊदी, कुवैत और बहरीन के देश मौजूद हैं। लेकिन ईरान के हमले इस समय चार प्रमुख शहरों पर या चार प्रमुख देशों पर, कौन कौन से शहरों पर हो रहे हैं, कौन कौन से देशों पर हो रहे हैं, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी। सबसे पहला अगर आप देखें जॉर्डन, दरअसल इस 12 दिन की जंग या ऑपरेशंस के दौरान जब अमेरिका ने शुरुआत की तो ईरान ने जॉर्डन को स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल जो उसका मुवफक अल सॉल्टी एयरबेस है वो इसके टारगेट पे यूएस सैन्य बेस में अमेरिकी सैनिक मौजूद रहते हैं, कई अमेरिकी जेट यहां पर रहते हैं और इसको भी आपको याद होगा हमने आपको इससे पहले भी सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई थी जिसमें उनके जो हैंगर्स है उनको नुकसान पहुंचाने की तस्दीक हुई थी। अब इसके अलावा इराक के अंदर इरबिल एयरबेस जहां पर अमेरिका की मौजूदगी रहती है, यहां पर जो उनका पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और सर्विलेंस बैलून मौजूद रहते हैं। दरअसल ये इराक का इलाका इसलिए ताकि वो इसराइल को एक तरीके का संरक्षण दे सके और इसराइल के साथ साथ इराक से अगर ईरान से कोई मिसाइल दागी जाए यूरोप की तरफ तो फिर वो इराक में ही उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाए। तो ये दोनों मौजूदगी अमेरिका की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा जो देश है वो है कुवैत का। कुवैत के इस बेस पर भी अमेरिकी हथियार और औजार के 3 डिपो पर आप कह सकते अटैक किए गए, और जो ब्योहरिंग जो बेस है, कैंप है ब्योहरिंग बेस, उस पर को भी कुवैत में टारगेट किया गया। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ईरान के जो टारगेट हो रहे हैं, जो अटैक हो रहे हैं, वो स्पेसिफिकली 4 देशों को लेकर ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा बहरेन, शेख ईसा एयरबेस, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर अमेरिका की मौजूदगी, 5th फ्लीट मौजूद है, और यहाँ का कंट्रोल टावर जो है और जो उनके सर्वेलेंस सेंटर्स हैं, इनको ईरान ज्यादातर अटैक कर रहा है। यानी एक तरफ ईरान अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ हूती की तरफ से भी अब अटैक बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी सऊदी और दूसरे देशों पर, या खासतौर पर मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक कर रहा है। यानी रणनीति बिल्कुल साफ है कि ज्यादा से ज्यादा अटैक कर नुकसान पहुंचाना। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख भी करते हैं। सर एक बात देखिए, संजय सोई सर, अभी के अटैक क्या दिखाते हैं? क्या अमेरिका के रुक जाने के बाद भी ईरान और हुती रुकेंगे?
1: नहीं, ऐसा है कि सुनील कि यहाँ पे बातचीत तो चल रही है, यही कारण है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं अटैक रोके हैं, और ईरान की तरफ से भी हमले कम हुए पिछले 2 दिनों में, तो लेकिन हुती के हमले जारी रहे। तो मेरे हिसाब से इस समय में ईरान भी ये चाह रहा है अंदर खाने कि भाई शांति हो जाए, पीस हो जाए, क्योंकि आज उनको भी काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन पेज कहाँ फंसा हुआ है? पेज जो है दोनों की जो मैक्सिमम वाली डिमांड है कि वो कह रहे हैं हम न्यूक्लियर हैंडओवर नहीं करेंगे, अमेरिका कह रहा है मैं न्यूक्लियर को डिस्ट्रॉय करूंगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने वाली बात है, मिसाइल की बात है, रेजिम चेंज की बात है, इसराइल मानेगा नहीं मानेगा, सब बातें तो वही की वही है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या जैसे आप कहते हैं क्या क्या अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स कम हो रहे हैं, इतने ज्यादा फायर हो गए, ईरान ने इतने फायर किए, पहले भी देखा था कि क्योंकि ये हाईटेक इक्विपमेंट है, इसको बनने में टाइम लगता है, उसके मुकाबले में ड्रोन और रॉकेट्स काफी तेज बना पा रहा है इसराइल के पास, पहले काफी बड़ा जखीरा है जिनको फायर कर रहा है, और अमेरिका की साख के भी ऊपर असर पड़ रहा था क्योंकि उनको अरब देशों के ऊपर जो अटैक हो रहे थे बचाने के लिए उनको एयर डिफेंस सिस्टम फायर करने पड़ रहे थे, नहीं तो काफी ज्यादा और नुकसान हो जाता, पहले काफी नुकसान हुआ। तो इस समय में मेरे हिसाब से 2-3 बातें हैं, एक तो डिप्लोमेटिक चैनल पीछे पीछे काम कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश हो रही है, शांति की कोशिश हो रही है, दूसरी बात कहीं ना कहीं अमेरिका दोबारा से सोच रहा है कि अगर हमने क्या स्ट्रेटेजी को चेंज करें, क्योंकि ईरान के ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं है, इतने बम्बार्डमेंट किया कोई फर्क नहीं पड़ा, कह रहे भाई ठीक है पिटते रहो पिटते रह रहे, लेकिन वो मान नहीं रहे। तीसरी बात एक डिप्लोमेटिक विंडो देख रहे, चौथा ये कि मिडिल ईस्ट या बाकी देशों का भी दबाव अमेरिका के ऊपर होगा कि आप इस तरह से करते रहे जिसका खामियाजा
0: दबाव तो सर अमेरिका पे ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों का है बल्कि अब देखा जाए तो डोमेस्टिकली भी बहुत ज्यादा दबाव है। संजय मेस्टन सर, आप इस दबाव को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये अमेरिका की सोची समझी रणनीति है? क्योंकि 5 महीनों में दूसरा ऐसा मौका है जब ईरान ने अमेरिका ने एकाएक अपने ऑपरेशंस को रोक दिया है और फिर दोबारा से हॉल्ट कर दिया, और उसी बीच अब कहा जा रहा था कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, और ये हमेशा देखा गया कि जब भी उनकी मुलाकात होती है कोई नए ऑपरेशंस की शुरुआत होती है, नए ऑपरेशंस का आगाज होता है, तो क्या ये कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है अमेरिका की?
2: देखिए सुमित, वो भी पॉसिबल है, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जो भी मीटिंग है ट्यूसडे को, तो साफ जाहिर है कि कुछ तो ऑप्शंस डिस्कस हो रहे होंगे, और वैसे भी काफी अभी इन बिटवीन डिस्कशंस चल रही होंगी, और मेरे को लगता है वो वहां पर सिर्फ फाइनलाइज किया जाएगा। जहां तक देखिए इसमें कुछ सवाल ये उठते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है, मैं एज अ मिलिट्री मैन बोलना चाहूंगा कि ये इतनी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, आज हम जैसे अपनी सेना में ये कितने मिसाइल्स हैं, कितने क्या हैं, कहाँ स्टॉक है, वो बहुत कम लोगों को पता होता है, तो ये हर बार न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट आती है वो भी एक बड़ी क्वेश्चनेबल है।
0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा।
2: हाँ, क्या वो भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है? क्योंकि ये भी समझ में नहीं आता, इसमें कई बार फिगर्स आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। देखिए अमेरिका ने जब ये युद्ध किया होगा, आफ्टरऑल ट्रंप चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनके जो एडवाइजर्स हैं, खासकर मिलिट्री एडवाइजर्स, उनकी भी एक जिम्मेदारी है तो ये अपनी कंट्री के प्रति, ना कि ट्रंप के प्रति, और वो बिल्कुल गलत एडवाइस नहीं दे सकते हैं, और खासकर जो सेंटकॉम कमांडर है उसके ऊपर इतना जिम्मेदारी है, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अलग रहते हैं, वो सारे अलग रहते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सेंटकॉम कमांडर को वहां की स्थिति पता है, डेली सिचुएशन की मॉनिटरिंग करते हैं, और फिर वो उसके मुताबिक एसेस ये भी करते हैं कि दुश्मन के क्या रिएक्शन हो सकते हैं, क्या क्या ईरान कहाँ का काउंटर स्ट्राइक कर सकता है, खाड़ी देश पे क्या कर सकता है, और मैं ये भी बता दूं ये जैसे यूएई है और सऊदी अरेबिया है, इनके पास भी काफी अभी मिलिट्री हार्डवेयर आ चुका है, वो कब इस्तेमाल होगा। और आपने देखा जो चाहे जॉर्डन हो, चाहे कुवैत हो और चाहे बहरेन हो, उन्होंने भी बार बार ये बोला है कि वी हैव द राइट टू ऑल्सो अटैक,
0: जी
2: तो टेक एनी एक्शन। तो अभी सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है, और ये जो अभी हुतीस भी उतर चुके हैं मैदान में और सऊदी अरेबिया पे भी टारगेटिंग कर रहे हैं, उनकी भी टॉक्स चल रही है वहां ओमान में दोनों रेफ्स के बीच में। लेकिन तो भी आपने देखा है सऊदी अरेबिया ने भी वापस एक अटैक फिर से कर दिया है।
0: बिल्कुल
2: कहने का मतलब है ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पर अमेरिका और इसराइल का मेरे को लगता है ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, और इसको बड़ा मुश्किल है बोलना कि ये क्या अनफोल्ड होगी। देखिए एक और अभी बात हो रही है, इरानियन ऑप्शंस भी काफी हैं। आपको पता है कि जो इराकी मिलिशियाज है वो तकरीबन 60% पॉपुलेशन है इराक में, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि पॉसिबिलिटी है वहां से वो ग्राउंड इन्वेजन कर सकते हैं ऑन कुवैत, क्योंकि वहां आपको पता है सदाम हुसैन ने भी कई साल पहले किया था। तो अगर प्रॉपर इन्वेजन नहीं है लेकिन कुछ भी किया जा सकता है, सबवर्जन,
0: सर यही
2: छोटे
0: पॉसिबिलिटी
2: मोटे
0: तो
2: टेररिस्ट
0: लगातार
2: अटैक
0: बनती
2: हो
0: जा रही है,
2: सकते हैं।
0: जिसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए ये युद्ध रुका नहीं है, हर बार ऐसा लगता है कि युद्ध रुक गया है लेकिन युद्ध रुकता नहीं है। इसमें एक और बड़ी पॉसिबिलिटी सामने आ जाती है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए सर। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान में खत्म अल अनबिया बेस के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने युद्ध में मरने वाले हर ईरानी नागरिक के बदले एक अमेरिकी नागरिक की जान लेने की धमकी दी। मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने कहा है कि जान गंवाने वाले हर ईरानी नागरिक के बदले एक अमेरिका की जान जाएगी। यानी दरअसल अब ईरान जो है वो अपने नागरिकों की मौत को लेकर भी बड़े दावे कर रहा है, और उनके जनरल खास तौर पे जो ईरानी जनरल है वो इससे पहले भी कई बार धमकियां ईरान को दे चुके हैं, अमेरिका को दे चुके हैं, और साफ तौर पर कह चुके हैं कि देखिए जो जो नुकसान ईरान को भुगतना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, उसकी भरपाई सीधे तौर पर अमेरिका करेगा। और वही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बीच एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा भी हुआ। खबर के मुताबिक तेहरान ने लाल सागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सऊदी और अमेरिकी हितों को चोट पहुंचाने के लिए एक बड़ी साजिश रची है। दरअसल एक बड़ी स्ट्रेटजी है, IRGC के टॉप कमांडर्स मिसाइल और ड्रोन पार्ट्स के साथ एक बड़े यानी महान एयरवेज के एक फ्लाइट में सीधे तौर पर हूतियों के पास पहुंचे। यहीं पर यमन पहुंचते ही हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तेल के जहाजों की नाकेबंदी और उन पर अटैक करने शुरू कर दिए। और ये कहा जा रहा था कि देखिए ये रसद साजो सामान पहुंचाने के बाद ही अब लगातार हूती और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं।
3: मध्यपुर के बारूदी आसमान के बीच तेहरान से उड़ी एक रहस्यमयी उड़ान ने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि 13 जुलाई को ईरान की महान एयर के एक विमान ने तेहरान से यमन के लिए उड़ान भरी। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि इस फ्लाइट में आयतुल्ला खामेनेई के जनाजे से लौट रहे यमनी नागरिक और प्रतिनिधि मंडल सवार था, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस विमान में केवल आम नागरिक नहीं थे बल्कि इसमें सवार थे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के 10 से 21 सीनियर सैन्य कमांडर और रणनीतिकार। इनके साथ मौजूद था शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन के आधुनिक कलपुर्जे और हूती अभियानों को फंडिंग के लिए भेजा गया भारी मात्रा में सोना। यानी ईरान ने हुती विद्रोहियों को ट्रेनिंग और दिशा देने के लिए IRGC के टॉप कमांडर्स यमन भेजे। रेड सी में तबाही मचाने के लिए ईरान ने यमन पहुंचाए एडवांस मिसाइल और ड्रोन पार्ट्स। युद्ध की फंडिंग के लिए तेहरान से सीक्रेट फ्लाइट के जरिए यमन भेजा गया भारी मात्रा में सोना। सूत्रों का कहना है कि विमान मूल रूप से यमन की राजधानी सना में उतरने वाला था, लेकिन जैसे ही सऊदी समर्थित यमनी सरकार को इसकी भनक लगी, उन्होंने सना एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद विमान का रूट बदलकर उसे लाल सागर के तटीय शहर हुदे इदाह में लैंड कराया गया। यमन उतरते ही IRGC के इन कमांडरों ने हुती विद्रोहियों को नए मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कमांडरों के पहुंचते ही बहस 3 दिनों के भीतर तेहरान से हुती विद्रोहियों को सख्त फरमान जारी किया गया। अगर अमेरिका ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो हुती विद्रोही तुरंत लाल सागर के मुख्य तेल मार्ग को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। भले ही ईरान और हुती विद्रोही इन दावों को पूरी तरह से नकार रहे हों, लेकिन सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि रेड सी को निशाना बनाकर ईरान अब अमेरिका और उसके सहयोगियों पर चौतरफा दबाव बनाने की फिराक में है। ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ी तबाही की घड़ी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: यानी मिडल ईस्ट के देश अब दोनों तरफ से घिरते जा रहे हैं और हूतियों का आना भी इसमें बड़ा संकेत देता है, चेतावनी भी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी अब आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप ने रूस और चीन को क्या धमकी दी और कारगिल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को क्या अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही बताएंगे यूरोप में किन किन देशों में जंगल में आग इतनी ज्यादा धधक रही है कि वहां के लोगों के लिए बड़े परेशानी बन गई। ये सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए रणभूमि स्पेशल।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
5: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
6: सवारी सोकुडो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: In association with
6: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी? कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को RDX रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर।
8: हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है,
9: टीयर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है। यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आ रही है।
8: पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है।
3: कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
4: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो

रणभूमि स्पेशल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान और अमेरिका का युद्ध अब तक सीधे तौर पर तीन देशों से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इस युद्ध के अंदर जल्द ही चीन और रूस जैसी महाताकतों की एंट्री भी होती हुई दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन और रूस में ऐसा कोई ऐलान तो नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे ऐसा लगता है कि नौबत बहुत जल्दी आ जाएगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन और रूस अगर ईरान को हथियार देते रहे तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होने वाला है। इस धमकी के क्या मायने हैं और हथियारों की ये होड़ इस युद्ध को किस दिशा में ले जाती है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।

0: अमेरिका ईरान जंग में होगी चीन रूस की एंट्री। आएंगे नए हथियार, अब होगा आर पार। बमबारी के साथ बयानों ने भी मचाई खलबली। क्या ईरान को मिलने जा रहे हैं चीनी हथियार? क्या रूस के हथियारों के दम पर अमेरिका का सामना करेगा ईरान? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ तो रणभूमि में पर्दे के पीछे ऐसा पक रहा है जिसने ट्रंप को धमकी देने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ ट्रंप और इजराइल हैं, तो दूसरी तरफ ईरान। लेकिन क्या सच में ईरान इस पूरी जंग में अकेला है? शायद नहीं। चीन और रूस के साथ उसके रिश्ते जग जाहिर हैं। चीन ईरान से तेल खरीदने वाले देशों में सबसे ऊपर है, जबकि निवेश को लेकर भी उसकी और ईरान की दोस्ती गहरी है। इस जंग के दौरान अमेरिका ने कई बार चीन पर आरोप लगाया है कि जहाजों में छिपाकर दोहरे इस्तेमाल वाली सामग्री को चीन ईरान भेजता रहा है, जिसकी मदद से ईरान ड्रोन और बाकी सैन्य उपकरण तैयार करता है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अगर चीन और रूस ने इस जंग में दखलंदाजी की तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाल ही में बीजिंग में हुई उनकी मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिया था कि वे किसी भी हाल में ईरान को हथियार नहीं देंगे। चीनी कंपनियों के लिए भी यही चीज लागू है। हमारे रिश्तों को देखते हुए मुझे जिनपिंग पर यकीन है। इसी तरह यूक्रेन जंग के बावजूद पुतिन ने भी कहा था कि वो ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे। वो जानते हैं कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचता, बल्कि नाटो देशों को बेचता है। नाटो देश इन हथियारों की पूरी कीमत चुकाते हैं, उसके बाद वो इन्हें किस तरह आगे भेजते हैं इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती। ईरान युद्ध के संबंध में ये दो बड़े देश भाग नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर ट्रंप को ये धमकी देने की नौबत क्यों आई? क्या चीन और रूस सच में ईरान को इस जंग में और मजबूत बनाने के लिए अपने हथियार देने जा रहे हैं? इस बीच किर्गिस्तान से आई इन तस्वीरों से भी अमेरिका को मिर्ची लगी होगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने न सिर्फ मुलाकात की है, बल्कि उनके बयानों से ईरान के चहेतों का हौसला भी बढ़ा है। चीन ने कहा है कि बीजिंग ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के उसके प्रयासों का समर्थन करता है। वहीं अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान की बातचीत करने की इच्छा कभी नहीं बदली और तेहरान इस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वैसे इस वक्त ईरान और चीन को आपसी संपर्क और समन्वय बढ़ाना चाहिए। इस हफ्ते ट्रंप ने अपने विनाशकारी फाइटर प्लेन्स के जरिए ईरान के कई शहरों पर हमले किए हैं। पलटवार करते हुए ईरान ने भी उसके सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी की है, जिससे एक बार फिर ये साबित हो गया है कि ईरानी सेना की मिसाइलों और लॉन्चिंग सिस्टम के पूरी तरह तबाह हो जाने के ट्रंप के दावे 100% सच्चे नहीं है। आज तक ब्यूरो।
1: अब तक मिडिल ईस्ट में इस जंग का दायरा अमेरिका के बेसिस तक था, लेकिन अब उन शहरों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब से जहां पर यमन के मिसाइल और ड्रोन हमलों से जिजान शहर में बड़ा असर देखने को मिला है। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। सऊदी अरब में सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि यमन ने अरामको के एक तेल संयंत्र को निशाना बनाया गया है, जिससे अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। दरअसल सऊदी से भी खबर मिल रही है कि यमन में हुतियों के अटैक के बाद से ही लगातार उनके अरामको तेल संयंत्र को नुकसान पहुंचा। उसकी तस्वीरें भी लगातार वहां पर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हूतियों के ऐलान के बाद से ही सऊदी अरब उनका टारगेट है। इससे पहले भी हूतियों ने सऊदी अरब के दो ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया था, और उसके बाद जिजान शहर पर भी मिसाइलों से अटैक करने की खबरें लगातार सामने मिल रही थी। और वहीं दूसरी तरफ सऊदी के कई अरामको तेल संयंत्र पर भी निशाना बनाने की खबरें लगातार सामने आ रही। और दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी है। खबरें ये भी मिल रही है कि सऊदी अरब ने भी यमन में हूती ठिकानों पर पलटवार किया है। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि उसने यमन के हौदियात में हूतियों के जुड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई भी की है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि वो अपने जहाजों और राज्य के हितों की रक्षा के लिए जरूरी उपाय या उसके खिलाफ कदम उठाते रहेंगे। और देखिए, आपको बता दें कि सऊदी अरब ने अभी रिटालिएट किया, उन्होंने भी यमन में कई सैन्य बेसिस के ऊपर जो हूती इस्तेमाल करते थे उनके ऊपर अटैक किया है। और हूतियों की तरफ से कहा गया था कि वो अब ईरान के समर्थन के लिए इस जंग में उतर आए हैं, और इसी बीच उन्होंने सऊदी अरब को मेन टारगेट के तौर पर निशाना बनाना शुरू किया। और सऊदी अरब ने भी अब हूतियों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी, यानी दायरा अब ईरान अमेरिका से निकलकर अब हूती वर्सेस सऊदी अरब भी होता जा रहा है। और देखिए, एक रिपोर्ट आई है जिसने खास तौर पर इस जंग को और भड़काने वाला साबित कर दिया, जिसमें बहरीन और कुवैत ने भी ईरान पर लड़ाकू विमानों से गुप्त रूप से हमला किया था। ये खबरें मिल रही है कि लगातार 40 दिन के इस ऑपरेशन के दौरान ईरान पर हुए हमलों में बहरीन और कुवैत का हाथ भी था, उसने भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। ये दोनों देशों का पहला सीधा हमला जवाबी हमला था, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों से डिपो को निशाना बनाया गया था, जबकि यूएई ने खुफिया जानकारी और हवाई सुरक्षा मुहैया कराई थी। यहां तक कि अभी हाल ही में ईरान पर हुए ताजा हमलों में यूएई के कई ड्रोन्स को ईरान की आईआरजीसी ने दिखाया और कहा था कि यूएई के ड्रोन अमेरिका की तरफ से भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय मेस्टन सर। अब लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए, कुवैत हो बहरेन ने, इन्होंने भी चुपचाप अमेरिका को ना सिर्फ अपने बेसिस का इस्तेमाल करने दिया बल्कि सैन्य कार्रवाई में अपने उपकरण भी शामिल किए थे, तो ऐसे में ये खटास, ये बड़ी दिक्कत आने वाले वक्त में इन तमाम देशों के साथ ईरान की और ज्यादा बढ़ेगी।
2: बिल्कुल, देखिए अभी हालात इस प्रकार लग रहे हैं कि ईरान की हालत मेरे को लगता है कि काफी इम्पैक्ट पड़ेगा मिलिट्री तौर पे और इकोनॉमिक तौर पे। इकोनॉमिक तौर पे जो एक अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया है उसका इम्पैक्ट तो होगा, और आपने देखा है अमेरिका ने एक शिप को भी अभी डैमेज किया जो कल किया था, तो कहने का मतलब है ये एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड से इम्पैक्ट तो होगा। दूसरा है मिलिट्री, मिलिट्री में जैसे अभी आपने बताया कि कुवैत के और बहरीन के जहाजों ने भी पार्टिसिपेट किया और यूएई ने भी कई ये धागे हैं, मतलब अपने यूक्रेन ने भी ये अपने ड्रोन्स वगैरह दागे हैं, आई एम वेरी सॉरी। तो उससे क्या होता है कि ये इम्पैक्ट मिलिट्री तौर पे भी इनके ऊपर काफी बुरा पड़ेगा। तो मेरे को लगता है ईरान थोड़ा आइसोलेटेड होता जा रहा है, लेकिन अभी आपने जो कमेंट्री में एक चीन के बारे में और रशिया के बारे में भी बताया था, मेरे को लगता है देखिए रशिया का भी एक ये कल कैस्पियन सी में एक अटैक हुआ है, वो शायद शिप ईरान की थी, उसमें भी ये है कि सामग्री जा रही थी, तो ये युद्ध एनलार्ज होता हुआ दिख रहा है। तो ईरान ट्रूली आइसोलेटेड नहीं है क्योंकि उसको रशिया का और चीन का मॉरल सपोर्ट मिल रहा है, और मेरे को लगता है सैटेलाइट इमेजरी क्योंकि काफी प्रिसिशन स्ट्राइक ओरिएंटेड किए थे उसके ऊपर, कुवैत के ऊपर CIA बेस्ड था कुवैत में, तो और साथ में ये जो चीन है ये चिप्स वगैरह भी इनको दे रहा है। तो उम्मीद ये है कि ये युद्ध एनलार्ज होता जा रहा है, पहले 15 देश थे, मेरे को लगता है ये 2-3 देश और आ गए, कुछ देश बिल्कुल डायरेक्टली है और कुछ बिल्कुल इनडायरेक्टली है, तो ये युद्ध का विस्तार बढ़ता जा रहा है। तो मैं अगर वो बोलूं तो ईरान का भी आइसोलेशन लग तो रहा है, लेकिन म्यूचुअल सपोर्ट और ये खासकर यहां से चल रहा है, और जो इराकी सपोर्ट है जो वहां पर 60% उनकी जो पॉपुलेशन है वो है शियास, वहां से सपोर्ट है, और ये हूतीस का जो मिल रहा है सपोर्ट, तो कहने का मतलब है। और अभी एक फ्रंट तो थोड़ा एक्टिवेट नहीं हुआ है जो इसराइल वाला फ्रंट है, इसराइल वाला फ्रंट हो जाएगा तो ईरान को भी डाइवर्ट करना पड़ेगा काफी रिसोर्सेज इसराइल के ऊपर भी, तो ये एक युद्ध बड़ा मैं बोलूंगा कंफ्यूजन स्टेज पे है, बड़ा मुश्किल है इसका स्ट्रेटेजिक फॉलोआउट क्या होगा। ना ट्रंप बोल सकते हैं ना ये IRGC बोल सकते हैं, स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं, और आपको याद होगा जब ये लड़ाई शुरू भी हुई थी IRGC ने कितनी फोटोग्राफ दिखाई थी कि इनकी ये न्यूक्लियर पावर जो कैरियर्स हैं वो सबमर्ज हो गए थे, और कुछ नहीं हुआ अभी तक, अमेरिका की एक भी शिप अभी तक डैमेज नहीं हुई है। तो कहने का मतलब है कुछ चीजें तो हमको भी बिल्कुल सही नहीं पता है कि कितना इनके पास मिलिट्री वेयरबिथॉल है। जरूर लगता है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स काफी है, लेकिन उनके लॉन्चर्स की क्या हालत है वो भी नहीं पता है। तो ये जो ट्यूसडे की मीटिंग है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और ये ट्रंप की, उससे मेरे को लग रहा है कि नई स्ट्रेटेजी डिस्कस होगी और फिर वो एक फाइनल आउटकम होगा। और पाकिस्तान का भी अभी रोल क्वेश्चनेबल हो रहा है,
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि पाकिस्तान ने जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी की है, पैक्ट किया हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, तो उसका तो फर्ज बनता है कि ये जो हुतीज ने अटैक किया और जो ईरान ने किया है, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसका रियली कोई एनालिसिस करना या फ्यूचर बताना, लेकिन
1: बहुत ज्यादा,
2: ऑल आउटकम्स
1: बिल्कुल
2: आर पॉसिबल।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे साथ संजय सोई सर भी है। संजय सोई सर, ये तमाम चीजों को अगर हम देख भी ले कि डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की मुलाकात होगी, दोबारा से नए ऑपरेशन की शुरुआत होगी, लेकिन अब मसला तो सारी चीजों का ले देकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आके बैठ जाता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब भी ये रिपोर्ट आई कि एक बार फिर से ईरान ने अपने जो माइंस थी, माइनिंग्स का काम शुरू कर दिया, IRGC ने और माइंस को डिप्लॉय कर दिया है, वहां पर लगा दिया है। तो ऐसे में बिना सिर्फ अटैक कर ही ईरान पर क्या इस मसले को सुलझाया जा सकता है, या फिर ईरान की कुछ शर्तों को मानने के बावजूद ही अमेरिका खासतौर पर पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा पाएगा?
3: नहीं, बिल्कुल सुमित, आपने जो बीच में बात की, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है ये कि क्या अटैक करके अमेरिका ईरान के ऊपर, ईरान को अपनी शर्तों पर मनवाने के लिए राजी कर पाएगा। देख, पहले 40 दिन चले, अभी 13 दिन से लगातार बम्बार्डमेंट हुआ, बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट हुआ, पर ईरान अभी भी टस्से-मस नहीं हुआ है। बातचीत चल रही है, लेकिन क्या वो अपनी शर्तों को डाइल्यूट करेंगे, शर्तों को कम करेंगे, इसमें सवालिया निशान पैदा हो जाता है। अमेरिका ने अभी जो हमले किए थे, ज्यादातर वो बंदरगाह के साथ साथ में किए थे, चाहे वो बुशहर से लेके और छाबार तक, और बीच में खास तौर से बंदर अब्बास पर काफी ज्यादा हमले किए थे, कुशम आइलैंड, सिरिक पे हमले किए थे, जहां पे हो सकते।
1: सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी युवाओं से संवाद करें, सीधे आपको लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं के साथ संवाद चल रहा है।
4: सर, मैं आपके समक्ष विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में जो अनुभव साझा किए वो आपके समक्ष और मेरे साथियों के समक्ष रखना चाहूंगी कि सर, सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि चारों ओर समंदर से घिरे दीव से मैं एक दिन भारत के दूसरे कोने में बसे हिमाचल प्रदेश पर्वतों के बीच में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सीमावर्ती गांव चांगो विलेज में जाऊं।
5: निकिता, आप करते क्या है?
4: सर, मैं LLB की स्टूडेंट हूं, लॉ की पढ़ाई कर रही हूं।
5: और इसमें जाने का अवसर कैसे मिला आपको?
4: सर, मैंने माई भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद सर मुझे मालूम हुआ कि एक आपने जो बताया था उस प्रकार से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करके है, जहाँ पे हम युवाओं को वहाँ पे जुड़ने का और कुछ सीखने का मौका दिया जा रहा है, वो भी क्विज के खातिर। तो मैंने अपने माय भारत प्लेटफॉर्म खोला, उस पे क्विज दी और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ।
5: अच्छा, आपका किस गाँव में जाना हुआ और क्या क्या व्यवस्था, उसके पहले कोई ब्रीफिंग हुआ नहीं हुआ, क्या क्या हुआ?
4: सर, मैं यहाँ से रिकांगपियो गई थी। सर, रिकांगपियो में हमारा वहाँ पे सब 3 दिन तक मेडिकल चेकअप हुआ, हमें ब्रीफिंग किया कि हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है, फिर सर वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई धार चांगो निचला की ओर। सर, और वहाँ पे जाके सर सच बताऊँ तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं छोटे से द्वीप से वहाँ सीमावर्ती गाँव तक पहुँचूंगी सर, लेकिन मुझे ये अवसर प्रदान हुआ है माय भारत के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। सर, मैं बताना चाहूंगी और मेरे साथियों को भी ये बताना चाहूंगी कि एक लड़की होने के नाते सर परिवार से इतने दूर पहाड़ों के बीच इलाकों में मुझे जाने का अवसर मिला। सर, ये तो बहुत ही नया सफर था और मेरे लिए चुनौतियों भरा भी, लेकिन सर जब मैं वहां गांव में पहुंची ना सर, तो गांव वालों ने जिस प्रकार से मुझे हग करके स्वागत किया है गले लगा के, मैं एक तरीके से तो भूल ही गई थी कि मैं दीव से आई हूँ वहां पे। और सर, मैं वहां पे मेहमान नहीं थी, मैं वहां पे उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी, उन्होंने तो सर मुझे अपनी बेटी मान लिया था। उसके बाद सर मैं कहना चाहूंगी कि मुझे गर्व है हमारे देश की बेटियों पे सर, जो ऐसे कार्यक्रमों में निडर होके भाग ले रही है और यहाँ वहां पे दूर दराज बसे हिमालय के बीच इलाकों तक पहुंच रही है और वहां से नए अनुभवों के साथ वापस लौट रही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बदलाव सड़कों का नहीं लेकिन समाज की सोच का भी हुआ है। और सर, बेटियों के लिए अवसर बन रहे हैं और अवसरों पे भरोसा भी किया जा रहा है, और यही हमारे देश की निडर बेटियां सर हमारे नए आने वाले भारत की खूबसूरत पहचान है।
5: निकिता जी, आपको संभवतः पता होगा कि हर दिवाली में अपने फौजी भाइयों से मिलने मैं बॉर्डर पर जाता हूं। ये संयोग है कि साल 2016 में मैं दिवाली पर बॉर्डर किनारे बसे चांगो क्षेत्र में ही गया था।
4: ओ सर,
5: निकिता, आप चांगो के जिन गांवों में गई, क्या वहां महिला प्रधानों या जन प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला?
4: हाँ सर, मिला ना हमें। सर, मैं जो चांगो धार का भ्रमण कर रही थी गांव का, तो वहां की प्रधान, वहां पंचायत के प्रतिनिधि, महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और बच्चों से सर मैं मिली, उनसे बातचीत की। और जब मैंने महिला प्रधान से सर बातचीत की, तो पता चला सर मुझे कि वो घर भी संभाल लेती है, खेती भी संभाल लेती है, वहां पे जॉब भी कर लेती है। और उससे सर मुझे एक हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आ गया, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है।
5: उनसे जो बातें हुई आपको, क्या कोई कठिनाइयां भी बताती थी क्या, या उनके जीवन की कुछ विशेषताएं हैं जो हमारी तरफ नहीं होती हैं, ऐसा कुछ आपके ध्यान में आया क्या?
4: हाँ सर, मैं जब यहाँ रिकांग पीओ से चांगो के लिए सर गई, तो मैंने तो अपनी तैयारी कर रखी थी कि वहां पे, मैंने देखा था सर रील्स में कि वहां पे नेटवर्क्स नहीं होते, वहां पे लाइट नहीं आती सर। और जब मैं वहां पे निकली सर, और मैंने जो रास्ते देखे सर, पर्वत इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों और ढलान वाली जगह पे इतने पक्के रास्ते, तब मैं सोच रही थी। फिर मैंने वहां के लोगों से जाके बात की, उनसे पूछा कि ये कैसे है, तो वो बोल रहे थे कि पहले ये सब नहीं था, पहले हमें बहुत तकलीफें होती थी, लेकिन ये सिर्फ संभव हो पाया है हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़कें बनी है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया मुझे, ये भी बताया कि पहले हमारे घर पे ना पीने का पानी नहीं आता था, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से आज जल जीवन मिशन के तहत हमारे घर पे पीने का पानी मिल रहा है। साथ ही सर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप लोग तो ये सोच के आए थे ना कि यहाँ पे लाइट नहीं होगी, पावर बैंक लेके आए होंगे, तो मैंने बोला कि हाँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे 24 घंटे बिजली रहती है और नेटवर्क कनेक्टिविटी रहती है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के वजह से आयुष्मान भारत के तहत हम सभी लोगों का स्वास्थ्य पे भरोसा भी बढ़ा है और हमारा जीवन आसान हुआ है। सर एक बात बोलूं मैं आपसे?
5: हाँ बताइए।
4: सर मैं कहना चाहूंगी कि पहली बार मैंने विकास कहाँ पे देखा, बताया आपको, मैंने विकास देखा वहां की महिलाएं, बुजुर्गों और हंसते खेलते बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरों में सर, और मैं खुद शॉक हो गई सर।
5: अच्छा, वो लोग आपको क्या सवाल पूछते थे जब आप उनसे बात करते थे? छोटी आयु के बच्चे होंगे, आपकी बराबरी के होंगे, कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें होंगी, वो आपसे क्या जानना चाहती थी?
4: सर वो पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ तक कैसे आए, आप कहाँ पे रहते हो, यहाँ पे तक कैसे पहुंचे, आपको कैसे पता चला कि सीमांत गांव यहाँ पे है, ऐसी ऐसी ये सब है। तो मैंने बोला उनको कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत प्लेटफॉर्म अवसर एक प्रदान किया है, प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद हमें ये प्रोग्राम में क्विज कंपटीशन के द्वारा आने का मौका दिया गया। हमें तो पता भी नहीं था कि सीमा क्षेत्र में भी हमारे गाँव है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की वजह से हमें इस गांव तक आने का मौका मिला और देखने का मौका मिला। सर मैं बताना चाहूंगी कि वो जो मुझे पूछ रहे थे ना कि आप कहाँ पे रहते हो, तो मैं बता दी थी कि मैं ना दादरा नगर हवेली दमन और दीव में रहती हूँ। तो कि वो कैसा दिखता है, तो सर मैं बड़े प्यार से बता दी।
5: वो समुन्दर के लिए पूछते होंगे कि समुन्दर कैसा होता है, क्योंकि आप तो समुद्री तट से गई थी तो।
4: हाँ सर, उन्होंने मैंने उनको बताया, और छोटे छोटे सर बच्चे भी पूछ रहे, दीदी आप कहाँ से हो, कैसा दिखता है आपका गांव, तो मैंने उसको बताया कि हमारे द्वीप पे चारों ओर समंदर है। तो बोल रही थी सर मुझसे, मुझे भी ले चलिए ना दीदी, मुझे भी ले चलिए ना दीदी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तुमको भी लेके चलूंगी कभी किसी दिन।
5: अच्छा, आने के बाद उनसे संपर्क रखा है?
4: हाँ सर, मैं आने के बाद ना वहाँ पे जिसने बड़े प्यार से मुझे रखा था ना, शकुंतला मैम और सुभाष सर, उनसे मैं व्हाट्सएप पे बात होती रहती है सर। मैं बताना चाहूंगी चांगो से सर, वापस हम डिकांग भी आए ना तो आंटी फोन करके पूछती है कि बेटा पहुंच गए, सही है, तबीयत ठीक है, खाना खा लिया? सर मैं तो अपने घर पे फोन लगाना भूल गई थी। फिर एक दिन मेरे पापा ने फोन करके बताया कि निकिता हमको तो भूल ही गई हो लगता है। मैंने बोला कि मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं अपने घर से दूर आई हूँ।
5: अच्छा निकिता जी, आप पहले भी कहीं गई हैं ऐसे अकेले घूमने, अपने तरफ अपनी हिम्मत करके कहीं जाना हुआ, ऐसा कभी हुआ पहले?
4: नहीं सर, ये पहली बार।
5: अच्छा, पहली बार हुआ। तो घर के लोगों को क्या लग रहा है अब?
4: सर यहाँ के जो मैं यहाँ से बाहर निकली ना सर, तब मेरे माता पिता ने मुझे पूछा था कि तुम कैसे जाने वाले हो, मगर सर मैं अकेली सफर करके यात्रा करके निकली। तब मुझे सर बचपन में जो कविताएं मैंने सुनी थी भारत के बारे में, वो आज मैंने वास्तविक रूप से भारत को महसूस करके जिया है सर। और जब मैं सर वापस घर पे आई ना, तब मेरी मम्मी पापा मुझे क्या पूछ रहे पता है आपको? वो पूछ रहे हैं कि मैंने पूछा कि आप मैं आ गई अब तो आप खुश होंगे ना, तो बोल रहे हमें भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी पे कि हमारी बच्चियों को और से और ऊपर तक लेके जाएगी। मैं क्या, हाँ हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से मैं वहां तक पहुंच पाई हूँ।
5: कभी गांव वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए और आपके पूरे परिवार को बिठाकर गांव वालों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आजकल तो वहां भी 4G तो पहुंच ही चुका है।
4: जी जी सर। सर मैं एक बात बोलूं आपसे?
5: हाँ बोलिए, आप तीसरी बार बोल रही हो।
4: सर मैं बताना चाहूंगी कि सर हम जब 7 दिनों तक वहां पे रुके ना सर, तो हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे थे सर। और पहली बार जब हम स्वच्छता अभियान के लिए निकले लोगों के साथ, तो हमने वहां पे कौन सा गीत गाया पता है सर? साफ सफाई करते करते हम गा रहे हैं, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। और सर ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर में गीत गुनगुनाते हुए काम कर रहे हैं। और सर उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, ये थी सर हम दूसरे दिन गए बच्चों के साथ खेलकूद करने के लिए सर। हम वॉलीबॉल खेल रहे थे और वहां के बच्चों के साथ मिलके सर जो हमने नारे लगाए हैं सर, आप सुनिए जरा, वो नारे ये थे सर, हम शिव शक्ति हईशा, हम युवा शक्ति हईशा, हम जीतने वाले हईशा, हम आदि शक्ति हईशा। सर ये सुन के तो पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो रहे थे। लग रहा था सर कि जैसे मैं हमारे आज के जो हमारे मीराबाई का जो प्रोग्राम होने वाला है एथलेटिक्स में, मैं सोच रही हूँ सर कि यही नारे मैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए घर बैठे बैठे लगाऊं।
5: देखिए हमारे देश में सदियों से एक अच्छी परंपरा रही सामूहिकता की, और सामूहिकता के साथ गीत गाते गाते कामों को करना और उस काम के साथ गीत भी बना देना, जो इस प्रकार का काम हो उसी का गीत बना देना, ये हमारे देश की बहुत बड़ी विशेषता रही है। उस सामूहिकता से शक्ति आती थी और गीत गाने से तनाव मुक्त काम होता रहता था। अच्छा निकिता जी, आजकल सोलो ट्रैवलिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है। सोलो ट्रैवलिंग इज अ वे ऑफ डिस्कवरिंग द वर्ल्ड वाइल डिस्कवरिंग योरसेल्फ। एक तरीके से आप लोग भी सोलो गए थे, मगर वापस आते हुए माय भारत ने सबको परिवार बना दिया होगा। आपने पूरी यात्रा अकेले ही की है, ये भारत की बेटियों के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है। हमारी कोशिश है कि हमारा हर युवा, हर बेटी इसी भरोसे और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। आइए अब देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़ रहा है।
4: जी जी सर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
6: बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी। अब मेरा अनुरोध है जालो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े माय भारत वॉलंटियर श्री सुनील कुमार केला जी से कि वे अपना अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साझा करें।
7: आदरणीय प्रधानमंत्री
5: सुनील जी, नमस्ते।
7: राम राम सर। राम राम सर।
5: ए राम राम। सुनील जी बताइए, पहले अपने बारे में बताइए और फिर आपने कहां और किस गांव का दौरा किया उसके विषय में जरा बताइए।
7: आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हूँ सुनील रमेश कुमार केला, राजस्थान री गौरवशाली धरती सु एक माय भारत वॉलेंटियर हा। अन आपरो घणो घणो आभार व्यक्त करा हा कि आपने मारे जेड़ा कितना ही युवान है सीमावर्ती गांव में जाननो देखननो उथाली चीज रो महसूस करननो अवसर दिनो। सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत के सारे युवाओं की तरफ से कि पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत आपके जो दूरस्थ गांवों में जो मेरे जैसे जरूरतमंद युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसमें निकली है और साथ में हमें लाभ मिला इस विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। मैं राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धारचांगो उपरेला गांव में गया था जी।
5: नहीं, आप पढ़ाई क्या करते हैं, क्या प्रवृत्ति क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ने का अवसर कब से आया? इस कार्यक्रम के पहले कोई कार्यक्रम किया था क्या माय भारत में?
7: आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इससे पहले मैं अपने यूथ पार्लियामेंट के अंदर जा चुका हूँ एक बार और इसका जो अवसर है मुझे माय भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आईडी और फोन पे मैसेज आया कि एक विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गाँवों का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे जाएं और अपने भारत को गहराई से समझें।
5: अच्छा सुनील, आप तो स्वयं ही सीमावर्ती गांव से हैं, ऐसे में अपने गांव और जिस गांव का आपने भ्रमण किया वहां क्या समानताएं और विभिन्नताएं क्या क्या महसूस किया आपने?
7: आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोकेशन तो चाहे अलग हो सकती है लेकिन दोनों जगह पे एक चीज समान थी, वो अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा, वहां के लोगों की बहादुरी जो हम राजस्थान में देखते हैं। दूसरी चीज वहां पे उन लोगों का जो अपनापन है, जो डाउन टू अर्थ वहां के लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से हमारा स्वागत किया, हमें वहां पे रखा, वहां का खाना खिलाया और ये सारी चीजें हमें समानता की तरफ दिखती है। और विभिन्नता है तो ये है कि हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड से निकल करके सीधे हिमाचल के 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर गए हैं तो लगा कि लाइफ का सीन किसी ने बदल दिया हो, लेकिन उन लोगों ने हमें ऐसा रखा कि हमें लगा ही नहीं कि हम अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर आए हुए हैं।
5: अच्छा, आप जब वहां थे तो वहां से अपने परिवार के साथ संपर्क करते थे?
7: जी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने लगभग समझे कि रोज का ही था, हमारे जहाँ कैंप लगा हुआ था वहां से घर पे वीडियो कॉल करके और घर वालों को बताते थे कि ये हमारे पास से जहाँ हम होमस्टे में रुके थे उसके पीछे जो नदी बह रही थी सतलुज, तो उसका व्यू हम रोज अपने घर वालों को बताते थे कि ये व्यू है। यहाँ की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके बारे में बताते थे कि कैसी पढ़ाई चल रही है वहां पे, वहां के जो जन औषधि केंद्र है, अस्पताल है, वहां का हमने बताया, जो खेल मैदान थे जहां खेलने गए थे टूर्नामेंट उसके बारे में हमने अपने घर पे वीडियो कॉल से बताया।
5: वहां से अपने दोस्तों को कोई फोटो वोटो भेजे थे क्या?
7: रोज रेगुलर फोटो भेजते थे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पोस्ट करते थे तो सारे लोग पूछने लगे कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो और आपने यहाँ पे जाने के लिए क्या यूज किया है। तो हमने उनको बताया कि माय भारत पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करके और क्विज कंपटीशन जीत करके जो मेरा नंबर लगा है, जो मुझे चयनित किया गया है, वहां से उस माध्यम से मैं वहां पे पहुंचा हूं।
5: सुनील जी कहते हैं कि भ्रमण से भ्रम मिटते हैं, भ्रमण से भ्रम मिटते हैं। मैं ये योजना चाहता हूं कि भारत के बॉर्डर विलेजों को लेकर आम तौर पर जो लोगों के मन में भ्रम होते हैं, आपको भी शायद जाने से पहले रहे होंगे, आपको अगर कोई पूछे कि भाई वहां जाने के बाद पहले की आपकी सोच, पहले के जो भ्रम थे उसमें क्या क्या भ्रम मिटे होंगे?
7: आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब हमारी ब्रीफिंग नहीं हुई थी तब तक हमें ऐसा लगा कि हम वहां जाएंगे तो रास्ते कैसे होंगे वहां पहुंचने के लिए, वहां पे रहने के लिए जगह कैसी होगी, खाना कैसा मिलेगा, लाइट होगी या नहीं होगी, हमारा फोन चालू होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें बहुत सारी हमारे दिमाग में थी क्योंकि ऑनलाइन जितने भी हमने आज पुराने वीडियो देखे हैं तो उसमें हमें ऐसा लगा कि वहां पे सुख सुविधाएं बाकी भारत से अलग है, क्योंकि चूंकि मैं राजस्थान से रहता हूँ और एक बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य है, यहाँ लोग भी बहुत है और बाहर से लोग आते भी बहुत है, तो मुझे लगा कि बॉर्डर विलेज जो पहाड़ों के बीच में आया हुआ गांव है वहां पे जाके कैसा होगा, लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा तो वहां की सड़कें हमारे राजस्थान की सड़कों को टक्कर दे रही थी। और जिस ड्राइवर भैया के साथ हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो उन भैया ने हमें बताया कि आप जिस गाड़ी में अभी बैठ के गाने सुनते हुए मजे से जा रहे हो, यहाँ पे कुछ समय पहले तक खड्डे ही थे, बड़ी गाड़ियां आ जा नहीं सकती थी, और अब इतने शानदार हाईवे बन रहे हैं कि हमारे घर के बाहर ही सड़क आ रही है। चूंकि हम 3 दिन बेस कैंप में रहे थे और वहां से निकल करके हमारी जो ब्रीफिंग हुई और उसके बाद हम वहां से निकल करके जहाँ अपने अपने गांव में जा गए, जैसे मैं चांगो गांव में गया था, तो उस गांव तक के लिए हमें जो मन में कल्पना थी कि हम जाएंगे जहां तक रास्ता जा रहा है वहां तक गाड़ी में जाना है और फिर उतर करके ट्रैकिंग करके और हम अपने गांव जाएंगे, तो जैसे ही हमारी आंख खुली उस बस में से, गाड़ी में से, तो हमने देखा कि हमारी जो बस रुकी हुई है वो जस्ट हमारे होम स्टे के बाहर ही रुकी है। तो वो कभी हमने विचार नहीं किया था। वहां के बुजुर्ग बताते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपके ही समय में उन्होंने आजादी के बाद पहली बार वहां से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है। उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे, और हम वहां गए तो हमने रात में वहां पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया माननीय मोदी जी, कि वहां पे हर जगह पे सोलर प्लेट और लगी हुई है जहां से वो लोग बिजली यूज करते हैं। हमारे राजस्थान में मैंने बहुत सारी सोलर प्लेटें और पवन चक्कियां देखी है और रोज देखते भी हैं हम लोग, लेकिन वहां हमने देखा तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे माननीय मोदी जी की सोलर ऊर्जा से प्लेट बनी हुई है। अब उनको ये नहीं पता कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत ये सारी सुविधाएं अब हर वहां पे आम जन को मिल रही है।
5: अच्छा सुनील जी, अभी भी उन लोगों से कोई संपर्क रखते हो कि आते ही भूल गए उन लोगों को और वो आपको भी भूल गए?
7: नहीं, जैसा पहले निकिता बहन ने बताया है, चूंकि हमारा होम स्टे एक ही था तो सुभाष जी और शकुंतला जी से आज भी संपर्क बना हुआ है। और सिर्फ वो गांव नहीं, हिमाचल में हमारे जो वॉलेंटियर थे, जो चंबा से थे, हमीरपुर से थे, अलग अलग कसोल से थे, तो उन सब से आज भी संपर्क बना हुआ है। और उनको मैं स्पेशली इन्विटेशन देके आया हूँ कि आप हमारे राजस्थान में आइए, चूंकि आप भी सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं, और हमारे राजस्थान के जैसलमेर में आइए, तनोट माता मंदिर के दर्शन कीजिए, बाड़मेर में आइए। और आपके माध्यम से एक बार फिर मैं उन सबको निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप आइए कृपया करके राजस्थान में हमारे धोरों की जो
5: आज इस कार्यक्रम में आपके गाँव के लोग भी जुड़े हैं क्या, वहां के वाले?
7: जी जुड़े हुए हैं।
5: अच्छा सुनील जी, आपसे बात करके लगा कि सीमावर्ती गांव चाहे राजस्थान का हो, कश्मीर का हो, हिमाचल का हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का, हर जगह का युवा एक ही तरह से सोचता है। हमारे सीमावर्ती गांव के लोग भौगोलिक तौर पर भले ही दूर दिखे पर भावनात्मक तौर पर

0: there was a little bit fear inside me, how are we gonna survive there? And after reaching that, but some of the like my birth officials give some kit tools to some like jacket, whatever it is, and there was the different type of clothes was there, sir, to wear. And but it's not like there is not that much different, because there is some bed sheets and cloths which was made by woolen, and also visited some hand looming places where the woolen crafts did happen. It was such a great thing, and we just wear gloves, caps, socks, what we just became like a army man, like jacket full of green color jacket and full of gloves and trekking shoes, whatever it is, it made us so warm, sir.
1: भव्य गारो, आपके हिसाब से उन लोगों का लाइफस्टाइल आप लोगों से कैसे अलग था? आपने क्या ऑब्जर्व किया अबाउट देयर लाइफस्टाइल?
0: यस सर, सो हियर वी आर द पीपल, वी फील सैड फॉर लिटिल थिंग्स, बट आफ्टर इन दिस आफ्टर दिस 7 days प्रोग्राम में हियर वी जस्ट विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस लाइक मुखवा, धराली, भगोरी. We interacted with the people. They are so humble and down to earth, and they just shown love, care, and with a smile. Always they are smiling like that. And we visited Dharali also, where the landslide occurs. And I interacted with one of the people. Like, it was very hard to live here, right? How you are living? Like it was happening, landslide was continuously happening, right? So how you are staying here? Like that, I asked it. They just answered me with a smile. It will happen, but if we will go from here, it was a native place of us. It was the birthplace of us. If we leave, then who will stay here? Like that, they answered. At the time, I realized that how people are so confident here. There are hardships, so many hardships are there, so many things are happening, but they are staying here with lot of confidence. That the thing I learned from them, sir.
1: अच्छा, वहाँ के लोगों का डांस बहुत स्लो होता है और बहुत रिदमेटिक होता है. आपने डांस वगैरह सीखा क्या?
2: डांस स्लो
3: अकड़ के डांस चाला स्लो ఉంటది, రిథం ఉంటది.
0: Yes sir, the dance was very slow, and we in our last day we had cultural activities also. Here we saw some of the cultural activities, the Gadwali song they played, and some of like they dance for that. It was like slow motion. First we felt like why these people are just moving like that. After that we sync with rhythm. It was feel like very good dance. In our state we had like and I'll say in Telugu it was a natu, like full we will dance with full of josh and we just get tired. But there it was slow motion with a rhythm, sir, which felt like a meditation and peaceful thing. We just felt like we just went to dream, and we just seeing like that only. There is no that much hard and not like that, and just we are like dreaming and seeing them. They are just dancing like with a slow motion. We also dancing with like that.
1: भव्य गारो, आपसे बात करके ये भावना और सशक्त हुई है कि मेरे देश के युवा के लिए सबसे पहले देश है. The way you have upheld the spirit of Ek Bharat Shrestha Bharat will inspire others. अच्छी बात यह है कि आपने खूब मौज मस्ती की. सही में आपकी रील्स देखकर तो आपके आंध्र प्रदेश वाले दोस्तों फोमो में आ गए होंगे. ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहे, बहुत बहुत बधाई. चलो अब और किसी से बात करते हैं. किससे बात करनी है
4: अब? बहुत धन्यवाद भवश्री जी. अब मेरा अनुरोध है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से हमारे साथ जुड़ी माय भारत वॉलंटियर सयंतिका मिस्त्री जी से कि वे अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करें.
5: नमस्कार टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर. अमर नाम शायुंतिका, अ प्राउड माय भारत वॉलंटियर फ्रॉम द वेरी ब्यूटीफुल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स.
1: सयंतिका, अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की, मुझे लगता है आप यंगेस्ट वन दिखती हो. सबसे छोटी हो आप.
5: आई एम 21.
1: अच्छा सयंतिका, आपके विषय में बताइए और दूसरा आप किस गांव में गई, कैसे गई, कितना कठिन था वहां पहुंचना?
5: जी सर, सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने माई भारत पोर्टल जैसे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में सोचा, जिसमें मेरे जैसे 2.5 करोड़ युवाओं को मौका मिला कि वो खुद भारत की, अपने देश की आवाज बन सके। और इसी के अंतर्गत इस साल हुए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के अंतर्गत मुझे मौका मिला बॉर्डर विलेजेस में जाने का, और मुझे मौका मिला बहुत ही खूबसूरत मान विलेज में जाने का जो लद्दाख में है। सर, 0 फीट से अचानक 17,000 फीट जाना मेरे लिए एक बहुत ही नया अनुभव था, और वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन भी हमसे बहुत अलग और बहुत हार्श थी, और हमें एक्लिमेटाइजेशन के लिए 5 दिन दिया गया था, और एक्लिमेटाइजेशन के पहले दिन मैं थोड़ी बीमार हो गई थी, पर माई भारत की टीम ने, जी सर, पर माई भारत की टीम ने और ITBP के जवानों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। और इसी में से मैं एक छोटा दिल को छू जाने वाला इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। जब मैं बीमार हुई, मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा था एक्यूट माउंटेन सिकनेस के कारण, तब मुझे ITBP के हॉस्पिटल लेकर जाया गया 5th बटालियन से। तब सर मैंने वहां डॉक्टर को, ITBP के डॉक्टर्स को कॉन्वर्जेशन करते हुए सुना अपने ही जवानों से कि हम आपकी बाद में चेकअप करेंगे, पहले हमें इस बेटी को ठीक करना है जो हमारी मेहमान बनकर आई है। इससे मुझे पता चला कि हमारे ITBP के जवान ना सिर्फ हमारी बॉर्डर की रक्षा करना जानते हैं, बल्कि उनके मन में उनके देशवासियों के लिए भी कितना प्यार और कितना केयर है।
1: सैंतिका, आपने अंडमान निकोबार से लद्दाख तक की यात्रा पूरी की
5: जी।
1: एक द्वीप से 17,000 फीट तक की यात्रा का अनुभव, एक प्रकार से जमीन से शिखर तक जाना, आपके लिए अंडमान का जीवन, वहां के लोगों की कठिनाइयां, ठंड का मौसम, बहुत पतली हवा, आपको कैसा लगा, क्या अनुभव किया?
5: सर, मैंने लद्दाख में जाकर यह अनुभव किया कि मैं जहां रह रही हूं वहां डेली लाइफ कितना आसान है, और लद्दाख जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है लो एयर प्रेशर की वजह से, और वहाँ जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ पर हर रोज अपने बॉडी को अडेप्ट कर पाना सर अपने आप में ही एक अचीवमेंट है।
2: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर वन शो दंगल। छात्र आंदोलन का शोर थम गया है, लेकिन सवाल अब भी गूंज रहे हैं। जंतर मंतर अब खाली है, लेकिन लोकतंत्र की कहानी यही खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आंदोलन का आखिरी पड़ाव अक्सर सड़क नहीं, संसद ही होती है। अब सियासत का केंद्र जंतर मंतर नहीं बल्कि संसद भवन होगा। दिल्ली में राहुल गांधी पुलिसिया कार्रवाई को लेकर खुद सीधा गृह मंत्री अमित शाह से जो है जवाब मांग रहे हैं। तो बिहार के सिवान में पुलिसिया फायरिंग को लेकर तेजस्वी यादव राज्य सरकार पर हमलावर हैं, यानी कि छात्र आंदोलन की गूंज अब राजनीति और संसद के गलियारे में सुनाई देने वाली है। उधर केंद्र सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की तैयारियों में है, ऐसे में संसद के सामने दो चुनौती हैं, एक जवाबदेही तय करने की और दूसरी व्यवस्था सुधारने की। लोकतंत्र में सत्ता का दायित्व जवाब देना है और विपक्ष का दायित्व सवाल पूछना, लेकिन अंत में फैसला न नारों से होगा न आरोपों से, क्योंकि देश के करोड़ों युवाओं की उम्मीदें किसी दल से नहीं बल्कि एक निष्पक्ष और भरोसेमंद व्यवस्था से जुड़ी है। तो क्या बिहार के सिवान में गोली चलाने वाले पुलिस वाले पर एक्शन होगा? क्या उन्होंने जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाया, उन पर कार्रवाई होगी? क्या संसद में जब बिल पेश होगा सभी समस्याओं का वहीं से समाधान निकलेगा? आज उन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। तो चलिए दंगल की शुरुआत करते हैं, और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी, हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस RJD के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, साथ ही साथ LJPR का पक्ष रखेंगे धीरेन्द्र कुमार, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय सराफ जी भी जुड़े हैं, और फॉर्मर DGP डॉक्टर विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत आज शहजाद पूनावाला आपसे। सरकार छात्रों के आगे झुक गई, सरकार ने इस्तीफा ले लिया, लेकिन अब राहुल गांधी कुछ सवालों के साथ सामने आए हैं। बिल्कुल सीधे से सवाल है कि भाई पुलिसिया कार्रवाई किसके आदेश पर हुई, क्या आपके पास सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब है?
6: सबसे पहले राजीव जी, सभी दर्शकों को और सभी देशवासियों की तरफ से आज कारगिल विजय दिवस है, तो मैं हमारे शूरवीरों को नमन करता हूं। यह अलग बात है कि कांग्रेस ने 5 वर्ष कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया और ना वो किसी भी व्यक्ति जो यूनिफॉर्म में उनका सम्मान करती है, परंतु मैं इस मुद्दे पर आना चाहता हूं। जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, और पूरा जवाब देने दीजिएगा, दिल्ली पुलिस ने क्लैरिफाई किया है कि उनके पास ना पैलेट गन है ना किसी ने पैलेट गन चलाई। हाँ, ये जरूर बात है कि कहीं किसी रिपोर्ट को कोट करते हुए कहा जा रहा है कि पैलेट गन से किसी को चोट आई। तो मेरा पूछना यह है कि ये जांच का निष्कर्ष आए उससे पहले कि ये पैलेट गन अगर इस्तेमाल हुई भी है तो किसकी तरफ से हुई है? केवल पुलिस वालों पर ही आरोप लगाने की ये प्रथा कांग्रेस पार्टी की क्यों है? कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा क्या प्रमाण? अगर प्रमाण है तो कोर्ट या तो पार्लियामेंट, दोनों जगह खुले हैं, वहां पर आकर वो प्रमाण तो प्रस्तुत करे। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, पैलेट गन सबसे पहले पता है कब यूज हुआ? 2010 में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया, बीसीओ लोगों को मारा। एनीवे, अभी हाल ही में एचसीयू प्रोटेस्ट हुआ था तेलंगाना में, पीट पीट कर कूट कूट कर रेवंत रेड्डी ने बोला नंगा करके।
7: मेरा बिल्कुल पॉइंटेड सवाल था, मैं समझ रहा हूं आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इधर उधर जवाब ना देकर आप बिल्कुल सीधा एक ही उसी सवाल पर, पुलिसिया कार्रवाई किसके आदेश पर हुई?
6: सीधा सीधा कह दिया है, पुलिसिया कार्रवाई ऐसा है, 70 पुलिस वाले से 150 पुलिस वाले से अधिक लोगों को चोट पहुंची, पुलिस को गोली मार देंगे, पार्लियामेंट उखाड़ देंगे, और किस प्रकार से आरएफएफ को दौड़ा दौड़ाकर, और कांग्रेस के एक सांसद कुरियाकोज ने तो थप्पड़ मारा, जो आप लोगों ने दिखाया नहीं वीडियो, मेरे पास वो वीडियो मैं दिखा देता हूं। अगर पुलिस वालों ने उन लोगों पर कार्रवाई की है जिन लोगों ने कानून तोड़ा या उन्होंने हाथापाई की या वायलेंस,
7: मैं समझ गया आप इस पर जवाब नहीं दे रहे,
6: विषय है उसके वीडियो
7: लोग भी देख रहे हैं कि आप इस पर जवाब नहीं दे रहे। चलो इसका जवाब दे दीजिए, उस सादे कपड़ों में कौन लोग थे? वो सादे कपड़ों में जो बैठे हुए थे वो कौन लोग थे?
6: शायद आपको दिल्ली पुलिस की प्रेस वार्ता के बारे में मैं फिर से बताता हूं। दिल्ली पुलिस की प्रेस वार्ता में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि किसी ने भी किसी भी एसओपी के वायलेशन का उल्लंघन नहीं किया था। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आरएएफ डिप्लॉय होता है, ये कांग्रेस के जमाने से प्रोटोकॉल है कि वो नेम बैज इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि दंगाई या कोई भी असामाजिक तत्व जो है उनको आइडेंटिफाई करके उनके परिवार वालों को जाकर नुकसान ना पहुंचाए। क्या अगर आप इस एसओपी के खिलाफ है तो बता दीजिए कि
7: नेम बैज गलत सवाल ही नहीं है
6: और हर जगह पर दस सेकंड मुझे भी दे दीजिए राजीव जी। मुझे तो आज लगा कि जितने दिनों से आज तक और आपके चैनल के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग किया जा रहा था और वो होना भी चाहिए और हो गया, अच्छा है उन्होंने एक मॉरल हाईग्राउंड लिया। पर कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर, हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर और केरलम के एजुकेशन मिनिस्टर, तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर, झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर, आज मैं समझता हूं कि इनके ऊपर भी तो अकाउंटेबिलिटी की गाज गिरनी चाहिए ना। या आप ये कह रहे हैं कि जेनजी जो दिल्ली में थे वो जेनजी है पर पंजाब के जेनजी पिटते रहे, झारखंड के जेनजी लूटते रहे, कर्नाटका के जेनजी की परवाह नहीं, केरल के जेनजी की कोई चिंता नहीं? अगर इस प्रकार के दोहरे रवैये कम से कम आपके तो नहीं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और दूसरी बात और आखिरी बात कहकर मैं बंद करना चाहता हूं अपनी वाणी को, क्योंकि आज इस पैनल में ईशान त्यागी है। मुझे एक बात बताइए राजीव जी, दिल पर हाथ रख के, किसी संवैधानिक पद के व्यक्ति को अगर मैं बोलूं कि मैं उसको घसीट कर मारूंगा तो आप तो बोलेंगे ना कि शहजाद पूनावाला ये तो बिल्कुल ही असंसदीय और गैरकानूनी बात है। सुनिए इस बात को,
8: राहुल गांधी जी की इन्होंने टिप्पणी चलाई थी कि डंडे से मारेगी प्रधानमंत्री,
6: सुन लीजिए
8: मैं कहता हूं डंडे से ही नहीं मारेगा इस युवा प्रधानमंत्री को, घसीट के ले जाएगा और जिस सत्ता के अहंकार में वो चूर है
6: घसीट के ले जाएगा। ये ईशान त्यागी का बयान है,
7: बात आ गई है। आप हमारे रवैये पर भी सवाल पूछ रहे थे, हम तो सवाल लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन आप सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। मैं अब भी कहूंगा कि आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई किसके आदेश पर ये कार्रवाई। तो मैं दोबारा इसी सवाल के साथ मैं आज ये सवाल आपसे पूछता रहूंगा शहजाद, मैं वापस आऊंगा आपके पास। लेकिन ईशान आपके पास आते हुए, जो शहजाद भी पूरा कह रहे हैं कि भाई पुलिस वालों पर भी तो हमले हुए, तो अगर एक तरफ का खून बहता हुआ आपको दिखाई देता है और उस खून के बहने पर आपका खून खौलता है, तो दूसरी तरफ जब पुलिस वालों का खून टपक रहा था उनके माथे से, तब आपका खून क्यों नहीं खौल रहा है भाई?
9: राजीव जी देखिए, इस तरह के जो दंगाई थे वहां पर वो मौजूद थे दिल्ली पुलिस के साथ और आरएएफ की फोर्सेस के साथ। अभी देखिए, ये कहां सिखाया जाता है, ये कौन सी सादी वर्दी में लोग घूम रहे हैं, कहां कौन सी एसओपी में लिखा हुआ है, शहजाद पूनावाला जरा मुझे निकाल के दिखा दें कि बैचेस निकाल दिए जाएंगे या सादी वर्दी में लोग घूमेंगे वहां पे। ये जो दंगई है ना, ये आरएसएस की शाखाओं में पैदा होते हैं। आप ये देखिए इस तरह की जो शाखाएं वहां पे लगती हैं, जो लाठी भांजने की वहां पे जो ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस की शाखाओं में, जो नए एजुकेशन मिनिस्टर है, ये उनकी फोटो दिखा रहा हूं आपको मैं, प्रहलाद जोशी की, ऐसे लोगों को आरएसएस वाले रिक्रूट करते हैं। और जब इस तरह के कोई पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं, जब बच्चे हमारे बाहर आते हैं प्रोटेस्ट करने, तो उन पे लाठी भांजी जाती है सादे कपड़ों में, इसलिए ये लोग घूम रहे थे। अभी इन्होंने कहा कि एक ट्वीट का जिक्र किया, ये रहा वो ट्वीट, ये जो ट्वीट दिल्ली पुलिस का ट्वीट है, इसमें ये कह रहे हैं कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। और इसी तरीके से जो सीमा ढूंढिया है, आईजी है आरएएफ की, उन्होंने भी एक मीटिंग ली अभी, और उस मीटिंग में बोला कि प्रोजेक्टाइल अटैक गन यानी कि जो पैलेट गन है उसका अटैक उसका यूज नहीं हुआ। लेकिन ये देखिए, परसों राहुल गांधी जी ने जो सच का सच को सबके सामने ले आया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। इस बच्चे को देखिए आप जो प्रोटेस्ट करने आया था, इस पर पैलेट गन चलाई गई, इसकी आंख फोड़ दी गई, और आप ये देखिए किस तरह की इसको सीवियर चोटें आई है। ये देखिए आप किस तरह से सीवियर चोटें आई हैं, आप ही देखिए, ये देखिए ये सब तो
7: सवाल नहीं, मैंने ये सवाल ईशान पूछे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्योंकि समय कम है ना, मैं सब मेहमान के पास जाऊंगा। लेकिन आप ये बताइए ना, आप ये बताइए कि आप उन पुलिस वालों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं जिनको चोट आई है, आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं?
9: बिल्कुल खड़े हैं,
7: कहां खड़े हैं आप, तो कह रहे हैं उन पर कार्रवाई करो।
9: मैं वही कह रहा हूं, जो वो आरएसएस के उपद्रवी हैं, जो स्टूडेंट के भेस में घुस गए थे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मीडिया को परेशान किया, या आरएफ के जवानों को पीटा, या पुलिस के जवानों को पीटा। ये देखिए, जिस दिन बच्चे पीसफुल मार्च कर रहे थे, उस दिन देखिए किस तरीके से जो यहाँ पे सैनिक हैं, उनको शूट टू किल की पोजीशन में वहां पे तैनात कर दिया गया सरकार के द्वारा।
7: समय कम है, जल्दी जल्दी से रिएक्शन में सबके, लेकिन पहले 20 सेकंड में, चूंकि सवाल आपकी तरफ है, शहजाद आप 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए।
9: आप राजी की पूरा समय,
7: मैं ईशान बहुत ज्यादा समय दिया ना, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत देरी से डिबेट शुरू
9: हुआ। 10 सेकंड दीजिए,
7: मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ शहजाद, आ रहा हूँ
9: शहजाद,
7: नाम लेने से क्या हो जाएगा, मैं लौट रहा हूँ, आपके पास दे दूंगा समय।
10: नहीं, मेरी बारी है।
7: हाँ, वो 10 सेकंड में कंप्लीट करें,
9: मेरे को समय दे रहे हैं, आप शांत रहिए जरा, नहीं करूंगा, बच्चों को मारते हैं उसके बाद, आप
10: मैं यील्ड नहीं करूंगा।
9: आप ये बताइए कि चेन ऑफ कमांड फॉलो, आप राजीव जी चुप नहीं करवा पा रहे, तो मत बुलवाइए मेरे से,
10: नहीं करूंगा,
9: आपको इनसे ही
7: बुलवाना, आप अपना कंप्लीट कर लेते इतने में ईशान,
10: मैं यील्ड
9: नहीं, तो आप ही बोले जा रहे हैं
7: शहजाद, प्लीज यार 10 सेकंड दे दीजिए ना, ये ठीक नहीं है, ठीक, आप 10 सेकंड में कंप्लीट करिए, आप क्या बोल रहे हैं?
9: गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये बताएं कि चेन ऑफ कमांड फॉलो हुआ था कि नहीं हुआ था, किस मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए थे, किस पुलिस फोर्स ऑन ड्यूटी ने ऑर्डर दिए थे, क्या गृह मंत्री ने ऑर्डर दिए थे,
7: शहजाद बोलिए,
10: चाहते हैं कि मेरी बारी के ऊपर भी वो बोले तो आप दिखा दीजिए, मैं अब चाहूंगा कि मेरी बारी में मेरी बात आने दी जाए
7: 20 सेकंड में, लेकिन शहजाद दूसरे मेहमान के पास भी जाना है,
10: मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, मेरी
7: बिल्कुल शहजाद दे दिया,
10: डिस्टर्बेंस ना किया जाए, मेरे बीच में डिस्टर्बेंस ना किया जाए, मेरे बीच में डिस्टर्बेंस ना किया जाए, मैं अपनी
7: जो इंटरप्ट करा प्लीज उसका
10: मेरे बीच में उनका लगातार डिस्टर्बेंस अलाउ किया जा रहा है, टू विंडो फॉर्मेट रख के मेरे
7: साथ बात रखी अपनी, वही किया हुआ है शहजाद, बात रखी अपनी,
10: ये हाँ थैंक यू, ये फुटेज है जिसमें कांग्रेस का सांसद कुरियोकोस यादव नाम के एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार रहा है, इस पर आज तक का और कांग्रेस का क्या स्टैंड है? ईशान त्यागी ने बोला है कि वो पैलेट पे दिल्ली पुलिस का एड्रेस लिखा था क्या? वो पैलेट तो कोई और भी ला सकता है, परंतु मैं पूछा था तो ईशान त्यागी का बयान मैंने सुनवाया कि प्रधानमंत्री को घसीट के मारेंगे, और मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी के उन नेताओं का इस्तीफा कब होगा? ये निर्लज व्यक्ति सैनिकों का नाम लिया अभी उसने बोला सैनिकों ने फायरिंग की है, फायरिंग की पोजिशन में थे, सैनिक कहां पे थे वहां पे? मैं पूछना चाहता हूं राजीव ढोंडियाल जी, कारगिल विजय दिवस पर ये कांग्रेस पार्टी जिसने कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया वो सैनिकों को घसीट रही है, अब इसको अब उन्होंने बोला सैनिकों ने फायरिंग की पोजीशन ली, कौन सा सैनिक था वहां पे, कौन सा सैनिक था? पुलिस वाले थे, आरएएफ थी, सैनिक कहां से आ गए?
7: तस्वीर दिखा रहे हैं शहजाद, दो तस्वीर दिखा रहे हैं सवाल के साथ, दो तस्वीर भी दिख रही है, ठीक है नवल किशोर, ठीक है मैं नहीं, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं सबके पास जाना, प्रोफेसर नवल किशोर अपनी बात रखें,
9: कैसे चलाई गई वहां पर देखिए।
11: राजीव जी ये मेरी बारी है मुझे लगता है।
7: हाँ भूमिका नवल, सीधा जो जो आपको कहना है सीधे बोलें।
11: हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। पूरे देश में यह चर्चा का विषय है, लोगों ने देखा है कि पूरी तरह से छात्रों नौजवानों के आंदोलन को कुचलने का और उसको बर्बाद करने का पूरा कोशिश करने के बाद जब उन्हें लगा कि देश में ये नहीं चलेगा और पूरे छात्र को हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से अहिंसक तरीके से आंदोलन करने का और मुद्दों को प्राथमिकता दी है और उनकी जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और वह बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में दिख रहा है। सही बात यह है कि पूरे 12 साल में जब भी आंदोलन हुए, जब भी सही बात को लेकर, मुद्दे को लेकर आंदोलन हुए, वो चाहे किसान की आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवानों की आंदोलन हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर हो, चाहे SC ST एक्ट हो, ये तमाम समय में आपने देखा होगा कि गोलियां सरकार की तरफ से चली हैं। पिछले दिनों देखा होगा आपने कि बिहार में AK-47 से गोली चलाई जा रही है, वो चाहे सिवान हो या सीवर हो या पटना हो, यह तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नैतिकता ध्वस्त हो चुकी है। वो सुनती भी नहीं है, अभी भी ये कह रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं ली है, उन्होंने केवल आंदोलन को देखकर किया है। ये बात कितना शर्मनाक है, पूरा देश जानता है कि पिछले 4 साल में धर्मेंद्र प्रधान के समय में नीट के
12: आपके बात आ गई, लेकिन धीरेन्द्र आपके पास आते हुए कि हमें मालूम नहीं था कि सड़कों पर वहां आतंकवादी थे जब AK-47 चलाए गए, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और तस्वीर भी सामने आई है, AK-47 तानी गई है।
13: मुझे लगता है कि ये विषय जो भी पुलिस अगर कहीं पे साइलेंट चलाई है या AK-47 का मामला आ रहा है तो पुलिस वाले तो लगातार दंडित हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है वो, अगर जांच में आएंगे तो चूंकि कानून के पहरेदार है और 24 घंटे कानून के किताब और कानून के पहरे में ही रहते हैं, तो अगर उन्होंने कोई गलती की होगी उसकी सजा के लिए बहुत बड़े
12: धीरेन्द्र जी इतनी बड़ी गलती मतलब नहीं है। इन पहरेदारों पर कोई पहरेदारी नहीं कर रहा है क्या? कोई देख नहीं रहा, उनको खुली छूट दे रखी है, फिर बाद में कहेंगे कि कोई गलती हो गई होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, निष्पक्ष जांच होगी, ये कोई बात है?
13: नहीं, आए दिन सप्ताह में एक दिन पुलिस वाले ऑफिसर पुलिस वाले को दंड देने के लिए ही दिन रखते हैं, ये आपको बढ़िया से पुलिस कमिश्नर साहब बोलेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसे असामाजिक लोग जिन्होंने पत्थरे फेंकी छात्र के भेष में आकर के, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ड्यूटी में लगे हुए बिहार में समस्तीपुर के एक मजिस्ट्रेट की आंख चली गई बेचारे नौजवान की, आप बताइए कि उसका क्या कसूर है? छात्र तो ऐसा नहीं करेंगे ना, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने का काम पुलिस कर रही है। अब अपराधियों के साथ वही कानून लगेगा जो अपराध करने वाले, चाहे वो बाहर के लोग हो चाहे पुलिस वाले हो, कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पुलिस वाले को दंड देने के लिए अलग धाराएं होगी और आम लोगों के लिए अलग धाराएं होंगी। इसको अलग करके देखना मुझे लगता है कि राजनीति है, इससे बचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आंदोलन करने वाले जो छात्र थे उन लोगों ने कभी भी बहुत संयम का परिचय दिया, लेकिन उसके भीड़ पर कुछ लोग वहां पे जाके अपनी गोटियां सेक रहे थे, अपनी रोटियां सेक रहे थे, ऐसे लोगों को देश हित में चिन्हित करना आवश्यक है और मुझे लगता है कि पुलिस को इसकी कार्रवाई करनी चाहिए।
12: लेकिन ये लापरवाही कैसे हो रही है गजब की, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि AK-47 तान दी जा रही है और गोली चल जा रही है, लेकिन इसको लापरवाही कह दिया जा रहा है। डॉक्टर विक्रम सिंह, मतलब AK-47 मतलब वो तो विजुअल सामने है ना जिसमें AK-47 तानी गई है, इज इट क्या ये सामान्य है इस तरह से तान देना और उसे गोली चल जाना?
14: राजीव जी, मैं निवेदन ये करूंगा, एक फ्लैग मार्च होता है और फ्लैग मार्च होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, CBM कहते हैं, जब जनता में भय और आतंक व्याप्त होता है वो केवल प्रदर्शन के होते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और जब फ्लैग मार्च होता है किसी भी आयोजन के जरिए ये तो देखना पड़ेगा कि वहां पर AK-47 अगर दिखाई गई तो उसका अभिप्राय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था या केवल यही था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, एक तरीके से कि हमारे पास AK-47 है और हम चलाने में चूकेंगे नहीं। लेकिन सिविलियन डिस्टर्बेंसेस में इसको अवॉइड करना चाहिए, ऑटोमेटिक वेपन्स का प्रदर्शन भी सिविलियन डिस्टर्बेंसेस में राजीव जी होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपके पैलेट के बारे में केवल दो वाक्य कहना चाहूंगा, जब IG RAF और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कह दिया कि 12 बोर की बंदूकें इन्हें इश्यू नहीं की गई हैं और ये गनशॉट इंजरीज जो है ये स्किन डीप है और जो सबसे छोटा छर्रा होता है 8 नंबर का ये वो है और स्किन डीप है, ये मसल में नहीं गई है, केवल स्किन के ऊपर लगी है। अब मेडिकल रिपोर्ट में ये आएगा कि स्कॉर्चिंग सिंजिंग हुई है, कितने नजदीक से मारा है, लेकिन ये भी होता है ऐसे डिस्टर्बेंसेस में जहां शातिर बदमाश हाजी अफजाल और अरशद जैसे थे वहां पर, तो लोग कट्टे लेके आते हैं 12 बोर के, इसकी भी संभावना है कि कट्टे सग गया होगा और लग गया होगा किसी बच्चे को और वो अब ये दे रहे कि साहब पुलिस ने मारा। ये जांच का विषय है, जांच में रहने दे, क्योंकि जब पुलिस फायरिंग करेगी कोई भी अग्नेय अस्त्र का तो उसके लिखित आदेश होते हैं, आर्मरी में गिनती होती है कारतूसों की, कितने कारतूस गए थे, कितने कारतूस लौट के आए, कितने चले, इसका हिसाब और जनरल डायरी में एंट्री होती है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है
7: जी। तो आप कह रहे हैं कि ये जांच का विषय, लेकिन संजय जी आपका टेक इस पर क्या है, मतलब पैलेट गन, AK-47 का ताना जाना और अब जो अब सवाल राहुल गांधी के, ये कितना आपको लगता है कि चुभेंगे आने वाले समय में, परेशान करेंगे सत्ता पक्ष को?
15: देखिए राजीव जी, सबसे पहले मेन बात हमें देखना है कि जहां पर परमिशन मिला था, अगर परमिशन जंतर मंतर पर मिला था तो परमिशन को छोड़कर इन बच्चों को किसने प्रेशराइज किया पार्लियामेंट की तरफ जाना, जो हम सबको पता है हाई सिक्योरिटी जोन है और पार्लियामेंट के बैरिकेड को जब ये लोग क्रॉस कर रहे हैं उनको किसने प्रेशराइज किया, इसको देखने की जरूरत है। इनको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी
7: तो कि सरकार ने प्रेशराइज कर रही थी?
15: अगर हम जेंसी बोले, नीट के बच्चे बोले, यूथ बोले, नौजवान बोले, अगर वो बच्चे नॉर्मल वे में एक जगह जंतर मंतर पर बैठे थे, वहां से उनको पार्लियामेंट, संसद चलो, संसद तोड़ो, संसद फोड़ो, किसने उस तरीके के लिए उसके लिए उनको तैयार किया, उस पर मेरे को लगता है इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो, हम सबको पता है, मैंने भी कम से कम 200 से ज्यादा धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किए हैं और उसके बाद में जब भी हम बैरिकेड की तरह जाते थे, बैरिकेड के सामने वहां का पार्लियामेंट पुलिस जो है वो हमें अंदर लेता था, आधे घंटे के बाद में हमें छोड़ देता था, जो एक प्रोसेस है। जब बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है, सबको पता है हाई सिक्योरिटी जोन है वहां, BNS 163 भारतीय निगम जो सुरक्षा वहां पर लगी रहती है, 163 सेक्शन के तहत कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, 5 लोगों से ऊपर अगर कहीं पर भी कोई क्रॉस करेगा तो एवरी पुलिस पर्सन हैज एन अथॉरिटी, दे आर देमसेल्फ पावरफुल, क्योंकि वहां का जो मैजिस्ट्रेट उनका होता है उसने ऑलरेडी पावर्स उनको इंप्लीमेंट कर रखे हैं कि वो अगर 163 वहां पर कोई तोड़ेगा, पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन चल रहा है, तो उस तरीके से हमारे बच्चे जब उस तरीके से जाएंगे, ये नॉर्मल था, हर एक बच्चे को पता है, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो सब लोग एवरीबॉडी।
7: लेकिन संजय जी सामने तो ये कहा जा रहा है ना कि वो गुस्से में थे और उनको जो है बहुत ज्यादा आहत थे नीट पेपर लीक की वजह से, आरोप वो ये लगा रहे हैं कि सरकार मान ही नहीं रही थी तो मजबूर थे। शहजाद पूनावाला,
15: मैं तो समझता हूँ
7: घातक हमले की मंजूरी किसने दी,
15: केजरीवाल हो, यादव हो,
7: ठीक है संजय जी बात आगे, संजय जी बात आगे, शहजाद पूनावाला वापस आपके पास आते हैं उसी सवाल के साथ।
15: अब ये एजेंडा पैलेट गन वाला एजेंडा लेकर
7: तमाम तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन वो मार्च क्यों किया, वो तमाम चीजें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिसिया हमला क्यों हुआ और उसके बाद से अब पैलेट गन जैसे आरोप और अब AK-47 वाला मामला भी गंभीर होता जा रहा है।
16: पुलिस की वर्दी जिसने पहनी है, यहाँ बाहर तो निकलोगे तुम्हारे घरों के पास पुलिस होगी, थप्पड़ मारना साले, जा जाके पकड़ के ना मुक्के मारना।
10: राजीव जी, मैंने आपको एक सांसद के द्वारा एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारने का वीडियो दिखाया, आपके मेरे साथ 100 गिले शिकवे हो सकते हैं। पुलिस वाले की गलती होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी ने कुछ गलत किया होगा, पर एक सांसद ने पुलिस वाले को, क्योंकि उसका नाम यादव है तो शायद सांसद पे कोई बात नहीं करना चाहता, शायद इसीलिए क्योंकि जो पुलिस वाला पिटा उसका नाम यादव है और जिसने मारा वो केरला का एक सांसद है, शायद यही कारण है क्या कि वो यादव भाई है, उसको थप्पड़ कुरियो को उसने मारा। और ये ईशान त्यागी, उसका मैंने बयान आपको सुनाया कि ये प्रधानमंत्री को घसीटना चाहता है, चलिए वो पुलिस वाले की पूरी गलती है, शहजाद पूनावाला ने मान ली, अब बताइए कि ईशान त्यागी पे क्या कार्रवाई और वो कांग्रेस के सांसद पर क्या कार्रवाई।
7: एक बार तो चलिए बाकी
10: भी छोड़ दीजिए, पुलिस पर बात की,
7: कार्रवाई तो आप ही,
10: महिलाओं को खींच खींच कर मार रही है, एक सेकंड सर, ईशान मैं आपको समय दूंगा,
7: यहाँ पर पूरा समय मिलता है, यहाँ पर टोकने की आवश्यकता ही नहीं, मैं पूरा समय देता हूँ सबको,
10: राजीव
7: कंप्लीट करने दे, 30 सेकंड में कंप्लीट करने दे, मैं समझ गया, बाकी फिर
10: राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी
7: हाँ,
10: यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कार्रवाई नहीं करवा सकता, ना मैं ना वो। जो पुलिस की कार्रवाई है पुलिस को करवाना है। यहाँ पर हम मॉरल स्टैंड ले सकते हैं। मॉरल स्टैंड के आधार पर आपने मुझे बोला सरकार की ओर से मॉरल स्टैंड लो, मैंने लिया। अब ईशान त्यागी मॉरल स्टैंड लेके उनके सांसद ने यादव नाम के एक पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ा और इसने बोला था कि प्रधानमंत्री को घसीट के, क्या आज तक इस कमेंट और इस कृत्य को एंडोर्स करता है? इसीलिए ईशान त्यागी की बातों को इतनी विश्वसनीयता से ले रहा है? पंजाब में पुलिस ने पिटाई की उन बच्चों की जिन्होंने पेपर लीक पे मांग की। पंजाब में ना इस्तीफा, ना पेपर लीक को स्वीकारा, ना कांग्रेस के मुंह से जबान में से एक आवाज निकलती है। केरलम में कांग्रेस के स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स को पीटा, कर्नाटका में मांगी तो उन्होंने वहां पे पीटा। ये ईशान त्यागी एक बार नहीं बोल रहे हैं कि हां हमारे यहां पेपर लीक हुआ, हम कार्रवाई मंत्री पे करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स बहाना है राजीव गांधी के करियर।
7: यही जो शहजाद आपका सवाल है, अन्यथा स्टैंड ले जाता हूं मैं ईशान के पास। ठीक है, आपकी बात है
10: सीट के मानने की।
7: ईशान त्यागी जो सवाल उनका है, ठीक है, आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, आपका हक है, लेकिन आप भी किसी प्रदेश में सत्ता में है ना, तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा, आप उन पर भी जवाब दीजिए और आपकी खुद की स्पीच पर भी आप जवाब दीजिएगा जो अभी शहजाद ने सुनाई।
17: बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल इस्तीफा दिया, युवाओं के दबाव में आके दिया, तो शहजाद जी ये छोड़ दें कि अब युवा इनसे दबने वाला है। युवा निकल चुका है और युवा आपकी खाट खड़ी करके रखेगा और आपको जिस सत्ता के अहंकार में आप चू रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिस अरे शांत रहिए,
7: शहजाद टोकना नहीं, मैंने उनको भी रोका था, आपको भी रोकना, सिर्फ ईशान की आवाज आएगी अभी। हाँ
17: देखिए शहजाद पूनावाला जी को यह समझना चाहिए, जो युवा है वो इनसे डरता नहीं है। बिल्कुल मैं कहता हूं कि बीजेपी को
7: क्या
17: बीजेपी घसीट के लेके जाएगा, घसीट के सड़कों पे लेके जाएगा और जिस सत्ता के अहंकार में ये लोग चूर हैं उससे इनको बाहर करेगा। मैं अपनी बात पे कायम हूं। दूसरी बात देखिए क्या है कि शहजाद जी ने अभी मान लिया कि अगर अगर पहले क्यों नहीं सत्ता के अहंकार से, आपको सत्ता का अहंकार नहीं है क्या? आपको आपको घसीट के लेके जाएंगे हम लोग। राजीव जी अगर आप इनको नहीं रोक सकते तो मेरे को बुलवाइए।
7: आप अगर आप जिन शब्दों का आप चयन कर रहे हैं उन शब्दों पर वो आपत्ति अपने व्यक्त कर रहे हैं, आप
17: जब वो हमारे लिए कुछ बोल रहे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं।
7: तो इस तरह के शब्दों का नहीं, मतलब बहुत एग्रेसिव स्पीच आप दे रहे हैं।
17: सुन लीजिए,
7: सीट करिए सब
17: जी। हाँ सुन लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान ने कल इस्तीफा दिया, क्या उन्होंने अपने इस्तीफे में कहीं भी ये माना कि पेपर लीक हुआ है? पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई उनको बचाने के चक्कर में, उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया
7: पेपर लीक हुआ माना तभी तो रीनीट हुआ, रिजल्ट भी आ गया,
17: उन्होंने अपनी पीआर शुरू करवा दी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्वीट कर करके बोल रहे हैं अरे धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो बड़े अच्छे काम किए थे, लेकिन इस्तीफा क्यों हुआ ये नहीं बता रहे, पेपर लीक हुआ आज भी नहीं मानते हैं। दूसरी बात, अभी शहजाद जी ने माना कि हां पुलिस से गलती हुई, क्या इस बात को चलाई गई, क्या इस बात को मानेंगे कि बैलेट गन चलाई गई बच्चों पे कि नहीं चलाई गई? हाँ या ना में जवाब दीजिए। गृह मंत्री अमित
7: उसका जवाब तो अभी डॉक्टर विक्रम ने दे दिया ना,
17: उनके ऑर्डर पे नहीं, विक्रम सिंह जी ने जो बात बोली कि बच्चों पे मसल डीप इंजरी है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मसल में स्किन की इंजरी है। इस बच्चे की आंख देखिए एक बार, इस बच्चे की आंख को किस तरीके से फोड़ दिया गया, ये अंधा होने की कगार पे है एक आंख से, क्या इस बात पे गृहमंत्री?
7: ठीक है, इसका जवाब लूंगा, लेकिन नवल किशोर संसद में अब जो बिल है आने वाला है, क्या आरजेडी सपोर्ट करने वाली है? सख्त कानून है, नकल जो भी करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, या करवाएगा या पेपर लीक करवाएगा, सपोर्ट करेंगे आप सरकार का?
18: नहीं देखिए, कानून जो बिहार जो संसद में आएगी उस पर विचार विमर्श होगा, उस पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो सरकार पिछले
7: क्या विचार है वही तो
18: 100 से ज्यादा पेपर लीक देख चुके हैं और तमाम दबाव के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान अभी भी नहीं मान रहे हैं कि गलती है और शहजाद पूनावाला कह रहे हैं
7: उनसे आपको क्यों मनवाना है, वो तो जा चुके हैं बाहर, अब हो गया
18: इस्तीफा दे दिया,
7: उन्होंने इस्तीफा दे तो दिया। आप ये बताइए ना कि आप बिल का सपोर्ट करेंगे कि नहीं, आप क्या सोचना, कल तो सोमवार आ गया।
18: नहीं नहीं देखिए, बिल किस तरह से पास करती है, उसके स्वरूप क्या होंगे पहले देखेंगे, उसके बाद उसमें सहयोग करेंगे। ऐसे ही तो ये तो जो बिल पास कहां करवाते हैं, बिल को तो बुलडोज करते हैं। आपने अच्छा। देखा ना परिसीमन बिल पिछले बार कैसे उन्होंने करवाया, ऐसे कम से कम कितने बिल इन्होंने जबरदस्ती पास करवाया है, सांसदों को सस्पेंड करके करवाया है। जो तरीका अगर लोकतांत्रिक डिबेट होगा तो अपनी बात रखेंगे।
10: क्या पूछ रहे हो,
18: अरे कौन बात
10: पार्टी क्या जवाब,
18: अरे अरे दो पार्ट दो दलों के पास ये बताइए, ये बकवास करने के लिए किसने अनुमति दिया इनको? राजीव जी इस बकवास करने के लिए कैसे अनुमति देते हैं?
7: धीरेन्द्र आखिरी कमेंट। हाँ धीरेन्द्र,
18: नहीं नहीं इनको नहीं भाई देखिए शहजाद पूनावाला को जरा बताइए कि बदतमीजी की भी सीमा होती है, आप इस तरह की बात कैसे।
7: धीरेन्द्र जी का ऑडियो ऑन करिए।
18: एक सांसद भी है, उनका भी मूल्य है। ये संसदीय प्रणाली की परंपरा।
7: मुझे आप सब मेहमानों को माफी के साथ रोकना पड़ेगा, अभी समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। बहरहाल अब कल से संसद जब शुरू होगी, क्योंकि इस्तीफा हो गया उसके बाद कल संसद शुरू हो रहा है, तो कल ओपोजिशन किस रुख के साथ पहुंचता है, सत्ता पक्ष किस स्ट्रैटेजी के साथ पहुंचता है, इस पर रहेंगे सबकी निगाहें। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
21: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
22: We are over, Jimmy.
23: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
24: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
25: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी हिंड बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
3: जहां हल्के बल प्रयोग से बात बन सकती थी वहां AK-47 वाले जांबाज पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। जहां छात्रों को समझाया मनाया जा सकता था वहां बिहार पुलिस ने AK-47 वाला एक्शन करना मुनासिब समझा। तस्वीरें देखिए और देख लीजिए बिहार पुलिस का कारनामा। हर कोई पूछ रहा है क्या बिहार पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करती है? क्या यही तरीका बचा था बिहार की सीवान पुलिस के पास? दिल्ली में जंतर मंत्र पर CJP के विरोध प्रदर्शन के बाद बिहार के सीवान में भी छात्र गुस्से से भर गए। वो सड़कों पर उतर गए, सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। तस्वीरें 25 जुलाई की है। सीवान की मुख्य सड़क पर कई घंटे तक ऐसा बवाल मचा रहा, छात्र मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस लगातार उन्हें पीछे खदेड़ रही थी और हालात काबू में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छात्रों का हुजूम पीछे हटने को तैयार नहीं था। छात्र गुस्से से भरे हुए थे, वो लगातार पथराव कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस भी आंसू गैस के गोले दाग रही थी। इसी प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सीवान पुलिस के अधिकारियों ने अपने AK-47 धारी जवानों को सड़कों पर उतार दिया। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ हाथों में डंडे पत्थर के साथ प्रदर्शनकारी छात्र थे तो दूसरी ओर AK-47 लेकर पुलिस वाले पहुंच गए। कुछ पुलिस वालों के हाथों में डंडा था लेकिन AK-47 लिए जवान ने मोर्चा संभाल लिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पुलिस को घेरा, साथ ही सम्राट सरकार पर भी हमला बोला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की, AK-47 से भी फायरिंग की गई। उन्होंने CM पर हमला बोलते हुए कहा कि जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। तेजस्वी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है।
4: दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है जिसपे खुद 7 हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई, 3 जो सवाल के जो छात्र हैं वो घायल है और हर जगह से ये खबरें आ रही है कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है, लोगों पर लाठियां बरसाई है, लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है।
3: सीवान में पुलिस के AK-47 वाले एक्शन को लेकर सियासत तेज है। शशि भूषण कुमार पटना आज तक।

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right field, and it will.
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
3: छात्र खुश हैं. विपक्ष खुश है.
4: सभी देशवासियों को बधाई देता हूं.
5: खुश है कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए.
3: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्योंकि सड़क पर तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन संसद में लड़ाई अभी बाकी है.
6: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है. प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल. उसको तो जाना ही था, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे.
7: ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा.
3: सरकार ने पेपर लीक को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है. लेकिन इस ड्राफ्ट के साथ मॉनसून सत्र में घमासान का नया चैप्टर खुलने वाला है, क्योंकि सरकार जहां पेपर लीक पर चर्चा पर लगातार जोर दे रही थी, तो वहीं विपक्ष के लिए चर्चा की पहली शर्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था. ऐसे में क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी?
8: पैलेट गन्स वर फायर्ड एट देम, टियर गैस वाज फायर्ड एट देम, दे वर बीटन विद लाठीज. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will.
9: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी. लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसके तहत चलाना पड़ेगा.
10: जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है. तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ. युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी.
3: उधर दिपके भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है.
11: ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है.
3: सड़क पर पेपर लीक की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब एक लड़ाई संसद में होनी बाकी है. आज तक ब्यूरो.

0: राहुल गांधी के सवालों पर आपने देखा दंगल, अब आगे देखिए हल्ला बोल अंजना ओम कश्यप के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, कल संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल। 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की जेल, 2 महीने में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पायलट गन को राहुल ने नया मुद्दा बनाया, गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ AK-47 को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74 विलेज घूमकर लौटे 400 युवा, प्रधानमंत्री से उन्होंने साझा किया अनुभव। मन की बात में पीएम ने जवानों को किया सल्यूट, कहा कारगिल दिवस हर भारतीय के मन को गर्व से भर देता है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा अब सिर्फ पीओके पर होगी बात। गुजरात में बारिश के बाद बिगड़े हालात, बाढ़ से अहमदाबाद, नवसारी, सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम भी पाने पाने, 61 की गई जान, तो हजारों लोग बेघर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की सबसे बड़ी मांग पूरी हुई, बड़ी जीत यह छात्रों की रही। धर्मेंद्र प्रधान ने बीते दिन इस्तीफा दिया, देश के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अब संसद में पेपर लीक माफिया के खिलाफ नया बिल आ रहा है, और क्या इस नए बिल को लेकर सरकार को विपक्ष का सहयोग मिलेगा? संसद सत्र का पहला हफ्ता पेपर लीक मसले की वजह से धुल गया, विपक्ष ने सड़क से संसद तक हंगामा किया, राहुल गांधी विरोध का सुर प्रधानमंत्री आवास तक लेकर गए। इस एक मसले पर विपक्ष ने सरकार को चारों तरफ से घेरने में सफलता पाई। अब सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद सामान्य तौर पर चल सकेगी? क्या जो जनता का पैसा इस देश की संसद को चलाने में लगता है, उस पैसे की कद्र करते हुए इस देश के माननीय सांसद काम करेंगे? पेपर लीक के मसले पर बैकफुट पर आई बीजेपी संसद में विपक्ष का मुकाबला किस तरह से करेगी? क्या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का धंधा हमेशा बंद के लिए बंद होगा? क्या पेपर लीक माफिया अब शिकंजे में आ सकेगा? हल्ला बोल में आज हम यही चर्चा करेंगे। गए प्रधान, थमेगा संसद का घमासान? लेकिन बहस से पहले ये रिपोर्ट।
3: दिल्ली के जंतर मंतर पर अब सन्नाटा है, धरना खत्म हो चुका है, तंबू हट चुके हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन सियासत की अगली किश्त अभी बाकी है। छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई की ये तस्वीरें फिलहाल विपक्ष के हाथ लगा पुख्ता सबूत है, विपक्ष की सियासत का मौजूदा ब्लूप्रिंट है। सवाल है कि जिनका जवाब राहुल गांधी गृह मंत्रालय से मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है जिनमें 5 सवाल दर्ज है। पैलेट गन की मंजूरी किसने दी? पुलिसिया कार्रवाई का आदेश किसने दिया? जंतर मंतर पर सादे कपड़ों वाले कौन थे? छात्रों पर बल प्रयोग क्यों हुआ? दोषियों पर कार्रवाई कब होगी?
4: He authorized the use of lethal weapons, pellet guns, on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India.
3: अब कांग्रेस समेत विपक्ष की रणनीति साफ है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को वो अंत नहीं बल्कि शुरुआत बता रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि संसद में सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सरकार जवाब दे।
4: So that is going to be a major issue in parliament.
3: उधर सरकार भी पूरी तैयारी में है, कल यानी सोमवार को संसद में केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। विधेयक का नाम पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में इस विधेयक को पेश करेंगे। पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये जुर्माना मौजूदा कानून की तुलना में काफी ज्यादा है। इसका मकसद सार्वजनिक परीक्षाओं के विश्वसनीयता को मजबूत करना और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले संगठित अपराधियों पर नकेल कसना है। सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, बिहार में पुलिसिया कार्रवाई कटघरे में है। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस पर AK-47 से गोली चलाने का आरोप लगाया। यूरोप दौरे से पटना लौटते ही तेजस्वी ने सियासी बंदूक सम्राट चौधरी की सरकार की तरफ तान दी और चुनौती दे डाली। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की। AK-47 से भी फायरिंग की गई। जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए, तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो।
5: दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छा गुंडा है जिसपे खुद 7 हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई, 3 जो सुवान के जो छात्र हैं वो घायल है, और हर जगह से ये खबरें आ रही है कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है, लोगों पर लाठियां बरसाई है, लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है।
3: तेजस्वी यादव के इन आरोपों का जवाब देने वो प्रवक्ता सामने आए जो ताजा ताजा RJD से BJP में शामिल हुए।
6: नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये बता रहा है कि गुंडा मानसिकता और लंपटीकरण संस्कृति किस तरह से तेजस्वी यादव जी के अंदर है। एक और सम्राट चौधरी जी समृद्ध बिहार बनाने में लगे हैं, 14 करोड़ बिहार वासियों के सपनों को साकार कर रहे हैं, और दूसरी ओर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी देश से ही फरार विदेश घूम रहे हैं जब बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है।
3: बिहार से लेकर जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन की आवाज भले ही थम गई हो, लेकिन अब असली राजनीतिक मुकाबला संसद के भीतर होगा। कल संसद में बहस सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं होगी, सवाल होगा कि लोकतांत्रिक विरोध की सीमा क्या है, पुलिस की कार्रवाई कितनी उचित थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पेपर लीक के खिलाफ सरकार जो बिल ला रही है वो सर्वसम्मति से पास हो पाएगा, या फिर छात्रों को मोहरा बनाकर सिर्फ सियासत होती रहेगी। आज तक ब्यूरो।
2: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, और संगीत रागी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। अजय आलोक जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। देखिए, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही पड़ा। सवाल यह है, चर्चा कई लोग कर रहे हैं कि भाई पहले होना चाहिए था, ये हुआ, जब आप झुके अंत में झुके, तमाम बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है ये छात्रों की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि उनको एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए था। उनका गुस्सा इस बात से था कि एग्जाम लीक हो रहा है, री एग्जाम हो रहा है, और उनकी मेहनत, उनकी जो सब कुछ है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, बच्चों की

0: 20,50,000 छात्रों का भविष्य को सुनिश्चित किया हमने। 1.5 लाख छात्र जो आज क्वालिफाई कर गए वो काउंसलिंग में जा रहे हैं। अगले साल से कैसे फुल प्रूफ सिस्टम होगी इस पर मंथन शुरू हो गया। एनटीए की पूरी व्यवस्था बदल दी हमने इतने ही दिनों में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हर जगह पे और हर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन करके कि स्टेट्स में जो लीक हो रहे हैं उस पर भी हम कैसे अंकुश लगाएं। तो मामले की गंभीरता को उसी से समझिए कि जब प्रधानमंत्री खुद व्यक्तिगत तौर पर इसमें मोदी जी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक एक चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसमें किसी की जीत और किसी की हार से कोई प्रश्न उठना चाहिए। ठीक है, जिनको अपना हमारे राजनीतिक विरोधियों को लगता है कि उनकी बहुत बड़ी जीत हो गई धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, उस व्यक्ति से इस्तीफा किसी ने नहीं मांगा था। 10 दिन से ये जो हंगामा चल रहा है उसमें देश का जो नुकसान हो रहा है और इसके कारण विश्व में जो भारत की छवि हो रही है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, हर जगह प्रोटेस्ट क्या भारतीय कर रहे हैं? ये सब तो ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट है, टूल किट है, वो ये चीज देख रहे हैं। क्यों मौका दें हम किसी को? ये देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी
1: जो आप बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि इसी आंदोलन की वजह से आज आपकी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से भी बात की है। बीते दिन जो भी फैसला हुआ, इधर प्रधानमंत्री एंगेज कर रहे हैं बच्चों से, बच्चे भी वहां पर पहुंचे हैं। सबको टूलकिट कह के मत हवा में उड़ाइए, इसकी गंभीरता को समझिए आप लोग। बच्चे भी वहां पर भारी तादाद में पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए। ये जरूर है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहां पर घुसे जिन्होंने जानबूझकर पूरे प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की, साजिश रची, लेकिन ये साफ है कि वहां बच्चे थे। सब टूलकिट नहीं है,
0: सब टूलकिट मैं नहीं कह रहा हूं। बच्चे थे इसलिए तो हम वार्ता भी कर रहे थे, छात्रों के भविष्य पे सवाल था इसलिए तो हमारी वार्ता भी हो रही थी। हमारे तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री सब कुछ इन्वॉल्व थे क्योंकि हमारे छात्र हमारे लोग हैं। लेकिन हमारे लोग के साथ अगर गलत लोग भी घुस गए हैं तो किसी मोमेंट किसी चीज को मोमेंटम देने के लिए ये घुसे हुए हैं और उस मोमेंटम में देश का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे अवांछित व्यक्तियों को, अवांछित टूलकिट को भी एक्सपोज करना जनता के सामने उतनी जरूरत है। आज वहीं के बच्चे वहां पे बोल रहे हैं कि हम जब वहां गए इस छात्र में प्रदर्शन में तो वहां तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं। ये तो हम नहीं कह रहे, ये आप ही का आज तक भी दिखा रहा है, सब कुछ चैनल दिखा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि बच्चों का भविष्य जरूरी है या किसी का ईगो? सवाल ये उठता है कि इस मामले से किसी को राजनीतिक फायदा कितना मिल रहा है, राजनीतिक नुकसान है ये देखा जाए या ये इंश्योर किया जाए कि भारत की छवि और भारत का भविष्य, जो उसके बच्चे हैं, उनका हर तरह से सुरक्षा की जाए। सरकार की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? तो सरकार की पहली प्रायोरिटीज थी कि छात्रों को संतुष्ट करके ये आंदोलन वापस करके एक पूरे सिस्टम का समाधान निकाला जाए। जब आग लगती है तो सबसे पहले आग बुताने की जरूरत होती है, किन कारणों से आग लगा, क्या भविष्य में करें कि आग ना लगे, ये सब बात की बात होती है। लेकिन पहले आग को कंट्रोल, जो कि मुझे लगता है कि हमने इफेक्टिवली तौर पे अब करना शुरू कर दिया है, और ये देश की जरूरत है। देश के तमाम युवा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे कोई वर्ग हो, सब यही चाहता था कि सरकार इसमें फ्लेक्सिबल रहे, सरकार सबसे बातचीत करे, सारे पक्षों को संतुष्ट करे। और सरकार की जिम्मेदारी भी है, भाई आप देश चला रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी को हम बेहतर तरीके से समझते हैं, उसी का निर्वहन कर रहे हैं।
1: ठीक है, अब आप पर आते हैं। अभय दुबे जी, देखिए इस बार जिम्मेदारी आपकी भी होगी क्योंकि अगर ये बिल लागू होना है, अगर बातचीत आगे बढ़नी है, तो अब मतलब समाधान पर भी नजर है आप लोगों की या नहीं है, या मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एंड गोल था और वो हो गया? अभय जी,
2: नहीं नहीं, इस्तीफे जैसा शब्द मत प्रयुक्त कीजिए। हिंदुस्तान के करोड़ों जैनजी ने, करोड़ों छात्रों ने और यूनाइटेड विपक्ष ने आज धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया है। मंत्री प्रधान गए हैं, अब प्रधानमंत्री की बारी है। राहुल गांधी जी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री अतीत हो गए हैं और हम किसी अतीत को भारत के भविष्य को रोंदने नहीं देंगे। कितनी बड़ी कीमत चुकाई भारत के छात्रों ने इस इस्तीफे की। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे आके कहते हैं हेलो फ्रेंड्स, कौन अपने दोस्तों को इतनी बर्बरता से मारता है, पैलेट गन से मारता है, लकड़ियों में कील लगाकर मारता है। आंखें तक छात्रों की गंवाने की स्थिति आ गई, इतनी बर्बरता कौन करता है प्रधानमंत्री जी? और प्रश्न, ये प्रतीक बन गए थे धर्मेंद्र प्रधान, भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गए थे धर्मेंद्र प्रधान, बर्बरता का प्रतीक बन गए थे भर्ती और प्रवेश परीक्षा की, छात्रों के भविष्य की लूट का। आज वो प्रतीक भारत के प्रजातंत्र ने उखाड़ कर फेंक दिया है। याद रखिएगा, कितने बड़े से बड़ा तानाशाह हो, इस लोकतंत्र में वो शक्ति है कि पूरी इच्छा शक्ति के साथ वो लड़ता है और उसे परास्त करता है। आज मील का पत्थर भारत वर्ष ने रखा है, जो 10-12 वर्ष से कुंठा थी छात्रों में, छात्रों को कोर किसाब बात कर रहे थे। मैं आज सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि प्रधानमंत्री ने किसानों की भी सुनी, प्रधानमंत्री ने छात्रों की भी सुनी। 700 किसानों ने आत्महत्या की, वो कीमत किसानों ने चुकाई थी। उनको भी

0: करनाल से दिल्ली तक बर्बरता से मारा गया, तब उनकी बात क्योंकि दृढ़ता से अड़े रहे किसान और छात्र भी यूनाइटेड अपोजिशन के साथ। और जो मैं कहता हूं कि साधुवाद देता हूं आज मैं सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश को और सर्वोच्च अदालत को, जिन्होंने उपमा दी कॉकरोच की और वो हमेशा अपमान की कोख से बड़ी क्रांतियां जन्म लेती, आज ये बात सिद्ध हो गई। राहुल गांधी जी एक लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों की गूंज के नाम से, कोटा फैक्ट्री से उन्होंने इसका शंखनाद किया है। और जो अंजना जी कह रहे उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं कि हाँ हम सार्थक समाधान का साथ देंगे सरकार का, कि ताकि भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले ना हो। मैं ये कहता हूं हमेशा कि आज की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकार को हम चेता रहे हैं कब से, 2005-06 से मध्य प्रदेश में व्यापम का बड़ा विश्व
1: तो संसद चलेगी ना, हंगामा तो नहीं होगा अभय जी?
0: संसद निर्भर करता, देखिए हमेशा संसद चलने का निर्णय, चलाने का निर्णय सत्ताधारी दल के पास होता है। वो किसी विषय पर चर्चा कराना नहीं चाहते, सिर्फ मीडिया में आकर कहते हैं हम चर्चा को राजी है, और अंदर उन्हीं के सांसद बाहर आकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, संसद चलने नहीं देते हैं। मैं हमेशा से सब लोग, इनकी सरकार थी तो ये कहते थे कि सरकार का दायित्व है, खैर ये तो कहते थे कि ये तो लेजिटिमेट तरीका है सरकार को हराने का कि आप संसद ना चलने दो। लेकिन हम कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा उस दिन लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर कि आइए संसद में बैठते हैं, उन्होंने कहा सरकार से पूछेंगे अभी तो हम नहीं तय कर सकते, तो फिर जाकर प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठे, और वो जो लोक कल्याण मार्ग है अगर वो लोक दमन का मार्ग बनेगा तो फिर उसके बाहर भी बैठेंगे और छात्रों के साथ प्रोटेस्ट भी करेंगे। मैं साधुवाद देता हूँ राहुल गांधी जी की इच्छा शक्ति को, आज जो कुछ धरने पर बैठे थे छात्र वो उनके साथ आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये पहला न्याय एक तरफ पहला कदम है, अगला कदम है प्रधानमंत्री को क्षमा याचना करनी होगी, अगला कदम है उन लोगों को दंडित करना होगा जिन्होंने छात्रों को बर्बरता से मारा है, उनके निजी अंगों पर छात्राओं के मारा है। ये इतना जघन्य अपराध है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जो कैमरे में कैद है वो
1: अजय लोग जी एक छोटा सा जवाब जल्दी से, समाधान कितना बता पाए अभय जी मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ यही पर आकर बात अटक जाती है। मैं लौट रही हूँ आपके अजय आलोक जी, छोटा सा रिबट एकदम दो लाइन का मुझे अनुराग जी।
2: समाधान अभय जी कितना बता पाए आपको नहीं पता चल पाया, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन देश को तो आज तक कांग्रेस समाधान नहीं दे पाई है। ये मुसोलिनी इटली के मुसोलिनी के खानदान वाले दूसरे को तानाशाह बोल रहे हैं, गजब हालत है भाई, क्या समय आ गया है। राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री अतीत हो गए, इससे बड़ा सा डिसइल्यूजन जिसको मैं कहता हूं डिलीरियम मन माइंड गोल है, जिस आदमी को वर्तमान का नहीं पता कि सिटिंग प्रधानमंत्री को अतीत बोल रहे हैं, 29 में चुनाव होने वाले हैं ये अतीत बोल रहे हैं, तो समझिए किस डिलीरियम में रहते हैं। तो कोलंबियन इफेक्ट अपना कम करें और समाधान पे आए, संसद चलने देना है कि नहीं ये तय कर लें, क्योंकि हम तो संसद चलाएंगे, बहुत सारे बिल्स हैं लाने हैं पास करने, देश के लिए जरूरी है, और देश की जनता देख रही है सुन रही है कि आपका क्या व्यवहार रहेगा, और आपकी निर्भरता और आपकी विश्वसनीयता जो भी थोड़ी बहुत बची है 1-2% ये इसी पर निर्भर करेगा, इसीलिए थोड़ा संभल के बोलिए कि क्या बोल रहे हैं। अतीत हो गए प्रधानमंत्री, ये है भविष्य।
0: अंजना जी, मैं जेनजी से आज अनुरोध करता हूं, दे दीजिए सत्ता राहुल गांधी जी को, प्रमुख बना दीजिए, समाधान देंगे, हम वादा करते हैं देश से, हम देश से वादा करते हैं, इनके जैसे नहीं कि विषमता भ्रष्टाचार में डूब रहे। इन्होंने क्या दिया देश को?
3: जो बट रहा है
0: एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए जमीन छीनने के किसानों से, वो कानून बनाया तुमने।
1: देखिए ना यही बात है ना, गए बच्चे, गए पेपर लीक, गया उस पर घेरने का मुद्दा। अनुराग जी आप लोग हमेशा कहते हैं कि देखिए भाई हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते रहते हैं, लेकिन सवाल यही है ना कि आप लोग भी तो इसको गया, अब उसको निकालना है, उसको हटाना है, भाई चुनाव से ही तो तय होगा ना। आज मुद्दा यह है कि संसद चले, हर नेता छात्रों के मुद्दे को उठाए, जो अखिलेश जी भी उठाना चाह रहे हैं, पेपर लीक पर बोले।
4: देखिए सबसे बड़ी बात यह है जो हमें लगता है सबके समझ में आ गई होगी, नन्हे दिए जब मिलकर हवाओं से लड़ गए, आंधी के पांव अपनी जमीन से उखड़ गए। अब सवाल है जो सरकार इतनी तानाशाही घमंड में थी, छात्रों ने युवाओं ने तय कर लिया तो उनको उनके सामने झुकना पड़ा। और एक प्रधान इनके जो शिक्षा मंत्री है चिट्ठी लिखते हैं, 10 दिन से मैं बड़ा तकलीफ में था, इसके मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, जिसको महा झूठ बोलते हैं। 13 मई को पहला सुसाइड हुआ था नीट का पेपर का, तो क्या 20 बच्चों का दर्द 2.5 महीने से आपके दिल में नहीं आया दर्द, वो कि 20 बच्चों ने सुसाइड किया, 10 दिन से आपको दर्द हुआ है जब छात्र रोड पे आ गए जब आपकी सरकार की गर्दन पकड़ ली है कि आपको झुकना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको लोकतंत्र का सम्मान करना पड़ेगा, आप सरकार हमारी वजह से हैं, हमने आपको चुना है, आप मेरी वजह से, आपकी वजह से हम नहीं है, तब जाके आपके समझ में आई, तब आप कह रहे हो 10 दिन से मैं दर्द हो रहा है, कमाल की बात कर रहे हैं आप। आपने तो उनपे लाठियां बरसा दी, उनका सर फोड़ दिया, टांगे तोड़ दी और बच्चियों के कपड़े नोच लिए। आप अपने अपने मंत्रियों का अपने फैसले बदलने के लिए कुर्बानी मांगते हो। जब यह किसानों का आंदोलन हो रहा था, आपने 700 किसानों की कुर्बानी मांगी, तब आपने किसान बिल यहां वापस किया था। आज आपने क्या किया, छात्रों की लहू लुहान की कुर्बानी मांगी कि वो कैसे लहू लुहान हो, जब उनको लहू लुहान कर दिया तब आप 26 दिन बाद जगते हो। मतलब आप लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं करते। आप सोचते हो हम तो सरकार है, सरकार को क्या, कौन हिला सकता है सरकार को। और आप ये जानते नहीं हो कि सत्ता जो होती है, जो जनता होती है, सरकार वो होती है, जनता चुनती है सरकार, इसलिए जनता सरकार है, लेकिन आप खुद को सरकार मान बैठे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात, आप अभी कह रहे थे कि हम छात्रों की बात करते हैं, छात्रों की बात पता कैसे करते हो आप, लाठियों से। छात्रों की बात कर रहे होते तो लाठी थोड़ी बरसाते, छात्रों से बात करते। 19 दिन तक वहां अनशन पे बैठे थे, आप जाके बात करते ना, 500 मीटर के दायरे में तो सभी रहते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वहां पे सरकारी गाड़ियों में, बड़े बंगले में रह रहे हो ना सब, एसी में, जाके उठ के जा नहीं सकते थे, वो गर्मी में बैठे थे, वो लोग बात कर लेते बच्चों से कि बच्चे आपको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, आपने हमें चुन के यहाँ सत्ता में बैठाया है और आप हमारी नाकामी की वजह से रोड पे क्यों, आप सुन लेते उनकी बात, तब तो आपने सुनी नहीं, आप क्यों सुन रहे, पता क्यों नहीं सुन रहे थे, अरे हम तो दमन कर देंगे, इनकी क्या हिम्मत है, हम पुलिस लगा देंगे इनको, इनको लहू लुहान कर देंगे, ये क्या इनको मार के भगा देंगे, इस लय में थे आप। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने भी अपना पूरा साथ उनका दिया, क्योंकि हम लोग को पता है कि छात्र हमारे अपने हैं, अपना खून है, ये कोई विदेशी नहीं है, हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हम इसको नेपाल नहीं बनने देंगे, ये भी हमने ठान लिया था कि
1: पार्लियामेंट चलने देंगे या नहीं देंगे, थोड़ा इस पर भी रोशनी डाल दें।
4: किस पे,
1: पार्लियामेंट, संसद।
4: देखिए, अगर सुनिए मेरी बात, इनकी जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की, अगर विपक्ष कोई मांग मांगता है, जनता की मांग मांगता है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है उसको मानना, ये मानते कहाँ है। आप बताइए, अगर इस्तीफा पहले दे देते तो आज पार्लियामेंट चलती ना, जो पार्लियामेंट का नुकसान हुआ, पैसे का कौन भरपाई करेगा, जरा बताइए तो आप। ये अपनी तनाशे रवि से पार्लियामेंट नहीं चलने देते, ये 100-150 सांसदों को निलंबित करके पार्लियामेंट चलाने वाले लोग हैं,
1: ठीक है, तनाशे तो अपना रहे। बड़ा सवाल ये है कि ये पॉलिटिक्स के शोर में ये डूब जाएगा या वाकई मतलब एक सोल्यूशन निकालना जरूरी है, बहुत जिस तरह से
3: राजनीति, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि राजनीति को जो गलत शब्द कर दिया गया है वो गलत है। राजनीति होनी चाहिए, जम के होनी चाहिए, खूब जम। अगर राजनीति नहीं होगी तो समाधान नहीं निकलेगा। ये जो छात्रों का जो आंदोलन था, ये अपने स्वभाव में, अपनी मांगों में राजनीतिक था, करने वाले लोग थे वो गैर राजनीतिक लोग थे, और इसका असर पड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। ये वो सरकार है जो बार बार कहती थी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, क्यों इस्तीफे हुए, क्योंकि दबाव पड़ा, राजनीति हुई इसमें। और एक बात और समझना चाहिए, दुनिया में कितना भी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, दुनिया में कितना भी ताकतवर नेता क्यों, जब जब लोग सड़कों पर उतरे हैं तब तक उनको झुकना पड़ा है, चाहे इंदिरा गांधी हो और चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे आज नरेंद्र मोदी हो, ये सबक है इसका। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये जो आंदोलन था वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन था।
1: नहीं, आप कह रहे राजनीति की वजह से इस्तीफा हुआ, मुझे तो लगता है कि जो छात्र उतरे और जब समझ में आया इनको कि वहां छात्र मौजूद है,
3: अगर राजनीति नहीं होती तो छात्रों को जमीन पर नहीं उतरना पड़ता। अगर अगर अगर किसी तरीके की अगर सरकार छात्रों की बात मानने के लिए तैयार होती तो इतना लंबा आंदोलन नहीं होता है ना, और सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पर नहीं बैठना पड़ता। क्यों बैठना पड़ा, अगर सरकार संवेदनशील होती तो करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, अभी समाधान की बात अजय आलोक जी कह रहे थे, 12 साल से तो आप सरकार में हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि विपक्ष आपको समाधान दे, आप क्यों नहीं समाधान कर पाए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 24 घंटे पहले उत्तराखंड के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुए, जब पूरी दुनिया पेपर लीक में परेशान है, हलकान है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बावजूद आपसे नहीं रुक रहा, और उत्तराखंड के अंदर तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं रोक पा रहे भाई आप, तो समाधान आपके पास ना, विपक्ष से समाधान।
1: अजय आलोक जी जवाब दे, उसके बाद से मैं आ रही हूं रागी जी तुरंत।
2: हम कोई विपक्ष से समाधान नहीं मांग रहे आशुतोष जी, आप उत्तराखंड के पेपर लीक की बात मानते कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उत्तराखंड में हुआ, लेकिन साथ के साथ झारखंड में भी उसी दिन एक दो दिन के बाद हुआ।
1: बस यही है अजय आलोक जी एक सेकंड मैं आपको टोक रही हूँ, मेरी बात सुनिए, उत्तराखंड में हुआ तो उधर हिमाचल में भी तो हुआ, उधर झारखंड में भी, ये करना बंद कीजिए, आप सरकार है और आप यहां पर केंद्र में नीट के एग्जाम्स, ऐसे बड़े एग्जाम आप कराते हैं, सारी जिम्मेदारी और बच्चों की उम्मीदें आप पर टिकी हुई हैं और उनकी ना उम्मीदी ने उनको सड़क पर खींच कर लाया है। इस ट्रस्ट डेफिसिट को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? आपकी लड़ाई इनसे नहीं है, आपकी लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से नहीं है, आपको आज उन बच्चों को कन्विंस करना है। कब तक ये कांग्रेस क्या कर रही है और समाजवादी वाले क्या करते थे, ये कब तक बताइएगा?
2: ये नहीं बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं। बच्चों की नहीं, देश की उम्मीदें भी हमसे हैं कि ठीक करेगा तो मोदी ही। अरे बाकी को छोड़ दीजिए, विपक्ष की भी उम्मीदें हम ही से हैं कि ठीक करेगा तो मोदी। हाँ ठीक, हमें ही करना है, हम जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे। हम कहां कह रहे हैं कि नहीं ठीक है उत्तराखंड में जो हुआ बहुत अच्छा हो गया। गलती है हमारी, सिस्टम को सुधारना हमारा काम है। हम ये नहीं उम्मीद करेंगे कि विपक्ष आके सिस्टम सुधारेगा या कोई और आके हमारे लिए सिस्टम सुधार देगा। उसके लिए व्यापक समाधान किए जा रहे हैं। लेकिन उस बात पे अपनी राजनीतिक रोटी अगर कोई सेकेगा तो अपने इतिहास के अतीत में उसको जाना चाहिए ना। क्या 2014 के बाद से ही पेपर लीक हो रहे हैं? पहले नहीं लीक होते थे, पहले तो प्रकाश में ही नहीं आता था। यूपीए के 10 साल में 9 बार सीबीएसई का प्री मेडिकल का एग्जाम का लीक हुआ पेपर, किसी ने जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दिया। हमें हमारी जिम्मेदारी समझाने की जगह एक व्यापक समाधान की तरफ कभी बढ़ना नहीं है।
1: ठीक है,
2: आपके पास मुद्दे नहीं है तो किसी न किसी चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी जिंदगी के लिए वेंटिलेटर मत ढूंढिए। राजनीतिक वेंटिलेटर इसे नहीं मिलता है।
1: नहीं, लेकिन अजय आलोक जी, सवाल तो यही है ना कि पेपर लीक का मुद्दा हो या वहां पर राम प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी का, ये मुद्दा मतलब किसी और ने नहीं दिया आपको? ये कोई जबरदस्ती का बनाया हुआ मुद्दा नहीं है, ये हुआ है। पेपर लीक हो तो, चंदा चोरी हो तो।
2: अंजना जी, हम कोई 100% फुल प्रूफ, हम क्या भगवान हैं? क्या हमारे सिस्टम में गलतियां नहीं हो सकती हैं? हमारा क्या काम है कि जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जाए, भविष्य में ऐसी नहीं गलती हो, ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए। सरकार इसलिए हम 100% फुल प्रूफ तो नहीं है।
3: मैं अजय आलोक जी की इस बात से सहमत हूं कि वो ईश्वर नहीं है, गलतियां हो सकती हैं। सवाल इस बात को लेकर है, कभी तो अपनी गलती आप मान लीजिए। 2024 में कानून लेकर आप आए, उस कानून के आने के बावजूद भी धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं तो मंत्री महोदय की गलती होगी, कहीं ना कहीं तो सरकार की गलती होगी। जब पूरा अच्छा देश पेपर लीक पे इस वक्त खोल रहा है, उस वक्त भी उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो रहा। अब इससे ज्यादा क्या हो सकती है? अजय आलोक जी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके भी बच्चे हैं, उनको वो बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे, तो क्यों नहीं सरकार इसको युद्ध स्तर पर इस मामले को लेती और उसके बाद उसका समाधान खोजने की कोशिश करती? जब बच्चे, जब हालत इतनी बुरी हो गई।
1: ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए एक बार,
2: सुनिए ना,
1: जल्दी फिर रागी जी बोलेंगे।
2: 9 तारीख के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहली बार टीवी पे आए, उन्होंने सीधा कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी फेलियर है। ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं माना कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा था ऑन कैमरा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी फेलियर है जो हुआ, आगे भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए हमने एग्जाम कैंसिल किया और रीनीट का ऑर्डर किया है और हर तरह के उपाय किए जाएंगे कोई ऐसे भविष्य में नहीं हो। उत्तराखंड में फिर हो गया, झारखंड में फिर हो गया, तेलंगाना में हो गया, केरला में हो गया, ये राज्य सरकारों में भी हो रहा है। एक सिस्टम बने जो सारे स्टेट्स भी अडॉप्ट करें, सेंटर भी अडॉप्ट करें, ऐसे समाधान क्या विपक्ष की तरफ से आज तक आए? नहीं नहीं, आज तक आए। आप अगर सब बोल रहे हैं हमें कि सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी, विपक्ष क्या सरकार में नहीं रहा है? वो क्या सजेशन नहीं दे सकते? लेकिन सजेशन की जगह आप आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, अराजकता में विश्वास करते हैं, प्रधानमंत्री के घर पे जाके बैठेंगे, उससे समाधान निकलेगा? जस्टिफाई करते हैं आप?
5: देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का ये मानना है कि राहुल गांधी के आंदोलन के कारण जो है वो सरकार झुक गई या धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया, तो ये बड़ी उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं बची हुई है कि देश में कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके, चूंकि ये छात्रों का आंदोलन था। और मैं बार बार कह रहा हूँ और शुरू से कह रहा हूँ कि ये आंदोलन शुरू से राजनैतिक था, नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान
1: का टोक रही हूँ कि सिर्फ राजनैतिक आप, नहीं
5: आप,
1: था।
5: आप टोकी, आपका ये अधिकार है। हाँ। लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए।
1: छात्र आए थे,
5: छात्रों का ये आंदोलन शुरू से राजनैतिक था और उसमें पूरे के पूरे गैर राजनैतिक जो अवांछित लोग थे उसमें भी इसमें शामिल हो चुके थे। पूरे देश में आग लगने की स्थिति थी। ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार के सामने कोई चारा नहीं बच गया था कि इन लोगों को प्रियम्प्ट करने के लिए वो आंदोलन खत्म कराने की दिशा में कदम बढ़ाए। और उस आंदोलन को खत्म कराने के लिए ये सबसे बड़ी शर्त थी, क्योंकि छात्र थे। और जैसा आशुतोष ने कहा कि वो छात्र इस बात के लिए अड़े हुए थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यदि नहीं होता है तो आगे बात बढ़ने की स्थिति नहीं थी। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इस चीज को मान लिया। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि या तो ये काम पहले होना चाहिए था, या ये काम या तो पहले ही हो जाना चाहिए था, या सरकार को इस पर अड़े रहना चाहिए था कि यह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की इसमें बहुत किरकिरी हुई है, इससे भी मैं कतई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक रही शिक्षा में व्यवस्था के सवाल, तो ध्यान रखिएगा ये यही सरकार है जिसने कम से कम नकल के खिलाफ कानून लेकर के आया, आपकी सरकार ने कानून लेकर के नहीं आया था। और समाजवादी पार्टी ने जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री थे तो नकल के खिलाफ बहुत बड़ा कानून लेकर के आया, बहुत कठोर कानून लेकर के आया था। और मुलायम सिंह ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि जितने छात्र जो है वो जेलों में बंद हुए हैं नकल करते हुए पकड़े जाएंगे उनको सबको छोड़ा गया जाएगा, और छोड़ा गया था, उस नकल कानून को निरस्त किया था।
6: बात करिए ना,
5: नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग आज नैतिकता की बड़े बड़े मापदंड लेकर के आए, 2011 में क्या था, कपिल सिब्बल थे ना, यही विनीत जोशी जो थे, यही विनीत जोशी जो थे वो उस समय सीबीएसई के चेयरमैन थे। और क्या हुआ था उस समय, क्या लखनऊ के अंदर पेपर नहीं लिख हुए थे,
6: तो क्या आपके अंदर बना के रखा था
5: 2024 के अंदर,
6: आपने क्यों बना के रखा था उनको?
5: अरे भाई 2000
6: कॉम्पिटेंट सेक्रेटरी था,
5: फिर वही बात
6: कर रहे हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं था उसको पता करने का?
5: अरे मैं कह रहा हूँ कपिल सिब्बल की क्या जिम्मेदारी नहीं थी? कपिल सिब्बल की जिम्मेदारी नहीं थी क्या?
6: आपकी जिम्मेदारी क्या है?
5: कांग्रेस पार्टी
6: आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है 12 साल से?
5: अपनी बात आपने नहीं कही, ये गलत बात है। 2011 के अंदर कपिल सिब्बल का क्या, तब नैतिकता क्या थी? और जब आप लाठीचार्ज करने की बात करते हैं और अन्ना आंदोलन के समय याद कीजिए, 26 अगस्त 2011 राहुल गांधी ने क्या संसद में कहा था कि डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, ये आपके राहुल गांधी का बयान था। फिर 11 अक्टूबर 2011 राहुल गांधी का यही उदाहरण था, डंडे चलाए थे आप,
6: प्रधानमंत्री 12 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है?
1: रागी जी
6: कोई जवाब नहीं है।
1: भूषण मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश यादव की सरकार जा चुकी है, यूपीए की सरकार जा चुकी है।
5: फिर आपसे कह रहा हूँ ये
1: दोनों जगह आप सरकार में
5: बोलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं ये व्हाट अबाउट ट्रीट नहीं है, ये व्हाट अबाउट ट्रीट नहीं है।
6: अरे भाई थोड़ा तो अहंकार छोड़िए,
5: अरविंद केजरीवाल के बारे में कहां अहंकार छोड़िए,
6: आदमी बेईमान
5: सीखिए कम से कम, नैतिकता के नाम पर
6: इतने गुस्से में क्यों? आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, आपको छात्रों के साथ होना चाहिए
5: सर,
6: आप सरकार के साथ थोड़ा दिखाई पड़ रहा
5: है। तो टेप मनमोहन सिंह सरकार को
6: छात्रों के साथ होना चाहिए,
5: वो छात्र आपसे
6: नैतिकता की
5: पत्रकारिता
6: की सरकार के साथ है,
5: आपके पास पत्रकारिता की कौन सी नैतिकता थी आपके पास?
6: भाई आप प्रोफेसर हैं,
5: मनमोहन सिंह को बचाने के लिए,
6: छात्रों के साथ
5: मनमोहन सिंह को बचाने के लिए ये टेप रख लेते हैं, ये और राजदीप दोनों,
6: वो कोई नहीं मानता,
5: कौन सी नैतिकता थी आप
6: नहीं मानेगा,
5: कौन सी पत्रकारिता की नैतिकता
1: थी? अच्छा ठीक है, हो गया आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं,
6: कुछ नहीं होगा।
1: आर्यू अजय आलोक जी जवाब दीजिए, अजय आलोक जी, आर्यू तीनों के पास,
5: मुझे बस
1: अजय आलोक जी
2: जी, अंजना जी, मुझे आशुतोष जी हो चाहे भदौरिया साहब हो चाहे कांग्रेस के अभय दुबे, बस ये बताइए कि नैतिकता पे ज्ञान देने का फुल फ्लेजेड टेंडर और फुल फ्लेजेड लाइसेंस से विपक्ष का हो जाता है क्या? क्या आप विपक्ष में आ गए, आप सत्ता से हट गए, तो इसलिए नैतिकता पे आप ज्ञान दीजिएगा, और आपको कोई जब आईना दिखाएगा तो आप कहेंगे कि हम सत्ता में ही नहीं है,
6: पास भी नहीं है,
2: हम सत्ता में ही नहीं है,
6: माफ करिएगा,
2: हम सत्ता में ही नहीं है, आप ये कहेंगे
6: ये
2: आपकी नैतिकता है? इसलिए कृपया करके नैतिकता का लेक्चर देना यहाँ बंद कीजिए।
6: आप लेकिन
2: आज तक 70 साल इस देश में नकल विरोधी कानून लाने की तो हिम्मत नहीं हुई।
1: पेपर लीक कैसे रोकिएगा? पेपर लीक कैसे रोकिएगा कि फिर किसी बच्चे को ऐसा कदम ना आगे उठाना पड़े, फिर से किसी बच्चे को साल साल मेहनत करने के बाद फिर री एग्जाम की तैयारी ना करनी पड़े, ये बताइए।
2: बिल्कुल पेपर लीक रोकेंगे हर हालत में रोकेंगे, और इसी के तहत नया स्ट्रिक्ट कानून बनाया जिसमें 3 महीने के अंदर हर हालत में इन्वेस्टिगेशन करके निर्णय देना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ तक का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा, पूरे एग्जाम का जुर्माना वसूला जाएगा, 7 से 10 साल सश्रम कारावास की सजा दी गई है। ऐसे ऐसे डिटरेंट लाएंगे कि इन चोरों की हवा उड़ निकल जाएगी, नहीं कर पाएंगे। ये दृढ़ संकल्प है हमारा, और आप जानती हैं कि मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही दृढ़ संकल्प के तहत जो जो काम असंभव लोग मानते थे वो हमने करके दिखाया है।
1: दुबे जी,
2: बड़ा
1: चैलेंज
2: है हमारे पास।
1: अनुराग
4: जी, अंजना जी, सवाल ये है कि अभी कह रहे थे कि हमने सजा का प्रावधान किया, 2024 में भी आपने बहुत सख्त कानून बनाया था, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आप पेपर लीक होके दिखाए, उसके बाद भी लीक हो गया ना, सजा बाद में आती है। आप व्यवस्था परिवर्तन कीजिए, आपका डिलीवरी सिस्टम खराब है, उसमें करप्ट लोग हैं, आप यहाँ भ्रष्टाचार फैलाओ उसको ठीक कीजिए, बाद में सजा मिलेगी। भाई पेपर लीक हो गया, बच्चा सुसाइड कर लेगा, उसके बाद किसको सजा दे रहे नहीं दे रहे हो तो बात की बात आती ना, पहले लीक को तो रोकिए। दूसरी बात, एक बात तो बहुत अच्छी हुई, कम से कम इस देश के अंदर में जो हिंदू मुस्लिम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी ना, विपक्ष और छात्र युवा मिलके उसको शिक्षा पे ले आए, अब राजनीति शिक्षा पे करो तो ज्यादा अच्छा होगा। और आप हर एक को टैग दे देते हो ना, किसान आपसे अधिकार मांगता है तो खालिस्तानी हो जाता है, छात्र अधिकार मांग रहा था अभी दो दिन पहले, आप उनको उपद्रवी बता रहे थे कि उपद्रवी है, जब यहाँ पे आदिवासी अधिकार मांगता है तो उसको बोलते नहीं नहीं नहीं ये तो नक्सल है, और जब शहर के पढ़े लिखे लोग आपको आईना दिखाते हैं अधिकार की बात करते हैं कहते हैं अर्बन नक्सल है। हर किसी का तो आप एक रूपरेखा खींचे बैठे रहते हो, और हमने बार बार बोला कि आप इतिहास में देश को जिंदा रखना चाहते हो, इसलिए चूंकि आप इतिहास की बात करके हमारे जो युवा हैं उनका भविष्य उनका वर्तमान दोनों बर्बाद करना चाहते हो। आपने 20 मिनट बोला, अंजना जी ने आपको मौका दिया, अच्छा कि आपको मौका दिया, लेकिन 20 मिनट में आप एक सच नहीं बोल पाए, वही रटी बात 20 बार आपके पास गई, वो 200 बार एक ही बात रट रहे हो। अरे आपको मान लेना चाहिए ना आपसे गलती हुई, क्यों नहीं मानते आपसे गलती हुई, छात्र वहां बैठा था उन तीन वहां पे जब वो अपना अनशन पे बैठा था, आप जाके मिल लेते उनकी समस्या का समाधान कर देते, भाई 500 मीटर की दूरी पे रहते हैं सभी लोग ना, तो क्यों नहीं आपने समस्या का समाधान किया जब पार्लियामेंट तक आ गए अपना अधिकार मांगने के लिए। जब आपको लगा कि आप बात सुनिए, मैंने बात बीच में कट गई थी अंजना जी, हम लोग हैं विपक्ष के लोग और युवा मिलके इसको यहाँ नेपाल ना बनने देगा ना बांग्लादेश बनने देगा, ये शांत प्रिय युवा थे, इनके हाथ में कोई डंडा नहीं था, आपने देखा होगा बांग्लादेश और नेपाल में लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, ये शांत थे। अगर तोड़फोड़ किसी ने की है तो आपके पुलिस वालों ने की है, उन्होंने उनके सर फोड़े हैं, वो तो बेचारे हाथ बंद करके अपने, और आप पार्लियामेंट के अंदर में वंदे मातरम का बिल बनाने की कोशिश करें, बनाइए बिल, लेकिन वंदे मातरम और हाथ में तिरंगा पकड़े लोगों पे आप लाठियां बरसा रहे, ये कैसे वंदे मातरम की बात करते हैं आप, इसके मतलब वंदे मातरम आप सिर्फ बोलने के लिए करते हैं, सिर्फ माहौल बनाने के लिए बोलते हैं है, लेकिन आप उसपे उसके पद चिन्हों पे नहीं चलते, ये चिंता की बात है
0: जी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि अवांछनीय लोग छात्र आंदोलन में आ गए, सत्ता में अवांछनीय लोग बैठे हैं, ये कह रहे थे हम भगवान नहीं है, अरे भगवान नहीं, ये सत्ता नरपिशाच और आदमखोर हो गई है जो छात्रों की जान लेने पर आमादा है। अंजना जी ने बोला कि साथ बैठकर समाधान निकालेंगे, हमारे साथ बैठना नहीं चाहते, ये नीट 2024 का मुख्य आरोपी मुखिया के साथ बैठना चाहते हैं, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी उस मुखिया को, क्या समाधान निकालेंगे, कल ही रिपोर्ट आई कि 32 लोग जो आरोपी थे उनको छोड़ दिया इस सरकार ने, तो ये सरकार की सत्ता की सरपरस्ती पेपर माफियाओं के साथ, पेपर लीक करने वाले के साथ है। उत्तर प्रदेश में उस आदमी को ठेका दिया पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो बिहार की जेल से छूट कर आया था, और उसको नोटिस दिया तो विदेश भाग गया, फिर उसको क्लीन चिट दे दी है, क्या इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अब मंत्री प्रधान गए, प्रधानमंत्री की बारी है, इस समस्या का स्थायी समाधान है इस सत्ता का चले जाना, और ये माइलस्टोन रखाएगा कि सरकार ऐसे विषय पर गई है जो छात्रों की अनसुनी करती है, तो भारत के भविष्य को।
1: अभय जी,
2: अंजना जी,
1: हाँ अजय लोक जी, जवाब दीजिए, वो बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री की बारी है।
2: चक्कर है कि एक लाइन थी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन दम हमारा नहीं निकल रहा है, इनकी ख्वाहिश ऐसी है कि इन्हीं का दम निकल जाता है, लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, जनता से रिजेक्ट होते जा रहे हैं, मना रहे हैं कि सत्ता का जाना राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, अरे डेलिरियम से निकलो, कोलंबियन इफेक्ट से, वास्तविकता की धरती पाई है। अरे भदौरिया जी इतना जो चिल्ला रहे हैं दाएं बाएं का, हम जानते हैं किस तरह के वृक्ष हैं, हम तार के वृक्ष नहीं है कि जो तन के खड़े हैं, हम सरकार में हैं इसलिए हैं क्योंकि हम आम के पेड़ हैं, और हमें फल लगते हैं तो हम झुक जाते हैं, झुकने में हमें इंदिरा गांधी जैसा ईगो नहीं है कि हम इमरजेंसी लगा दें, इंदिरा गांधी नहीं है हम कि इमरजेंसी लगा दें, जनता की बात न सुने, इसलिए कृपया करके अपना ज्ञान अपने पास रखिए, संसद में आइए, बिल पास करवाना जरूरी है देश हित में, ये देखिए ये खड़ा हो गया, ये ताड़ के पेड़ बन के खड़े रहे, इसीलिए बार बार जा रहे हैं, ताड़ के पेड़ बन के खड़े रहिए। आप
1: पूछिए अजय आलम जी,
6: आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरा एक बस छोटा सा सवाल है, 2013-14 में जो एजुकेशन बजट था वो 4.6% था, 2025-26 में वो एजुकेशन बजट घर के 2.5% हो गया, क्या इससे नहीं लगता कि आपकी सरकार की जो का फोकस है वो एजुकेशन पे नहीं है, लगातार एजुकेशन बजट जो है वो क्यों कम हो रहा।
2: यूपीए जब सत्ता में आई थी 2004-05 में एजुकेशन बजट 8,621 करोड़ का था। यूपीए जब सत्ता छोड़ के गई थी 13-14 में एजुकेशन बजट 58,000 करोड़ का था। आज हम 2026 की बात कर रहे हैं, एजुकेशन बजट 1,41,000 करोड़ का है। और आप जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट की बात कीजिए आशुतोष जी, डबल से ज्यादा बढ़ा दिया एजुकेशन बजट।
6: बजट का जो
2: आईआईटी की संख्या बढ़ा दी, डबल हो गई, डबल से ज्यादा हुई।
6: एक मिनट आशुतोष, मैं ये कह रहा हूँ अगर 100 रुपए था पहले,
5: नहीं नहीं
2: आशुतोष, सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब सुनिए, बीच में चिल्लाइए मत
5: आशुतोष।
2: जब सवाल जवाब सुनिए, बीच में चिल्लाइए मत,
5: बता लीजिए जब 8,000 करोड़ था तो कितने परसेंट था बजट?
7: एक मिनट बोलिए, जवाब सुनिए, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, वो जवाब दीजिए इसका, डायरेक्ट जवाब दीजिए अजय जी।
2: डायरेक्ट ही जवाब दे रहा हूं कि बात सुना करें, जब सवाल पूछे तो जवाब से भागिए मत, उसको आंकड़ों में मत उलझाइए। 1,41,000 करोड़ का बजट है आज के डेट में। मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी थी? 373, आज कितनी हो गई है? 750 से ऊपर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को रेगुलेट किया, आप लोग के छाती पर सांप लौट गए।
6: मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं,
2: पहले गरीब छात्रों से दूर था, आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गरीब छात्रों के पास है, ये आप नहीं चाहते हैं।
6: अजय जी,
2: कितने आईटीज बढ़ गए,
6: अजय जी
2: कितने कॉलेजेस बढ़े, कितने यूनिवर्सिटीज बढ़े,
5: अमेरिका का बजट जो होता है उसके परसेंटेज में होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम यदि बढ़ जाता है तो क्या?
6: अरे भाई, बजट का वॉल्यूम बढ़ गया ना, बजट का वॉल्यूम बढ़ा
5: है, ऐसी बात है
6: क्या? बात
5: बायस तरीके से तुम बात कर रहे हो,
6: क्यों
5: बजट का वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, बात कर रहे हो।
6: अरे भाई,
5: 2% से ज्यादा बढ़ रहा
6: है भाई, जब पहले
5: सरकार के
6: पहले 100 रुपए था, 200 रुपए अगर होगा तो अगर
5: 8,000
6: 4 रुपए खर्च, 9 रुपए क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं आप? आप 9 रुपए क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं?
7: क्या पैसा कितना खर्च करते हैं वो करिए, देखिए पेपर मत लीक होने दीजिए। पेपर का लीक होना सबसे बड़ी परेशानी बन गया है और इस कैंसर का इलाज आप ही को करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों की जो व्यवस्था है, टीचर्स को लेकर है, बहुत सारी परेशानियां हैं जय आलोक जी, मतलब एकदम जिसको कहते हैं ना डीप क्लेंजिंग की जरूरत है पूरी व्यवस्था की।
2: निश्चित तौर पर जिम्मेदारी हमारी है और जवाब भी हम ही को देना है और समाधान भी हम ही निकालेंगे और हम निकालने की दिशा में बहुत सिंसियरली हम प्रयास कर रहे हैं और इसका समाधान हर हालत में निकलेगा। ये हमें इंश्योर करना है कि बिल्कुल परीक्षा नकल रहित हो और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये बिल्कुल होके रहेगा।
7: और उम्मीद करते हैं कि कल देश की संसद चलेगी और वहां पर हम तमाम नेताओं को सुनेंगे और किस तरह से पेपर लीक प्रूफ व्यवस्था आप बनाएंगे उस पर भी सरकार का पक्ष आएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, वक्त इतने की इजाजत देता है। देश की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: 16 साल पहले एक धमाका क्या थी, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को RDX रिमोट बम से उड़ाने की साजिश, देखिए आज तक पर.
3: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार. अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या. रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.
4: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच. हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें.
5: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच में कई राज्यों में मुसीबत की तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आफत गुजरात में दिखाई दे रही है और गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद में स्थिति बहुत गंभीर है और जिले कई पानी में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्या हालात हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं।

0: शहर के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है, गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें डटी हुई हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की हैं, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। इसके बाद संकट के बीच SDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए SDRF के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं।
1: हम लोग यहां पर बावड़ा में हैं और ये गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें करीब कल की स्थिति में 900 जितने लोग फंस गए थे। अंदर 40 से 50 कंपनियां हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर अंदर जो जरूरी सामान था वो सब भी पहुंचवा दिया था। कल अभी तक 900 में से 500 जितने लोगों को बचा भी लिया गया है, बाहर ला दिया गया है। आर्मी की टीमें, कोस्ट गार्ड, NDRF, SDRF, लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है।
0: अहमदाबाद के इस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी हो रही है।
1: बाहर आने वाले लोग बता रहे हैं कि अंदर का जो पानी की स्थिति है वो कम से कम 6-7 फीट जैसी है, तो इसलिए बोट भी या कोई और ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है। पर धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है और कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअलिटी ना हो, जो अभी तक कहीं से ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तमाम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अंदर रहें, इंडोर्स रहें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सूचनाएं हैं समय समय पर उसका पालन करें।
0: अहमदाबाद शहर पर आसमानी आफत का हमला हुआ तो भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी हैं। सेना के जवानों के साथ SDRF की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।
2: रेस्क्यू की कामगिरी चालू है, कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है, तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले है और आज के टाइम में आज भी 70-80 आदमी हमने बाहर निकाले।
0: हालांकि भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी काफी ज्यादा भर गया है, जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है।
3: अभी हम जो है बोट से अंदर जब देख के आए तो लगभग कुछ विस्तार में लगभग 10 फीट के आसपास भी पानी है, और लेकिन जिन जिन लोगों को हम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और बाकी 500 लोगों को हमने लोकेट कर चुके हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे हम रेस्क्यू कर पाएंगे जो है। और आपके मार्फत मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहाँ पे तैनात है और हमारे पास 3 SDRF की टीम है, NDRF की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है और सभी टीम जो है डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो है हमने कम से कम 4 से 5 टीम यहाँ लगा रखी है, उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है और आज शाम तक जो हम काफी कुछ जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा अभी हमारा असेसमेंट है।
0: इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है, ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, आज तक।
4: सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई शहरों में बारिश इन दिनों मुसीबत बनकर बरस रही है और भारी बारिश के चलते अब तक गुजरात के 56 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा 21 मौत नवसारी जिले में हुई है।

0: भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। सैलाब शहरों तक पहुंच गया है। कई शहरों में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और मुसीबत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में हाल बेहद बुरा है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। भारी बारिश के बाद मलबा बहकर सड़कों पर आ गया है। कई जगहों पर रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के कई शहर भारी बारिश से बेहाल हैं। हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मौसम की मार के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। एक दिन पहले वलसाड से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी उफान पर है, पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही है। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगी।
1: अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये भी वलसाड है, गुजरात का वलसाड। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान है। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड की है। शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुबन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमनगंगा नदी में 2,59,724 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया।
2: मैं इस वक्त वलसाड जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 48 मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देख के आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ हैं वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
1: अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए जहाँ मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में हुई। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रंग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो
3: छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
6: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
7: Schwarber to right field, and it will leave.
6: From the first pitch of the season to the stretch run,
7: and that's the ball game.
6: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं। आज तक के इस खास शो में हम बात करेंगे सीजेपी के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, कल संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल। 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की जेल, 2 महीनों में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पैलेट गन को राहुल ने बताया एक नया मुद्दा। गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ AK-47 को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74 फर्स्ट विलेज घूमकर लौटे 400 युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद। मन की बात में पीएम ने जवानों को किया सैल्यूट, कहा कारगिल दिवस हर भारतीय के मन को गर्व से भर देता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को सुनाई खरे खरे, कहा सिर्फ पीओके पर होगी बात। गुजरात में बारिश, बाढ़ से बिगड़े हालात, अहमदाबाद, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत। असम भी पानी पानी, अब तक 61 ने गंवाई जान, हजारों लोग बेघर। शो की शुरुआत छात्रों के आंदोलन पर हो रही सियासत के साथ करते हैं और ताजा खबर आपको देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं, ये एक बड़ी खबर है। और इससे पहले तमाम तरह की सियासत के बीच में विपक्ष सरकार को घेरने की अपनी रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा है। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ हुई हिंसा पर जवाब मांगा, एक पत्र उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा है। साथ ही विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि कल संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं।
1: जंतर मंतर पर अब ना तो आंदोलन की तस्वीर दिख रही है, ना आंदोलनकारी दिख रहे हैं और ना ही वो सुरक्षा घेरा और बैरिकेड्स हैं। अब यहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ दिल्ली अभी भी उसकी सियासी तपिश महसूस कर रही है। एक तरफ सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी तेवर दिखा रहा है। छात्रों पर 20 जुलाई को हुए एक्शन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। पत्र लिखकर राहुल ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने छात्रों पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया था, घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। राहुल ने ये आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से पूछा है कि क्या आपने पैलेट गन या अन्य घातक हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, अगर आपने नहीं दी थी तो किसने दी। पार्टी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी और सवाल करेगी।
2: On our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament.
1: कांग्रेस कह रही है कि कौरवी शासन का अंत हुआ और विपक्ष रूपी पांडवों का नया उदय हुआ है।
3: 12 साल बीत गए हैं कौरवी शासन की, मैं तुलना करता हूं मोदी सरकार की। पांडव लौट के आ गए हैं युवा के रूप में, राहुल गांधी के रूप में, विपक्ष के रूप में।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया वीडियो सामने आया, आपको सुनाते हैं। इस वीडियो में क्या कह रहे हैं?
4: भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं, हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है, हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। विद्यार्थी
0: पीएम मोदी का एक और ये वीडियो और बिल्कुल स्टाइल वही जो इंस्टाग्राम पर काफी प्रचलित है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी जुड़ गए। हिमांशु, एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की बात पीएम मोदी अपने इस वीडियो में कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये कैसे काम करेगा और ये पीएम मोदी का जो नया स्टाइल है इसके बारे में भी बताएं।
5: देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इंस्टाग्राम पर लगातार वीडियो डालते और नई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते। पिछली इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की थी कि कैबिनेट के अंदर जो है प्राइवेट एग्जाम जो लॉ है उसमें अमेंडमेंट लाए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने जो सुझाव आए उसके बारे में कहा। आज उन्होंने जो है हाई पावर टास्क फोर्स एग्जामिनेशन रिफॉर्म कमेटी का गठन की बात की है। जो नंदन नीलेकणी है उनके जो है अध्यक्षता में बनाई जाएगी। तो एक तरीके से अब ये देखना है कि ये किस तरीके से काम करेगी, क्या एनटीए को समाप्त करने की बात है या फिर जो है वो ये एनटीए भी काम करेगा और नंदन नीलेकणी के अध्यक्षता में जो है हाई पावर टास्क फोर्स जो है एग्जामिनेशन रिफॉर्म पर काम करेगी। किस तरीके से जो है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हो और क्या क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए एग्जामिनेशन में जो एनटीए काम करता है।
0: ये टेक एक्सपर्ट जी,
5: क्योंकि ना सिर्फ एनटीए में नीट के एग्जाम होते हैं, उसपे जो है यूपीएससी के लिए भी है, उसपे रेलवे भर्ती के लिए भी है, उसपे सेंट्रल सेक्रेटरीएट का भी है, उसपे अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी है। तो तमाम जो एग्जाम है उनको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी जो है वो एनटीए पे है।
0: और अंदर खाने हिमांशु चर्चा क्या चल रही है, क्या आप एनटीए का विकल्प तलाशा जा रहा है सीरियसली?
5: देखिए एनटीए रह सकता है लेकिन उसमें क्या रिफॉर्म होने चाहिए जिससे भविष्य के अंदर जो है वो कभी भी जो है पेपर लीक जैसे मामले जो है वो ना हो, ना ही वो किसी राज्य में हो और ना ही केंद्र सरकार के एनटीए में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि पेपर लीक कोई केंद्र सरकार का विषय नहीं है, वो राज्य सरकारों में भी होता है। तो इसके लिए हमको जो है फुल प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा, रिफॉर्म करने पड़ेंगे और उसी दिशा में जो है ये हाई पावर टास्क फोर्स जो है उसको बनाया जा रहा है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के लिए, जिसका अध्यक्षता जो है नंदन नीलेकणी करने वाले हैं।
0: मानसु, प्रधानमंत्री आप इंस्टाग्राम पर सक्रिय थे की बात इससे पहले भी अपने जो है तमाम सदस्यों के कह चुके हैं, ट्विटर फेसबुक और मतलब इन पर तो काफी सक्रिय लोग रहते थे लेकिन जो इंस्टाग्राम ने खेल किया उस

0: बिल्कुल हिमांशु, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया के पावर बहुत ज्यादा है अब, और हर घर में मोबाइल फोन पर लोग सारी चीजें सोशल मीडिया से देखते हैं। एक हाई पावर कमेटी टास्क फोर्स, फिर इसके साथ साथ जो चल रहा था सड़कों पर, उसको भी शांत करवा दिया गया है। यानी कि कल जब संसद शुरू होगी हिमांशु, उससे पहले सरकार अपने सारे बॉक्सेस टिक कर रही है।
1: देखिए बिल्कुल बॉक्सेस टिक कर रही है। आप देखिए, मैंने पहले भी बताया कि प्राइवेट एग्जाम 2024 का जो लो है उसके अंदर कुछ नए संशोधन है, जिससे 3 महीने के अंदर जो है आपको जांच भी करनी है और फैसला भी करना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट को जो है वो लीगल बैकिंग दी जा रही है कि 3 महीने में आप काम करिए, 3 महीने में जो है इन्वेस्टिगेशन और जो भी फैसला है वो हो जाए, और सजा जो है वो 10 साल की सजा प्लस 10 करोड़ रुपए जो है वो फाइन यानी जुर्माना होगा। तो इस तरीके से सरकार फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है। जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला आया और फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद सरकार फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है, और इसीलिए तमाम चीजें जो है सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, चाहे वो एनटीए के अंदर 47 अधिकारियों को हटाना या फिर जो एजुकेशन हायर सेक्रेटरी है उनका ट्रांसफर करना दूसरे विभाग में। ये सरकार ने पिछले कुछ कहें तो 72 घंटों के अंदर जो है नई तरीके की स्थिति जो है वो बना दी है, और सरकार जब संसद के अंदर इस बिल पर चर्चा होगी तो सरकार की कोशिश रहेगी कि विपक्ष के जितने सवाल हो उसे जवाब भी दिया जाए, और विपक्ष का जो एक विपक्ष जो घेरना चाहता है सरकार को, सरकार उस घेरे में ना आए और बल्कि कटघरे में विपक्ष को खड़ा कर दे।
0: जी हिमांशु, बहुत कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, मतलब मित्रों से लेकर फ्रेंड्स तक का जो अब संबोधन है उसकी शुरुआत हो रही है। आज भी फ्रेंड्स से ही संबोधित किया पीएम मोदी ने, लेकिन साथ साथ में मैं चाहता हूं कि नंदन नीलेकणी जी के बारे में भी आप बताएं कि उनके थोड़ा बैकग्राउंड, उनके जो कि इस कमेटी को हेड करेंगे।
1: मुझे जो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है नंदन नीलेकणी का, तो वो है UID यानी आधार की स्थापना जो है नंदन नीलेकणी लेके आए थे। तो डिजिटली चीजों को जोड़ना, किसी भी व्यक्ति की जो डिजिटली चीजों को जोड़ना, उसके इंफॉर्मेशन को साफ करना, बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, तमाम सेक्टर से आधार को जोड़ना, एक बड़ा कदम जो है वो नंदन नीलेकणी का आइडिया था जो यूपीए सरकार में हुआ, और उसका विस्तार जो है वो 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ, और आज हम देखते हैं कि आधार एक जरूरी डॉक्यूमेंट है आम आदमी के लिए, चाहे आपको बैंक अकाउंट खुलाना है, आपको पासपोर्ट बनवाना है, स्कूल में एडमिशन चाहिए, तमाम इस तरीके के जितनी जगह सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आधार एक बहुत बड़ा जो है वो डॉक्यूमेंट हो गया है जो आपके एड्रेस को प्रूफ करता है।
0: हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौट रहे हैं। हम इस समय पीएम मोदी की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उनके 3 संबोधन है दरअसल। पहले फ्रंट कैंप से बनाए गए वो वीडियो जो बहुत वायरल भी हुए 23 जुलाई को, फिर 24 जुलाई को, फिर इसके बाद एक आज का वीडियो है, और आज इसमें वो तीनों एक तरीके से जेन जी को ही संबोधित उसमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक बिल्कुल अलग रूप अब सरकार भी अख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेन जी, उनके आक्रोश और उनकी डिमांड्स को देखते हुए अब उसी तरह से उनके बीच में पहुंचने का प्रयास है। ये कितना कारगर हो गया तो खैर भविष्य के घर में, लेकिन वो प्रयास शुरू हो गया है वैसा लगता है सरकार की तरफ से। अब जेन जीज के साथ उन्हीं के अंदाज में ये संवाद की शुरुआत आज भी हुई है, और अब पीएम ने जेन जी को ही संबोधित करते हुए फ्रेंड्स के साथ संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि हमें भी टेक एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी उनके सदस्यता में जो है वो हेड करेंगे, एक हाई पावर टास्क फोर्स बना रहे हैं। 36 दिनों तक सीजेपी आंदोलन के बाद अब काफी कुछ बदल गया है। सबसे अहम यह कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो थे वो इस्तीफा दे चुके हैं, और नए शिक्षा मंत्री को कार्यभार भी सौंप दिया गया है। उनकी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को दे दी गई है। प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है, लेकिन अभी सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं हुई हैं।
2: शनिवार का दिन छात्रों के नाम रहा, उनकी मांगे मान ली गईं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कुर्सी छोड़ी तो चंद घंटे के अंदर उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई।

0: यानी अब तमाम परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने और शिक्षा से जुड़े बदलाव की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी संभालने जा रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया।
1: एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।
0: सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी दो बार इस्तीफे की पेशकश की थी। तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब प्रधान से कहा गया था कि वो शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व जारी रखें। लेकिन CJP के दबाव का असर दिखा। सूत्रों की माने तो बातचीत के अंतिम दौर से पहले सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी मकसद के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। उनके पास उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। अब आने वाले समय में उनके सामने छात्रों के हित में अहम बदलाव की बड़ी चुनौती है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में थे, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला।
3: इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था, यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है।
2: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों का प्रदर्शन देश भर से भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिसिय एक्शन पर गंभीर सवाल है। सियासत भी तेज हो गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, बिहार के सिवान की तस्वीरें, जहां पर पुलिस वाले AK-47 ताने नजर आ रहे हैं और इस पर अब सियासत चल रही है।
0: जहां हल्के बल प्रयोग से बात बन सकती थी, वहां AK-47 वाले जाबाज पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। तस्वीरें देखिए और देख लीजिए बिहार पुलिस का कारनामा। हर कोई पूछ रहा है कि क्या बिहार पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करती है। तस्वीरें 25 जुलाई की हैं। सिवान में छात्र गुस्से से भरे हुए थे, वो लगातार पथराव कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस भी आंसू गैस की गोले दाग रही थी। इसी प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सिवान पुलिस के अधिकारियों ने अपने AK-47 धारी जवानों को सलकों पर उतार दिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पुलिस को घेरा, साथ ही सम्राट सरकार पर भी हमला बोला।
4: जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छा गुंडा है जिसपे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
0: तेजस्वी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए तो ताजा ताजा RJD से BJP में शामिल हुए नेता पलटवार करने आए।
5: श्री तेजस्वी यादव जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये बता रहा है कि गुंडा मानसिकता और लंपटीकरण संस्कृति किस तरह से तेजस्वी यादव जी के अंदर।
2: तो कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में शहीद सैनिकों को नमन किया और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि कारगिल की ऊंची चोटियों पर सैनिकों ने अपनी बहादुरी से दुश्मन को हराया। सैनिकों का हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया।
6: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
2: जिम्बाब्वे के साथ तीसरे T20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेली है। वैभव सूर्यवंशी की 81 रनों की बदौलत भारत ने तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 193 रनों का लक्ष्य दिया है। तीन मैचों में वैभव की ये दूसरी हाफ सेंचुरी है।

0: जिम्बाब्वे दौरे पर खेली वैभवशाली पारी। तीन मैचों में दो हाफ सेंचुरी जमाई वैभव ने। इंग्लैंड दौरे के दबाव, मायूसी और निराशा से उबर कर वैभव सूर्यवंशी धीरे धीरे रंग में आ रहे हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर उनका भरोसा भी लौटा है और रन भी बन रहे हैं। वैभव ने इस दौरे पर तीन मैचों में शानदार ओपनिंग पारी खेली है। पहले ही T20 में उन्होंने 50 रन बनाए, फिर 20 रन और तीसरे मुकाबले में उनके बल्ले से निकले 81 रन। 15 साल के वैभव के लिए यह दौरा आसान नहीं था। पहले आयरलैंड में अपनी पारी का वो इंतजार ही करते रह गए। इंग्लैंड जैसे मुश्किल कंडीशन और धारदार आक्रमण के सामने मौका मिला तो उनके बल्ले ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। ऐसे में कहने वालों ने कह दिया कि वैभव को चुनने में जल्दबाजी की गई। आखिरकार जिम्बाब्वे में उन्होंने मौके को जाया नहीं जाने दिया और तीन मैचों में दो हाफ सेंचुरी जमा डाली। जिम्बाब्वे के खिलाफ 49 गेंद पर 81 रन बनाने वाले वैभव ने 4 छक्के और 8 चौके जमाए। लग रहा था कि वो दुनिया के सबसे कम उम्र के शतक वीर बन जाएंगे, लेकिन इस शानदार कैच ने उनकी पारी पर लगाम लगा दी। वैभव सूर्यवंशी जैसे बेखौफ बल्लेबाजी करने वाले युवा कम ही मिलते हैं। उनके साथ हैंडल विद केयर का फॉर्मूला अपनाया गया तो इस बात की गारंटी है कि देश का मान बढ़ाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज तक ब्यूरो।
1: तो ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: The mangled wreck of the two-wheeler used in an attempt on the life of Uttar Pradesh Minister Nand Gopal Nandi.
6: गुंडों और अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ कि मेरे ऊपर RDX रिमोट बम से भी हमला हुआ।
7: वर्ष 2010, 12 जुलाई, प्रयागराज की सड़कों पर एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। भगवान शिव के मंदिर जलाभिषेक के लिए जा रहे तत्कालीन कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के रास्ते पर RDX से लदी स्कूटी को रिमोट कंट्रोल से विस्फोट कर उड़ा दिया गया। इस भीषण हमले में एक सुरक्षा कर्मी और एक पत्रकार शहीद हो गए, जबकि नंदी बेहद गंभीर रूप से घायल होकर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करने लगे। 7 दिन कोमा, 7 महीने तक अस्पताल में रहने, 14 सर्जरी और फिर जीवन की सबसे लंबी लड़ाई जीत कर वे लौटे। समर्थकों का विश्वास है कि ये भगवान भोलेनाथ की कृपा और लाखों लोगों की प्रार्थनाओं का परिणाम था।
6: कोई गुंडा, बनमास, अपराधी व्यापारियों को तंग करता तो मुझे बोलते, तो उन अपराधियों को सजा मिलती थी। तो उन लोगों ने ऐसा एक प्लान बनाया कि अगर हम मंत्री को ही बम से उड़ा देंगे तो आज जो हम जिले के और प्रदेश के माफिया हैं, देश भर में मेरा नाम हो जाएगा और देश से वसूली करेंगे, देश भर के व्यापारियों से वसूली करेंगे। लेकिन वो कुदरत का करिश्मा, भगवान का चमत्कार, जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई।
7: बताया जाता है कि ये हमला व्यापारियों से रंगदारी वसूलने वाले माफिया तत्वों द्वारा कराया गया था, क्योंकि नंदी उनके विरुद्ध मुखर होकर आवाज उठा रहे थे।
8: जैसे ही वो मंदिर की तरफ जाने लगे, आधे रास्ते पे जो है एक बार की विस्फोट हुआ। जब धुआं छटा तब उसमें दिखाई पड़ा कि बुरी तरह घायल हो गए थे, तो उनको निकाल के हम लोग जो है समीप के ये जीवन ज्योति हॉस्पिटल वगैरह उनको भिजाने का इंतजाम करने लगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि समझ लीजिए कि एकदम से मौत के मुंह से वापस आए।
7: व्यापारी समाज इस दिन को व्यापारी साहस दिवस के रूप में भी मनाता है। समय बीतता गया लेकिन ये दिन केवल स्मृति नहीं रहा, ये जन आस्था और जन सहभागिता का महापर्व बन गया। इस वर्ष मंत्री नंदी के पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव पर प्रयागराज में ऐसा आयोजन हुआ जिसने नया इतिहास रच दिया। एक ही स्थान पर 4,35,312 लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण कर नया कीर्तिमान बनाया। देश और विदेश के साथ प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से लाखों समर्थक और चाहने वाले प्रयागराज पहुंचे। राम भवन से चंद्रलोक, चंद्रलोक से मानसरोवर और मानसरोवर से सुलाकी चौराहे तक विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई। 6 विशाल किचन बनाए गए। 1,075 कारीगरों और 612 वेटरों की टीम लगातार सेवा में जुटी रही। लाखों लोगों के लिए देसी घी, चावल, दाल, आटा, पनीर, हरी मटर सहित सैकड़ों क्विंटल खाद्य सामग्री का उपयोग किया गया। पूरे आयोजन को किसी भव्य राष्ट्रीय आयोजन जैसी व्यवस्थाओं के साथ संचालित किया गया। आस्था के इस महोत्सव में भक्ति का रंग भी खूब दिखाई दिया। प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी और भजन गायिका स्वाति मिश्रा की प्रस्तुति पर हजारों श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव आज केवल एक स्मृति या वार्षिक आयोजन नहीं रह गया है, ये समाज को जोड़ने और सेवा का संकल्प मजबूत करने का एक सशक्त अभियान बन चुका है। नंदी सेवा संस्थान के साथ 1 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं।
6: नंदी सेवा संस्थान से कोई व्यापारी के यहाँ किसी वजह से हत्या, लूट, डकैती या एक्सीडेंटल डेथ हो गई, उसके बच्चे छोटे हैं, तो 10,000 रुपये महीने आजीवन, जब तक वो जीवित हैं, जब तक हम जीवित हैं, 10,000 रुपये महीने उनको पेंशन के रूप में दी जाती है।
7: संस्थान के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाने, व्यापारी वर्ग के हितों को सशक्त करने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और विपरीत परिस्थितियों में लोगों के साथ खड़े रहने जैसे अनेक सामाजिक कार्य निरंतर संचालित किए जा रहे हैं।
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se.
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: मुझे पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा प्यार में पागल हो गई थी किसी के एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टेड थी उस इंसान के अंदर. तो फिर वापस से मुझे एक बार और स्ट्रोक आया था जनवरी में बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ओनली. आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स. इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं. माय वेट वाज 52 एंड विद इन 7 days माय वेट गोज 85. सो इट्स अ ट्रिजेमिनल न्यूरोलॉजिया. मुझे डॉक्टर ने ही बताया.
3: हाँ,
2: ये सलमान खान को भी बीमारी है. वो भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि उनको भी है. सडन अटैक्स आते हैं यहाँ पे. मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करंट लग गया है. दिस इज अ सुसाइडल डिजीज.
4: हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है.
5: टीयर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस करते हुए नजर आ रही है.
4: पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तिथर बतर करने के लिए पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है.
6: कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली. आज तक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

परीक्षा संशोधन बिल से पहले प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश, नंदन नीलकर्णी की अगुवाई में टास्क फोर्स का ऐलान, कहा पारदर्शी बनाएंगे परीक्षा प्रक्रिया, लाएंगे कठोर कानून। पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, कल संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल, 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की जेल, 2 महीनों में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पैलेट गन को राहुल ने नया मुद्दा बनाया, गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ AK-47 को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74 विलेज घूमकर लौटे 400 युवा, प्रधानमंत्री से साझा किया अनुभव। गुजरात में बारिश, बाढ़ से बिगड़े हालात, अहमदाबाद, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम में भी पानी ही पानी, अब तक 61 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर।

नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव खांडियाल। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जिस ईरान पर पिछले 12 दिन से डोनाल्ड ट्रंप ताबड़तोड़ बम बरसा रहे थे, अचानक एक रात मिसाइलों का शोर थामने का फैसला ले लिया गया। आखिर ऐसा कैसे हो गया? ईरान को निस्त नाबूद करने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब बातचीत के बयान दे रहे हैं। ये मजबूरी है या फिर उनकी सोची समझी रणनीति? क्या कमजोरी दिखाई दे रही है और क्या कमजोर पड़ते जा रहे हैं अमेरिका की सेना, या फिर किसी बड़े हमले की तैयारी हो रही है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: रुक गई भीषण बमबारी, 12 दिन में तबाही भारी। ब्रेक की बारी या फिर बड़े हमले की तैयारी। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ बातचीत जारी। अभी भी तल्ख है अमेरिका ईरान, हॉर्मूज में बढ़ा घमासान। पिछले 12 दिनों में अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर खूब बमबारी की। अमेरिका लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करता रहा है। 2 दिन पहले ही ताजा हमलों में उसने ईरान के कई शहरों पर मिसाइल बरसाई थी, जिनमें अहवाज जैसा तेल उत्पादन का एक बड़ा सेंटर भी शामिल था। अमेरिका ने अहवाज पर 40 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। लेकिन अब सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े हमले को फिलहाल रोक दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टॉप कमांडरों और कैबिनेट सदस्यों के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप ने सेना को नए हमले रोकने का आदेश दिया। अमेरिकी मीडिया ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से यह भी दावा किया है कि अगर अभियान और बढ़ाया तो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के पास पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और बाकी एयर डिफेंस हथियारों का स्टॉक कम हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरा बढ़ सकता है। वैसे ट्रंप के इस फैसले से हर कोई हैरान है, क्योंकि एक दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के 12 से ज्यादा शहरों में जमकर बम बरसाए थे, जिनमें बंदर अब्बास, जस्क, कुनारक, सुजा, ताफ, खोंदाब, खुर्रमाबाद, अहवाज, खुर्रम शहर, अनारक, फिरोजाबाद और ओमिदी शामिल है। सीज फायर टूटने के बाद से कल रात पहली बार अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान में तबाही नहीं मचाई। इसके ठीक पहले वाशिंगटन में मीडिया ने इस युद्ध के बारे में जब उन्हें घेरा था तो उन्होंने खुलासा किया था कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, लेकिन लगता है तेहरान कोई डील करने के मूड में फिलहाल नहीं है।
1: Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys.
0: माना कि बातचीत चल रही है और मिसाइलों के साथ साथ मुलाकात के रास्ते भी बंद नहीं हुए हैं। लेकिन अगर कोई डील न हुई तो आने वाले दिनों में क्या युद्ध और भीषण होने वाला है? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने साफ साफ दोहराया कि उनकी सेना पहले से भी भयंकर हमले करने के लिए तैयार है, यानी लॉक्ड एंड लोडेड।
1: Talking to them right now, I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are 2 ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them, so... I think while we're talking, we'll see what comes of it.
2: And we say, just
1: I believe, Jeff, they're very serious. Okay. They should be.
2: And when you say that...
0: इस बीच हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकेबंदी और सख्त कर दी है। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा है कि ओमान की खाड़ी में एक जहाज ने लगातार उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। जवाब में अमेरिकी नेवी ने उसे निष्क्रिय कर दिया। शहरों में बमबारी थमने के बाद लड़ाई का सबसे बड़ा मोर्चा फिलहाल समंदर बन गया है। हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी नौसेना ने ईरान के खिलाफ अपना समुद्री ब्लॉकेड और सख्त कर दिया है, ताकि ईरान की तरफ जाने वाले जहाजों पर लगातार नजर रखी जा सके। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की ये मुलाकात ईरान जंग शुरू होने के बाद पहली बार होगी। आज तक ब्यूरो।
3: तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी और अब न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक खबर भी आपको देते हैं। ईरान के खिलाफ सैन्य हमले बढ़ाने के फैसले से डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हटने में वरिष्ठ सलाहकारों की चेतावनी है। सलाहकारों ने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा है कि बड़े सैन्य अभियान से अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भंडार खतरनाक हद तक कम हो सकता है, जो कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने बताया जा रहा है कि जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने जानकारी दी है कि ये नुकसानदेह हो सकता है अमेरिका के लिए। और अब हम आपको विस्तार से बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और इसके पीछे की बड़ी वजह। नंबर एक, ईरान के साथ तनाव को ज्यादा बढ़ाने से डोनाल्ड ट्रंप का अब परहेज करना। हमने एक जानकारी आपको ये भी दी कि जो एडवाइजर्स हैं वो सलाहकार हैं वो बता भी रहे हैं कि ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप करना जरूर चाहते हैं, ईरान को झुकाना जरूर चाहते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हैं। सवाल जो है नंबर टू पॉइंट है कि बैठक में सलाहकारों ने इन नतीजों के बारे में सीधी सीधी डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी, उनको बताया कि क्या नुकसान अमेरिका को झेलने पड़ेंगे भविष्य में और किस हद तक जो है उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो इससे कमजोर होगा। तो मध्य पूर्व में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर होने की चिंताएं बढ़ी गई और ये जो चिंताएं हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष रखी गई, क्योंकि इससे पहले बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, हमले भी हो रहे थे, वो हमले रुक भी नहीं रहे थे, नेस्त नाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन फिर वही डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट जाते हैं। खाड़ी देशों में तैनात पेट्रियट मिसाइलों का जो स्टॉक है वो कम होने का डर भी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के पीछे है। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे डर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के पीछे अब क्लियरली दिखाई दे रहा है। वो कौन कौन सी वजहें हैं वो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं और ये सब एडवाइजर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया है। युद्ध के फैसले और जो अरब के इनके सहयोगी हैं उनके कमजोर होने की भी आशंका है कि सिर्फ आप ही कमजोर नहीं होंगे, आपके जो सहयोगी हैं उन पर भी इम्पैक्ट होगा और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। वैश्विक आर्थिक असर, ऊर्जा संकट और शरणार्थी समस्या बढ़ने का भी डर है और इसमें से काफी कुछ तो बड़े हद तक दिखाई दे रहा है, चाहे ऊर्जा संकट हो, वैश्विक आर्थिक इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, तो इसमें से काफी हद तक चीजें क्लियरली दिख रही हैं और फिर शरणार्थी समस्या भविष्य में बढ़ने का डर है। ये सब डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब रखी गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये निर्णय लिया कि फिलहाल तो वो हमला रोकेंगे। और एक बड़ी खबर भी इस समय आपको दे देते हैं, कुवैत और सऊदी अरब के कई बंदरगाहों को खाली करवाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि कुवैत और सऊदी अरब के बंदरगाहों को खाली करवाया जा चुका है। यमन ने सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर बमबारी की है और तेल टैंकरों को वहां से फिर निकाल लिया गया है। ईरान के हमलों में कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। आपको ये बड़ी जानकारी दे दें कि बंदरगाहों से ये जो तेल टैंकर है वो निकाले गए, हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है सऊदी अरब और कुवैत के बंदरगाह इस समय खाली हो गए हैं ईरान के हमले के बाद से। ये विजुअल, ये तस्वीर है, हम आपको बड़ी स्क्रीन पर भी एक बार जल्दी से यही चीज दिखा देते हैं। देखिए कुवैत के बंदरगाह में आपको कोई मूवमेंट क्या दिखाई दे रही, सऊदी अरब के बंदरगाह कोई मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगी, पूरा सुनसान खाली इस समय दिखाई दे रहा है और ये सब जो ईरान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं और जो हमले कर भी रहा है उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कि जो बंदरगाह है वो पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा, किसी तरह की कोई शिपिंग, कोई मूवमेंट जो है दिखाई नहीं दे रही है। ये दोनों के दोनों विजुअल्स हैं। अब सवाल ये है कि ईरान आखिर क्यों खाड़ी के चार देशों को अपने निशाने पर ले रहा है। इसे आपको एलईडी बॉल पर ही नक्शे के जरिए जरा समझा भी देते हैं कि क्यों ईरान इन चार देशों पर हमले कर रहा है। पहले तो जॉर्डन, यहां पर मौकफ अल सॉल्ट एयरबेस है, यह पर यूएस सैन्य बेस है, यहां पर अमेरिकी सैनिक रहते हैं और कई अमेरिकी जेट भी इस जगह पर मौजूद हैं, इसलिए जॉर्डन को टारगेट किया जा रहा है, इस पर हमला किया जा रहा है। ऑब्वियस है कि अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करना मकसद है ईरान का। इसके साथ साथ इराक में जो इरबिल है यहां पर पेट्रियट एयर डिफेंस जो है तैनात है अमेरिका का, यहां पर सर्विलांस बलून भी मौजूद है, इसलिए इराक के इस हिस्से पर स्पेशली ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। फिर अब कुवैत पर आइए, यहां पर कैंप बिल्डिंग है, यहां पर अमेरिकी हथियार है और औजार के तीन डिपो अमेरिका ने बनाए हैं और इस जगह को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। फिर एक बहरीन है, शेख ईसा एयरवेस यहां पर है अमेरिका का, यहां पर यूएस आर्मी का पांचवा बेड़ा रहता है और साथ साथ यहां पर एक कंट्रोल टावर भी है, तो चीजें जहां से नियंत्रित की जाती हैं, देखी जाती हैं, तो इन चार जगहों पर टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध के बीच में एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक तेहरान ने लाल सागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और सऊदी अमेरिकी हितों को चोट पहुंचाने के लिए एक बड़ी साजिश भी रची। आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स मिसाइल और ड्रोन पार्ट्स के साथ साथ फंड जुटाने के लिए बड़ी मात्रा में सोना सीधे यमन बताया जा रहा है कि उन्होंने भेजा गया। और ये नहीं, यमन पहुंचते ही हुती विद्रोहियों को लाल सागर में तेल के जहाजों की नाकेबंदी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
4: मध्यपुर के बारूदी आसमान के बीच तेहरान से उड़ी एक रहस्यमयी उड़ान ने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि 13 जुलाई को ईरान की महान एयर के एक विमान ने तेहरान से यमन के लिए उड़ान भरी। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि इस फ्लाइट में आयतुल्ला खामेनेई के जनाजे से लौट रहे यमनी नागरिक और प्रतिनिधि मंडल सवार था, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस विमान में केवल आम नागरिक नहीं थे, बल्कि इसमें सवार थे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के 10 से 21 सीनियर सैन्य कमांडर और रणनीतिकार। इनके साथ मौजूद था शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन के आधुनिक कलपुर्जे और हूती अभियानों को फंडिंग के लिए भेजा गया भारी मात्रा में सोना। यानी ईरान ने हूती विद्रोहियों को ट्रेनिंग और दिशा देने के लिए IRGC के टॉप कमांडर्स यमन भेजे। रेड सी में तबाही मचाने के लिए ईरान ने यमन पहुंचाए एडवांस मिसाइल और ड्रोन पार्ट्स। युद्ध की फंडिंग के लिए तेहरान से सीक्रेट फ्लाइट के जरिए यमन भेजा गया भारी मात्रा में सोना। सूत्रों का कहना है कि विमान मूल रूप से यमन की राजधानी सना में उतरने वाला था, लेकिन जैसे ही सऊदी समर्थित यमनी सरकार को इसकी भनक लगी, उन्होंने सना एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद विमान का रूट बदलकर उसे लाल सागर के तटीय शहर हुदे इदाह में लैंड कराया गया। यमन उतरते ही IRGC के इन कमांडरों ने हूती विद्रोहियों को नए मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कमांडरों के पहुंचते ही महज 3 दिनों के भीतर तेहरान से हूती विद्रोहियों को सख्त फरमान जारी किया गया। अगर अमेरिका ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो हूती विद्रोही तुरंत लाल सागर के मुख्य तेल मार्ग को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। भले ही ईरान और हूती विद्रोही इन दावों को पूरी तरह से नकार रहे हों, लेकिन सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि रेड सी को निशाना बनाकर ईरान अब अमेरिका और उसके सहयोगियों पर चौतरफा दबाव बनाने की फिराक में है। ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ी तबाही की घड़ी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: ईरान और अमेरिका युद्ध में अभी तक सीधे तौर पर 3 देश ही जुड़े हुए थे, तो क्या इसमें जल्द ही चीन और रूस जैसे महाताकतों की एंट्री हो सकती है? वैसे चीन और रूस ने ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को यह बयान देने की नौबत क्यों आई कि चीन और रूस ने अगर ईरान को हथियार दिए तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, और इस धमकी के क्या मायने हैं और हथियारों की इस होड़ इस युद्ध को क्या दिशा दिखा रही है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: अमेरिका ईरान जंग में होगी चीन रूस की एंट्री। आएंगे नए हथियार, अब होगा आर पार। बमबारी के साथ बयानों ने भी मचाई खलबली। क्या ईरान को मिलने जा रहे हैं चीनी हथियार? क्या रूस के हथियारों के दम पर अमेरिका का सामना करेगा ईरान? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ तो रणभूमि में पर्दे के पीछे ऐसा पक रहा है जिसने ट्रंप को धमकी देने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ ट्रंप और इजराइल हैं, तो दूसरी तरफ ईरान। लेकिन क्या सच में ईरान इस पूरी जंग में अकेला है? शायद नहीं। चीन और रूस के साथ उसके रिश्ते जग जाहिर हैं। चीन ईरान से तेल खरीदने वाले देशों में सबसे ऊपर है, जबकि निवेश को लेकर भी उसकी और ईरान की दोस्ती गहरी है। इस जंग के दौरान अमेरिका ने कई बार चीन पर आरोप लगाया है कि जहाजों में छिपाकर दोहरे इस्तेमाल वाली सामग्री को चीन ईरान भेजता रहा है, जिसकी मदद से ईरान ड्रोन और बाकी सैन्य उपकरण तैयार करता है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अगर चीन और रूस ने इस जंग में दखलंदाजी की तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाल ही में बीजिंग में हुई उनकी मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिया था कि वे किसी भी हाल में ईरान को हथियार नहीं देंगे। चीनी कंपनियों के लिए भी यही चीज लागू है। हमारे रिश्तों को देखते हुए मुझे जिनपिंग पर यकीन है। इसी तरह यूक्रेन जंग के बावजूद पुतिन ने भी कहा था कि वो ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे। वो जानते हैं कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचता, बल्कि नाटो देशों को बेचता है। नाटो देश इन हथियारों की पूरी कीमत चुकाते हैं, उसके बाद वो इन्हें किस तरह आगे भेजते हैं इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती। ईरान युद्ध के संबंध में ये दो बड़े देश भाग नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर ट्रंप।
1: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से एक वीडियो साझा किया है इंस्टाग्राम पर। यह वीडियो साझा करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान भी किया है और एक टास्क फोर्स का गठन करने की बात कही है और ये परीक्षा सुधारों पर काम करेगा और इसकी जिम्मेदारी दी गई है नंदन निलेकणी को, जो कि प्रभावशाली टेक्नोलॉजी उद्यमी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमुख वास्तुकारों में से एक माने जाते हैं। पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। अगर हम नंदन निलेकणी की बात करें तो आधार में इंपॉर्टेंट काम किया है, ईकेवाईसी, ई साइन, डिजी लॉकर, यूपीआई अकाउंट एग्रीगेटर में काम किया है, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर, काम कोटे भी इस टीम में शामिल किया गया है। यानी कि जो समाज के जो उत्कृष्ट लोग हैं उनको इस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया गया है। लॉजिस्टिक एक्सपर्ट भी इसका हिस्सा है, अमृत लाल मीणा। ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको इस टास्क में जगह दी गई है। पूर्व शिक्षा सचिव भी हैं अनिता करवाल, वो भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। अब इस बात की चर्चाएं भी चल रही हैं कि एनटीए में रिफॉर्म होंगे या एनटीए का विकल्प भी होगा, क्या होगा तो भविष्य गर्म है। लेकिन सुधार परीक्षाओं में सुधार के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month, Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
5: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
6: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत बहुत बधाई, हमारे देश के युवाओं को जेन ज़ी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा, ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था, लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी, हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा, ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर, अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद।
5: जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले एक महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था, सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पे युवाओं ने कहा था, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी, पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ दो वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा, एक किसानों का आंदोलन, एक साल के बाद सरकार झुकी, दूसरा नौजवानों का आंदोलन जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: मिडिल ईस्ट सुलग रहा है और उसकी तपन में दुनिया भर के बाजारों में बेचैनी बढ़ गई है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव फिर से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाने की आशंका पैदा कर रहा है। दरअसल जब भी किसी बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, सबसे पहले कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ जाती है। इस बार भी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने ऊर्जा बाजारों की धड़कनें तेज कर दी हैं। गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज में सप्लाई संकट लंबा खिंचता है तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और चौथी तिमाही तक ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। तनाव लंबे समय तक जारी रहने पर कुछ विश्लेषकों ने $150 से $200 प्रति बैरल तक जाने की आशंका जताई है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड करीब $91 और WTI क्रूड लगभग $83 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। तेल बाजार में बढ़ती इस बेचैनी का असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसकी वजह है कि देश अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है और पश्चिम एशिया ग्लोबल क्रूड सप्लाई का खास हिस्सा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। वहीं पश्चिम एशिया में दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार की आवाजाही होर्मुज के रास्ते होती है और होर्मुज में बाधा आने पर भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। यही वजह है कि होर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट भारत जैसे बड़े आयातक देशों की चिंता बढ़ा देती है। तेल महंगा होने से ऊर्जा लागत बढ़ सकती है और महंगाई पर भी दबाव बन सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय रिफाइनरियां अपनी खरीद रणनीति में बदलाव करती नजर आ रही हैं, जिसके चलते जून तिमाही में रूस और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल खरीद बढ़ाई गई, क्योंकि रिफाइनरियां वैकल्पिक स्रोतों पर फोकस बढ़ा रही हैं और उनका मकसद किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करना है। फिलहाल बाजार की नजर अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक कोशिशों पर है। अगर तनाव कम होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर संकट लंबा खिंचता है तो इसका असर पेट्रोल डीजल महंगाई और शेयर बाजार तक महसूस किया जा सकता है। यानी पश्चिम एशिया का ये तनाव हजारों किलोमीटर दूर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के बजट पर भी असर डाल सकता है। आदित्य राणा, आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: और अब आगे देखिए बरसात के मार पर खास पेशकश श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

परीक्षा संशोधन बिल से पहले पीएम का एक संदेश, नंदन नीलेकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स का ऐलान, कहा पारदर्शी बनाएंगे परीक्षा प्रक्रिया, कठोर कानून लाएंगे। पेपर लीक को लेकर सरकार का बड़ा कदम, कल संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल, 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की जेल, 2 महीनों में जांच भी करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पैलेट गन को राहुल ने बनाया नया मुद्दा, गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ AK-47 को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74 फर्स्ट विलेज घूमकर लौटे 400 युवा, प्रधानमंत्री से साझा उन्होंने किया अनुभव। गुजरात में बारिश, बाढ़ से बिगड़े हालात अहमदाबाद, नवसारी और सूरत का बुरा हाल, अब तक 56 लोगों की मौत, असम में भी पानी, अब तक 66 की मौत, हजारों लोग बेघर।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आसमानी तबाही की ऐसी भयंकर तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से आ रही हैं कि रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कहीं बड़ी चट्टानें गाड़ियों के ऊपर गिर रही हैं, कहीं पूरे के पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पानी में बहे जा रहे हैं। इंसान जानवर सब कुदरत के कहर से परेशान है। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, प्रकृति किसी में फर्क नहीं कर रही। देश में पिछले कुछ दिनों में 170 से 180 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है। आसमान से बरसने वाली इस आफत से आधा हिंदुस्तान परेशान है।

0: 20-25 घरों में पानी है, सब लोगों को निकाल दिया है, शायद एक आध कोई है उसको निकाल रहे हैं।
1: हम लोग कैसे सर्वाइव करेगा, फिर से नॉर्मल जिंदगी कैसे लाएगा, वही सोच के हम लोग को ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी तो जो हो गया वो हो गया है।
2: हमारे पिताजी का 70 साल हो गया, ये पहली बार ऐसा नहीं देखा।
3: यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है और आप देख सकते हैं पूरा शिवसागर टाउन पानी से डूब गया है।
4: ये सच है कि पानी जीवन देता है, लेकिन जब बेकाबू होता है तो जिंदगी ही बहा ले जाता है। वलसाड़ की ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं, कैसे पानी की रफ्तार के खिलाफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। पानी जब कहर बनकर बरसता है तो इंसान की बेबसी दिखाई देती है। अहमदाबाद की ये तस्वीरें देखिए। अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक में सेना ने गैलप इंडस्ट्रियल पार्क से 900 कर्मचारियों को रेस्क्यू किया है जो बाढ़ की वजह से फंस गए थे। पानी की धार जब रौद्र रूप लेती है तो बड़ी बड़ी इमारतें भी खिलौने लगने लगती हैं। कश्मीर के बडगाम में कुछ दिनों पहले पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नदी की रफ्तार में भर भरा कर गिर पड़ा। जहां पानी पहुंचता है वहां सिर्फ इलाके नहीं डूबते, उम्मीदें भी डूब जाती हैं, लेकिन डूबती उम्मीदों को बचाने वाले भी होते हैं। वलसाड़ में 24 घंटों से पानी में अकेले खड़े शख्स को आखिरकार कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू कर लिया। पानी की कोई सीमा नहीं, ये जहां रास्ता पाता है वहां तबाही लग देता है।
5: पहली दफा ये पानी है, इतना सारा कभी पानी आया ही नहीं है।
3: पहली बारिश हुई उसको लेकर इधर पानी भी इकट्ठा बहुत हुआ है और समुद्र जैसा माहौल भी बन चुका है।
6: ये 25 साल में पहले बार पानी इतना आया है और पीछे के बंगला है उसमें 10 फुट पानी है, उसके आगे 8 फुट है, 7 फुट है, 6, पूरी सोसाइटी पानी में है।
4: क्या इंसान क्या जानवर पानी के प्रकोप के आगे किसी की नहीं चलती। अब जरा भूस्खलन की सबसे खतरनाक तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, कैसे एक दरकी हुई चट्टान कुछ सेकंड में सैकड़ों जिंदगियों का रास्ता रोक सकती है। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें उसका सबूत, जब पहाड़ टूटता है तो सड़कें नहीं इंसान की उम्मीदें भी मलबे में दब जाती हैं। कुदरत जब पहाड़ों को हिलाती है तो इंसान का बनाया हर इंतजाम रेत की दीवार साबित होता है। आखिर में उनकी तस्वीरें जो देवदूत बनकर न आए तो जिंदगी मुश्किल हो जाए। भारतीय सुरक्षा बलों के हौसलों को सलाम है, भारतीय सुरक्षा बलों के हौसले को सलाम है।
7: मैदानी इलाकों में सबसे बुरा हाल गुजरात का है। राज्य के ऊपर बना वायुमंडलीय भंवर यानी एटमोस्फेरिक वॉर्टेक्स लगातार सक्रिय है, जिसके चलते आने वाले दिनों में सौराष्ट्र और उससे सटे कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस भंवर की वजह से बेहद खतरनाक मौसम की परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसकी वजह से लंबे समय तक लगातार और मूसलाधार बारिश हो सकती है।

0: बारिश नहीं गुजरात पर आफत बरस रही है।
1: ये 25 साल में पहले बार पानी इतना आया है और पीछे के बंगला है उसमें 10 फुट पानी है, उसके आगे 8 फुट है, 7।

0: का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर अहमदाबाद मजबूर है। पानी ने शहर पर कब्जा कर रखा है, लोगों की उम्मीदें डूब गई हैं, रिहायशी कॉलोनियों में घुटनों घुटनों पानी भरा है, लोग परेशान हैं। अहमदाबाद में पिछले 100 सालों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब इतनी बारिश हुई है, लेकिन ये समस्या यहाँ हर बार की है।
1: पूरे अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान है, जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है, हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है।
2: रेस्क्यू की कामगिरी चालू है, कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है, तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले है, और आज के टाइम में आज भी 70-80 आदमी हमने बाहर निकाले हैं।
3: पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहाँ पे तैनात हैं, और हमारे पास 3 SDRF की टीम है, NDRF की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है, और सभी टीम जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो हमने कम से कम 4-5 टीम यहाँ लगा रखी है, उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है।
0: अहमदाबाद शहर ही नहीं, पूरा जिला भी बारिश की वजह से परेशान है। भारी बारिश के कारण पानी रोड तक आ पहुंचा है, जिसके बाद अहमदाबाद राजकोट हाईवे को बंद करना पड़ा है।

0: जरा इस तबाही का हिसाब देखिए। सबसे बुरा हाल वलसाड का है। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है मानो पानी शहर को गुजरात के नक्शे से मिटाना चाह रहा है। ये वापी की तस्वीरें हैं। पानी बिल्डिंगों की पहली मंजिल तक पहुंच चुका है। स्कूल डूबे हैं, स्कूल की बसें डूबी हैं, रेलवे अंडरपास डूबे हुए हैं।
1: पूरे जिले में जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, एसडीएम से लेके तहसीलदार से लेके तालुका विकास अधिकारी, सभी लोग फील्ड के में हैं, अभी एक्टिव हैं। और वलसाड शहर में पर्टिकुलरली औरंगा नदी में थोड़ा पानी बढ़ने के कारण से हमने प्रिकॉशन के कारण से लगभग 150-200 जितने लोगों को अभी हमने एक हॉल में लोकल में ही शिफ्ट किया है और वहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की है।
0: भारी बारिश ने कई गांवों को शहरों से काट दिया है। सड़कें, खेत और राष्ट्रीय राजमार्ग सब पानी में समा गए हैं। ऐसे हालात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक पहुंच रही हैं।
2: कि आप लोग देख भी रहे होंगे, जिस एरिया में हमने गया था वहां पे बहुत ज्यादा करंट था पानी में, जो कि जाना मुश्किल था, लेकिन जो है हमारी टीम ने वहां जा करके वो वहां पे 3 आदमी फंसे हुए थे, उन आदमी को जेसीबी से बचा करके लाया, जो कि हमारा कार्य सफल पूर्ण रहा।
3: 20-25 घरों में पानी है, सब लोगों को निकाल दिया है, शायद एक आध कोई है उसको निकाल दिया।
0: अगर वलसाड डूबा है तो नवसारी भी सांस लेने की जद्दोजहद में है। चिखली में 800 मिलीमीटर और खेरगांव में 650 मिलीमीटर बारिश हुई। घर डूबे, गाड़ियां डूबी, स्कूल कॉलेज बंद, बांध ओवरफ्लो और 17 से ज्यादा गांव बाढ़ के अलर्ट पर। अंबिका और कावेरी नदियां लगातार उफान पर हैं।
4: कावेरी नदी का जो तटकेश्वर मंदिर है वो पूरा जलमग्न हो चुका है और ये जो नदी का बहाव है आप साफ देख सकते हैं। खास करके बात करें नवसारी शहर की, तो नवसारी शहर में भी जो नीचे के इलाके हैं उनको भी लोगों को सुरक्षित जगह पे जाने के लिए कलेक्टर ने सूचित किया हुआ है।
0: ये तस्वीरें किसी फिल्म का सीन नहीं है। नवसारी के मेंधर गांव में बाढ़ के बीच फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाना पड़ा। चारों तरफ पानी था, मजदूर कई घंटों तक एक कच्चे शेड की छत पर जिंदगी और मौत के बीच फंसे रहे। फिर हेलीकॉप्टर आया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। उधर बांसदा में उफन

की कावेरी नदी ने प्रताप नगर को चारों तरफ से घेर लिया। रात का अंधेरा, तेज बहाव और बीच में फंसे 35 लोग। पुलिस ने टॉर्च और रस्सियों के सहारे ऐसा रेस्क्यू किया कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अचानक बढ़े जलस्तर ने करीब 15 घरों को अपनी चपेट में ले लिया था।

0: ये नवसारी की ही तस्वीरें हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क कहाँ खत्म होती है या नदी कहाँ शुरू, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पूर्णा नदी का जलस्तर 15 फीट से बढ़कर 25 फीट पहुंच गया। और हर आपदा में कुछ लोग अवसर भी तलाश लेते हैं। तालाब ओवरफ्लो हुआ तो मछलियां गांव पहुंच गईं। लोगों ने मच्छरदानी को ही फिशिंग नेट बना लिया। बाढ़ के बीच फिशिंग फेस्टिवल चालू हो गया। उधर डांग में अंबिका नदी रौद्र रूप में है। कावेरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसी उपंती धारा के बीच शिवलिंग ऐसे दिखाई दिया मानो प्रकृति स्वयं भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रही है। उधर बनासकांठा में इतनी बारिश हुई कि घरों के अंदर पानी भर गया, सामान तैरने लगा, खेत तालाब बन गए और किसानों की फसलें पानी में डूबने लगी।
1: बनासकांठा वारथराज जिले में लंबे समय बाद रिमझिम बारिश हुई है। बारिश के कारण आप देख सकते हैं कई खेतों में पानी भर चुके हैं। बारिश का पानी सड़कों और बाजारों में भी गया, जिसके कारण घुटनों तक पानी भरने की समस्या सामने आई है। सबसे ज़्यादा बात करें तो जो दियोदर है, दियोदर और भाभर जो है वहाँ पे बारिश होने के कारण कई जगहों पे पानी का भरा हुआ है। और भी जो बनासकांठा के जो तालुके है, वारथराज के जो तालुके है, उसमें ज़्यादा बारिश होने के कारण जल भराव का प्रश्न भी सामने आया है।
0: भरूच में रेड अलर्ट के बीच बारिश ने जनजीवन रोक दिया। घुटनों तक पानी, जाम, जल भराव और हर सड़क पर वही सवाल, नियत खराब थी या प्लानिंग। खेड़ा में ऐसे हालात हैं कि मंदिर तक में पानी घुस गया, बाल्टियों से पानी बाहर निकाला जा रहा है। क्या आपने कभी सड़क पर स्विमिंग पूल देखा है? अगर नहीं तो साबरकांठा देख लीजिए। करोड़ों रुपए की सड़कें तो बन गई, बस एक छोटी सी चीज शायद छूट गई, ड्रेनेज सिस्टम। ये तस्वीरें गुजरात के इंडस्ट्रियल सिटी सूरत की हैं। कपड़ा कारोबार के लिए मशहूर सूरत की शक्लो सूरत बिगड़ी हुई है। इतना पानी है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नाव चलानी पड़ रही है। डायमंड सिटी सूरत की चमक बरसाती पानी की वजह से फीकी पड़ी हुई है।
2: पूरे बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है हर साल और बहुत नुकसान होता है लोगों को जो भाड़े से रहते हैं। उनका तो अब देखा नहीं जाता, आंखों से रुलन जैसे आदत है। गादले है, फर्नीचर है, पूरा ढेर लगाया होता अभी 7-8 दिन पहले और अभी वापस ये की पोजिशन है, पूरा ढेर लगने वाला है। बहुत नुकसान लोगों का,
3: मानो जाएगा पानी नहीं मिले, दूध नहीं मिले, क्या जाएगा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे।
4: 4-5 दिन से पानी नहीं है और दूध के और कोई वस्तु बाहर ले तकलीफ होती है। इसमें 4-5 दिन लगता है, पानी रहता है और बच्चों को पढ़ाई में भी तकलीफ पड़ती है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे।
0: लेकिन सवाल है, गुजरात में आखिर इतना पानी आया कहाँ से? क्या अरब सागर का पूरा पानी गुजरात में घुसाया? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठा लो प्रेशर सिस्टम पश्चिम की ओर बढ़ा और पश्चिमी विक्षोभ से टकरा कर गुजरात पर ठहर गया। नतीजा इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई कि पूरे देश के जुलाई महीने का बारिश घाटा लगभग खत्म हो गया। यानी जिस बारिश ने गुजरात को डुबो दिया, उसी बारिश ने देश के मानसून का रिपोर्ट कार्ड सुधार दिया।
5: धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में जमीन इतनी ढीली हो गई है कि वो पहाड़ों से खिसकी चली आ रही। पूरा कश्मीर कुदरत की मार से जूझ रहा है। कहीं बाढ़ है, कहीं भूस्खलन। बाढ़ से ऐसे हालात हो गए हैं कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। झेलम नदी भयंकर उफान पर है, शहरों के बीच से नदियां बह रही हैं। पानी पहाड़ों से इतनी वेग से नीचे गिर रहा है कि जो सामने आ रहा है उसे अपने साथ बहाए ले जा रहा है।

0: मॉनसून की मूसलाधार बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में बाढ़, लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। 27 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कई घर, रास्ते और गांव मलबे की चपेट में हैं। प्रभावित तो पूरा जम्मू कश्मीर हुआ है, लेकिन तबाही का सबसे बड़ा असर डोडा, राजौरी और पुंछ जिले में हुआ है। उत्तरी कश्मीर के उरी बिझामा क्षेत्र में अचानक बादल फटने से तबाही का मंजर बन गया। तेज बहाव के साथ पानी गांव में घुसा और देखते ही देखते पूरा गांव पानी, कीचड़ और पत्थरों के मलबे की चपेट में आ गया। कई जगहों पर पानी घरों और दूसरी इमारतों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। साथ ही मलबा गिरने और तेज पानी के कारण कई सड़कें पूरी तरह बंद हो गईं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।
1: पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश की तबाही अभी भी चल रही है। जगह जगह फ्लैश फ्लड्स हुए हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आईएमडी का माने तो अगले 24 घंटे और भी ज्यादा क्रिटिकल हैं, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर में भारी बारिश हो सकती है और ऑलरेडी जेहलम की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो नाले हैं, फ्लड अलर्ट लेवल पे हैं। तो जो लो लाइंग इलाके में लोग हैं उनको सतर्क रहने को कहा गया है और प्रशासन की तरफ से फ्लड कंट्रोल रूम सेटअप किए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम्स तैयार हैं और कोशिश यही है कि सतर्क रहें, लोगों को जो है अलर्ट रखें और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत जो है बचाव कार्रवाई शुरू की जाए।
0: तबाही ने जान माल दोनों का नुकसान किया। जम्मू के रामबन क्षेत्र में एक यात्री टेम्पो पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा आकर गिर गया, जिससे टेम्पो में बैठे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बड़े हादसे के कारण यातायात ठप हो गया, जिसे दोबारा शुरू करने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालात कितने भयानक हैं, इसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर ही लगाया जा सकता है। भारी बारिश के कारण बारामूला हाईवे पर भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरह टूट गई और खाई में समाने लगी। आसपास के घरों तक दरारें पहुंच चुकी हैं, जिसको लेकर सभी अलर्ट हैं, ताकि कोई और बड़ा हादसा होने से बचा जा सके। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी राजौरी और पुंछ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जा रहे थे। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग के चिंगुस राजौरी खंड में उनके काफिले के ठीक सामने अचानक भूस्खलन हो गया। भारी बारिश के कारण पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। डिप्टी सीएम और उनका काफिला इस हादसे में बाल बाल बचा। जम्मू पुंछ हाईवे के हालात भी बारिश और भूस्खलन के कारण लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। जगह जगह गिरते पत्थर और पानी के कारण हाईवे बाधित है और नदियों का बढ़ता जलस्तर भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है।
2: बारिश जो है वो राजौरी में हो रही है और राजौरी का जो हाईवे है, जो जम्मू पुंछ हाईवे है, वो भी इससे पूरी तरह से प्रभावित है। हाईवे की कंडीशन आप देखें किस तरह से सड़कों पे पानी जो है वो, तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं सड़क की तरह से पानी से भरी हुई है और जोरदार बारिश की वजह से सड़कें इसी तरह से पानी से लबी हुई आपको नजर आएंगी। हाईवे के साथ साथ जो लिंक रोड हैं और खासकर जो दूसरी सड़कें हैं, जो राजौरी से थन्ना मंडी की तरफ या राजौरी से मजाकोट की तरफ जाती हैं, तमाम सड़कों का यही हाल है और लगातार बारिश जो है सुबह से ही राजौरी जिला में हो रही है।
0: लगातार बारिश के कारण रियासी क्षेत्र में जलस्तर काफी बढ़ गया और बांध खोलना पड़ा। प्रशासन निचले इलाके के लोगों को लगातार सतर्क और सावधान रहने की अपील कर रहा है, ताकि कोई अनहोनी न हो। लद्दाख के कारगिल जिले के किरकिच इलाके में भारी बारिश और बादल फटने के कारण अचानक फ्लैश फ्लड से भारी खलबली मच गई और हालात बेहद खतरनाक बन गए। पानी के साथ आए मलबे से कई रिहायशी मकान, कृषि भूमि, फसलें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। बचाव दल ने कई लोगों की जान बचाई। आप देख सकते हैं कैसे अस्थाई पुल और रस्सी के सिरे लोगों की जिंदगी बचाने का सहारा बने हुए हैं। गुरेज में पानी का सैलाब ऐसे लग रहा है जैसे सड़क की जगह समंदर तैयार हो गया हो। आसपास लोग इन हालात से सहमे हुए हैं। बीरवा, बड़गाम में पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि देखने वाले सिहर जाए। सड़क के ऊपर समंदर बह रहा है और गाड़ियां रास्ता न होने की वजह से दूर खड़ी है। ये तस्वीरें बारिश के बाद पैदा हुए मुश्किल हालात में घिरे किश्तवाड़ की है। बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों की जान बचाई जा रही है। ये तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। हाईवे पर अचानक ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए सड़क पर गिरने लगते हैं और इंसानों के पास चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे हादसे पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों को परेशान कर रहे हैं। झेलम नदी का जलस्तर इतना ऊपर पहुंच चुका है जो कभी भी किसी भी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकता है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। जम्मू कश्मीर लगातार बारिश के बाद पैदा हो रही कठिनाइयों से लगातार दो चार हो रहा है। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और हादसों का भी।
3: पहाड़ों पर बरसता पानी अब सिर्फ बारिश नहीं बल्कि आफत बनकर टूट रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। कई सड़कें भूस्खलन और मलबे की वजह से बंद हैं, जबकि बिजली और पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। लाहौल स्पीति में चट्टाने गिरने से कई लोगों की जान चली गई। चंबा समेत कई इलाकों में राहत बचाओ अभियान जारी है और सवाल है आखिर पहाड़ हर मानसून में इतनी बड़ी त्रासदी का सामना क्यों करते हैं और क्या इस तबाही का कोई स्थायी समाधान है।

0: आपके लिए।
1: हिमाचल में आसमान से आफत बरस रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। कहीं नदियां उफान पर है और कहीं अचानक आई फ्लैश फ्लड तबाही मचा रही है। चंबा से कांगड़ा और बिलासपुर तक बारिश ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। पहाड़ों से पत्थरों की यह बरसात देखिए, कुछ ही सेकंड में पूरा पहाड़ जैसे टूट कर नीचे आ गया। बड़े बड़े बोल्डर और मलबा तेज रफ्तार से नीचे गिरते जा रहे थे। धूल का गुबार इस तरह छा गया कि पूरे इलाके में 10 मीटर देखना मुश्किल हो गया। दिल दहला देने वाला ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा से आया है। चंबा के भरमौर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक दरक गया। ये लैंडस्लाइड NHPC की परियोजना के पास हुई। उस वक्त सड़कों पर NHAI के लोग सड़क बनाने का काम कर रहे थे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू होते हैं और देखते ही देखते भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें नीचे आने लगती हैं। उधर उफनती रावी नदी और तेज बहाव के बीच एक शख्स फंस गया, जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि जब तक ये पूरा नहीं हुआ, मौके पर मौजूद हर शख्स की सांसें अटकी रहीं। लगातार बारिश होने की वजह से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी के तेज बहाव में बहते हुए ये शख्स इस पत्थर के टीले में फंस गया। उसे बाहर निकालने के लिए प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि सीधे पानी में उतरना बेहद जोखिम भरा था। इसके बाद रेस्क्यू टीम एक बड़ी लोहे की सीढ़ी लेकर पहुंची। सीढ़ी का एक सिरा नदी के बीच में मौजूद पत्थर पर टिकाया गया, जबकि दूसरा सिरा रेस्क्यू टीम ने नदी के दूसरे किनारे में मजबूती से पकड़ लिया। अब शुरू हुआ जिंदगी बचाने का बेहद मुश्किल ऑपरेशन। तेज बहाव के बीच फंसा व्यक्ति धीरे धीरे सीढ़ी के सहारे आगे बढ़ने लगा। एक एक कदम बेहद सावधानी से। नीचे उफनती नदी, चारों तरफ तेज पानी का बहाव और ऊपर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। आखिरकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए व्यक्ति नदी के किनारे तक पहुंच गया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की। पहाड़ों में बारिश कितनी खतरनाक हो सकती है, चंबा से सामने आई ये तस्वीर इसका डरावना उदाहरण है। किलाड़ उदयपुर सड़क मार्ग पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर नीचे गिर पड़ा और इसकी चपेट में चलती हुई टाटा सुमो आ गई। अचानक हुए इस हादसे से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई।
2: गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहां पर बच पाए हैं। मृतकों में 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। लोगों से मृतक के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और हमने जिला प्रशासन लाहौल स्पीति, जिला प्रशासन चंबा, इन दोनों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए।
1: बिलासपुर में तेज बारिश के बाद जिले का हर बरसाती नाला उफान पर आ गया है। आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई और लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद छोटे बड़े नाले उफान पर हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। शाहपुर की बोह घाटी में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने कई गांवों की तस्वीर बदल दी है। स्पैड़ा और गड़गून गांव में 18 मकान पूरी तरह बह गए हैं। 9 गौशालाएं तबाह हो गई हैं और एक प्राथमिक स्कूल की इमारत भी बाढ़ के पानी की चपेट में आ गई। सिर्फ इंसानों के घर ही नहीं, कई मवेशी भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के बाद अचानक पहाड़ से भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे आया और देखते ही देखते कई घर इसकी चपेट में आ गए। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन मवेशियों को बचा नहीं पाए। हिमाचल में बारिश का रेड अलर्ट है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से प्रशासन ने बेहद सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। कांगड़ा में अचानक आए फ्लैश फ्लड के बीच एक ट्रैक्टर नदी में तेज बहाव में फंस गया। ट्रैक्टर में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। बारिश के बाद गज नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। ट्रैक्टर नदी किनारे खनन का काम कर रहा था, लेकिन जब तक लोग निकल पाते, देखते ही देखते ट्रैक्टर पानी के बीच फंस गया। हालात बिगड़ते देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसके बाद शुरू हुई उनको बचाने की कोशिश। 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी और बरसाती नालों के पास न जाने की अपील की है।
0: हमने वैसे SDRF की टीम और NDRF की टीम दोनों भी रिक्विजिशन करके वहां पर डिस्पैच किया है ताकि और कोई वहां पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़े तो वहां पर हम कर पाए। और मौके पर SDM की लीडरशिप में हम राहत बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को फौरी राहत भी तुरंत हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो लोग हैं उनको टेम्पररी जो शेल्टरों में वहां पर शिफ्ट किया जाएगा, उनका सारा प्रबंध हमारी तरफ से किया जाएगा।
1: पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। छोटे छोटे नाले उफान पर हैं जिसकी वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं।
3: असम में बारिश और बाढ़ ने ब्रह्मपुत्र नदी के रौद्र रूप को और विकराल बना दिया है। नदी उफान पर है, सैकड़ों गांव जलमग्न है और लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आकर राहत शिविरों का सहारा लेने को मजबूर है। गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों में सड़कें नदियां बन गई हैं, जबकि बचाव दल लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटे हैं। मौसम विभाग ने अभी और भारी बारिश की चेतावनी दी जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है।

0: अभी फिलहाल हम लोग वही टेंशन में कि हम सर्वाइव कैसे करेगा, हम लोग 15 ईयर्स हम लोग बेक चले गए हैं।
1: ये पहली बार ऐसा नहीं देखा हमने। रिसेंट चाहिए हमको खाना, खाना तो आदमी लेकिन भूखा में है ना, उसको खाना और पानी बोतल देने से अच्छा होगा।
2: यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है और आप देख सकते हैं पूरा शिवसागर टाउन पानी से डूब गया है।

0: ये असम की राजधानी गुवाहाटी है। बारिश का इंतजार था, वो आई और सारे शहर को झील में तब्दील कर दिया। क्या सड़कें, क्या घर और क्या दुकान, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी। गुवाहाटी में कुछ ही घंटों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार को किलोमीटर से नॉट में तब्दील कर दिया। अब शहर की सड़कों पर पानी का कब्जा है, हर ओर जल भराव है, गाड़ियां सड़कों पर तैरते हुए चल रही। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे ही हालात हैं। लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई जिलों में तबाही मचा रखी है। असम में बाढ़ से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 6,53,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का पानी कई इलाकों में फैल गया है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा है। 939 गांव अब भी पानी में डूबे हैं। हालात इतने नाजुक हैं कि हवा से लेकर जमीन तक राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को मैदान में उतरना पड़ा है। यह असम के शिव सागर की तस्वीर है। सीने तक बहते पानी के तेज बहाव के बीच ये पिता अपनी जान जोखिम में डालकर अपने मासूम बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जद्दोजहद कर रहा है।
1: असम के ऊपरी हिस्से में इस समय विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है। लगातार हो रही बारिश के और नदियों के उफान ने शिवसागर, जोरहाट, सराइडो, सोनारी, नाजिया, गोलाघाट और आसपास के कई जिलाओं में जनजीवन पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। इस भीषण आपदा में अब तक करीब 7,00,000 से ऊपर लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 50 लोगों की मौत और खबरें सामने आ रही है। वही 100 से अधिक लोग अभी भी लापता बताया जा रहा है। राहत और बचाव का ये लगातार जारी है।
0: असम के शिव सागर, जोरहाट और चराई देव जैसे जिलों में आज हर परिवार ऐसे ही हालात से दो चार हो रहा है। सड़कें बिना पुल के झीलों में बदल चुकी हैं, खेत खलियान जलमग्न हैं और रिहायशी इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी है।
2: रिहायश करने के लिए हम लोगों को तो अभी 15 इयर्स लगेगा फिर से नॉर्मल जिंदगी लाने के लिए, लेकिन अभी तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे वही सोच के हम रो रहा है। घर का कोई सामान भी रुका नहीं। इस बार पहला बाण आया है, 5 मिनट्स भी नहीं दिया, कुछ घर से निकालेगा वो भी कुछ नहीं है। घर का जितना सामान सब चला गया।
3: हम लोग मतलब पहले हम लोग का यहाँ पे बाढ़ आता था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था कि सब लोग मतलब शॉक हो गए। बाद में जब पता चला कि सबके घर में पानी ऐसा घुस गया है, उसके बाद मतलब सब जान बचा के मतलब कुछ ले नहीं सके, जान बचा के यहाँ से निकल गए। पूरा पानी मतलब घर बचा ही नहीं, घर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है अभी।
0: हालात पर काबू और राहत बचाव कार्यों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए सेना और वायुसेना को तैनात कर दिया गया है। हवा में गरजते वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स कटे हुए इलाकों में राशन पहुंचा रहे हैं और फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। उधर जमीन पर सेना ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। सेना गांव-गांव पहुंचकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित जगहों पर निकाल रही है। राज्य में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात एक किए हुए हैं। अकेले ऑपरेशन जल राहत के तहत सैकड़ों लोगों को सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया जा चुका है।
4: बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ है और कोई सारे लोग अभी भी लापता है। बहुत सारे गांव अभी भी पानी का नीचे है और कोई लोगों तक अभी भी हम पहुंच भी नहीं पा रहा हूं। प्रयास चल रहा है, हम जितना हो सकता है हम लोगों का मदद करूंगा, बट फिलहाल परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। अभी तक 35 कंफर्म डेड है, लेकिन 100 का संख्या का लोग लापता है और उसमें भी काफी डेथ कैजुअलिटी का फिगर आएगा।
0: जोरहाट के अलंग मोरा इलाके में तो स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां 80% तक गांव पानी में डूब चुके हैं। विस्थापित हुए लोगों के लिए जगह जगह राहत शिविर बनाए गए हैं। पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंपों में लगातार मेडिकल चेकअप कर रही है।
5: पहली बार देखा है, जन्म से लेके आज पहली बार इतना भयानक बाढ़ देखा है यहाँ पे, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। और अचानक से इतना कुछ लोगों का सामान वगैरह भी सब कुछ तहस नहस हो गया है, और कोई मतलब अचानक से आया है, इसमें कोई सावधानीता वो लोग कर ही नहीं पाया है।
6: लगभग सारे गांव में पानी घुस गया, लगभग 80% पॉपुलेशन फ्लड अफेक्टेड है।
0: प्रशासन ने संवेदनशील और निचले इलाकों में रह रहे लोगों से अपील की है कि वो अलर्ट रहें और सुरक्षित स्थानों पर बने राहत शिविरों में शरण लें। असम की ये जंग सिर्फ पानी से नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की जंग है। एक तरफ कुदरत का गुस्सा है, दूसरी तरफ राहत कर्मियों और सेना का हौसला।
7: देश के बाकी हिस्सों का हाल दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लगातार बारिश से जलभराव और बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में आने वाले समय में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में बारिश ने जहां कई इलाकों में राहत दी है, कुछ जिलों में तेज बारिश के कारण जलभराव से परेशानी बढ़ी भी है।

0: ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का मरीन ड्राइव है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि समुद्र की लहरों के साथ बारिश की बौछारें शहर को कैसे भिगोती रही। लेकिन चिंता वाली खबरें तो ठाणे और पालघर से आ रही हैं। ठाणे के भिवंडी में कामवारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी अब शहर के निचले इलाकों में घुसने की कगार पर है। पालघर में तो बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। निकवली गांव में बाढ़ के पानी में एक ही परिवार के 13 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, ग्रामीण और बचाव दल की मदद से उन लोगों को बचाया गया। पालघर की ही दूसरी तस्वीर बघाड़ी मार्ग की है, जहां उफान मारती नदी के बीचों बीच एक बस फंस गई। देखते ही देखते पूरी बस पानी में समा गई। गनीमत रही कि वक्त रहते पुलिस और स्थानीय युवकों ने यात्रियों और ड्राइवर कंडक्टर को बचा लिया। पालघर में सूर्या नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं पहाड़ के दरकने से सड़क मार्ग प्रभावित हो गया। कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं नासिक के त्र्यंबकेश्वर इलाके से बहुत ही डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बारिश और तेज हवा के कारण कई घरों के टिन की छत गिरने से 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नासिक में कई इलाकों में पेड़ गिरने और लैंडस्लाइड होने से कई सड़कें बंद करनी पड़ी। वहीं बसई में एक कार का ब्रेक फेल होने से वो सड़क किनारे 3 फीट गहरे पानी में जा घुसी। कार में सवार सभी लोगों को बचा लिया गया। विदर्भ के अकोला में 12 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मानसून लौटा, लेकिन आफत के साथ। सड़क, घर, दुकान, हर जगह केवल पानी ही पानी। हालांकि ये बारिश किसानों के लिए एक अच्छी खबर की तरह लौटी है। बारिश का कहर राजस्थान में भी नजर आया। श्री गंगानगर के सादुल शहर में मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। सड़कें तालाब बन गईं, जहां भी नजर जाए वहां सिर्फ पानी ही पानी। उधर पंजाब के अमृतसर में भारी बारिश आफत बनकर बरसी। अजनाला के कोटली गांव में बारिश के कारण एक कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। मलबे के नीचे एक माँ और उसके 3 साल की मासूम बच्ची दब गई। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि कहीं ये बारिश खेतों के लिए वरदान साबित हो रही है तो कहीं जिंदगियों पर भारी पड़ रही है।
1: दुनिया के कई देशों में मौसम का मिजाज इस वक्त बेहद खतरनाक बना हुआ है। चीन में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई इलाकों में नदियां चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही हैं और प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। वहीं यूरोप के कई हिस्से इस समय बारिश नहीं बल्कि भीषण गर्मी, सूखे और जंगलों की आग जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं।
2: ये किसी झील या समुद्र का नजारा नहीं बल्कि चिली का तटीय शहर ला सेरेना है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर पानी के हवाले हो चुका हो। सड़कें गायब हैं, समुद्र किनारे की दुकानें बंद पड़ी हैं और जहां कभी लोगों की चहल पहल थी वहां अब सिर्फ पानी और मलबा दिखाई दे रहा है। कई दिनों तक लगातार हुई रिकॉर्ड बारिश ने इस खूबसूरत पर्यटन शहर को बर्बाद कर दिया है। शहर का मशहूर सेरेना एवेंचुरा अम्यूजमेंट पार्क 1 मीटर तक पानी में डूब गया है। गो कार्टिंग ट्रैक तालाब बन चुका है और करोड़ों रुपए की रेसिंग गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। कर्मचारी मोटर पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि दोबारा सब कुछ सामान्य होने में लंबा समय लग सकता है। ये तस्वीरें फ्रांस के दक्षिणी पश्चिमी जंगलों की हैं, जहां भयंकर आग लगी है। आग की लपटें बेहद तेज हैं। दमकल कर्मियों के सामने चुनौती बड़ी है और वक्त कम। हाथों में पानी की बौछार, सामने धधकता जंगल और मकसद सिर्फ एक, आग को आबादी तक पहुंचने से रोकना। दमकल कर्मी कहीं स्विमिंग पूल से पानी भर रहे हैं तो कहीं जंगल के बीच फायर टेंडर खड़े कर लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज हवाएं और सूखा मौसम आग को बार बार नई दिशा दे रहा है। हर बुझती लपट के साथ दूसरी जगह आग भड़क उठती है। ये आग अब 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल को अपनी चपेट में ले चुकी है। 80 से अधिक घर जल चुके हैं, जिनमें करीब 50 घर पूरी तरह राख बन गए। राहत और बचाव दल लगातार मोर्चे पर डटे हैं, लेकिन चुनौती हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती जा रही है। स्पेन के उत्तर पूर्वी इलाके से लेकर मैड्रिड क्षेत्र तक जंगलों में लगी आग लगातार फैल रही है। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्पेन की मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट रात भर अभियान चलाकर आग को आबादी तक पहुंचने से रोकने में जुटी है। हर कदम पर चुनौती है, क्योंकि तेज हवाएं आग को नई दिशा दे रही हैं। दमकल कर्मी लगातार आग से मुकाबला कर रहे हैं। बुलडोजरों से जंगल के बीच चौड़ी फायर ब्रेक तैयार की जा रही है, ताकि आग आगे न बढ़ सके। कई जगह कंट्रोल्ड फायर की आग भी लगाई जा रही है, जिससे मुख्य आग का रास्ता रोका जा सके। यानी आग को रोकने के लिए आग का ही सहारा लिया जा रहा है। स्पेन इस साल के सबसे कठिन वाइल्ड फायर सीजन का सामना कर रहा है। मैड्रिड के पश्चिमी इलाके समेत कई हिस्सों में लगी भीषण आग के कारण 19,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। 2,000 से अधिक आपातकालीन कर्मी, दमकल कर्मी और विमान लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं, लेकिन कई घर आग की भेंट चढ़ चुके हैं। एक जगह बाढ़, दूसरी जगह जंगल की आग, तबाही की डबल डोज है ये। वैज्ञानिकों की चेतावनी साफ है, अल नीनो अभी अपने शुरुआती चरण में है। अगर प्रशांत महासागर का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में मौसम के ऐसे चरम रूप देखने को मिल सकते हैं, यानी जो अब तक केवल चेतावनी माने जाते थे वो अब हकीकत बनते जा रहे हैं।
1: हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: बड़ी खबर आपको देते हैं, कॉमनवेल्थ 2026 गेम से जुड़ी भी बड़ी खबर। भारत के खाते में गोल्ड आया है और मीराबाई चानू, उन्होंने ये कारनामा किया है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 भारत को पहला मेडल मिला है और ये स्वर्ण पदक, ये गोल्ड मेडल, एक स्वर्णिम आगाज आप कह सकते हैं भारत के लिए। मीराबाई चानू ने ये उपलब्धि हासिल की है। वेट लिफ्टिंग इवेंट में शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया, 190 किलोग्राम का उन्होंने वजन उठाया। इसमें 85 किलोग्राम स्नैच, इसके साथ साथ 105 किलोग्राम क्लीन एंड जॉन, ये स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया और ये बहुत बड़ी कामयाबी। 48 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू ने भारत को गौरवान्वित किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका ये पदक। इससे पहले भी चाहे ओलंपिक हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, चाहे एशियाई खेल हो, उन खेलों में वो भारत का मान बढ़ा चुके हैं। और अब कॉमनवेल्थ गेम्स जो इस समय ग्लासगो में चल रहे हैं, वहां से भारत के लिए बड़ी कामयाबी। उनके गले में लटकता हुआ ये पदक, ये भारत का स्वर्णिम आगाज है। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, परीक्षा सुधारों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया। एक टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया गया और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन जी स्टाइल में किया। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके उन्होंने ये जानकारी दी कि परीक्षा सुधारों में वो क्या क्या करने जा रहे हैं। नंदन नीलकर्णी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई गई जो काम करेगी। इसमें बहुत सारी हस्तियां, इसमें पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ भी इस कमेटी का हिस्सा बनाए गए हैं, वो इसमें शामिल हैं। और भी इसमें सदस्य हैं, इसमें पूर्व आईबी डायरेक्टर तपन डेका शामिल किए गए हैं। और ये परीक्षाओं को कैसे बेहतर तरीके से किया जा सके, किस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, कैसे किया जा सकता है, पेपर लीक ना हो, तो ये सब ध्यान में रखते हुए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
4: फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड।
3: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों के सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
8: आगे आगे
9: अरे उधर उधर गया।
8: करेक्ट करेक्ट
10: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
6: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
7: आगे आगे
8: उधर
7: करेक्ट करेक्ट
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: sorry.
1: Aye, traje. Paje, paje, sí, aquí en Madrid, paje. Aye, aye, aye.

0: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
1: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
0: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
2: You're listening to MSNBC.
0: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
3: आगे आगे
4: अरे उधर
3: उधर किधर
4: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट के स्पेशल एडिशन में आपका बहुत स्वागत है। कहते हैं कि नेतृत्व की असली परीक्षा फैसले लेने में नहीं बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करने के साहस में होती है। नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन 36 दिन पहले शुरू हुआ था, आज देखिए वो कहां पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ वो आज खत्म हुआ। इस आंदोलन में सवाल सिर्फ ये नहीं था कि पेपर लीक कैसे हुआ और ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, सवाल ये भी था कि जब लाखों युवाओं के भविष्य पर असर पड़ा तो क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगी। और आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो ये सिर्फ एक मंत्री के पद छोड़ने की खबर नहीं थी, ये उस प्रक्रिया का नतीजा जिसमें छात्रों का गुस्सा, सड़कों पर आंदोलन, सरकार के फैसले, जवाबदेही की मांग हुई, सब एक साथ दिखाई दिया। नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रही, एक भरोसे का संकट बन गया। नीट पेपर लीक, उसके बाद OSM जो CBSE की मार्किंग थी, क्योंकि भारत में ये परीक्षाएं सिर्फ एक पेपर नहीं होती, करोड़ों परिवारों के सपने जुड़े होते हैं। एक छात्र के लिए यह सिर्फ नंबर नहीं होता, सालों की मेहनत, दिन रात जागना, खाना पीना सब भूल जाना, ये उसके माता पिता की उम्मीद, उसके पूरे भविष्य का सवाल होता है। सरकार ने स्थिति संभालने के लिए कई कदम उठाए, जांच बिठाई गई, कानून सख्त किए गए, परीक्षा व्यवस्था बदलने की घोषणा हुई, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन छात्रों का सवाल सिर्फ सुधार का नहीं था, सवाल था कि आखिर इस पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा। और यहां वो समझिए कि यही वो बिंदु था जहां लोकतंत्र की ताकत दिखाई दी। आज जब जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे थे तो उस तस्वीर में सिर्फ एक आंदोलन की जीत नहीं थी बल्कि लोकतंत्र की वो तस्वीर थी जहां सवाल उठते हैं, जवाब मांगे जाते हैं, व्यवस्था खुद को सुधारने की कोशिश करता है। और इस सब के साथ लोकतंत्र में हर जीत के बाद एक नई जिम्मेदारी भी आती है। अब असली जिम्मेदारी, असली परीक्षा सरकार की है। क्या वो सिर्फ इस्तीफे तक सीमित रहेगी या परीक्षा व्यवस्था में वो बदलाव करेगी जिससे दोबारा किसी युवा को अपने भविष्य के लिए सड़क पर ना उतरना पड़े, जिससे दोबारा किसी बच्चे को आत्महत्या ना करनी पड़े। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है, आज की कहानी है एक पीढ़ी की आवाज की, वो पीढ़ी जिसे कल तक सिर्फ सोशल मीडिया, ये तो रील्स बनाते हैं, ट्रेंड्स की पीढ़ी कहा जाता था, उसने आज दिखाया कि जब सवाल भविष्य का हो तो वह पीढ़ी बदलाव की सबसे बड़ी आवाज बन सकती है। आप कल्पना कीजिए, इस जेन जी पीढ़ी के लिए आज एक शब्द भी कहा जा रहा है और वो शब्द है जेन जीत। जेन जी नहीं, जेन जीत। पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक वीडियो जारी किया और अपनी सरकार का पक्ष रखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली बात नहीं, लाखों छात्रों, उनके माता पिता के लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति है। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लेकर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद सरकार एक्शन में आई, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 लेकर आने वाली है और शुक्रवार को ही इस संशोधन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि पेपर लीक के खिलाफ इस संशोधन बिल को कल यानी सोमवार को पेश किया जाएगा। इस बिल में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेपर लीक में जो लोग शामिल होंगे उनको जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा मिले।
1: फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं, हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पेपर लीक के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 3 महीने में जांच पूरी हो, फैसला आए। इसके अलावा सजा के तौर पर पेपर लीक के दोषी को 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा पेपर लीक के मामलों में अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां या परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की गड़बड़ी पाई गई तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सरकार के इस कदम को सराहनीय माना जा रहा है, लेकिन पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर सरकार कुछ नए जो फैसले कर रही है, ऐसी बात भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि 2024 में सरकार इसके खिलाफ कानून ला चुकी है। अब वो कानून इस कानून को और ज्यादा सख्त बनाने की तैयारी में है। 12 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लेकर आई थी। इसका मकसद परीक्षा में पेपर लीक, संगठित नकल, जो फर्जी एडमिट कार्ड्स बनते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ की जाती है, सॉल्वर गैंग्स होते हैं, उन पर कार्रवाई करना था। ये कानून 21 जून 2024 को आ गया। ये कानून यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग परीक्षाओं, एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के साथ साथ केंद्र सरकार के विभागों की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए लाया गया था। इस कानून में पेपर लीक के दोषी को 3 से 5 साल की सजा, जेल की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, बस इतना ही प्रावधान था। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर यानी ऐसी संस्थाएं या कंपनीज जो पेपर आयोजित करवा रही हैं, उनके दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान था। अब पेपर लीक में अगर संगठित अपराध से जुड़े लोग शामिल पाए गए तो उनका 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था, और यही नहीं उनकी संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान था। लेकिन इसके बावजूद नकल माफिया रुका नहीं। शायद इसीलिए सरकार पेपर लीक और नकल गैंग को रोकने के लिए ही कानून में संशोधन करने जा रही है। संशोधन के जरिए सरकार इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने की तैयारी में है। फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए कार्रवाई, फैसला इस मामले में गेम चेंजर फैसला हो सकता है। डेमोक्रेसी करेक्ट्स इटसेल्फ, यानी लोकतंत्र स्वयं अपना सुधार करता है। जब इस देश के लाखों युवा पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे, तब सबसे बड़ी बहस यही थी कि भारत का लोकतंत्र इस पूरी घटना में किस पक्ष को चुनेगा। यानी सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं रह गया था, सवाल यह था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र किस ओर लौटेगा। और आज जब हमने इन तस्वीरों को देखा तो हमें सबसे पहले यही शब्द याद आए कि डेमोक्रेसी करेक्ट्स इटसेल्फ। आज सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है, आज ये पता चला है कि जब इस देश के युवाओं ने आवाज उठाई तो सरकार ने उस आवाज को सुना, संस्थाओं ने उस पर प्रतिक्रिया दी, व्यवस्था ने खुद को सुधारा, और यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसमें वो गलती होने पर खुद को सुधार सकता है। आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो इसमें आंदोलन की गरिमा भी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, इसमें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये इस्तीफा हमारे उन युवाओं की जीत को दिखा रहा था जो अपने भविष्य के लिए जवाबदेही मांग रहे थे, वो जवाबदेही जो गलतियों पर व्यवस्था को बदलती है और ये सुनिश्चित करती है कि इस देश के प्रत्येक युवा के साथ न्याय हो। देखिए,
2: कन्फर्म है, कन्फर्म है।

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की घोषणा किसी राजनीतिक बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की। उन्होंने देश के युवाओं के नाम एक पत्र लिखा और इस पत्र में यह बताया कि आखिर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया। लिखा कि यह मामला उनके व्यक्तिगत सम्मान या प्रतिष्ठा का नहीं है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश की युवा

0: हुआ है कि ये इस्तीफा सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से मांगा था या धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपनी स्वेच्छा से ये इस्तीफा दिया, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की पहल की और ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद यह दूसरी बार है जब किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री ने जनता के दबाव और उठते सवालों के बीच अपना पद छोड़ा है। इससे पहले साल 2018 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था और अब धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी सूची में जुड़ गया है। यह भी तब हुआ है जब धर्मेंद्र प्रधान उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जो साल 2014 से मौजूदा सरकार में लगातार मंत्री थे। इस पूरे घटनाक्रम को कुछ लोग सरकार की जवाबदेही के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे इसे एक ऐसा कदम मान रहे हैं जिससे सरकार ने विवाद को खत्म करने, छात्रों के भरोसे को बनाए रखने की एक कोशिश की। कुल मिलाकर देखें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में उन चुनिंदा मौकों में शामिल हो गया है जब लगातार बढ़ते दबाव के बीच किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री ने अपना पद छोड़ा और इसके बाद जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने किस तरह जश्न मनाया वो भी आप देखिए।
1: जैसे ही करीब 2:30 बजे के आसपास जैसे ही ये खबर यहाँ पर पहुंची, लोगों ने यकीन नहीं किया, क्योंकि आप देखिए नेट यहाँ पर स्लो है और लोगों की संख्या देखिए दूर दूर तक आपको जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग यहाँ पर मौजूद है।
0: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे कई महीनों से चल रहे विवाद, छात्रों की नाराजगी, लगातार बढ़ता दबाव, एक के बाद एक पेपर लीक, गलत ब्लैकलिस्टेड लोगों को बार बार टेंडर मिलना, कई सारी परीक्षाओं में लीक होना और परीक्षा लीक होने के बाद पेपर रद्द होने के बाद री एग्जाम की वजह से कई बच्चों का सुसाइड कर लेना। इसलिए आज इस इस्तीफे की पूरी टाइमलाइन को देखना होगा। ये कहानी शुरू हुई 3 मई। 3 मई को पहली बार नीट पेपर लीक का ये पूरा मामला सामने आया। मामला गंभीर हुआ तो सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, जांच सीबीआई को सौंप दी गई, दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा कर दी गई। ये शिक्षा मंत्रालय के लिए बड़ा संकट था क्योंकि इसमें लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा था। एक बार पेपर लीक और दूसरी बार भी हो जाता तो आप कल्पना कीजिए, इस पेपर लीक पर युवाओं का गुस्सा शांत होता। उससे पहले 13 मई को सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर नया विवाद खड़ा हो गया। ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग, कई छात्रों ने ओएसएम व्यवस्था को लेकर शिकायतें शुरू की। छात्रों का आरोप था कि स्कैन की गई कॉपियां साफ नहीं थी, कुछ पेज गायब थे, कहीं पर मार्क्स नहीं दिए थे, कहीं पर टिक मार्क लगा था फिर भी नंबर नहीं थे, कई उत्तर सही होने के बावजूद नंबर्स नहीं मिले थे और कुछ छात्रों की कॉपियों की जांच में गड़बड़ी की आरोप था। धीरे धीरे ये मामला भी बहुत बड़ा विवाद बन गया और कई महीने के आखिर में धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जिम्मेदारी भी अब जाकर ली है। उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। ये बयान इसलिए भी आया क्योंकि उसी वक्त कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक आंदोलन तैयार हो गया था। ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान के खिलाफ विरोध में बनाई गई जिसमें उन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसमें दावा था कि उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता बनने वाले बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताया था। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है कि उन्होंने इस वजह से नहीं कहा था, लेकिन खैर ये कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। अब अमेरिका में रहते हुए अभिजीत दीपके ने 16 मई को ये पार्टी बनाई, तब इसके कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए। सोशल मीडिया पर उस वक्त पेपर लीक की चर्चा बढ़ी और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया तो धर्मेंद्र प्रधान को यह कहना पड़ा कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और इसे ठीक किया जाएगा। यही वो बयान था जिसे अभिजीत दीपके ने मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते। अब इसी के बाद अभिजीत दीपके ने भारत लौटने का फैसला किया और यह कहा कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आ रहे हैं। यहां तक अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के बीच कोई संबंध नहीं था और यह भी तय नहीं था कि सोनम वांगचुक इस आंदोलन में अनशन पर बैठेंगे। इन सारे विवादों के बीच नीट की दोबारा परीक्षा हुई।

0: 21 जून को यह परीक्षा करा दी गई। इस बार करीब 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 24 जून को धर्मेंद्र प्रधान ने फिर वहां कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। यहां से मामला और बढ़ा और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान बार बार पेपर लीक की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब दोबारा परीक्षा हुई तब उससे पहले नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर ली। कल्पना कीजिए, जिन बच्चों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि इतनी मेहनत की थी, दिन रात एक करके एग्जाम दिया था, पेपर लीक की वजह से पेपर रद्द और अब फिर लग जाइए उसी तरह से पढ़ने में। व्यथा समझिए, कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे ने इस वजह से अगर जान दे दी तो उस पर कैसा दबाव रहा होगा। अब सरकार भी जानती थी कि छात्रों की आत्महत्या युवाओं के गुस्से को बढ़ाएगी और इसलिए उसने 21 जून के री एग्जाम में पूरी ताकत झोंकी। हालांकि इससे गुस्सा कम नहीं हुआ, एग्जाम तो सफलता से हो गया, रिजल्ट भी निकल गए हैं, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा जवाबदेही का मुद्दा बन गया कि भाई इतने बच्चों की जान गई है तो जवाबदेह कौन। और 20 जून से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ जिसमें शुरुआत में 500 लोग भी शामिल नहीं थे, लेकिन 28 जून को सोनम वांगचुक की इस आंदोलन में एंट्री हुई। वो सरकार की जवाबदेही के मुद्दे पर अनशन पर बैठ गए। जब इस अनशन को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए और सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के वीडियो वायरल होने लगे तब जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। ये वही पल था जब कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद चलो का आह्वान किया, देश भर के युवाओं से जंतर मंतर आने की अपील की। इस मार्च से 2 दिन पहले जब 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई तब युवा और नाराज हुए। हालात ऐसे बने कि जंतर मंतर भारत में ट्रेंड करने लगा। बड़ी संख्या में युवा 20 तारीख के संसद मार्च के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्च निकाला और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। इससे यह आंदोलन बड़ा हो गया। आखिरकार आज धर्मेंद्र प्रधान को अपना यह इस्तीफा देना पड़ा। आप खुद देखिए कि जब अभिजीत दीपके को पहली बार फोन पर यह खबर मिली कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तब वो और मौजूद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, इसका मंच से ऐलान किया। फिर देखिए, इस इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने मंच से एक भाषण भी दिया और ये कहा कि अगर लोग अपनी मांगों को लेकर मजबूती से खड़े रहे, डरे नहीं, तो लोकतंत्र में बदलाव संभव है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, याद रखना कॉकरोच से पंगा मत लेना। सुनिए,
1: ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है।
0: भाषण के दौरान अभिजीत दीपके भावुक होकर मंच पर घुटनों के बल बैठ गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी एक दूसरे को गले लगाने लगे, वहां इसे इंसाफ का जश्न मनाया गया। इस दौरान अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और अभी पहला विकेट गिरा है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सुनिए,
1: यह पहला विकेट है, यह पहला विकेट है, यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहाँ पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे।
0: मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री की कुर्सी कभी आसान नहीं रही। 2014 से अब तक 4 नेता इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन कोई भी एक बार में पूरा 5 साल का कार्यकाल शिक्षा मंत्री के रूप में पूरा नहीं कर पाया। सबसे पहले स्मृति ईरानी मई 2014 में शिक्षा मंत्री बनी। करीब 2 साल बाद जुलाई 2016 के कैबिनेट विस्तार में उन्हें इस मंत्रालय से हटाकर कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई। उनकी जगह प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा मंत्रालय संभाला। लगभग 3 साल तक जिम्मेदारी निभाई, लेकिन साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें दोबारा शिक्षा मंत्रालय नहीं मिला। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री बने, लेकिन जुलाई 2021 में स्वास्थ्य कारणों, खासकर कोविड के बाद आई परेशानियों के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने 7 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय की कमान संभाली और वो मोदी सरकार के सबसे लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे। 1845 दिन तक शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन नीट पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच आज उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यहां एक संयोग ये भी है कि मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्रालय छोड़ने वाले तीनों मंत्रियों स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल और धर्मेंद्र प्रधान को जुलाई महीने में ही इस मंत्रालय से विदाई मिली। यानी पिछले 12 सालों का इतिहास यही बताता है कि मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री का पद सबसे चुनौतीपूर्ण मंत्रालयों में रहा है।
1: हमारी सभी मांगों को मांग लिया गया है, इसलिए जंतर मंतर का प्रदर्शन हम यही समाप्त कर रहे हैं। लेकिन जो वादा है आप लोगों से, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तो सभी लोग शांतिपूर्वक अपने घर लौटे, आराम करें, खुशी मनाएं और जरूर से उन परिवारों को याद करें जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया।
0: यहां ये भी देखना होगा कि इस्तीफा कब हुआ। तब हुआ जब इससे पहले सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़े कदम है वो उठाने की कोशिश शुरू कर दी थी। 15 मई को 2026 को शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि 2027 से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में कराई जाएगी ताकि परीक्षा को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। इसके बाद 16 जून को नीट परीक्षा से पहले पेपर लीक अफवाहों को रोकने के लिए टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया और मैसेज एडिट करने की सुविधा भी बंद कर दी गई। बढ़ते दबाव के बीच 23 जुलाई को शिक्षा मंत्रालय में बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए। शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की। फिर इसके बाद अगले दिन 24 जुलाई को सरकार ने पेपर लीक रोकने वाले कानून में बदलाव को मंजूरी दी। नए प्रावधानों में ऐसे मामलों की सुनवाई 3 महीने के अंदर पूरी करने, दोषियों को 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया और भी कदम उठाए गए। इसी दिन एनटीए में भी कार्रवाई हुई और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े 47 कर्मचारियों को हटाया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस ने परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसटीएफ बनाया। यानी सरकार ने विवाद को शांत करने के लिए कई स्तर पर कदम उठाए, कानून बदला, अधिकारियों पर कार्रवाई की, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की, घोषणा और जांच तेज की। लेकिन छात्रों का मुख्य सवाल सिर्फ सुधारों तक नहीं था, वो चाहते थे जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो। आखिर अगर इतने बच्चों की जान गई है पेपर लीक की वजह से और री एग्जाम की वजह से, तो जवाबदेही कोई तो लेगा। और लगातार विरोध आंदोलन, बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और इस इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने भी इसे युवाओं की जीत बताया है। देखिए,
2: जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया, उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवा खड़े हुए, उन सब का सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से।
0: अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो इस इस्तीफे के बाद सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत हुई, जिसमें इसमें सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। इस बैठक के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संगठन अच्छे विश्वास के साथ आंदोलन वापस ले रहा है और उम्मीद करता है कि सरकार बातचीत में तय हुई बातों को तय सीमा, जो समय सीमा है, उसमें लागू करेगी। सुनिए,
3: जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो FIRs विड्रॉ हो जाए। ये भी हमारी सेकेंड मांग थी, सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो FIRs फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 FIRs दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे FIRs की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे।
4: ये इनकी डिमांड्स थी, मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सब से कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े।
5: कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें।
0: सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी की तीनों मांगों को मान लिया। इनमें पहली मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मांग पूरी हुई। सीजेपी की दूसरी बड़ी मांग थी आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस हों, माना गया, सरकार ने सहमति जताई। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि सरकार ने भरोसा दिया है कि प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में करीब 15 से 20 एफआईआर दर्ज होने की जानकारी है और उनकी कॉपी भी प्रदर्शनकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। सीजेपी की तीसरी मांग थी कि पेपर लीक विवाद के बाद आत्महत्या करने वाले जो छात्र हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। सरकार ने इस मांग पर भी सकारात्मक रुख दिखाया है, यानी सारी मांगे सरकार ने बिना शर्त स्वीकार कर ली। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर बैठे सभी प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर खाली करने के लिए कहा है। और जंतर मंतर के आसपास बंद किए गए जो 18 मेट्रो स्टेशन थे, उन मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट भी खोल दिए गए। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
6: सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते पिछले 3 दिनों से लगातार बंद पड़े दिल्ली मेट्रो के गेट को जो है वो फिलहाल खोला गया है। 3 मेट्रो स्टेशन है जिसमें राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और मंडी हाउस के गेट्स को जो है वो खोल दिया गया। ये तस्वीरें राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है जहां पर तमाम जो स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर जुटे हुए थे, मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब फिलहाल ये गेट जो है वो खोले गए हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तमाम जो सुबह से ही जितने प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस, जंतर मंतर और हजारों की भीड़ आज सुबह से ही जो है वो जंतर मंतर पर देखने को मिल रही थी, जैसे ही रेजिग्नेशन आया उसके बाद से ही लोगों में एक जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था। उसके बाद से अब धीरे धीरे तमाम जो स्टूडेंट्स दिल्ली और अलग अलग इलाकों से जो है वो आए थे वो फिलहाल अब धीरे धीरे मेट्रो के जरिए जो है वो वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं।
0: जिस जंतर मंतर से कुछ दिन पहले तक सरकार के खिलाफ नारे गूंज रहे थे, आज वही तस्वीर बदल गई। वही मंच, वही भीड़, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग। जहां कल तक प्रदर्शन था आज वहां जश्न था। जहां मांग थी इस्तीफे की वहां आज धन्यवाद और जीत के नारे थे। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर तैनात पुलिसकर्मियों का भी मुंह मीठा कर रहे थे। यानी नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई आज एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही विपक्ष ने इसे सरकार की जवाबदेही बताया। प्रदर्शनकारियों ने इसे अपने आंदोलन की सफलता कहा। देखिए
7: पिछले 12 साल के कार्यकाल में शायद पहली बार केंद्र सरकार खुद को युवाओं के गुस्से और विपक्ष के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पा रही थी। नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ने में नाकाम हो गई। पहला मोर्चा था जंतर मंतर, जहां गुस्से से तमतमाए चेहरे लिए हजारों युवा सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़े थे।
8: मुझे क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते, अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
9: ये मुद्दा कांग्रेस।
7: और दूसरा मोर्चा था देश की संसद, जहां पूरा विपक्ष सरकार को एक पल भी चैन से बैठने नहीं दे रहा था। संसद का मानसून सत्र युवाओं के गुस्से की आग में सूखा जा रहा था। विपक्ष के नेता पुलिस द्वारा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से आग बबूला थे।
10: संसद के मकर द्वार पे जोरों शोरों से इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन करने वाले हैं सारे विपक्षी नेता। अखिलेश यादव की बात करें तो वो इस समय काले कपड़ों के अंदर पहुंचे हैं। राहुल गांधी खड़े हैं काले कपड़ों के अंदर, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं, और ये सब बड़े जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और खड़े हैं पीछे और बोल रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं, जो एक अहम मांग है वो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। वो सभी लोग यहां आपको पीछे नजर आएंगे।
7: और आखिरकार करीब 36 दिनों बाद सीजेपी को वो मिल गया जिसकी वो मांग कर रहे थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस सफलता का जश्न सीजेपी ही नहीं बल्कि वो सभी विपक्षी नेता मना रहे हैं जिन्होंने छात्रों की मांगों को लेकर संसद को सिर पर उठाया हुआ था।
9: द फर्स्ट वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, एनीबॉडी हु हैज रेज्ड अ फिंगर ऑन आवर स्टूडेंट्स, बीटन देम, शॉट एट देम, हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। पीपल हु हैव ऑर्गेनाइज्ड इट, पीपल हु हैव इंप्लीमेंटेड इट, ऑल have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked.
11: They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to them.
7: जिस सरकार ने अभी तक राजनीतिक दबाव में किसी मंत्री से इस्तीफा न लिया हो उस सरकार के शिक्षा मंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ी राजनीतिक घटना है और ऐसा तभी मुमकिन हो पाया जब युवाओं के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं ने भी संसद और सड़क एक कर दी।
12: हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेन ज़ी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है।
13: प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
7: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सीजेपी और विपक्ष के नेता एक बड़ी सफलता मान रहे हैं और इस सफलता का श्रेय युवा प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के एक ऐसे अलिखित गठबंधन को जाता है जिसका तोड़ खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दोनों तरह का दबाव था। सोनम वांगचुक का अनशन और हजारों की संख्या में जुटे युवाओं के तीखे सवाल सरकार पर नैतिक दबाव डाल रहे थे। मुख्य रूप से मांग दो ही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई। सरकार के लिए इन मांगों को पूरा करना एक चुनौती बन गया था। दूसरी तरफ विपक्ष ने संसद की कार्यवाही को पूरी तरह से ठप कर दिया था। पिछले 5 दिनों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं चल पाई। विपक्ष की नारेबाजी सदन के अंदर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी दिखी।
14: जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए।
15: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स, मारपीट हुई है? ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको?
7: संसद में सरकार को घेरने के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया था। इस अति संवेदनशील इलाके में विपक्षी नेताओं का ऐसा जमघट लगा कि सुरक्षा एजेंसियों तक के होश उड़ गए। विपक्ष ने केंद्र सरकार से युवा प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज पर सवाल पूछे, आंसू गैस के इस्तेमाल पर घेरा और सोनम वांगचुक का अनशन खुलवाने की अपील की। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए इस धरना प्रदर्शन से सख्ती से निपटा गया।
16: सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए।
17: बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं, हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है।
7: विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के नैतिक और राजनीतिक दबाव का ही असर था कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की और साथ ही साथ सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म करवाने की कोशिशें शुरू हुई। दोनों ही मंत्रियों ने सोनम वांगचुक से अस्पताल में मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली जाएं।
2: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा।
7: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पहले खबरें आ रही थीं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और न ही उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। इन खबरों के बीच 23 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। इस खबर के बीच विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह रचा और राहुल गांधी शाम होते होते विपक्षी नेताओं के साथ सड़क पर उतर गए। वो इंडिया गेट तक मार्च करना चाहते थे लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने गांधी स्मृति पर जाकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार की नीति पर सवाल उठाए।
18: 12 साल से तो अघोषित इमरजेंसी है, 12 साल से अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई, अधिकार खत्म कर दिए गए, लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोई कमी नहीं रखी, संविधान मिटाने की व्यवस्था किया गया, सारी संस्थाओं को कैद किया गया, तो आप उठा करके देखिए क्या स्थिति है
19: जी।
18: तो जब आप पूरी की पूरी डेमोक्रेसी खत्म कर लोगे तो फिर रास्ता क्या बचता है।
19: ठीक, सरकार से छोटी सी मांग है कि आप शिक्षा मंत्री जो कि 120 जो कि रिकॉर्ड पे है पेपर लीक उसके लिए जिम्मेवार हैं, उनका इस्तीफा लीजिए, उसके बाद संसद में बहस हो, चर्चा हो, जो कमियां हैं खामियां हैं सरकार की तरफ से उसमें सुधार हो।
7: विपक्षी नेताओं के इस हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट को पूरी तरह से नकार दिया जिसमें कहा गया था कि 23 जुलाई की रात जंतर मंतर पर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। माना गया कि कुछ होने वाला था जो विपक्ष के हंगामे के बीच टाल दिया गया। और उधर जंतर मंतर पर बेखबर प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी का दौर जारी था। हालांकि इस दौरान खबर आई कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की अपील पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है क्योंकि सरकार ने उनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया है।
2: अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहां आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे ये आश्वासन दिया।
7: और फिर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सेल्फी वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की बात कही।
20: फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा।
7: पीएम मोदी के इस वीडियो संबोधन के आने के बाद माना गया कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अगले ही दिन कैबिनेट ने पेपर लीक पर संशोधन बिल लाने का ऐलान कर दिया जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और सख्त सजा का ऐलान किया गया।
21: दिस इज अ कंप्लीट आई वॉश द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और अ लॉ, जस्ट इमेजिन दे आर ब्रिंगिंग अ लॉ आफ्टर नो डिस्कशन नो डेलिब्रेशन नथिंग एट ऑल। What is going to be the credibility of that law? How is it going to change people's lives? वो ही नहीं सकता है।
7: इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के नेताओं के साथ दूसरे राउंड की बातचीत शुरू की जिससे ये पता चला कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा बाकी मांगों पर सरकार राजी है, लेकिन जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहे।
1: प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दिखे या एक सोनम वांगचुक सरकार नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है।
3: धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।
7: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत में फंसी वो गरारी थी जिसके ठीक होने पर ही गाड़ी आगे बढ़ती और फिर 25 जुलाई दोपहर 2:18 पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया और इसी के साथ जश्न का एक नया दौर शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: कभी कभी लोकतंत्र में एक आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, वो एक सवाल बन जाती है और जब सवाल लाखों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ जाए तो उनकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई पहले जंतर मंतर के धरने तक पहुंची और आज इस कहानी का बड़ा मोड़ तब आया जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के बाद आज जंतर मंतर पर जश्न था, नारे थे और इस दौरान एक नया शब्द सुनाई दिया, जेन जीत है, यानी जेन जी नहीं, जेन जीत है, यानी वो पीढ़ी जिसे अक्सर सिर्फ सोशल मीडिया और ट्रेंड्स के से जोड़कर देखा जाता था, उसने दिखाया कि असली मुद्दों पर खड़ा होना, उन पर सवाल पूछना, बदलाव की मांग करना उसकी पहचान है। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लोग सच से नहीं उस कंफर्ट जोन के टूटने से डरते हैं जिसे वो झूठ की बुनियाद पर खड़ा करते हैं।
22: It's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
23: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
22: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
23: They score!
22: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
24: मैं करता हूँ ना, मैं करूँगा।
25: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
24: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
25: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
24: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
25: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
5: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच कई राज्यों से मुसीबत की तस्वीर आ रही है, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आफत गुजरात में दिख रही है। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद में भी स्थिति गंभीर है, जिले के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
9: अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की हैं, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए, किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। इसके बाद संकट के बीच SDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए SDRF के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं।
10: लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है।
9: शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी है। सेना के जवानों के साथ SDRF की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है। ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, आज तक।
8: बात पूर्वोत्तर भारत की भी कर लेते, जहां पर असम में बाढ़ से तबाही मची हुई दिख रही है। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 जिले समेत बाढ़ की चपेट में है। अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है, जबकि 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
11: असम में बाढ़ का कहर, बारिश और सैलाब से जनजीवन बेहाल, कई जिलों में हालात गंभीर। आसमानी आफत का असर अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, पूर्वोत्तर में भी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। असम के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। असम बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, कामरूप, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कामरूप, कार्बी, आंगलोंग और तिनसुकिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घरों के अंदर पानी भर चुका है, सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं और कई जगहों पर आवाजाही बंद हो गई है। पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कई परिवार अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की मार सिर्फ लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है, बल्कि इसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ा है। असम में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने का खतरा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। असम में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 3,75,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव में 1,86,000 और जोरहट में 1,15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। घरों से लेकर खेतों तक पानी भर चुका है। राज्य की कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग नदी, शिवसागर की किखोर और देसांग नदी, गोलाघाट की धनसिरी और श्रीभूमि की नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। शिवसागर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश ने असम की राजधानी गुवाहाटी की रफ्तार भी थाम दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें गुवाहाटी के एक पेट्रोल पंप की है, जहां पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर दुकानों, बैंकों और बाजारों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उफनती नदियां गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन रही है, तो दूसरी तरफ शहरों में जल निकासी की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश और बाढ़ के इन हालातों में सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
8: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
14: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
13: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen. Beautiful.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: परीक्षा संशोधन बिल से पहले प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश, नंदन निलेकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स का ऐलान, कहा पारदर्शी बनाएंगे परीक्षा प्रक्रिया, कठोर कानून लाएंगे। पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, कल संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल, 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की जेल, 2 महीने में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पायलट गन को राहुल ने बनाया नया मुद्दा, गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ, AK-47 को अब तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74 फर्स्ट विलेज घूमकर लौटे 400 युवाओं ने पीएम के साथ साझा किया अनुभव। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक, पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी बधाई।
1: उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है।
2: हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें।
3: सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी।
4: प्रधान एक सिंबल है, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल, उसको तो जाना ही था।
5: इतिहास धर्मेंद्र प्रधान जी को जरूर पॉजिटिवली ही असेस करेगा।
6: जेंजी सरकारच्या झंझ्या कशा उपटतात हे आपल्याला या आंदोलनातून कळलं।
7: केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मंत्री वर्ग में यही झंझे को विद्या मंत्री बनाने का वादा करता हूँ।
8: शिक्षा परीक्षा को दोनों को व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा।
9: आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी,
10: तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है।
11: माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा।
12: दिस इज हाउ अ डेमोक्रेसी शुड बी, ये लोकतंत्र।
13: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आज तक पर आपका स्वागत करती हूं। देश में बहुत कुछ हाल के दिनों में पहली बार हो रहा है। पहली बार जेंजी का आंदोलन, पहली बार 12 साल में आंदोलन से मंत्री का इस्तीफा, पहली बार प्रधानमंत्री का युवाओं से जेंजी के स्टाइल में संवाद। इन सब के बीच अब सबकी नजर संसद पर लगी, जहां कल संसद में पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाला बिल पेश होने जा रहा है। अब सवाल है कि करोड़ों छात्रों, बेरोजगारों के भविष्य से जुड़े इस बिल पर संसद में सियासत होकर बात करेगी या फिर नया संग्राम होगा।
14: जंतर मंतर शांत है, जहां से आंदोलन की आंधी ने पहली बार 12 साल में किसी मंत्री की कुर्सी को हिला दिया, फिलहाल वहां अब साफ सफाई का काम चलने लगा। लेकिन जंतर मंतर से निकला सवाल है, क्या मंत्री के इस्तीफे से ही परीक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी या फिर ये एक शुरुआत है? जंतर मंतर से संसद मार्ग पर बढ़कर देश की संसद में अब करोड़ों छात्रों को नीट एंड क्लीन परीक्षा व्यवस्था देने वाली शुरुआत होने जा रही है।
15: फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
14: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छात्रों के मुद्दे पर संजीदगी से कदम बढ़ाते आ रहे हैं। पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पहले प्रधानमंत्री ने कहा पेपर लीक घोर पाप, फिर 23 जुलाई को भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया।
15: सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
14: शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रविवार को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार पाने वाले प्रहलाद जोशी ने कार्यभार संभाल लिया।
16: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा।
14: प्रहलाद जोशी को तो अभी शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद शिक्षा मंत्रालय से जुड़े मुद्दे पर बड़ा फैसला लेते आ रहे हैं। अब सबकी नजर संसद पर है, जहां सोमवार को संसद में पेपर लीक रोकने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद कानून को और सख्त करने वाला बिल पेश होने जा रहा है। केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में संशोधन करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद सोमवार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में नया बिल पेश कर सकते हैं। नए बिल में सजा और जुर्माने के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। पेपर लीक करने पर जहां 3 से 5 साल की सजा पहले मिलती थी और 10 लाख का जुर्माना था, अब उसे बढ़ाकर 5 से 10 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना कर दिया गया है। पेपर लीक में शामिल सर्विस प्रोवाइडर के लिए प्रस्तावित कानून में जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया, जबकि उन पर बैन करने का वक्त 4 साल से बढ़ाकर 8 साल यानी 2 गुना कर दिया गया। साथ ही परीक्षा का खर्च वसूलने वाला प्रावधान भी शामिल रहेगा। परीक्षा में धोखाधड़ी में शामिल पाए जाने वाले डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट या जिम्मेदार लोगों को कम से कम 5 साल की जेल और 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। परीक्षा से जुड़े संगठित अपराधों के लिए कम से कम सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल तक कर दी गई है, जबकि कम से कम जुर्माना जो था वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
15: मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
14: कानून केवल सजा और जुर्माने को लेकर सख्त नहीं हो रहा, बल्कि बिल में 2 नई धाराएं 12A और 12 खंड 2 जोड़ी गई है। इसके तहत केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी या एसटीएफ को केंद्र सरकार की तरफ से मामला सौंपे जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी, फिर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा, जहां राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह करके सेशन कोर्ट को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर तय करेंगी। यहां रोजाना सुनवाई जरूरी है, सुनवाई टालने के लिए लिखित कारण देना होगा, चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करना होगा, पेंडिंग केस स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे और ट्रांसफर के 3 महीने के अंदर पूरे किए जाएंगे। अपील की प्रक्रिया के तहत नई धारा 12B इस प्रस्तावित बिल में जोड़ी गई है, जहां स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले सजा आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपील की सुनवाई 2 जजों की बेंच करेगी। जमानत के आदेशों के खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपील स्वीकार होने के 3 महीने के अंदर निपटारा करना होगा। अपील करने की समय सीमा 30 दिन होगी। ठोस वजह होने पर इसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
17: किसी ने अपराध किए समय पे सजा मिले और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्पीडी ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे हुए।
14: देश के करोड़ों युवा हर साल अलग अलग बोर्ड इम्तिहान, प्रवेश परीक्षा या भर्ती परीक्षाओं में बैठते हैं, जहां अब तक पेपर लीक माफिया करोड़ों रुपए का खेल करके बच्चों के सपनों को तोड़ता आया, लेकिन अब संसद में सोमवार को उसी पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने वाला सख्त कानून का बिल आ रहा है।
13: इतिहास कहता है कि वक्त रहते समस्या का समाधान न निकले तो छात्रों के आंदोलन सत्ता के लिए चुनौती साबित होते हैं। 1973 में गुजरात के मोरबी में कॉलेज के छात्रों ने मेस की बढ़ी फीस के खिलाफ जो आवाज उठाई उसने धीरे धीरे देशव्यापी आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया था, जिसने दो मुख्यमंत्रियों की कुर्सी छीनी थी, इमरजेंसी तक लाकर पूरे देश में हलचल मचा दी गई थी। 53 साल बाद देश की राजधानी से एक आंदोलन फिर ऐसा निकला जिससे हलचल मची, 1973 जैसी नहीं लेकिन इतनी बड़ी जरूर कि 12 साल की मजबूत सत्ता में पहली बार किसी प्रदर्शन धरना आंदोलन की वजह से किसी मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा।
14: शनिवार दोपहर तक किसी को अंदाजा नहीं था क्या अचानक वो होगा

0: क्या कह रहे थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: जिस सरकार में 12 साल के कार्यकाल में अब तक आंदोलन प्रदर्शन किसी मंत्री को कुर्सी से डिगा नहीं पाया था, जिस सरकार में तीसरे कार्यकाल में सीटें घटने के बावजूद बड़े मंत्रालय पर उन्हीं मंत्रियों को जगह देकर ये संदेश दिया गया कि सरकार की मजबूती पर रत्ती भर असर नहीं आया, उस सरकार में 12 साल का रिकॉर्ड बनाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र इस बात की गवाही है कि जब अन्न त्याग कर अपनी मांग रखी जाती है, जब धैर्य और संयम के साथ मार्च करते युवा पुलिस की लाठी सहकर भी रास्ते से भटकते नहीं, छात्रों के हक में धरने प्रदर्शन के साथ त्याग के जंतर मंतर पर जुटे रहते हैं, जब देश के अलग अलग राज्यों तक शहरों तक प्रदर्शन के साथ युवाओं ने अपने रोज के कामों को त्याग कर अपनी आवाज उठाने की ठानी, तब जाकर मोदी राज के हर कार्यकाल में मंत्री बनते आ रहे, 5 साल से देश का शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे, नीट से लेकर CBSE कॉपी जांच विवाद तक के साए में जवाबदेही के कटघरे में खड़े किए गए धर्मेंद्र प्रधान को त्याग पत्र देना पड़ता है।
0: This is for them. ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। टू द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज हाउ अ डेमोक्रेसी शुड बी। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है।
1: जंतर मंतर पर 5 हफ्ते तक चले इस धरने में सबसे अहम यही 20 तस्वीरें, असल में ये 20 तस्वीर नहीं बल्कि वो 20 सवाल रहे जो सरकार और सिस्टम की नाकामी की वजह से लीक हुए नीट पेपर के बाद अपनी उम्मीदों के टूट जाने के डर के साए में जान दे देते हैं। और तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आकांक्षा जैसी बेटियों के परिवारों, उनकी बेटी तो नहीं लौटा सकता लेकिन ये विश्वास दिला सकता है कि जवाबदेही तय की गई है। आकांक्षा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मम्मी पापा आपका मुझ पर भरोसा था, मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है, सॉरी मम्मी पापा मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। 19 साल की आकांक्षा चतुर्वेदी जैसे देश के 20 बच्चों ने 3 मई को हुई नीट परीक्षा के बाद सोचा था अब की बार डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, लेकिन पेपर लीक और फिर नीट पेपर रद्द की खबर मिलने के बाद वो ऐसा टूटे, परिवार का सब कुछ उजड़ गया था।
2: जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी, उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मन वो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा, और जब पेपर लीक हो गया तो बच्ची काफी सदमे में आ गई, काफी दुख में आ गई, खाना पीना सब बंद कर दी थी और किसी से बात वात करने में भी ज्यादा उत्सुक नहीं रहती थी।
3: बहुत बड़ा नाम होगा
4: ऐसा बोलती,
3: कितने सारे सपने दिखा के चली गई थी कि उसके नाम की आगे डॉक्टर लग जाए।
1: इन्हीं परिवारों को न्याय दिलाने, नीट पेपर लीक के बाद अकाउंटेबिलिटी तय करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर सोशल मीडिया से जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी ने धरना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू किया, जो 36 दिन बाद अंजाम पर पहुंचा है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। शनिवार दोपहर 2:18 पर 2 सफेद पन्ने पर 575 शब्दों की काली इबारत लिखकर धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट की, अपनी गलती खुलकर नहीं मानी बल्कि लिखा कि पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी, ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं। धर्मेंद्र प्रधान अपने त्याग पत्र में लिखते हैं कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा पाए, देश की एकता बनी रहे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात का विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है।
5: ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में, और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं CJP के हमारे टीम और

0: भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले।
1: इस बात से कोई रत्ती भर इनकार नहीं कर सकता है, नीट पेपर लीक के जिस मामले पर चारों तरफ से उठते तमाम सवालों पर प्रधान इस्तीफा प्रूफ बने रहे, जहां विपक्ष का प्रदर्शन भी पहले धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर चुनौतियों का बादल नहीं ला पाया, वहां 16 मई को बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने सवा दो महीने से कम वक्त में आंदोलन करके युवाओं को जोड़कर प्रधान को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया।
2: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या विपक्ष पहले से ज्यादा हमलावर होगा? धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र के बाद अब ये सबसे बड़ा सियासी सवाल है। उनके इस्तीफे के बाद राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मोदी और बीजेपी का झुकना बता रहे हैं, और सवाल यह है कि क्या जंतर मंतर पर जो आंदोलन खत्म हो चुका है वो दूसरे रूप में संसद में लड़ा जाएगा?
3: क्या कह रहे थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कह रहे थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
1: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सवाल है कि क्या यह मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा या फिर सरकार के लिए सियासी मैदान में भी आगे बड़ी लड़ाई लड़ने की चुनौती रहेगी। इस सवाल पर सबसे बड़ा संकेत लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी देते हैं।
4: ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा, हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उस पर रिएक्शन था।
1: राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे को बेरोजगारी से जोड़ते हुए सरकार के साथ आरएसएस को भी घेरना शुरू कर दिया और बता दिया कि उनके लिए मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ है।
4: प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल, उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है।
1: इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी दो मांगे रखी, बताया कि संसद में इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी तक पर हमले करते रहेंगे।
4: मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए।
1: तो कॉकरोच जनता पार्टी ने भले ही अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इसने विपक्ष को ताकत देने का काम किया है, जिससे लगने लगा है कि सरकार को झुकाया जा सकता है।
5: ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंततः भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया है। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों उनको ठोस बना करके ही, कोई पेपर लीक ना हो, और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलें।
1: अखिलेश यादव को 2027 में बदलाव के लिहाज से छात्रों के आंदोलन में सरकार का झुकना शुभ संकेत लगने लगा है, जिससे ये सवाल और मजबूत होता है, क्या ये लड़ाई एक इस्तीफे पर ही जाकर खत्म हुई है या आगे और लंबी चलेगी।
6: I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them. Each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries. But they did not bend. The government had to bend to their will.
1: तो विपक्ष का सारा जोर नौजवानों को बधाई देने के बाद ये बात बार बार दोहराने में लग गया है कि सरकार और बीजेपी को तो जनता ने आंदोलन करके झुका दिया।
7: आप सबको बहुत बहुत बहुत बधाई, हमारे देश के युवाओं को, जेन जी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी, हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है।
1: छात्रों की जीत बताने के साथ अब धीमे धीमे ही सही इसका श्रेय लेने की भी होड़ शुरू होने लगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी जेन जी की बहुत दिनों से बात कर रहे थे, जिनकी ताकत का एहसास अब सरकार को हुआ है।
8: छीन के लिए जाएंगे अगर ये इनका रवैया ऐसा ही रहा तो। ये जो घमंड के घोड़े पे सवार होते हैं वो इसी तरह से उतरते हैं जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, रात को 11-12 बजे रील्स बनाते हुए दिख रहे हैं ना, फ्रेंड्स बन गए, अचानक फ्रेंड्स हो गए सब, तो ये तो अभी बहुत कुछ होगा। राहुल जी जेन जी की बात इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि ये देश में सबसे ज्यादा अगर कोई इन्फ्लुएंस करने वाली ताकत है तो वो जेन जी की ही ताकत है, जिसको सबसे ज्यादा ना केवल नजरअंदाज इस सरकार ने किया लेकिन उनके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी भी की।
1: शरद पवार ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नौजवानों की जीत बताया और पीएम के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया और लिखा कि बातचीत के 2-3 दौर पहले ही हो चुके थे, मैं खुद प्रधानमंत्री से मिला, मैंने उनसे अनुरोध किया कि लोकतंत्र में संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, या तो इस्तीफा देना चाहिए या फिर बातचीत करके उनकी क्या बातें हैं उन्हें सुनना चाहिए, इसके लिए आप केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2-3 मंत्रियों, संभव हो तो वरिष्ठ मंत्रियों को नियुक्त करें। तो सड़क पर छात्रों की लड़ाई भले ही अब पूरी हो गई हो लेकिन अभी संसद में जंग बाकी है।
9: ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, लोकशाही अगर चलाना है तो संविधान के दायरे में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत चलाना पड़ेगा।
1: सरकार सोमवार को पेपर लीक पर सख्त कानून का बिल पास करने की तैयारी में है, ड्राफ्ट तैयार है, चर्चा भी तय हो चुकी है, जहां विपक्ष की पहली बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में पूरी हो चुकी है, इसलिए सरकार और बीजेपी अब विपक्ष से भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की हिदायत देने लगे।
10: अब ये एक कसौटी होगी विपक्ष की, क्या वो संसद में चलने देती है संसद और अपनी बात संसद के पटल पर रखती है धारदार तरीके से, या फिर भागने का प्रयास करती है, या अगले 48 से 72 घंटे में साफ हो जाएगा।
1: लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या कानून और इस्तीफे से इस समस्या का समाधान निकलेगा, क्या छात्रों को पेपर लीक की बीमारी से मजबूत छुटकारा मिल पाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: आपके मन में भी ये सवाल होगा कि जब लगातार ये खबरें आती रहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, जब ये दावा सरकार के सूत्र करते रहे कि इस्तीफे से क्या होगा, परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है और वो काम करने में सरकार जुटी है, तो फिर अचानक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे दिया। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। इनसाइड स्टोरी का शीर्षक है, क्या 72 घंटों के अल्टीमेटम के कारण हुआ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? क्योंकि खबर है कि शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए सीजेपी ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया था। शुक्रवार को जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत में ये अल्टीमेटम दिया गया था। सीजेपी की तरफ से कहा गया था कि उनकी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सीजेपी की ओर से कहा गया था कि अगर 72 घंटों में इस्तीफा नहीं होता है तो फिर से संसद की ओर मार्च किया जाएगा। सीजेपी के प्रवक्ता ने साफ कह दिया था कि दोबारा संसद मार्च करने की बाहर जाकर वो घोषणा कर देंगे। इस पर दोनों मंत्रियों ने कहा कि हम आपको बात करके बताते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी। इस बीच एनटीए के 47 अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई। एनटीए के पुनर्गठन के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। पर इसके बावजूद सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर अमित शाह से मुलाकात की और खबर है कि उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया, जिसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी नेताओं से मिले और फिर आंदोलन खत्म हुआ।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: व्हाटएवर यू आर इन द मूड फॉर, देयर्स ऑलवेज समथिंग टू लिसन टू ऑन ट्यून इन। म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स, पॉडकास्ट्स एंड लाइव रेडियो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ऑल इन वन प्लेस। Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
14: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
7: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
11: In association with
12: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, यूं तो रोज देश में अलग अलग मुद्दों, अलग अलग समस्याओं पर होते आए हैं, लेकिन ये आंदोलन क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ नारे अलग हैं, यहाँ प्रदर्शन करने वाले पोस्टर अलग रहे, जंतर मंतर पर जेन जी ने विरोध की नई स्क्रिप्ट लिख दी, जिसमें मीम, व्यंग्य और छोटी छोटी पंचलाइन से कही गई बातों ने इस आंदोलन को पिछले सभी आंदोलनों से अलग कर दिया।
1: मैं जानता हूं कि
2: आंदोलनकारी जेन जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम से अपने संदेश दिए, जो कुछ ही समय में करोड़ों लोगों तक पहुंचे। ये सिर्फ एक मोबाइल वीडियो नहीं, बल्कि इस बात का कबूलनामा रहा कि जनता अगर डिजिटल मंचों पर सक्रिय है तो लोकतांत्रिक संवाद भी उसी भाषा और माध्यम से होना सियासत की नई जरूरत।
1: खुशियों की खबरें भी आ रही। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात
2: पहले किसी आंदोलन की सफलता उसकी भीड़ और मीडिया कवरेज से आंकी जाती रही, लेकिन अब किसी भी प्रदर्शन का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी तस्वीरें, वीडियो और संदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कितनी तेजी से फैलते हैं।
1: थैंक्स टू एवरीबॉडी।
3: तो आपको कैसा मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरे को बहुत लग रहा है, समोसा खा के फिर करना चाहिए।
4: यहाँ तो फ्री में
2: जंतर मंतर पर चलता रहा छात्रों का प्रदर्शन, सिर्फ नारों का आंदोलन नहीं रहा बल्कि विरोध की बदलती भाषा का एक नया चेहरा भी रहा। जहां हाथों में तख्तियां हैं लेकिन उन पर लंबे भाषण नहीं बल्कि मीम, तंज कस्त, व्यंग, छोटे छोटे पंच लाइन और इंटरनेट कल्चर से निकले मैसेजेस लिखे गए। यही वजह है कि ये प्रदर्शन पिछले बहुत आंदोलनों से बिल्कुल अलग नजर आया।
3: गवर्नमेंट और पुलिस से इस जेन ज़ी के प्रोटेस्ट को, जो रात के 3 बजे क्लब पार्टी हो रही है, इसको आप कैसे रोकोगे? आप रोक के दिखाओ, नहीं रोक सकते।
5: जी लखनऊ से ये अभी दिल्ली के प्रोटेस्ट में आ नहीं पाई है, तो आज इनका डिजिटल प्रोटेस्ट कराने लाया है यहाँ पे। आप
2: पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में नौजवान सोशल मीडिया के दौर में बड़े, इसलिए आंदोलन उन्होंने उसी शैली में बात की जिसमें हास्य, व्यंग और रचनात्मकता को हथियार बनाकर गंभीर मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुँचाया गया।

0: गैर कानूनी करार दिया जाता है।
1: प्रदर्शन के दौरान कई सोशल मीडिया रील्स वायरल, जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। उनमें से एक रील में एक लड़की अपने मेकअप की बात करते करते पेपर लीक पर तंज कसती।
0: स्टूडेंट रही नहीं हूँ, स्टूडेंट बनने का था कि सपना था कि बनूंगी, नीट की तैयारी करूंगी, पर अब नीट के बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है तो लग रहा है कि नहीं बनना चाहिए।
1: प्रदर्शन में पॉप कल्चर की झलक भी खूब दिखाई
2: दी।
1: कोई दुल्हन बनकर कुछ पुछू अब तो रिजाइन कर दो का पोस्टर लेकर पहुँचे। बैटमैन, स्पाइडरमैन, गोरिल्ला अवतार भी चर्चा में रहे।
3: मिलेनियल्स और जनरेशन जी में जो फर्क है ना, वो है उनकी क्रिएटिविटी का। अब जंतर मंतर पर भी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया, ऐसे ऐसे पोस्टर, ऐसे ऐसे रील दिखाई दिए ना, हमने तो कभी अपनी पीढ़ी में नहीं देखा, नहीं पढ़ा। अब रेजिग्नेशन हो गया ना, जरा क्या लिखा पढ़ के बताइए।
4: आप पढ़ के बताइए भैया।
3: ये सबसे ज्यादा ये वाला वायरल हो रहा था, और उसके बाद फिर अब इस्तीफा हो गया तो फिर बना, ये तुरंत बना के लेके भी आ गए आप लोग। यहाँ क्या लिखा है, मान लिया तो हार गए, ठान लिया तो पार गए। तो आप लोग नहीं बैठे बैठे बना लिया?
4: नहीं, घर से
3: बना करके
4: जल्दी जल्दी, कोई तो जल्दी जल्दी काम करे।
3: ये वाला आइडिया कौन लाया था, ये लिखना है, ये किसका आइडिया था? ये
4: मेरा ही था वैसे।
3: आपने खुद से बना लिया? ये जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा क्रिएटिव है, और ऐसे ऐसी चीज आपको एक बार पढ़ने में हंसी आ जाएगी, लेकिन वो हंसी लाकर मंच। अच्छा, यहाँ पोस्टर्स का बड़ा रोल रहा है, इंडिया नीड्स टोटल रेवोल्यूशन। अब ये भी है कि अब नीट का मामला था तब से लेकर के छात्र जो हैं वो टोटल रेवोल्यूशन लेकर के आ गए।
0: मेन है कि अब आज के टाइम में माता पिता।
1: दुल्हन की ड्रेस में जंतर मंतर पर पहुंची इस महिला ने सबका ध्यान खींचा। महिला ने कहा कि अब करियर तो बनने से रहा, शादी ही कर लो।
0: तो आपके साथ भी ऐसे ही हो? हाँ जी, बस मेन मोटिव यही था कि करियर तो बनने से रहा, आप शादी कर लो आज ही, मैं यही बोलूंगी। स्टूडेंट रही नहीं हूँ, स्टूडेंट बनने का था कि सपना था कि बनूंगी, नीट की तैयारी करूंगी, पर अब नीट के बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है तो लग रहा है कि नहीं बनना चाहिए। और मेन है कि अब आज के टाइम में माता पिता जो सोच रहे हैं कि हम इतना अच्छा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अब वो ये सोच रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के साथ, इतने सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, तो अब शादी करा रहे हो लड़कियों के।
1: तो इस आंदोलन में कई सारी ऐसी चीजें हुई जो पहले कभी नहीं हुई। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये युवाओं का प्लेटफॉर्म जिससे प्रदर्शनकारियों के साथ देश भर के नौजवान इस्तेमाल करते, जिनसे सीधी बात करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म को चुना।
5: थैंक यू दोस्तों।
6: शिक्षा मंत्रालय मोदी सरकार का वो विभाग है जिसके साथ एक अलग ही खबर का रिश्ता है। मोदी सरकार के 12 साल में 4 लोग शिक्षा मंत्री रहे, और इसी से आप समझ जाइए कि इन 12 साल में कोई शिक्षा मंत्री 5 साल तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल पाया। सबसे पहले स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री बनी, जिनका कार्यकाल 771 दिनों का रहा। इसके बाद प्रकाश जावड़ेकर 1060 दिन तक शिक्षा मंत्री रहे। रमेश पोखरियाल निशंक तीसरे मंत्री बने, लेकिन शिक्षा विभाग में 770 दिन तक ही रह पाए। धर्मेंद्र प्रधान 7 जुलाई 2021 से अब तक 1845 दिन शिक्षा मंत्री रहे। एक बात यह भी है कि मोदी राज में 4 शिक्षा मंत्रियों में से 3 को जुलाई के महीने में ही बीच कार्यकाल पद छोड़ना पड़ा। जैसे इस बार धर्मेंद्र प्रधान, जो खुद कभी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करते रहे, इस बार खुद लीक पर आंदोलन से कुर्सी छोड़नी पड़ी।
1: ये तस्वीर अब याद करना जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि ये शख्स अभी देश की हर खबर में दर्ज है। ये तस्वीर बताती है कि आंदोलन से निकले नेता अगर आंदोलन का हासिल भूल जाएं, तो फिर आंदोलन ही उनके लिए भी भारी पड़ जाता है। 29 साल पहले 1997 की तस्वीर। पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने तब ओडिशा में विरोध प्रदर्शन किया। प्रधान के सहयोगी रहे प्रशांत राउत अंग्रेजी अखबार को बताते हैं कि 1997 में ओडिशा में एक पेपर लीक हुआ था। तब धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शन किया, जिसमें करीब 150 छात्र शामिल हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान को बुरी तरह पीटा गया। 29 साल बाद नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हुए आंदोलन ने उन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, जो संगठन और सरकार के सबसे मजबूत सिपाही बनकर चलते रहे। तारीख 15 मार्च 2025। बिहार में चुनावी हलचल से महीनों पहले पटना के डीएम दफ्तर में माता पिता के साथ बैठी 10वीं पास खुशबू को एक फोन कॉल आता है।
7: आपकी चिंता न करो, बिहार शासन आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों आपको पढ़ाएंगे।
1: दसवीं में तब पास हुई खुशबू को गरीबी की वजह से पढ़ाई आगे न कर पाने और उसके डॉक्टर बनने के सपने में रुकावट की खबर मिलने पर एक फोन तब अब तक के शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने ही किया था।
7: डॉक्टर बनोगे?
8: यस सर।
7: बिल्कुल बनोगे?
8: यस सर।
7: प्रभु के आशीर्वाद आपके ऊपर है और आप सभी के शुभेच्छाएं। आप चिंता ना करो, देश की बेटियों को मोदी जी के शासन में और बिहार में तो नीतीश जी ने बहुत चिंता की बेटियों के बारे में। आप भरोसा रखो।
1: लेकिन काश ऐसे ही देश के हर बच्चे के लिए जरूरी परीक्षा व्यवस्था का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान उठा पाते जिन्हें अब इस्तीफा देना पड़ा।
9: आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग
1: साल 2000 में ओडिशा की पल्हड़ा सीट से विधायक, 2004 में देवगढ़ सीट से सांसद बनकर सियासत में आगे बढ़ते रहे धर्मेंद्र प्रधान, 2014 से लगातार पेट्रोलियम, कौशल विकास, इस्पात मंत्रालय 2021 तक संभालते रहे, 2021 से शिक्षा मंत्री बने, जिन पर 2024 में भी संकट के बादल नीट पेपर लीक के बाद छाए, लेकिन तब धर्मेंद्र प्रधान बच गए। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। जो संगठन के माहिर माने गए, जिन्हें 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में जिम्मा इलेक्शन का दिया गया जब नीतीश अलग हो गए थे, तब 30 से ज्यादा सीट एनडीए जीती थी। 2014 में झारखंड अस्थिर सियासत जिस राज्य में चलती रहती थी, वहां धर्मेंद्र प्रधान के संगठन वाले नेतृत्व में ऐसी सत्ता दिलाई कि 5 साल का सीएम कार्यकाल पहली बार बीजेपी के रघुवर दास पूरा कर पाए। 2016 में असम में पहली बार बीजेपी का सीएम तभी बना जब चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहे। 2017 में उत्तराखंड की जीत धर्मेंद्र प्रधान के चुनाव प्रभारी रहते मिली। अहम बात थी कि हाथ से निकली सत्ता वापस वहां दिलवाई थी। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहे तो लगातार दूसरी जीत बीजेपी को मिली। 2024 में हरियाणा में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहे तो लगातार तीसरी जीत का इतिहास भी बना। संगठन के शिल्पकार माने जाने वाले धर्मेंद्र प्रधान की जगह वापस अब संगठन में होगी या फिर आगे फेरबदल में वो कोई दूसरा मंत्रालय पाएंगे, ये आगे ही पता चलेगा।
6: समस्या केवल पेपर लीक नहीं है। धरना प्रदर्शन आंदोलन करने वाले केवल नीट पेपर लीक के पीड़ित या नीट परीक्षा देने वाले छात्र नहीं है। युवाओं की समस्या कॉलेज की परीक्षा से लेकर हर राज्य की भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है, जिनकी आवाज बनकर आज तक पहले भी खबरदार करते हुए दस्तक देता आया है। जरूरी है उन समस्याओं पर भी केंद्र से लेकर हर राज्य की सरकार नजर डाले और कार्रवाई करे, वरना जंतर मंतर बनते रहेंगे, युवा आक्रोश में आकर आंदोलन करते रहेंगे।
1: क्या राजस्थान में सरकारी नौकरी बिना रुलाए नहीं दी जा सकती? सवाल सीधा सा है। वजह मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर बैठे ये बेरोजगार जो चपरासी भर्ती परीक्षा में पास हुए लेकिन फिलहाल वेटिंग लिस्ट में। आप सोचेंगे वेटिंग लिस्ट में हैं तो प्रदर्शन क्यों? इसलिए पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनिएगा।
10: एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा।
1: मतलब समझिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी भर्ती में चयनित शख्स 1 साल के भीतर पद छोड़ देगा तो उसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट से किसी और को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में ये नियम लागू करने से मना कर दिया गया। अब जो 1-2 नंबर से वेटिंग लिस्ट में चले गए उनको लगता है कि जो मौका मिल सकता था वो भी छिन रहा है, क्योंकि भर्ती नियम लागू होने से पहले की है।
11: जिस तरह से ये भर्ती में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खाली पद बच जाएंगे इस नौकरी में। सरकार ने 1 साल का वेटिंग का नियम भी बना दिया है, मगर जिस नौकरी में जरूरत है इस नियम को लागू करने के लिए उसमें अधिकारी लागू नहीं कर पा रहे हैं।
1: हाथ में बैनर, कंधे पर केवल एक बैग नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद टांगे ये वो बेरोजगार युवा हैं जो थक चुके हैं प्रदर्शन करते करते। 2023 में निकली भर्ती में 2026 आधा बीत जाने के बाद भी नियुक्ति न मिल पाने के बाद हताश होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर के बाहर गुहार लगाने पहुंचे हैं।
12: ग्राम पंचायत अधिकारी की यह भर्ती। आप अगर पदों की बात करेंगे तो 1468 यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं, 2-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहाँ खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवाज दिखाई पड़ेगा, डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है, या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। अग्नि सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाए और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे।
13: इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं।
14: हम कई बार आ चुके हैं लेकिन हम लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज कभी नहीं मिलती है। भर्ती तो 2023 में ही आई थी 22 के पेट से, फिर 2 साल तक संघर्ष हुआ एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट के लिए हुआ।
15: 7000 रुपए महीने घर से मांग के और घर से बाहर अपने हाथों से रोटी बना के हम लोग रहते हैं।
16: ये वो बेरोजगार हैं जिनकी भर्ती ओम प्रकाश राजभर के विभाग से जुड़ी है। राजभर तो दिन भर सियासी बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पार्टी में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कराने की चिंता में जुटे रहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी नौकरी के लिए परेशान युवाओं को न्याय नहीं दिला पाते।
12: घर वाले क्या कहते हैं, मतलब आप लोग?
17: घर वालों को कहा हमने कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा हो गया। घर वाले कहते कब सिलेक्शन होगा, अब तो पड़ोसी भी विश्वास नहीं करते कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या किया जाए। आयोग से बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। अब महोबा से आते पहले ट्रेन बदलो बांदा, बांदा से फिर कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ, 3 बार ट्रेन बदलो जब लखनऊ आ पाओ, अब क्या किया जाएगा।
16: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तभी इन बेरोजगारों से मिलने पहुंचते हैं।
18: मेरे भाई है, मैं अभी बात करूंगा और रिजल्ट बाबू जल्दी घोषित कराएं, घबराओ नहीं, अभी करा अभी अभी
19: सर सर सर
18: ए बच्चों को मिठाई तो खिला यार।
12: तो ज्ञापन ले लिया है, ये ज्ञापन की कॉपीज हैं, डिप्टी सीएम साथ में हैं और यहां पर जो है उनसे समझ रहे हैं कि और आयोग से बात करने के लिए कहा।
16: दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के साथ केंद्र पर सवाल उठाते विपक्षी दलों की सरकारों में भी छात्रों का हाल बुरा ही है, इतना बुरा कि छात्र परीक्षा तक नहीं दे पा रहे। परीक्षा के इस एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़िएगा, जो झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का है, जिसकी परीक्षा 2 साल बाद जाकर 19 जुलाई को होती है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी गड़बड़ी है, तो अब इस ईमेल की इस फोटो को देखिए जो बताती है कि झारखंड फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा 2024 की परीक्षा का एडमिट कार्ड 19 जुलाई को दोपहर 2:59 पर आया, जबकि इस परीक्षा में सुबह 7 बजे पहुंचना था और 8 बजे परीक्षा केंद्र का दरवाजा बंद हो जाना था। लेकिन राजेश लाहौर नाम के इस छात्र को मेल से एडमिट कार्ड 3री पाली की परीक्षा शुरू होने के आसपास मिलता है।
20: 19 जुलाई जो कि 2:59 में जो है मुझे एक मेल प्राप्त हुआ, जो कि देख सकते हैं मेल का जो है टाइमिंग 2:59 में, और मेरा एग्जाम सेंटर जो है लतेहार में था, जो कि पॉसिबल नहीं था वहां जाना लतेहार, क्योंकि यहां से जो है जमशेदपुर से लगभग 500 या 600 मीटर किलोमीटर दूरी जो है जाना पड़ता है, एक दिन में जो है संभव नहीं होता।
16: तो झारखंड में बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरियां दूर की कौड़ी बन गई हैं। पहले तो नियुक्तियों के लिए आवेदन मंगाए जाने के बाद इम्तिहान लेने में वर्षों लगा दिए जाते हैं, इसके बाद परीक्षा किसी न किसी विवाद में फंसी रहती है। लेकिन JSSC ने 19 जुलाई को आयोजित 510 फील्ड वर्कर्स की परीक्षा को लेकर हद ही पार कर दी और परीक्षा करीब करीब खत्म होने के बाद उसके एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों को मिलते हैं। यही नहीं, दावा है कि सेंटर भी काफी दूर रखे गए, इसीलिए 3,22,000 अभ्यर्थियों में केवल 26% यानी 86,000 युवा ही परीक्षा में शामिल हो पाए, जो झारखंड सरकार के कामकाज पर बहुत बड़ा सवाल या निशान।
20: इतना साल जो है मेहनत करने के बाद जो है एक बहुत ही पछतावा हो रहा है कि इस तरह से जो है गलत नोटिफिकेशन मिला, और मेरा ही नहीं, मेरे साथ जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है मुझे कुछ जो है पता चला कि किन्हीं का तो नोटिफिकेशन आया भी और किसी का मेल आया भी नहीं।
16: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत देश के तमाम राज्य के युवाओं को यूं ही भर्ती के नाम पर लटकाए रखना भी पेपर लीक जैसी ही समस्या है। सवाल है कि इन युवाओं को कब तक इन समस्याओं के समाधान के लिए जंतर मंतर ही आना पड़ेगा।
6: अभी के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
22: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn. Hexa.
23: We are over, Jimmy.
24: Hey! लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: sorry.
1: Aye, aye, tra aye, aye, aye, sí, aquí no tripa aye, aye, aye, aye.

0: अगर सड़क पर दौड़ती हाईटेक गाड़ी अचानक बंद हो जाए तो इसे मामूली खराबी समझने की भूल नहीं कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी के उस खतरे का इशारा हो सकता है जो धीरे धीरे गाड़ियों के स्टेयरिंग तक पहुंच चुका है। दरअसल कारों में बढ़ते डिजिटल फीचर्स के दबदबे के बीच गाड़ियों पर साइबर अटैक का खतरा भी मंडराने लगा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हैकिंग की बढ़ती शिकायतों के बाद सरकार ने ऑटो कंपनियों और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को कनेक्टेड कारों और ईवीएस के सॉफ्टवेयर का साइबर ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से ऐसे 3 मोबाइल एप्स हटा दिए गए हैं जिनके जरिए ई व्हीकल्स को हैक किया जा रहा था। ये एप्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए 10 से 15 मीटर दूर से ही गाड़ियों की बैटरी बंद कर देते थे। साइबर सिक्योरिटी को लेकर मिली इस बड़ी चेतावनी के बाद गाड़ियों में मिलने वाले हाईटेक फीचर्स पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि बैट एम्बियस लॉसिकी और इपोक आई लॉन जैसे एप्स को दूर से गाड़ी बंद करने के वीडियो सामने आने के बाद बैन किया गया है और वाहन कंपनियों को बैटरी मैनेजमेंट पासवर्ड और ओटीएस सॉफ्टवेयर अपडेट्स की सुरक्षा सुधारने को कहा गया है। वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय 1 अक्टूबर से कनेक्टेड व्हीकल्स के लिए नए साइबर सिक्योरिटी नियम लागू करने की तैयारी में है। हैकर्स की इस नई सेंधमारी ने ऑटो सेक्टर की तेज रफ्तार के बीच एक बड़ी चुनौती पेश की है, लेकिन सुरक्षा में मिली इस बड़ी चूक के बावजूद मचे हड़कंप के बीच भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई छू रही है। आंकड़ों के मुताबिक जून में कुल व्हीकल सेल्स में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी पहली बार 12% के पार पहुंच गई है। इस दौरान कुल 3,06,000 से ज्यादा ईवीएस की बिक्री हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ईवीएस के इस जबरदस्त ट्रेंड में सबसे बड़ा योगदान टू व्हीलर्स का देखने को मिल रहा है। डेटा के मुताबिक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री में सालाना आधार पर करीब 75% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। अकेले जून में 1,93,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिके हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों ने भी अपनी अब तक की सबसे बेहतर मंथली सेल्स का रिकॉर्ड बनाया है। साफ है कि आम ग्राहक बड़ी तादाद में पेट्रोल डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से भारतीय सड़कों पर कनेक्टेड फीचर्स और ईवीएस की संख्या बढ़ रही है, उसमें साइबर सुरक्षा का पुख्ता होना भी बेहद जरूरी हो चुका है, जिससे स्मार्ट गाड़ी सेफ राइड का भरोसा देती रहे। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: परीक्षा संशोधन बिल से पहले प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश, नंदन निलेकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स का ऐलान, कहा पारदर्शी बनाएंगे परीक्षा प्रक्रिया, कठोर कानून लाएंगे। पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, कल संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल, 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की जेल, 2 महीने में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पायलट गन को राहुल ने बनाया नया मुद्दा, गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ, AK-47 को अब तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74वां विलेज घूमकर लौटे 400 युवाओं ने पीएम के साथ साझा किया अनुभव। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक, पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी बधाई।
1: तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। तो करीब 37 दिनों से जारी छात्रों का, जेंजी का, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, आमरण अनशन, विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर खत्म हो गया, और ये सब कुछ हुआ उस एक मांग की वजह से, मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। पिछले 12 सालों में जो काम विपक्ष नहीं कर पाया, इस देश के छात्र ने कर दिखाया। इस स्टूडेंट्स मूवमेंट की वजह से, जो पूरे देश में फैल गया जंतर मंतर की वजह से, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही जो छात्रों की दो और मांग थी, नीट एग्जाम पेपर जो लीक हुआ उसमें जिन 20 बच्चों की मौत हुई जिन्होंने जान दी, उनके परिवार वालों को मुआवजा देने की, और 20 जुलाई को जो संसद मार्च के दौरान आंदोलन में छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए वो वापस लेने की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बाकी दोनों मांग भी मान ली गई, और उसके बाद CJP ने अपना प्रोटेस्ट जंतर मंतर से खत्म कर दिया, और इस तरीके से ये आंदोलन खत्म हुआ। लेकिन ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ, इस आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे, इस आंदोलन के शुरू होने के पीछे की दो खास वजह क्या थी, जाने अनजाने। तो पेश है पूरी इनसाइड स्टोरी। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है 3 मई 2026 को। 3 मई को पूरे देश में नीट का एग्जाम था, नीट का एग्जाम जिसके जरिए बच्चों को अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलते हैं और फिर वो डॉक्टर बनते हैं। 3 मई को नीट के एग्जाम में 22 लाख स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं, एग्जाम हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल सही सलामत। लेकिन इसके ठीक 4 दिन बाद बल्कि 7 मई को अचानक की खबर आती है कि नीट का पेपर लीक हो गया, और ये खबर इसलिए आती है कि कुछ गेस्ट पेपर में कुछ सवालात थे, और वो सवालात, वो क्वेश्चन हूबहू उसी सीक्वेंस में थे जो नीट के एग्जाम में 3 मई को पूछे गए थे। ये बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, और आखिरकार 12 मई को शिक्षा मंत्रालय इसकी जांच करने के बाद पाता है कि एग्जाम सही है, नीट का एग्जाम लीक हो गया, क्वेश्चन पेपर लीक हो गए हैं, और 12 मई को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नीट के एग्जाम को कैंसिल यानी रद्द करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। 22 लाख बच्चे परेशान हो जाते हैं, जिन बच्चों के इम्तिहान बहुत अच्छे गए, जिनका सपना पूरा होने वाला था, उन्हें लगा कि अब वो डॉक्टर बन जाएंगे, उनके माँ बाप का सपना पूरा होगा, सारे सपने एक झटके में टूट गए। पूरे एक साल की मेहनत उन्हें बर्बाद होती नजर आई, बड़ी मेहनत से पढ़ाई की, इतना खर्च करने के बाद माँ बाप ने उन्हें कोचिंग के लिए भेजा, गुस्सा था, लेकिन अब भी सब कुछ नॉर्मल था। नीट एग्जाम रद्द करने के फैसले के 3 दिन बाद 15 मई को पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और गलती मानते हैं, कहते हैं हाँ नीट के एग्जाम के पेपर लीक हुए और ये इंटरनल गलती है, उसकी जांच करेंगे, और CBI को जांच सौंपने का ऐलान भी कर देते हैं। अब भी सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके अगले ही दिन 15 मई को धर्मेंद्र प्रधान अपनी गलती मानते हैं, और उसके बाद अगले दिन दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत में एक सुनवाई हो रही थी, और उसी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बाली एक कमेंट्स कर देते हैं, बेरोजगार नौजवानों पर एक शब्द बोल पड़ते हैं, और वो था कॉकरोच। अजीब सा शब्द था, मीडिया ने पकड़ लिया, खासतौर पर सोशल मीडिया ने। ये एक शब्द असल में इस आंदोलन की जड़ बन गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुंह से एक आक्रोश शब्द निकलता, उसके ठीक अगले दिन इंडिया से बहुत दूर अमेरिका के बॉस्टन शहर में बैठा एक स्टूडेंट, एक लड़का भारतीय, अभिजीत दीप के इस कॉकरोच शब्द को पकड़ लेता है और ऑनलाइन मजाक के तौर पर वो एक कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी बना डालता है। इसके बाद तो रील्स और मीम्स के बाढ़ आ जाते हैं। एआई और बाकी टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अब कॉकरोच जनता पार्टी के संदेश सर्कुलेट होने शुरू हो जाते हैं। अब तक एक महीने से जो 22 लाख छात्र खामोश थे नीट एग्जाम में, गुस्से में थे लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। जैसे ही ये कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर तैरने लगा, इन बच्चों को लगा कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपना गुस्सा दर्शा सकते हैं। फिर क्या था, धीरे धीरे ये बच्चे अब इस सीजेपी के साथ जुड़ते गए। 4 से 5 दिनों में ही कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, सिर्फ 3-4 दिनों में। इतनी बड़ी तादाद में तो पहली बार लगा कि छात्र गुस्से में, जनजी गुस्से में है, और उसे मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, वो उसने ज्वाइन कर लिया। अब जब इतनी बड़ी तादाद में छात्र आए तो वहीं से सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन पर अभी लड़ाई चल रही है। तो फिर यह हुआ कि एक पहली मांग तैरने लगी, और वो मांग क्या थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अभी तक जमीन पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा है और अमेरिका में बैठा एक स्टूडेंट कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि नीट एग्जाम पेपर लीक के लिए जिम्मेदार वही हैं, क्योंकि वो मुखिया हैं शिक्षा मंत्रालय के। अब इस पर भी मुहिम चल पड़ी सोशल मीडिया पर, स्टूडेंट्स ताबड़तोड़ इस पर आने लगे। ये सब कुछ जब होने लगा तो अब अचानक पूरे देश में ये कॉकरोच शब्द और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों के नाम गूंजने लगे। जब इतना बड़ा ये इशू हो गया तब भी सब कुछ शांत था। फिर 6 जून को वही अभिजीत दीप के, जो बॉस्टन में इस सीजेपी के फाउंडर, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसको जन्म दिया, वो दिल्ली पहुंचते हैं। अब ये था कि दिल्ली में पता नहीं उनको पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या होगा, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ नहीं होता। दिल्ली पुलिस उन्हें बहुत प्यार से जाने देती है और वो जंतर मंतर पहुंचते हैं। जंतर मंतर पर उस दिन पहली बार एक आंदोलन होता है, बहुत भीड़ नहीं थी। सरकार के नुमाइंदे, आईबी के लोग भी सब देख कर गए, उन्होंने कहा ये छोटा मोटा इशू है, बहुत ज्यादा छात्र भी नहीं है, चलो करने दो। पहली गलती यही हो गई। अभिजीत इपके ने शुरुआत तो की, उसके बाद उतनी जबरदस्त कामयाबी नहीं मिली, लेकिन छात्रों ने तय कर रखा था कि वो हटेंगे नहीं, और धीरे धीरे अब वो लोग यहीं से अपना आंदोलन शुरू करते हैं। आंदोलन शुरू करते हैं उसके कुछ दिनों के बाद जून में ही फिर ये होता है कि अब हम यहीं पे धरना देंगे और बेमियादी धरना देंगे। अब स्टूडेंट जंतर मंतर पर बैठ चुके हैं और उनका ये कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो धरना देंगे। और उस वक्त उनकी 3 मांग थी। पहली मांग थी वही धर्मेंद्र कुमार का इस्तीफा, दूसरा था एग्जाम के सिस्टम में सुधार, और तीसरा था जिन बच्चों ने नीट के एग्जाम के पेपर लीक होने की वजह से जान दी उनके परिवार को मुआवजा। इसको लेकर जंतर मंतर पर बैठ गए। अब भी बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन हाँ अब धीरे धीरे ये खबर देश भर में जा रही है सोशल मीडिया के जरिए। अब भी उनका सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा हथियार है। जंतर मंतर पर कई दिन हो गए इन्हें बैठे हुए। तभी 20 जून को बेमियादी धरने का ये ऐलान करते हैं। मतलब अभी तक धरना चल रहा है कि करते रहेंगे करते, लेकिन 20 जून से यह है कि जब तक आप उनकी मांगे नहीं मानेंगे वो जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। ये पहली बार हुआ। उसके बाद अचानक अब इसमें सोनम वांगचुक, समाज सेवी लद्दाख से, उनकी एंट्री होती है और वो पहुंच जाते हैं जंतर मंतर 20 जून से। इत्तफाक से 21 जून को नीट का रिजल्ट आ गया, क्योंकि दोबारा एग्जाम हुआ और दोबारा एग्जाम भी ठीक ठाक हो गया, बच्चों के रिजल्ट भी आ गए, लगा आप सब शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। छात्रों के एक बड़े वर्ग का गुस्सा भी था और कॉकरोच जनता पार्टी उनको प्लेटफॉर्म दे चुकी थी। सोशल मीडिया जो जेंजी और आज की यूथ का सबसे बड़ा हथियार है, उसने बहुत बड़ा असर कर दिया था। अब जब बेमियादी आमरा नंशन की बात आई, उसके बाद सोनम वांगचुक की एंट्री हुई और आते ही फिर उन्होंने कहा कि अब मैं आमरा नंशन करूंगा भूख हड़ताल जब तक कि ये मांगे नहीं मानी जाए, यहां से ये आंदोलन का रंग बदल गया। सोनम वांगचुक के आमरा नंशन के ऐलान के बाद अब धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते गए आमरा नंशन के, वैसे वैसे लोगों की भीड़, खासतौर पर छात्रों की भीड़ और बढ़ती गई। अब तो समाज के अलग अलग वर्ग के बहुत सारे लोग पहुंचने लगे। फिर इसी बीच में जब करीब 10-15 दिन हो गए, तो लगा कि वांगचुक इतने दिनों से बैठे हैं, भूख हड़ताल पर है, तोड़ने को तैयार नहीं है। अब सरकार भी थोड़ी परेशान हुई कि अगर सोनम वांगचुक को आमरा नंशन के दौरान कुछ हो गया तो क्या होगा। उधर अब सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल और इतने दिन बीत जाने के बाद अब देश भर के छात्रों के अंदर भी इस जंतर मंतर की तस्वीर उभरने लगती है। और तब एक ऐलान होता है कि 20 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत होगी और उस दिन संसद मार्च करेंगे ये सारे स्टूडेंट्स जंतर मंतर से।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट के स्पेशल एडिशन में आपका बहुत स्वागत है। कहते हैं कि नेतृत्व की असली परीक्षा फैसले लेने में नहीं बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करने के साहस में होती है। नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन 36 दिन पहले शुरू हुआ था, आज देखिए वो कहां पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ वो आज खत्म हुआ। इस आंदोलन में सवाल सिर्फ ये नहीं था कि पेपर लीक कैसे हुआ और ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, सवाल ये भी था कि जब लाखों युवाओं के भविष्य पर असर पड़ा तो क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगी। और आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो ये सिर्फ एक मंत्री के पद छोड़ने की खबर नहीं थी, ये उस प्रक्रिया का नतीजा जिसमें छात्रों का गुस्सा, सड़कों पर आंदोलन, सरकार के फैसले, जवाबदेही की मांग हुई, सब एक साथ दिखाई दिया। नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रही, एक भरोसे का संकट बन गया। नीट पेपर लीक, उसके बाद OSM जो CBSE की मार्किंग थी, क्योंकि भारत में ये परीक्षाएं सिर्फ एक पेपर नहीं होती, करोड़ों परिवारों के सपने जुड़े होते हैं। एक छात्र के लिए ये सिर्फ नंबर नहीं होता, सालों की मेहनत, दिन रात जागना, खाना पीना सब भूल जाना, ये उसके माता पिता की उम्मीद, उसके पूरे भविष्य का सवाल होता है। सरकार ने स्थिति संभालने के लिए कई कदम उठाए, जांच बिठाई गई, कानून सख्त किए गए, परीक्षा व्यवस्था बदलने की घोषणा हुई, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन छात्रों का सवाल सिर्फ सुधार का नहीं था, सवाल था कि आखिर इस पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा। और यहां वो समझिए कि यही वो बिंदु था जहां लोकतंत्र की ताकत दिखाई दी। आज जब जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे थे तो उस तस्वीर में सिर्फ एक आंदोलन की जीत नहीं थी बल्कि लोकतंत्र की वो तस्वीर थी जहां सवाल उठते हैं, जवाब मांगे जाते हैं, व्यवस्था खुद को सुधारने की कोशिश करता है। और इस सब के साथ लोकतंत्र में हर जीत के बाद एक नई जिम्मेदारी भी आती है। अब असली जिम्मेदारी, असली परीक्षा सरकार की है। क्या वो सिर्फ इस्तीफे तक सीमित रहेगी या परीक्षा व्यवस्था में वो बदलाव करेगी जिससे दोबारा किसी युवा को अपने भविष्य के लिए सड़क पर ना उतरना पड़े, जिससे दोबारा किसी बच्चे को आत्महत्या ना करनी पड़े। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है, आज की कहानी है एक पीढ़ी की आवाज की। वो पीढ़ी जिसे कल तक सिर्फ सोशल मीडिया, ये तो रील्स बनाते हैं, ट्रेंड्स की पीढ़ी कहा जाता था, उसने आज दिखाया कि जब सवाल भविष्य का हो तो वह पीढ़ी बदलाव की सबसे बड़ी आवाज बन सकती है। आप कल्पना कीजिए, इस जेन जी पीढ़ी के लिए आज एक शब्द भी कहा जा रहा है और वो शब्द है जेन जीत। जेन जी नहीं, जेन जीत। पेपली के खिलाफ युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक वीडियो जारी किया और अपनी सरकार का पक्ष रखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली बात नहीं, लाखों छात्रों, उनके माता पिता के लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति है। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लेकर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद सरकार एक्शन में आई, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 लेकर आने वाली है और शुक्रवार को ही इस संशोधन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि पेपर लीक के खिलाफ इस संशोधन बिल को कल यानी सोमवार को पेश किया जाएगा। इस बिल में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेपर लीक में जो लोग शामिल होंगे उनको जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा मिले।
1: फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं, हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क

0: वर्कफोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पेपर लीक के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 3 महीने में जांच पूरी हो, फैसला आए। इसके अलावा सजा के तौर पर पेपर लीक के दोषी को 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा पेपर लीक के मामलों में अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां या परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की गड़बड़ी पाई गई तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सरकार के इस कदम को सराहनीय माना जा रहा है, लेकिन पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर सरकार कुछ नए जो फैसले कर रही है ऐसी बात भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि 2024 में सरकार इसके खिलाफ कानून ला चुकी है। अब वो कानून इस कानून को और ज्यादा सख्त बनाने की तैयारी में है। 12 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट लेकर आई थी। इसका मकसद परीक्षा में पेपर लीक, संगठित नकल, जो फर्जी एडमिट कार्ड्स बनते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ की जाती है, सॉल्वर गैंग्स होते हैं, उन पर कार्रवाई करना था। ये कानून 21 जून 2024 को आ गया। ये कानून यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग परीक्षाओं, एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के साथ साथ केंद्र सरकार के विभागों की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए लाया गया था। इस कानून में पेपर लीक के दोषी को 3 से 5 साल की सजा, जेल की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, बस इतना ही प्रावधान। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर यानी ऐसी संस्थाएं या कंपनीज जो पेपर आयोजित करवा रही हैं, उनके दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान था। अब पेपर लीक में अगर संगठित अपराध से जुड़े लोग शामिल पाए गए तो उनका 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था और यही नहीं उनकी संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान था। लेकिन इसके बावजूद नकल माफिया रुका नहीं, शायद इसीलिए सरकार पेपर लीक और नकल गैंग को रोकने के लिए ही कानून में संशोधन करने जा रही है। संशोधन के जरिए सरकार इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने की तैयारी में है। फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए कार्रवाई, फैसला इस मामले में गेम चेंजर फैसला हो सकता है। डेमोक्रेसी करेक्ट्स इटसेल्फ, यानी लोकतंत्र स्वयं अपना सुधार करता है। जब इस देश के लाखों युवा पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे तब सबसे बड़ी बहस यही थी कि भारत का लोकतंत्र इस पूरी घटना में किस पक्ष को चुनेगा। यानी सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं रह गया था, सवाल यह था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र किस ओर लौटेगा। और आज जब हमने इन तस्वीरों को देखा तो हमें सबसे पहले यही शब्द याद आए कि डेमोक्रेसी करेक्ट्स इटसेल्फ। आज सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है, आज ये पता चला है कि जब इस देश के युवाओं ने आवाज उठाई तो सरकार ने उस आवाज को सुना, संस्थाओं ने उस पर प्रतिक्रिया दी, व्यवस्था ने खुद को सुधारा और यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसमें वो गलती होने पर खुद को सुधार सकता है। आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो इसमें आंदोलन की गरिमा भी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, इसमें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये इस्तीफा हमारे उन युवाओं की जीत को दिखा रहा था जो अपने भविष्य के लिए जवाबदेही मांग रहे थे, वो जवाबदेही जो गलतियों पर व्यवस्था को बदलती है और ये सुनिश्चित करती है कि इस देश के प्रत्येक युवा के साथ न्याय हो। देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की घोषणा किसी राजनीतिक बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की, उन्होंने देश के युवाओं के नाम एक पत्र लिखा और इस पत्र में ये बताया कि आखिर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया। लिखा कि ये मामला उनके व्यक्तिगत सम्मान या प्रतिष्ठा का नहीं है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश की युवा आबादी है और वो नहीं चाहते थे कि देश के छात्र भ्रम, विवाद, राजनीतिक संघर्ष के जाल में फंसे। और यही वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जंतर मंतर समेत देशभर में बन रहे हालात राष्ट्रीय एकता बनाए रखने, किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत को इस मुद्दे का फायदा उठाने से रोकने, छात्रों के भविष्य को लंबे कानूनी विवादों में उलझने से बचाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि देश के बच्चे अपना समय आंदोलन नहीं बल्कि पढ़ाई, अपने करियर पर लगा सके, इसके लिए आज ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। और उनके इस पत्र को आइए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसका निष्कर्ष यही है, जो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं इसका निष्कर्ष ये है कि जंतर मंतर पर छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन हुआ उससे दबाव बना और उसी के बाद धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा हुआ है। औपचारिक रूप से अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह इस्तीफा सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से मांगा था या धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपनी स्वेच्छा से यह इस्तीफा दिया, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की पहल की और यह इस्तीफा उन्होंने दिया है। साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद यह दूसरी बार है जब किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री ने जनता के दबाव और उठते सवालों के बीच अपना पद छोड़ा है। इससे पहले साल 2018 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था और अब धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी सूची में जुड़ गया है। यह भी तब हुआ है जब धर्मेंद्र प्रधान उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जो साल 2014 से मौजूदा सरकार में लगातार मंत्री थे। इस पूरे घटनाक्रम को कुछ लोग सरकार की जवाबदेही के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे इसे एक ऐसा कदम मान रहे हैं जिससे सरकार ने विवाद को खत्म करने, छात्रों के भरोसे को बनाए रखने की एक कोशिश की। कुल मिलाकर देखें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में उन चुनिंदा मौकों में शामिल हो गया है जब लगातार बढ़ते दबाव के बीच किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री ने अपना पद छोड़ा और इसके बाद जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने किस तरह जश्न मनाया वो भी आप देखिए।
2: जैसे ही करीब 2:30 बजे के आसपास जैसे ही ये खबर यहाँ पर पहुंची, लोगों ने यकीन नहीं किया, क्योंकि आप देखिए नेट यहाँ पर स्लो है और लोगों की संख्या देखिए दूर दूर तक आपको जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग यहाँ पर मौजूद है।
1: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे कई महीनों से चल रहे विवाद, छात्रों की नाराजगी, लगातार बढ़ता दबाव, एक के बाद एक पेपर लीक, गलत ब्लैकलिस्टेड लोगों को बार बार टेंडर मिलना, कई सारी परीक्षाओं में लीक होना और परीक्षा लीक होने के बाद, पेपर रद्द होने के बाद री एग्जाम की वजह से कई बच्चों का सुसाइड कर लेना। इसलिए आज इस इस्तीफे की पूरी टाइमलाइन को देखना होगा। ये कहानी शुरू हुई 3 मई। 3 मई को पहली बार नीट पेपर लीक का यह पूरा मामला सामने आया। मामला गंभीर हुआ तो सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया, जांच सीबीआई को सौंप दी गई, दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा कर दी गई। यह शिक्षा मंत्रालय के लिए बड़ा संकट था क्योंकि इसमें लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा था। एक बार पेपर लीक और दूसरी बार भी हो जाता तो आप कल्पना कीजिए, इस पेपर लीक पर युवाओं का गुस्सा शांत होता। उससे पहले 13 मई को सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर नया विवाद खड़ा हो गया। ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग, कई छात्रों ने ओएसएम व्यवस्था को लेकर शिकायतें शुरू की। छात्रों का आरोप था कि स्कैन की गई कॉपियां साफ नहीं थी, कुछ पेज गायब थे, कहीं पर मार्क्स नहीं दिए थे, कहीं पर टिक मार्क लगा था फिर भी नंबर नहीं थे, कई उत्तर सही होने के बावजूद नंबर्स नहीं मिले थे और कुछ छात्रों की कॉपियों की जांच में गड़बड़ी की आरोप था। धीरे धीरे यह मामला भी बहुत बड़ा विवाद बन गया और कई महीने के आखिर में धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जिम्मेदारी भी अब जाकर ली है। उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। ये बयान इसलिए भी आया क्योंकि उसी वक्त कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक आंदोलन तैयार हो गया था। ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान के खिलाफ विरोध में बनाई गई जिसमें उन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। जिसमें दावा था कि उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता बनने वाले बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताया था। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है कि उन्होंने इस वजह से नहीं कहा था, लेकिन खैर ये कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। अब अमेरिका में रहते हुए अभिजीत दीपके ने 16 मई को ये पार्टी बनाई, तब इसके कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए। सोशल मीडिया पर उस वक्त पेपर लीक की चर्चा बढ़ी और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया तो धर्मेंद्र प्रधान को यह कहना पड़ा कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और इसे ठीक किया जाएगा। यही वो बयान था जिसे अभिजीत दीपके ने मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते। अब इसी के बाद अभिजीत दीपके ने भारत लौटने का फैसला किया और यह कहा कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आ रहे हैं। यहां तक अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के बीच कोई संबंध नहीं था और यह भी तय नहीं था कि सोनम वांगचुक इस आंदोलन में अनशन पर बैठेंगे। इन सारे विवादों के बीच नीट की दोबारा परीक्षा हुई। 21 जून को यह परीक्षा करा दी गई। इस बार करीब 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 24 जून को धर्मेंद्र प्रधान ने फिर वहां कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। यहां से मामला और बढ़ा और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान बार बार पेपर लीक की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब दोबारा परीक्षा हुई तब उससे पहले नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर ली। कल्पना कीजिए, जिन बच्चों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि इतनी मेहनत की थी, दिन रात एक करके एग्जाम दिया था, पेपर लीक की वजह से पेपर रद्द और अब फिर लग जाइए उसी तरह से पढ़ने में। व्यथा समझिए, कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे ने इस वजह से अगर जान दे दी तो उस पर कैसा दबाव रहा होगा। अब सरकार भी जानती थी कि छात्रों की आत्महत्या युवाओं के गुस्से को बढ़ाएगी और इसलिए उसने 21 जून के री एग्जाम में पूरी ताकत झोंकी। हालांकि इससे गुस्सा कम नहीं हुआ, एग्जाम तो सफलता से हो गया, रिजल्ट भी निकल गए हैं, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा जवाबदेही का मुद्दा बन गया कि भाई इतने बच्चों की जान गई है तो जवाबदेह कौन। और 20 जून से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ जिसमें शुरुआत में 500 लोग भी शामिल नहीं थे, लेकिन 28 जून को सोनम वांगचुक की इस आंदोलन में एंट्री हुई। वो सरकार की जवाबदेही के मुद्दे पर अनशन पर बैठ गए। जब इस अनशन को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए और सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के वीडियो वायरल होने लगे तब जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। ये वही पल था जब कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद चलो का आह्वान किया, देश भर के युवाओं से जंतर मंतर आने की अपील की। इस मार्च से 2 दिन पहले जब 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई तब युवा और नाराज हुए। हालात ऐसे बने कि जंतर मंतर भारत में ट्रेंड करने लगा। बड़ी संख्या में युवा 20 तारीख के संसद मार्च के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्च निकाला और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। इससे यह आंदोलन बड़ा हो गया। आखिरकार आज धर्मेंद्र प्रधान को अपना यह इस्तीफा देना पड़ा। आप खुद देखिए कि जब अभिजीत दीपके को पहली बार फोन पर यह खबर मिली कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तब वो और मौजूद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, इसका मंच से ऐलान किया। फिर देखिए, इस इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने मंच से एक भाषण भी दिया और ये कहा कि अगर लोग अपनी मांगों को लेकर मजबूती से खड़े रहे, डरे नहीं, तो लोकतंत्र में बदलाव संभव है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, याद रखना कॉकरोच से पंगा मत लेना। सुनिए,
3: ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है।
1: भाषण के दौरान अभिजीत दीपके भावुक होकर मंच पर घुटनों के बल बैठ गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी एक दूसरे को गले लगाने लगे, वहां इसे इंसाफ का जश्न मनाया गया। इस दौरान अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और अभी पहला विकेट गिरा है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सुनिए,
3: यह पहला विकेट है, यह पहला विकेट है, यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे।
1: मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री की कुर्सी कभी आसान नहीं रही। 2014 से अब तक 4 नेता इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन कोई भी एक बार में पूरा 5 साल का कार्यकाल शिक्षा मंत्री के रूप में पूरा नहीं कर पाया। सबसे पहले स्मृति ईरानी मई 2014 में शिक्षा मंत्री बनी, करीब 2 साल बाद जुलाई 2016 के कैबिनेट विस्तार में उन्हें इस मंत्रालय से हटाकर कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई। उनकी जगह प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा मंत्रालय संभाला, लगभग 3 साल तक जिम्मेदारी निभाई, लेकिन साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें दोबारा शिक्षा मंत्रालय नहीं मिला। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री बने, लेकिन जुलाई 2021 में स्वास्थ्य कारणों, खासकर कोविड के बाद आई परेशानियों के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने 7 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय की कमान संभाली और वो मोदी सरकार के सबसे लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे, 1845 दिन तक शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन नीट पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच आज उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यहां एक संयोग ये भी है कि मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्रालय छोड़ने वाले तीनों मंत्रियों स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल और धर्मेंद्र प्रधान को जुलाई महीने में ही इस मंत्रालय से विदाई मिली। यानी पिछले 12 सालों का इतिहास यही बताता है कि मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री का पद सबसे चुनौतीपूर्ण मंत्रालयों में रहा है। यहां यह भी देखना होगा कि इस्तीफा कब हुआ। तब हुआ जब इससे पहले सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़े कदम है वो उठाने की कोशिश शुरू कर दी थी, 15 मई को 2026 को शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि 2027 से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में कराई जाएगी ताकि परीक्षा को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। इसके बाद 16 जून को नीट परीक्षा से पहले पेपर लीक अफवाहों को रोकने के लिए टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया और मैसेज एडिट करने की सुविधा भी बंद कर दी गई। बढ़ते दबाव के बीच 23 जुलाई को शिक्षा मंत्रालय में बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए। शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की। फिर इसके बाद अगले दिन 24 जुलाई को सरकार ने पेपर लीक रोकने वाले कानून में बदलाव को मंजूरी दी। नए प्रावधानों में ऐसे मामलों की सुनवाई 3 महीने के अंदर पूरी करने, दोषियों को 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया। और भी कदम उठाए गए। इसी दिन एनटीए में भी कार्रवाई हुई और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े 47 कर्मचारियों को हटाया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस ने परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसटीएफ बनाया। यानी सरकार ने विवाद को शांत करने के लिए कई स्तर पर कदम उठाए, कानून बदला, अधिकारियों पर कार्रवाई की, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की, घोषणा और जांच तेज की। लेकिन छात्रों का मुख्य सवाल सिर्फ सुधारों तक नहीं था, वो चाहते थे जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो। आखिर अगर इतने बच्चों की जान गई है पेपर लीक की वजह से और री एग्जाम की वजह से, तो जवाबदेही कोई तो लेगा। और लगातार विरोध आंदोलन, बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और इस इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने भी इसे युवाओं की जीत बताया है। देखिए,
4: जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवा खड़े हुए उन सबका सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से।
1: अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो इस इस्तीफे के बाद सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत हुई जिसमें इसमें सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। इस बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संगठन अच्छे विश्वास के साथ आंदोलन वापस ले रहा है और उम्मीद करता है कि सरकार बातचीत में तय हुई बातों को तय सीमा, जो समय सीमा है, उसमें लागू करेगी। सुनिए।
5: जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए। ये भी हमारी सेकेंड मांग थी, सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे।
6: ये इनकी डिमांड्स थी, मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़ें।
7: कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम सब तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें।
1: सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगों को मान लिया। इनमें पहली मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मांग पूरी हुई। सीजेपी की दूसरी बड़ी मांग थी आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस हों, माना गया, सरकार ने सहमति जताई। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि सरकार ने भरोसा दिया है कि प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में करीब 15 से 20 एफआईआर दर्ज होने की जानकारी है और उनकी कॉपी भी प्रदर्शनकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। सीजेपी की तीसरी मांग थी कि पेपर लीक विवाद के बाद आत्महत्या करने वाले जो छात्र हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। सरकार ने इस मांग पर भी सकारात्मक रुख दिखाया है, यानी सारी मांगे सरकार ने बिना शर्त स्वीकार कर ली। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर बैठे सभी प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर खाली करने के लिए कहा है। और जंतर मंतर के आसपास बंद किए गए जो 18 मेट्रो स्टेशन थे, उन मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट भी खोल दिए गए। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
8: सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते पिछले 3 दिनों से लगातार बंद पड़े दिल्ली मेट्रो के गेट को जो है वो फिलहाल खोला गया है। 3 मेट्रो स्टेशन है जिसमें राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और मंडी हाउस के गेट्स को जो है वो खोल दिया गया। ये तस्वीरें राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है जहां पर तमाम जो स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर जुटे हुए थे, मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब फिलहाल ये गेट जो है वो खोले गए हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तमाम जो सुबह से ही जितने प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस, जंतर मंतर और हजारों की भीड़ आज सुबह से ही जो है वो जंतर मंतर पर देखने को मिल रही थी, जैसे ही रेजिग्नेशन आया उसके बाद से ही लोगों में एक जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था। उसके बाद से अब धीरे धीरे तमाम जो स्टूडेंट्स दिल्ली और अलग अलग इलाकों से जो है वो आए थे वो फिलहाल अब धीरे धीरे मेट्रो के जरिए जो है वो वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं।
1: जिस जंतर मंतर से कुछ दिन पहले तक सरकार के खिलाफ नारे गूंज रहे थे, आज वही तस्वीर बदल गई। वही मंच, वही भीड़, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग। जहां कल तक प्रदर्शन था आज वहां जश्न था। जहां मांग थी इस्तीफे की वहां आज धन्यवाद और जीत के नारे थे। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर तैनात पुलिसकर्मियों का भी मुंह मीठा कर रहे थे। यानी नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई आज एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही विपक्ष ने इसे सरकार की जवाबदेही बताया। प्रदर्शनकारियों ने इसे अपने आंदोलन की सफलता कहा। देखिए,
9: पिछले 12 साल के कार्यकाल में शायद पहली बार केंद्र सरकार खुद को युवाओं के गुस्से और विपक्ष के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पा रही थी। नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ने में नाकाम हो गई। पहला मोर्चा था जंतर मंतर, जहां गुस्से से तमतमाए चेहरे लिए हजारों युवा सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़े थे।
10: मुझे क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते, अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
11: ये मुद्दा कांग्रेस।
9: और दूसरा मोर्चा था देश की संसद, जहां पूरा विपक्ष सरकार को एक पल भी चैन से बैठने नहीं दे रहा था। संसद का मॉनसून सत्र युवाओं के गुस्से की आग में सूखा जा रहा था। विपक्ष के नेता पुलिस द्वारा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से आग बबूला थे।
11: मकर द्वार पे जोरों शोरों से इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन करने वाले हैं सारे विपक्षी नेता। अखिलेश यादव की बात करें तो वो इस समय काले कपड़ों के अंदर पहुंचे हैं। राहुल गांधी खड़े हैं काले कपड़ों के अंदर, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं, और ये सब बड़े जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और खड़े हैं पीछे और बोल रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं, जो एक अहम मांग है वो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। वो सभी लोग यहां आपको पीछे नजर आएंगे।
9: और आखिरकार करीब 36 दिनों बाद सीजेपी को वो मिल गया जिसकी वो मांग कर रहे थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस सफलता का जश्न सीजेपी ही नहीं बल्कि वो सभी विपक्षी नेता मना रहे हैं जिन्होंने छात्रों की मांगों को लेकर संसद को सिर पर उठाया हुआ था।
12: The first one and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked.
13: They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend.
9: जिस सरकार ने अभी तक राजनीतिक दबाव में किसी मंत्री से इस्तीफा ना लिया हो, उस सरकार के शिक्षा मंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ी राजनीतिक घटना है और ऐसा तभी मुमकिन हो पाया जब युवाओं के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं ने भी संसद और सड़क एक कर दी।
14: हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेन जी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है।
15: प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
9: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सीजेपी और विपक्ष के नेता एक बड़ी सफलता मान रहे हैं और इस सफलता का श्रेय युवा प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के एक ऐसे अलिखित गठबंधन को जाता है जिसका तोड़ खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दोनों तरह का दबाव था। सोनम वांगचुक का अनशन और हजारों की संख्या में जुटे युवाओं के तीखे सवाल सरकार पर नैतिक दबाव डाल रहे थे। मुख्य रूप से मांग दो ही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई। सरकार के लिए इन मांगों को पूरा करना एक चुनौती बन गया था। दूसरी तरफ विपक्ष ने संसद की कार्यवाही को पूरी तरह से ठप कर दिया था। पिछले 5 दिनों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं चल पाई। विपक्ष की नारेबाजी सदन के अंदर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी दिखी।
16: जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांगे वो मांग मानी जाए।
17: अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो, क्या है वो स्टेप्स, मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको।
9: संसद में सरकार को घेरने के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया था। इस अति संवेदनशील इलाके में विपक्षी नेताओं का ऐसा जमघट लगा कि सुरक्षा एजेंसियों तक के होश उड़ गए। विपक्ष ने केंद्र सरकार से युवा प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज पर सवाल पूछे, आंसू गैस के इस्तेमाल पर घेरा और सोनम वांगचुक का अनशन खुलवाने की अपील की। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए इस धरना प्रदर्शन से सख्ती से निपटा गया।
18: सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठी चार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए।
19: बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीट कर हिरासत में लिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीट कर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं, हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है।
9: विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के नैतिक और राजनीतिक दबाव का ही असर था कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की और साथ ही साथ सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म करवाने की कोशिशें शुरू हुई। दोनों ही मंत्रियों ने सोनम वांगचुक से अस्पताल में मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली जाएं।
4: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा।
9: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पहले खबरें आ रही थीं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और न ही उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। इन खबरों के बीच 23 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। इस खबर के बीच विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह रचा और राहुल गांधी शाम होते होते विपक्षी नेताओं के साथ सड़क पर उतर गए। वो इंडिया गेट तक मार्च करना चाहते थे लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने गांधी स्मृति पर जाकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार की नीति पर सवाल उठाए।
20: 12 साल से तो अघोषित इमरजेंसी है, 12 साल से अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई, अधिकार खत्म कर दिए गए, लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोई कमी नहीं रखी, संविधान मिटाने की व्यवस्था किया गया, सारी संस्थाओं को कैद किया गया, तो आप उठा करके देखिए क्या स्थिति है। तो जब आप पूरी की पूरी डेमोक्रेसी खत्म कर दोगे तो फिर रास्ता क्या बचता है।
21: सरकार से छोटी सी मांग है कि आप शिक्षा मंत्री जो कि 120 जो कि रिकॉर्ड पे है पेपर लीक उसके लिए जिम्मेवार हैं, उनका इस्तीफा लीजिए, उसके बाद संसद में बहस हो, चर्चा हो, जो कमियां हैं खामियां हैं सरकार की तरफ से उसमें सुधार हो।
9: विपक्षी नेताओं के इस हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट को पूरी तरह से नकार दिया जिसमें कहा गया था कि 23 जुलाई की रात जंतर मंतर पर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। माना गया कि कुछ होने वाला था जो विपक्ष के हंगामे के बीच टाल दिया गया। और उधर जंतर मंतर पर बेखबर प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी का दौर जारी था। हालांकि इस दौरान खबर आई कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की अपील पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है क्योंकि सरकार ने उनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया है।
4: अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहां आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे ये आश्वासन दिया।
9: और फिर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सेल्फी वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की बात कही।
18: फास्ट ट्रैक कोर्ट
0: और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: पीएम मोदी के इस वीडियो संबोधन के आने के बाद माना गया कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अगले ही दिन कैबिनेट ने पेपर लीक पर संशोधन बिल लाने का ऐलान कर दिया, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और सख्त सजा का ऐलान किया गया।
22: दिस इज अ कंप्लीट आई वॉश द फास्ट ट्रैक कोर्ट और अ लॉ। जस्ट इमेजिन दे आर ब्रिंगिंग अ लॉ आफ्टर नो डिस्कशन, नो डेलिब्रेशन, नथिंग एट ऑल। व्हाट इज गोना बी द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट लॉ? हाउ इज इट गोना चेंज पीपल्स लाइव्स? हो ही नहीं सकता है।
2: इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के नेताओं के साथ दूसरे राउंड की बातचीत शुरू की, जिससे ये पता चला कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा बाकी मांगों पर सरकार राजी है, लेकिन जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहे।
10: प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दिक्के या एक सोनम वांगचुक सरकार नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है।
23: धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।
2: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत में फंसी वो गरारी थी, जिसके ठीक होने पर ही गाड़ी आगे बढ़ती और फिर 25 जुलाई दोपहर 2:18 पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया और इसी के साथ जश्न का एक नया दौर शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: कभी कभी लोकतंत्र में एक आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, वो एक सवाल बन जाती है, और जब सवाल लाखों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ जाए तो उनकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई पहले जंतर मंतर के धरने तक पहुंची और आज इस कहानी का बड़ा मोड़ तब आया जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के बाद आज जंतर मंतर पर जश्न था, नारे थे और इस दौरान एक नया शब्द सुनाई दिया, जेन जीत है। यानी जेन जी नहीं, जेन जीत है, यानी वो पीढ़ी जिसे अक्सर सिर्फ सोशल मीडिया और ट्रेंड्स के से जोड़कर देखा जाता था, उसने दिखाया कि असली मुद्दों पर खड़ा होना, उन पर सवाल पूछना, बदलाव की मांग करना उसकी पहचान है। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और लोग सच से नहीं, उस कंफर्ट जोन के टूटने से डरते हैं जिसे वो झूठ की बुनियाद पर खड़ा करते हैं।
24: मंत्र पर आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उस पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष सरकार को घेरने की अपनी रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ हुए हिंसा पर जवाब मांगा है, साथ ही विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि संसद में जबरदस्त हंगामे क्या सार है।
25: जंतर मंतर पर अब ना तो आंदोलन की तस्वीर दिख रही है, ना आंदोलनकारी दिख रहे हैं और ना ही वो सुरक्षा घेरा और बैरिकेड्स हैं। अब यहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ दिल्ली अभी भी उसकी सियासी तपेश महसूस कर रही है। एक तरफ सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी तेवर दिखा रहा है। छात्रों पर 20 जुलाई को हुए एक्शन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। पत्र लिखकर राहुल ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने छात्रों पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया था, घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। राहुल ने ये आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से पूछा है कि क्या आपने पैलेट गन या अन्य घातक हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी? अगर आपने नहीं दी थी तो किसने दी? पार्टी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी और सवाल करेगी।
26: He authorized the use of lethal weapons, pellet guns, on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament.
25: कांग्रेस कह रही है कि कौरवी शासन का अंत हुआ और विपक्ष रूपी पांडवों का नया उदय हुआ है।
27: 12 साल बीत गए कौरवी शासन की, मैं तुलना करता हूं मोदी सरकार की।
3: पांडो लौट के आ गए युवा के रूप में, राहुल गांधी के रूप में, विपक्ष के रूप में। अब महाभारत होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान सजेगा और पांडव जीतेंगे।
25: सोमवार को एक बार फिर संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सोमवार को ही केंद्र सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, लेकिन बिल पेश होने के पहले संसद में हंगामा तय है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
24: छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा और पुलिस के एक्शन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी तेज है। आपको दिखाते हैं बिहार के सिवान की तस्वीरें, जहां पुलिस वाले AK-47 ताने नजर आए।
25: जहां हल्के बल प्रयोग से बात बन सकती थी, वहां AK-47 वाले जाबाज पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। तस्वीरें देखिए और देख लीजिए बिहार पुलिस का कारनामा। हर कोई पूछ रहा है कि क्या बिहार पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करती है। तस्वीरें 25 जुलाई की हैं। सिवान में छात्र गुस्से से भरे हुए थे, वो लगातार पथराव कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस भी आंसू गैस की गोले दाग रही थी। इसी प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सिवान पुलिस के अधिकारियों ने अपने AK-47 धारी जवानों को सड़कों पर उतार दिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पुलिस को घेरा, साथ ही सम्राट सरकार पर भी हमला बोला।
5: जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छा गुंडा है, जिसपे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
25: तेजस्वी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए तो ताज़ा आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए नेता पलटवार करने आए।
6: श्री तेजस्वी यादव जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये बता रहा है कि गुंडा मानसिकता और लंपटीकरण संस्कृति किस तरह से तेजस्वी यादव जी के अंदर है।
25: सिवान के अलावा कल छपरा में भी बवाल हुआ था, जिसमें रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें सिर में चोट लगी, जिसका एक्सरे अब आ गया है। साथ ही सारण पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर उपद्रवियों की सूची जारी की है और लोगों से पहचान की अपील की है। कुमार अभिषेक के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
24: 36 दिनों तक CJP आंदोलन के बाद अब काफी कुछ बदल गया और सबसे अहम ये कि शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को दी गई है। प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है और सरकार के सामने हालांकि चुनौतियां कम नहीं हुई हैं।
25: शनिवार का दिन छात्रों के नाम रहा, उनकी मांगे मान ली गई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कुर्सी छोड़ी तो चंद घंटे के अंदर उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई, यानी अब तमाम परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने और शिक्षा से जुड़े बदलाव की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी संभालने जा रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया।
7: एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।
25: सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी दो बार इस्तीफे की पेशकश की थी, तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब प्रधान से कहा गया था कि वो शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व जारी रखें, लेकिन CJP के दबाव का असर दिखा। सूत्रों की माने तो बातचीत के अंतिम दौर से पहले सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी मकसद के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। उनके पास उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। अब आने वाले समय में उनके सामने छात्रों के हित में अहम बदलाव की बड़ी चुनौती है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
8: दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और सभी मांगे माने जाने के बाद रैली हुई और इस रैली में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और रोहित पवार, आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए।
25: मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली हो रही है। छात्रों की जीत के जश्न के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और देखते ही देखते शिवाजी पार्क में तिरंगा लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई ठाकरे बंधुओं ने की थी, लेकिन ये यात्रा किसी पार्टी के बैनर तले नहीं थी, ये छात्रों की जीत का जश्न था।
11: आणि ही संघर्षाची सुरुवात झालेली आहे। हा संघर्ष भाजप विरुद्ध भारत असा हा संघर्ष आहे।
12: भाषण करण्याचा दिवस नव्हे, तुम्ही जे आंदोलन अख्ख्या देशभर पेटवलत, या देशातले जेंजी हे सरकारच्या झेंज्या कशा उपटतात हे आपल्याला या आंदोलनात कळलं।
25: इस तिरंगा यात्रा में छात्रों के साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची थी। ये 82 साल की शकुंतला घाटगे हैं जो छात्रों की जीत की खुशी में नाच रही हैं। नेताओं के साथ तिरंगा रैली में अभिनेताओं ने भी हिस्सा लिया।
13: बहुत होप्स है। जिस तरह का यहाँ पर सागर उमड़ा है वो बहुत हौसला देने वाला है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये जो देश है वो छात्रों के हाथ में है और युवा पीढ़ी के हाथ में और जेंजी के हाथ में है।
25: महात्मा गांधी के प्रपौत्र भी छात्रों की जीत का जश्न मनाने तिरंगा रैली में पहुंचे।
14: ये बहुत आशा देने वाला माहौल है क्योंकि युवा शक्ति फाइनली रास्तों पे निकली है और पुलिस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उससे अंदाजा आता है कि सत्ता में बैठे लोग इस युवा शक्ति से कितने घबराए हुए हैं।
25: तो दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का जश्न अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
8: कोलकाता में बीते शुक्रवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। इस केस में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर लगातार छापेमारी भी चल रही है। आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।
25: जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे तो दो दिन पहले कोलकाता की सड़कों पर भी छात्रों का जमावड़ा लगा। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ था, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब छात्रों की भीड़ उग्र हो गई। जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस को निशाना बनाने का प्रयास हुआ। अब पुलिस ने छात्र आंदोलन के बीच उपद्रव करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है
15: और भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। 24 जुलाई को SFI की रैली के दौरान कोलकाता के धर्मतल्ला में भारी बवाल हुआ था, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया था, बोतलें फेंकी गई थी।
25: बंगाल की पुलिस लगातार एक्शन में है।
16: तुरंत इसका कार्रवाई हुई है। नया जो गुंडा दमन कानून हुआ है उसका आधार पर लोगों का और सबका पनिशमेंट भी होगा और कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया गया और पूरी कार्रवाई जारी है, आगे तक चलेगा।
25: कोलकाता पुलिस का एक्शन जारी है। वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। जल्द ही इस केस में और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। कोलकाता से तपस्विन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
8: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ी इटावा में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
17: उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है।
24: कारगिल की चोटियों पर 27 साल पहले लिखी गई जीत की इबारत आज फिर से गूंज उठी। द्रास में शहीदों को नमन किया गया, उनकी वीरता को सलाम किया गया और उस रणभूमि से पाकिस्तान को संदेश भी दिया गया।

फिर पूरे राष्ट्र की श्रद्धा का केंद्र बना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास वॉर मेमोरियल में ऑपरेशन विजय के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया, वीरों को सलामी दी और उनके परिवारों को सम्मानित किया।

0: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भर में लोगों ने शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रास में आयोजित समारोह में उन्होंने साफ कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वाली सरकार के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर भी भारत का रुख स्पष्ट कर दिया।
1: पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: द्रास की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना चुका है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और आतंकवाद के नापाक गठजोड़ को अपने बयान में परत दर परत उजागर किया।
1: साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है।
0: कारगिल की रणभूमि से राजनाथ सिंह का संदेश साफ है, आतंकवाद पर भारत की नीति अब और कठोर है। भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। अशरफ वानी, द्रास, आज तक।
2: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच कई राज्यों से मुसीबत की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आफत गुजरात में दिख रही है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद में स्थिति बहुत गंभीर है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
3: शहर के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें डटी हुई हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की हैं, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। इसके बाद संकट के बीच SDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए SDRF के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं।
4: हम लोग यहाँ पर बावड़ा में हैं और ये गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें करीब कल की स्थिति में 900 जितने लोग फंस गए थे। अंदर 40 से 50 कंपनियां हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर अंदर जो जरूरी सामान था वो सब भी पहुंचवा दिया था। कल अभी तक 900 में से 500 जितने लोगों को बचा भी लिया गया है, बाहर ला दिया गया है। आर्मी की टीमें, कोस्ट गार्ड, NDRF, SDRF, लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है।
3: अहमदाबाद के इस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों को सुरक्षित निकालना

0: आसान नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी हो रही है।
1: बाहर आने वाले लोग बता रहे हैं कि अंदर का जो पानी की स्थिति है वो कम से कम 6-7 फीट जैसी है, तो इसलिए बोट भी या कोई और ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है। पर धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है और कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअल्टी ना हो, जो अभी तक कहीं से ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तमाम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अंदर रहें, इंडोर्स रहें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सूचनाएं हैं समय समय पर उसका पालन करें।
0: अहमदाबाद शहर पर आसमानी आफत का हमला हुआ तो भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी हैं। सेना के जवानों के साथ SDRF की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।
2: रेस्क्यू की कामगिरी चालू है। कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है, तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले है और आज के टाइम में आज भी 70-80 आदमी हमने बाहर निकाले।
0: हालांकि भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी काफी ज्यादा भर गया है, जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है।
3: अभी हम जो है बोट से अंदर जब देख के आए तो लगभग कुछ विस्तार में लगभग 10 फीट के आसपास भी पानी है, और लेकिन जिन लोगों को हम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और बाकी 500 लोगों को हमने लोकेट कर चुके हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे हम रेस्क्यू कर पाएंगे जो है। और आपके मार्फत मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहां पे तैनात है और हमारे पास 3 SDRF की टीम है, NDRF की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है और सभी टीम जो है डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहां पर जो है हमने कम से कम 4-5 टीमें लगा रखी है, उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है और आज शाम तक जो हम काफी कुछ जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा अभी हमारा असेसमेंट है।
0: इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है, ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, आज तक।
4: सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई शहरों में बारिश इन दिनों मुसीबत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते अब तक गुजरात में 56 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा मौत नवसारी जिले में हुई, जहां 21 लोगों की जान गई है।
0: भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं, सैलाब शहरों तक पहुंच गया है, कई शहरों में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और मुसीबत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में हाल बेहद बुरा है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। भारी बारिश के बाद मलबा बहकर सड़कों पर आ गया है, कई जगहों पर रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के कई शहर भारी बारिश से बेहाल है। हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मौसम की मार के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। एक दिन पहले वलसाड़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी उफान पर है, पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही है। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगी।
5: अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये भी वलसाड़ है, गुजरात का वलसाड़। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4-5 फीट तक पानी भरा है। इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान है। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड़ की है। शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुबन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमन गंगा नदी में 2,59,734 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया।
6: मैं इस वक्त वलसाड़ जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहतर बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 48, मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देखे आप से देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
5: अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए, जहाँ मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में हुई। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रंग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो।
4: पूर्वोत्तर भारत में भी हाल यही है। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 जिले बाढ़ की चपेट में। 7 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। 60 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है।
0: असम में बाढ़ का कहर, बारिश और सैलाब से जनजीवन बेहाल। कई जिलों में हालात गंभीर। आसमानी आफत का असर अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, पूर्वोत्तर में भी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। असम के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। असम बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, कामरूप, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कामरूप, कार्बी, आंगलोंग और तिनसुकिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घरों के अंदर पानी भर चुका है, सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं और कई जगहों पर आवाजाही बंद हो गई है। पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कई परिवार अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की मार सिर्फ लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है, बल्कि इसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ा है। असम में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने का खतरा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। असम में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 3,75,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव में 1,86,000 और जोरहट में 1,15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। घरों से लेकर खेतों तक पानी भर चुका है। राज्य की कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग नदी, शिवसागर की किखोर और देसांग नदी, गोलाघाट की धनसिरी और श्रीभूमि की नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। शिवसागर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश ने असम की राजधानी गुवाहाटी की रफ्तार भी थाम दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें गुवाहाटी के एक पेट्रोल पंप की है, जहां पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर दुकानों, बैंकों और बाजारों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उफनती नदियां गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन रही है, तो दूसरी तरफ शहरों में जल निकासी की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश और बाढ़ के इन हालातों में सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: Hey. Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
8: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: परीक्षा संशोधन बिल से पहले प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश, नंदन नीलकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स का ऐलान किया, कहा पारदर्शी बनाएंगे परीक्षा प्रक्रिया, लाएंगे कठोर कानून। पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आज संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल, 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल की सजा, 2 महीनों में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पैलेट गन को राहुल ने बनाया नया मुद्दा, गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ AK-47 को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74 फर्स्ट विलेज घूमकर लौटे 400 युवाओं ने प्रधानमंत्री से साझा किया अनुभव। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक, पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी बधाई। जंतर मंतर पर आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उस पर सियासत शुरू हो गई, विपक्ष सरकार को घेरने की अपनी रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा है। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ हुई हिंसा पर जवाब मांगा है, साथ ही विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि संसद में जबरदस्त हंगामे क्या सार है।
1: जंतर मंतर पर अब ना तो आंदोलन की तस्वीर दिख रही है, ना आंदोलनकारी दिख रहे हैं, और ना ही वो सुरक्षा घेरा और बैरिकेड्स हैं। अब यहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ दिल्ली अभी भी उसकी सियासी तपेश महसूस कर रही है। एक तरफ सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी तेवर दिखा रहा है। छात्रों पर 20 जुलाई को हुए एक्शन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। पत्र लिखकर राहुल ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने छात्रों पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया था, घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। राहुल ने यह आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से पूछा है कि क्या आपने पैलेट गन या अन्य घातक हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, अगर आपने नहीं दी थी तो किसने दी। पार्टी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी और सवाल करेगी।
2: ही ऑथराइज्ड द यूज ऑफ लीथल वेपन्स पैलेट गन्स on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament.
1: कांग्रेस कह रही है कि कौरवी शासन का अंत हुआ और विपक्ष रूपी पांडवों का नया उदय हुआ है।
3: 12 साल बीत गए हैं कौरवी शासन की, मैं तुलना करता हूं मोदी सरकार की। पांडव लौट के आ गए हैं युवा के रूप में, राहुल गांधी के रूप में, विपक्ष के रूप में। अब वहां भारत होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान सजेगा और पांडव जीतेंगे।
1: सोमवार को एक बार फिर संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सोमवार को ही केंद्र सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, लेकिन बिल पेश होने के पहले संसद में हंगामा तय है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा और पुलिसी एक्शन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, और सियासत भी तेज है। आपको दिखाते हैं बिहार के सिवान की तस्वीरें, जहां पुलिस वाले AK-47 ताने नजर आए।
1: जहां हल्के बल प्रयोग से बात बन सकती थी, वहां AK-47 वाले जाबाज पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। तस्वीरें देखिए और देख लीजिए बिहार पुलिस का कारनामा। हर कोई पूछ रहा है कि क्या बिहार पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करती है। तस्वीरें 25 जुलाई की हैं। सिवान में छात्र गुस्से से भरे हुए थे, वो लगातार पथराव कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस भी आंसू गैस की गोले दाग रही थी। इसी प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सिवान पुलिस के अधिकारियों ने अपने AK-47 धारी जवानों को सड़कों पर उतार दिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पुलिस को घेरा, साथ ही सम्राट सरकार पर भी हमला बोला।
4: जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है जिसपे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
1: तेजस्वी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए तो ताजा ताजा आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए नेता पलटवार करने आए।
5: श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये बता रहा है कि गुंडा मानसिकता और लंपटीकरण संस्कृति किस तरह से तेजस्वी यादव जी के अंदर है।
1: सिवान के अलावा कल छपरा में भी बवाल हुआ था जिसमें रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें सिर में चोट लगी जिसका एक्सरे अब आ गया है। साथ ही सारण पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर उपद्रवियों की सूची जारी की है और लोगों से पहचान की अपील की है। कुमार अभिषेक के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
0: 36 दिनों तक सीजेपी आंदोलन के बाद अब काफी कुछ बदल गया और सबसे अहम ये कि शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को दी गई है। प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है और सरकार के सामने हालांकि चुनौतियां कम नहीं हुई हैं।
1: शनिवार का दिन छात्रों के नाम रहा, उनकी मांगे मान ली गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कुर्सी छोड़ी तो चंद घंटे के अंदर उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई। यानी अब तमाम परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने और शिक्षा से जुड़े बदलाव की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी संभालने जा रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया।
6: एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।
1: सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी दो बार इस्तीफे की पेशकश की थी। तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब प्रधान से कहा गया था कि वो शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व जारी रखें। लेकिन सीजेपी के दबाव का असर दिखा। सूत्रों की माने तो बातचीत के अंतिम दौर से पहले सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी मकसद के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। उनके पास उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। अब आने वाले समय में उनके सामने छात्रों के हित में अहम बदलाव की बड़ी चुनौती है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और सभी मांगे माने जाने के बाद रैली हुई और इस रैली में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और रोहित पवार, आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए।
1: मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली हो रही है। छात्रों की जीत के जश्न के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और देखते ही देखते शिवाजी पार्क में तिरंगा लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई ठाकरे बंधुओं ने की थी लेकिन ये यात्रा किसी पार्टी के बैनर तले नहीं थी। ये छात्रों की जीत का जश्न था।
7: आणि ही संघर्षाची सुरुवात झालेली आहे। हा संघर्ष भाजप विरुद्ध भारत असा हा संघर्ष आहे।
8: भाषण करण्याचा दिवस नव्हे। तुम्ही जे आंदोलन अख्ख्या देशभर पेटवलत या देशातले जेंजी हे सरकारच्या झेंज्या कशा उपटतात हे आपल्याला या आंदोलनात कळलं।
1: इस तिरंगा यात्रा में छात्रों के साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची थी। ये 82 साल की शकुंतला घाटगे हैं जो छात्रों की जीत की खुशी में नाच रही हैं। नेताओं के साथ तिरंगा रैली में अभिनेताओं ने भी हिस्सा लिया।
9: बहुत होप्स हैं, बहुत होप्स हैं। जिस तरह का यहाँ पर सागर उमड़ा है वो बहुत हौसला देने वाला है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये जो देश है वो छात्रों के हाथ में है और युवा पीढ़ी के हाथ में और जेंजी के हाथ में है।
1: महात्मा गांधी के प्रपौत्र भी छात्रों की जीत का जश्न मनाने तिरंगा रैली में पहुंचे।
10: ये बहुत आशा देने वाला माहौल है क्योंकि युवा शक्ति फाइनली रास्तों पे निकली है और पुलिस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उससे अंदाजा आता है कि सत्ता में बैठे लोग इस युवा शक्ति से कितने घबराए हुए हैं।
1: तो दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का जश्न अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कोलकाता में बीते शुक्रवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। इस केस में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर लगातार छापेमारी भी चल रही है। आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।
1: जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे तो दो दिन पहले कोलकाता की सड़कों पर भी छात्रों का जमावड़ा लगा। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब छात्रों की भीड़ उग्र हो गई। जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस को निशाना बनाने का प्रयास हुआ। अब पुलिस ने छात्र आंदोलन के बीच उपद्रव करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
11: और भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। 24 जुलाई को SFI की रैली के दौरान कोलकाता के धर्मतल्ला में भारी बवाल हुआ था, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया था, बोतलें फेंकी गई थी।
1: बंगाल की पुलिस लगातार एक्शन में है।
12: तुरंत इसका कार्रवाई हुई है। नया जो गुंडा दमन कानून हुआ है उसका आधार पर लोगों का और सबका पनिशमेंट भी होगा और कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया गया और पूरी कार्रवाई जारी है, आगे तक चलेगा।
1: कोलकाता पुलिस का एक्शन जारी है। वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। जल्द ही इस केस में और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। कोलकाता से तपस्विन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ रविवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
13: उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था। और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है। लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है।
0: कारगिल की चोटियों पर 27 साल पहले लिखी गई जीत की इबारत आज फिर से गूंज उठी। द्रास में शहीदों को नमन किया गया, उनकी वीरता को सलाम किया गया और उस रणभूमि से पाकिस्तान को संदेश भी दिया गया।

कारगिल वॉर मेमोरियल, जहां तिरंगे की छांव में अमर जवानों के नाम आज भी इतिहास की तरह दर्ज हैं। 27वें कारगिल विजय दिवस पर यही स्मारक एक बार फिर पूरे राष्ट्र की श्रद्धा का केंद्र बना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास वॉर मेमोरियल में ऑपरेशन विजय के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया, वीरों को सलामी दी और उनके परिवारों को सम्मानित किया।

0: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भर में लोगों ने शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रास में आयोजित समारोह में उन्होंने साफ कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वाली सरकार के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर भी भारत का रुख स्पष्ट कर दिया।
1: पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: द्रास की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना चुका है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और आतंकवाद के नापाक गठजोड़ को अपने बयान में परत दर परत उजागर किया।
1: साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है।
0: कारगिल की रणभूमि से राजनाथ सिंह का संदेश साफ है, आतंकवाद पर भारत की नीति अब और कठोर है। भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। अशरफ वानी, द्रास, आज तक।
2: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच कई राज्यों से मुसीबत की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आफत गुजरात में दिख रही है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद में स्थिति बहुत गंभीर है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
3: शहर के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें डटी हुई हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की हैं, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। इसके बाद संकट के बीच SDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए SDRF के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं।
4: हम लोग यहां पर बावड़ा में हैं और ये गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें करीब कल की स्थिति में 900 जितने लोग फंस गए थे। अंदर 40 से 50 कंपनियां हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर अंदर जो जरूरी सामान था वो सब भी पहुंचवा दिया था। कल अभी तक 900 में से 500 जितने लोगों को बचा भी लिया गया है, बाहर ला दिया गया है। आर्मी की टीमें, कोस्ट गार्ड, NDRF, SDRF, लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है।
3: अहमदाबाद के इस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी हो रही है।
4: बाहर आने वाले लोग बता रहे हैं कि अंदर का जो पानी की स्थिति है वो कम से कम 6-7 फीट जैसी है, तो इसलिए बोट भी या कोई और ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है। पर धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है और कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअल्टी ना हो, जो अभी तक कहीं से ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तमाम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अंदर रहें, इंडोर्स रहें, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सूचनाएं हैं समय समय पर उसका पालन करें।
3: अहमदाबाद शहर पर आसमानी आफत का हमला हुआ तो भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी हैं। सेना के जवानों के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।
5: रेस्क्यू की कामगिरी चालू है, कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है। तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले है, और आज के टाइम में आज भी 70-80 आदमी हमने बाहर निकाले हैं।
3: हालांकि भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी काफी ज्यादा भर गया है, जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है।
6: अभी हम जो है बोट से अंदर जब देख के आए तो लगभग कुछ कुछ विस्तार में लगभग 10 फीट के आसपास भी पानी है, और लेकिन जिन जिन लोगों को हम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, और बाकी 500 लोगों को हमने लोकेट कर चुके हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे हम रेस्क्यू कर पाएंगे जो है। और आपके मार्फत मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहाँ पे तैनात है, और हमारे पास 3 एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है, और सभी टीम जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो हमने कम से कम 4 से 5 टीम यहाँ लगा रखी है, उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है, और आज शाम तक जो हम काफी कुछ जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा अभी हमारा असेसमेंट है।
3: इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है। ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, आज तक।
2: सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई शहरों में बारिश इन दिनों मुसीबत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते अब तक गुजरात में 56 लोगों की मौत हो चुकी है, और सबसे ज्यादा मौत नवसारी जिले में हुई, जहां 21 लोगों की जान गई है।
3: भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं, सैलाब शहरों तक पहुंच गया है, कई शहरों में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, और मुसीबत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में हाल बेहद बुरा है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की है। भारी बारिश के बाद मलबा बहकर सड़कों पर आ गया है, कई जगहों पर रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के कई शहर भारी बारिश से बेहाल है। हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मौसम की मार के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। एक दिन पहले वलसाड़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी उफान पर है, पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही है। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगी।
7: अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है, और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये भी वलसाड़ है, गुजरात का वलसाड़। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान है। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड़ की है। शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुबन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमन गंगा नदी में 2,59,724 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया।
8: मैं इस वक्त वलसाड जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 48, मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देखे आप से देख सकते हैं जो गाड़ियां है वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
7: अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए, जहाँ मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में ही। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रंग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो।
2: पूर्वोत्तर भारत में भी हाल यही है। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 जिले बाढ़ की चपेट में। 7 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। 60 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है।
9: असम में बाढ़ का कहर, बारिश और सैलाब से जनजीवन बेहाल। कई जिलों में हालात गंभीर। आसमानी आफत का असर अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, पूर्वोत्तर में भी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। असम के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। असम बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, कामरूप, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कामरूप, कार्बी, आंगलोंग और तिनसुकिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घरों के अंदर पानी भर चुका है, सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं और कई जगहों पर आवाजाही बंद हो गई है। पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कई परिवार अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की मार सिर्फ लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है, बल्कि इसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ा है। असम में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने का खतरा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। असम में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 3,75,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव में 1,86,000 और जोरहट में 1,15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। घरों से लेकर खेतों तक पानी भर चुका है। राज्य की कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग नदी, शिवसागर की किखोर और देसांग नदी, गोलाघाट की धनसिरी और श्रीभूमि की नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। शिवसागर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश ने असम की राजधानी गुवाहाटी की रफ्तार भी थाम दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें गुवाहाटी के एक पेट्रोल पंप की है, जहां पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर दुकानों, बैंकों और बाजारों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उफनती नदियां गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन रही है, तो दूसरी तरफ शहरों में जल निकासी की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश और बाढ़ के इन हालातों में सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: परीक्षा संशोधन बिल से पहले प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश, नंदन नीलकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स का ऐलान किया, कहा पारदर्शी बनाएंगे परीक्षा प्रक्रिया, लाएंगे कठोर कानून। पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आज संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल, 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल की सजा, 2 महीनों में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पैलेट गन को राहुल ने बनाया नया मुद्दा, गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ AK-47 को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74 फर्स्ट विलेज घूमकर लौटे 400 युवाओं ने प्रधानमंत्री से साझा किया अनुभव। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक, पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी बधाई। जंतर मंतर पर आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उस पर सियासत शुरू हो गई, विपक्ष सरकार को घेरने की अपनी रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा, राहुल गांधी ने छात्रों के साथ हुए हिंसा पर जवाब मांगा है, साथ ही विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं।
1: जंतर मंतर पर अब ना तो आंदोलन की तस्वीर दिख रही है, ना आंदोलनकारी दिख रहे हैं और ना ही वो सुरक्षा घेरा और बैरिकेड्स हैं। अब यहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ, दिल्ली अभी भी उसकी सियासी तपेश महसूस कर रही है। एक तरफ सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी तेवर दिखा रहा है। छात्रों पर 20 जुलाई को हुए एक्शन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। पत्र लिखकर राहुल ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने छात्रों पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया था, घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। राहुल ने यह आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से पूछा है कि क्या आपने पैलेट गन या अन्य घातक हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, अगर आपने नहीं दी थी तो किसने दी। पार्टी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी और सवाल करेगी।
2: He authorized the use of lethal weapons, pellet guns, on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament.
1: कांग्रेस कह रही है कि कौरवी शासन का अंत हुआ और विपक्ष रूपी पांडवों का नया उदय हुआ है।
3: 12 साल बीत गए हैं कौरवी शासन की, मैं तुलना करता हूं मोदी सरकार की, पांडव लौट के आ गए युवा के रूप में, राहुल गांधी के रूप में, विपक्ष के रूप में। अब वहां भारत होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान सजेगा और पांडव जीतेंगे।
1: सोमवार को एक बार फिर संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सोमवार को ही केंद्र सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, लेकिन बिल पेश होने के पहले संसद में हंगामा तय है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा और पुलिसी एक्शन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी तेज है। आपको दिखाते हैं बिहार के सिवान की तस्वीरें, जहां पुलिस वाले AK-47 ताने नजर आए।
1: जहां हल्के बल प्रयोग से बात बन सकती थी, वहां AK-47 वाले जाबाज पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। तस्वीरें देखिए और देख लीजिए बिहार पुलिस का कारनामा। हर कोई पूछ रहा है कि क्या बिहार पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करती है। तस्वीरें 25 जुलाई की हैं। सिवान में छात्र गुस्से से भरे हुए थे, वो लगातार पथराव कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस भी आंसू गैस की गोले दाग रही थी। इसी प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सिवान पुलिस के अधिकारियों ने अपने AK-47 धारी जवानों को सलकों पर उतार दिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पुलिस को घेरा, साथ ही सम्राट सरकार पर भी हमला बोला।
4: जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छा गुंडा है, जिसपे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
1: तेजस्वी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए तो ताजा ताजा आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए नेता पलटवार करने आए।
5: श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये बता रहा है कि गुंडा मानसिकता और लंपटीकरण संस्कृति किस तरह से तेजस्वी यादव जी के अंदर है।
1: सिवान के अलावा कल छपरा में भी बवाल हुआ था जिसमें रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें सिर में चोट लगी जिसका एक्सरे अब आ गया है। साथ ही सारण पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर उपद्रवियों की सूची जारी की है और लोगों से पहचान की अपील की है। कुमार अभिषेक के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
0: 36 दिनों तक सीजेपी आंदोलन के बाद अब काफी कुछ बदल गया और सबसे अहम ये कि शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को दी गई है। प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है और सरकार के सामने हालांकि चुनौतियां कम नहीं हुई हैं।
1: शनिवार का दिन छात्रों के नाम रहा, उनकी मांगे मान ली गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कुर्सी छोड़ी तो चंद घंटे के अंदर उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई। यानी अब तमाम परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने और शिक्षा से जुड़े बदलाव की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी संभालने जा रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया।
6: एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।
1: सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी दो बार इस्तीफे की पेशकश की थी। तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब प्रधान से कहा गया था कि वो शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व जारी रखें। लेकिन सीजेपी के दबाव का असर दिखा। सूत्रों की माने तो बातचीत के अंतिम दौर से पहले सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी मकसद के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। उनके पास उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। अब आने वाले समय में उनके सामने छात्रों के हित में अहम बदलाव की बड़ी चुनौती है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और सभी मांगे माने जाने के बाद रैली हुई और इस रैली में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और रोहित पवार, आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए।
1: मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली हो रही है। छात्रों की जीत के जश्न के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और देखते ही देखते शिवाजी पार्क में तिरंगा लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई ठाकरे बंधुओं ने की थी लेकिन ये यात्रा किसी पार्टी के बैनर तले नहीं थी, ये छात्रों की जीत का जश्न था।
7: आणि ही संघर्षाची सुरुवात झालेली आहे। हा संघर्ष भाजप विरुद्ध भारत असा हा संघर्ष आहे।
8: भाषण करण्याचा दिवस नव्हे, तुम्ही जे आंदोलन अख्ख्या देशभर पेटवलत, या देशातले जेंजी हे सरकारच्या झेंज्या कशा उपटतात हे आपल्याला या आंदोलनातून कळलं।
1: इस तिरंगा यात्रा में छात्रों के साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची थी। ये 82 साल की शकुंतला घाटगे हैं जो छात्रों की जीत की खुशी में नाच रही हैं। नेताओं के साथ तिरंगा रैली में अभिनेताओं ने भी हिस्सा लिया।
9: बहुत होप्स है। जिस तरह का यहाँ पर सागर उमड़ा है वो बहुत हौसला देने वाला है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये जो देश है वो छात्रों के हाथ में है और युवा पीढ़ी के हाथ में और जेंजी के हाथ में है।
1: महात्मा गांधी के प्रपौत्र भी छात्रों की जीत का जश्न मनाने तिरंगा रैली में पहुंचे।
10: ये बहुत आशा देने वाला माहौल है क्योंकि युवा शक्ति फाइनली रास्तों पे निकली है और पुलिस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उससे अंदाजा आता है कि सत्ता में बैठे लोग इस युवा शक्ति से कितने घबराए हुए हैं।
1: तो दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का जश्न अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कोलकाता में बीते शुक्रवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। इस केस में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर लगातार छापेमारी भी चल रही है। आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।
1: जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे, तो दो दिन पहले कोलकाता की सड़कों पर भी छात्रों का जमावड़ा लगा। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब छात्रों की भीड़ उग्र हो गई। जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस को निशाना बनाने का प्रयास हुआ। अब पुलिस ने छात्र आंदोलन के बीच उपद्रव करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
11: और भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। 24 जुलाई को SFI की रैली के दौरान कोलकाता के धर्मतल्ला में भारी बवाल हुआ था, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया था, बोतलें फेंकी गई थी।
1: बंगाल की पुलिस लगातार एक्शन में है।
12: तुरंत इसका कार्रवाई हुई है। नया जो गुंडा दमन कानून हुआ है, उसका आधार पर लोगों का और सबका पनिशमेंट भी होगा और कुछ

0: यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है।
1: कारगिल की चोटियों पर 27 साल पहले लिखी गई जीत की इबारत आज फिर से गूंज उठी। द्रास में शहीदों को नमन किया गया, उनकी वीरता को सलाम किया गया और उस रणभूमि से पाकिस्तान को संदेश भी दिया गया।

कारगिल वॉर मेमोरियल, जहां तिरंगे की छांव में अमर जवानों के नाम आज भी इतिहास की तरह दर्ज हैं। 27वें कारगिल विजय दिवस पर यही स्मारक एक बार फिर पूरे राष्ट्र की श्रद्धा का केंद्र बना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास वॉर मेमोरियल में ऑपरेशन विजय के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया, वीरों को सलामी दी और उनके परिवारों को सम्मानित किया।

0: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भर में लोगों ने शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रास में आयोजित समारोह में उन्होंने साफ कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वाली सरकार के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर भी भारत का रुख स्पष्ट कर दिया।
1: पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: द्रास की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना चुका है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और आतंकवाद के नापाक गठजोड़ को अपने बयान में परत दर परत उजागर किया।
1: साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है।
0: कारगिल की रणभूमि से राजनाथ सिंह का संदेश साफ है, आतंकवाद पर भारत की नीति अब और कठोर है। भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। अशरफ वानी, द्रास, आज तक।
2: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच कई राज्यों से मुसीबत की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आफत गुजरात में दिख रही है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद में स्थिति बहुत गंभीर है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
3: शहर के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें डटी हुई हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की हैं, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला।

0: इसके बाद संकट के बीच एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए एसडीआरएफ के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं।
1: हम लोग यहाँ पर बावड़ा में हैं और ये गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें करीब कल की स्थिति में 900 जितने लोग फंस गए थे, अंदर 40 से 50 कंपनियां हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर अंदर जो जरूरी सामान था वो सब भी पहुंचवा दिया था। कल अभी तक 900 में से 500 जितने लोगों को बचा भी लिया गया है, बाहर ला दिया गया है। आर्मी की टीमें, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है।
0: अहमदाबाद के इस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी हो रही है।
1: बाहर आने वाले लोग बता रहे हैं कि अंदर का जो पानी की स्थिति है वो कम से कम 6-7 फीट जैसी है, तो इसलिए बोट भी या कोई और ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है, पर धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है और कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअलिटी ना हो, जो अभी तक कहीं से ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तमाम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अंदर रहें, इंडोर्स रहें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सूचनाएं हैं समय समय पर उसका पालन करें।
0: अहमदाबाद शहर पर आसमानी आफत का हमला हुआ तो भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी हैं। सेना के जवानों के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।
2: रेस्क्यू की कामगिरी चालू है, कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है, तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले है और आज के टाइम में आज भी 70-80 आदमी हमने बाहर निकाले हैं।
0: हालांकि भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी काफी ज्यादा भर गया है, जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है।
3: अभी हम जो है बोट से अंदर जब देख के आए तो लगभग कुछ विस्तार में लगभग 10 फीट के आसपास भी पानी है, और लेकिन जिन जिन लोगों को हम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और बाकी 500 लोगों को हमने लोकेट कर चुके हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे हम रेस्क्यू कर पाएंगे जो है। और आपके मार्फत मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहां पे तैनात हैं और हमारे पास 3 एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है और सभी टीम जो है डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहां पर जो है हमने कम से कम 4-5 टीमें लगा रखी है, उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है और आज शाम तक जो हम काफी कुछ जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा अभी हमारा असेसमेंट है।
0: इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है, ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, आज तक।
4: सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई शहरों में बारिश इन दिनों मुसीबत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते अब तक गुजरात में 56 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा मौत नवसारी जिले में हुई, जहां 21 लोगों की जान गई है।
0: भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं, सैलाब शहरों तक पहुंच गया है, कई शहरों में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और मुसीबत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में हाल बेहद बुरा है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। भारी बारिश के बाद मलबा बहकर सड़कों पर आ गया है, कई जगहों पर रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के कई शहर भारी बारिश से बेहाल है, हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मौसम की मार के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। एक दिन पहले वलसाड से आई इन तस्वीरों को देखिए, नदी उफान पर है, पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही है। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगी।
5: अब जरा आगे की तस्वीर देखिए, मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये भी वलसाड है, गुजरात का वलसाड। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान हैं। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड की है। शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुबन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमन गंगा नदी में 2,59,724 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया।
6: मैं इस वक्त वलसाड जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 48, मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है। यहाँ देखकर आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
5: अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए, जहाँ मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में हुई। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रंग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो।
4: पूर्वोत्तर भारत में भी हाल यही है। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 जिले बाढ़ की चपेट में। 7 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। 60 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है।
0: असम में बाढ़ का कहर, बारिश और सैलाब से जनजीवन बेहाल, कई जिलों में हालात गंभीर। आसमानी आफत का असर अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, पूर्वोत्तर में भी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। असम के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। असम बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, कामरूप, चराइदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कामरूप, कार्बी, अंगलोंग और तिनसुकिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घरों के अंदर पानी भर चुका है, सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं और कई जगहों पर आवाजाही बंद हो गई है। पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कई परिवार अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की मार सिर्फ लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है, बल्कि इसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ा है। असम में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने का खतरा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। असम में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 3,75,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद चराइदेव में 1,86,000 और जोरहट में 1,15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। घरों से लेकर खेतों तक पानी भर चुका है। राज्य की कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग नदी, शिवसागर की किखोर और देसांग नदी, गोलाघाट की धनसिरी और श्रीभूमि की नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
7: शिवसागर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश ने असम की राजधानी गुवाहाटी की रफ्तार भी थाम दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें गुवाहाटी के एक पेट्रोल पंप की है, जहां पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर दुकानों, बैंकों और बाजारों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उफनती नदियां गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन रही है, तो दूसरी तरफ शहरों में जल निकासी की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश और बाढ़ के इन हालातों में सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
1: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
0: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: परीक्षा संशोधन बिल से पहले प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश, नंदन नीलकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स का ऐलान किया, कहा पारदर्शी बनाएंगे परीक्षा प्रक्रिया, लाएंगे कठोर कानून। पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आज संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल, 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल की सजा, 2 महीनों में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पैलेट गन को राहुल ने बनाया नया मुद्दा, गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ AK-47 को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74 फर्स्ट विलेज घूमकर लौटे 400 युवाओं ने प्रधानमंत्री से साझा किया अनुभव। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक, पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी बधाई। जंतर मंतर पर आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उस पर सियासत शुरू हो गई, विपक्ष सरकार को घेरने की अपनी रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा, राहुल गांधी ने छात्रों के साथ हुए हिंसा पर जवाब मांगा है, साथ ही विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं।
1: जंतर मंतर पर अब ना तो आंदोलन की तस्वीर दिख रही है, ना आंदोलनकारी दिख रहे हैं और ना ही वो सुरक्षा घेरा और बैरिकेड्स हैं। अब यहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ, दिल्ली अभी भी उसकी सियासी तपेश महसूस कर रही है। एक तरफ सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी तेवर दिखा रहा है। छात्रों पर 20 जुलाई को हुए एक्शन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। पत्र लिखकर राहुल ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने छात्रों पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया था, घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। राहुल ने यह आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से पूछा है कि क्या आपने पैलेट गन या अन्य घातक हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, अगर आपने नहीं दी थी तो किसने दी। पार्टी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी और सवाल करेगी।
2: He authorized the use of lethal weapons, pellet guns, on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament.
1: कांग्रेस कह रही है कि कौरवी शासन का अंत हुआ और विपक्ष रूपी पांडवों का नया उदय हुआ है।
3: 12 साल बीत गए हैं कौरवी शासन की, मैं तुलना करता हूं मोदी सरकार की, पांडव लौट के आ गए युवा के रूप में, राहुल गांधी के रूप में, विपक्ष के रूप में। अब वहां भारत होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान सजेगा और पांडव जीतेंगे।
1: सोमवार को एक बार फिर संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सोमवार को ही केंद्र सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, लेकिन बिल पेश होने के पहले संसद में हंगामा तय है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा और पुलिसी एक्शन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी तेज है। आपको दिखाते हैं बिहार के सिवान की तस्वीरें, जहां पुलिस वाले AK-47 ताने नजर आए।
1: जहां हल्के बल प्रयोग से बात बन सकती थी, वहां AK-47 वाले जाबाज पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। तस्वीरें देखिए और देख लीजिए बिहार पुलिस का कारनामा। हर कोई पूछ रहा है कि क्या बिहार पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करती है। तस्वीरें 25 जुलाई की हैं। सिवान में छात्र गुस्से से भरे हुए थे, वो लगातार पथराव कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस भी आंसू गैस की गोले दाग रही थी। इसी प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सिवान पुलिस के अधिकारियों ने अपने AK-47 धारी जवानों को सलकों पर उतार दिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पुलिस को घेरा, साथ ही सम्राट सरकार पर भी हमला बोला।
4: जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है, जिसपे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
1: तेजस्वी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए तो ताजा ताजा आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए नेता पलटवार करने आए।
5: श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये बता रहा है कि गुंडा मानसिकता और लंपटीकरण संस्कृति किस तरह से तेजस्वी यादव जी के अंदर।
1: सिवान के अलावा कल छपरा में भी बवाल हुआ था जिसमें रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें सिर में चोट लगी जिसका एक्सरे अब आ गया है। साथ ही सारण पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर उपद्रवियों की सूची जारी की है और लोगों से पहचान की अपील की है। कुमार अभिषेक के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
0: 36 दिनों तक सीजेपी आंदोलन के बाद अब काफी कुछ बदल गया और सबसे अहम ये कि शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को दी गई है। प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है और सरकार के सामने हालांकि चुनौतियां कम नहीं हुई।
1: शनिवार का दिन छात्रों के नाम रहा, उनकी मांगे मान ली गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कुर्सी छोड़ी तो चंद घंटे के अंदर उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई। यानी अब तमाम परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने और शिक्षा से जुड़े बदलाव की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी संभालने जा रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया।
6: एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।
1: सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी दो बार इस्तीफे की पेशकश की थी। तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब प्रधान से कहा गया था कि वो शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व जारी रखें। लेकिन सीजेपी के दबाव का असर दिखा। सूत्रों की माने तो बातचीत के अंतिम दौर से पहले सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी मकसद के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। उनके पास उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। अब आने वाले समय में उनके सामने छात्रों के हित में अहम बदलाव की बड़ी चुनौती है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और सभी मांगे माने जाने के बाद रैली हुई और इस रैली में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और रोहित पवार, आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए।
1: मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली हो रही है। छात्रों की जीत के जश्न के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और देखते ही देखते शिवाजी पार्क में तिरंगा लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई ठाकरे बंधुओं ने की थी लेकिन ये यात्रा किसी पार्टी के बैनर तले नहीं थी, ये छात्रों की जीत का जश्न था।
7: आणि ही संघर्षाची सुरुवात झालेली आहे। हा संघर्ष भाजप विरुद्ध भारत असा हा संघर्ष आहे।
8: भाषण करण्याचा दिवस नव्हे, तुम्ही जे आंदोलन अख्ख्या देशभर पेटवलत, या देशातले झेंजी हे सरकारच्या झेंज्या कशा उपटतात हे आपल्याला या आंदोलनातून कळलं।
1: इस तिरंगा यात्रा में छात्रों के साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची थी। ये 82 साल की शकुंतला घाटगे हैं जो छात्रों की जीत की खुशी में नाच रही हैं। नेताओं के साथ तिरंगा रैली में अभिनेताओं ने भी हिस्सा लिया।
9: बहुत होप्स है। जिस तरह का यहाँ पर सागर उमड़ा है वो बहुत हौसला देने वाला है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये जो देश है वो छात्रों के हाथ में है और युवा पीढ़ी के हाथ में और जेंजी के हाथ में है।
1: महात्मा गांधी के प्रपौत्र भी छात्रों की जीत का जश्न मनाने तिरंगा रैली में पहुंचे।
10: ये बहुत आशा देने वाला माहौल है क्योंकि युवा शक्ति फाइनली रास्तों पे निकली है और पुलिस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उससे अंदाजा आता है कि सत्ता में बैठे लोग इस युवा शक्ति से कितने घबराए हुए हैं।
1: तो दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का जश्न अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कोलकाता में बीते शुक्रवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। इस केस में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर लगातार छापेमारी भी चल रही है। आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।
1: जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे तो दो दिन पहले कोलकाता की सड़कों पर भी छात्रों का जमावड़ा लगा। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ था, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब छात्रों की भीड़ उग्र हो गई। जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस को निशाना बनाने का प्रयास हुआ। अब पुलिस ने छात्र आंदोलन के बीच उपद्रव करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
11: और भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। 24 जुलाई को एसएफआई की रैली के दौरान कोलकाता के धर्मतल्ला में भारी बवाल हुआ था, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया था, बोतलें फेंकी गई थी।
1: बंगाल की पुलिस लगातार एक्शन में है।
12: तुरंत इसका कार्रवाई हुई है। नया जो गुंडा दमन कानून हुआ है उसका आधार पर लोगों का और सबका पनिशमेंट भी होगा और कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया गया और पूरी कार्रवाई जारी है, आगे तक चलेगा।
1: कोलकाता पुलिस का एक्शन जारी है। वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। जल्द ही इस केस में और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ी इटावा में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
13: उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था। और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है।
0: कारगिल की चोटियों पर 27 साल पहले लिखी गई जीत की इबारत आज फिर से गूंज उठी। द्रास में शहीदों को नमन किया गया, उनकी वीरता को सलाम किया गया और उस रणभूमि से पाकिस्तान को संदेश भी दिया गया।

कारगिल वॉर मेमोरियल, जहां तिरंगे की छांव में अमर जवानों के नाम आज भी इतिहास की तरह दर्ज हैं। 27वें कारगिल विजय दिवस पर यही स्मारक एक बार फिर पूरे राष्ट्र की श्रद्धा का केंद्र बना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास वॉर मेमोरियल में ऑपरेशन विजय के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया, वीरों को सलामी दी और उनके परिवारों को सम्मानित किया।

0: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भर में लोगों ने शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रास में आयोजित समारोह में उन्होंने साफ कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वाली सरकार के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर भी भारत का रुख स्पष्ट कर दिया।
1: पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: द्रास की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना चुका है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और आतंकवाद के नापाक गठजोड़ को अपने बयान में परत दर परत उजागर किया।
1: साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है।
0: कारगिल की रणभूमि से राजनाथ सिंह का संदेश साफ है, आतंकवाद पर भारत की नीति अब और कठोर है। भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। अशरफ वानी, द्रास, आज तक।
2: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच कई राज्यों से मुसीबत की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आफत गुजरात में दिख रही है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद में स्थिति बहुत गंभीर है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
3: शहर के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें डटी हुई हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की हैं, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। इसके बाद संकट के बीच SDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए SDRF के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं।
4: हम लोग यहाँ पर बावड़ा में हैं और ये गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें करीब कल की स्थिति में 900 जितने लोग फंस गए थे। अंदर 40 से 50 कंपनियां हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर अंदर जो जरूरी सामान था वो सब भी पहुंचवा दिया था। कल अभी तक 900 में से 500 जितने लोगों को बचा भी लिया गया है, बाहर ला दिया गया है। आर्मी की टीमें, कोस्ट गार्ड, NDRF, SDRF, लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है।
3: अहमदाबाद के इस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी हो रही है।
4: बाहर आने वाले लोग बता रहे हैं कि अंदर का जो पानी की स्थिति है वो कम से कम 6-7 फीट जैसी है, तो इसलिए बोट भी या कोई और ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है। पर धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है और कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअल्टी ना हो, जो अभी तक कहीं से ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तमाम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अंदर रहें, इंडोर्स रहें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सूचनाएं हैं समय समय पर उसका पालन करें।
3: अहमदाबाद शहर पर आसमानी आफत का हमला हुआ तो भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी हैं। सेना के जवानों के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।
5: रेस्क्यू की कामगिरी चालू है। कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है, तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले है और आज के टाइम में आज भी 70-80 आदमी हमने बाहर निकाले हैं।
3: हालांकि भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी काफी ज्यादा भर गया है, जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है।
6: अभी अभी हम जो है बोट से अंदर जब देख के आए तो लगभग कुछ कुछ विस्तार में लगभग 10 फीट के आसपास भी पानी है, और लेकिन जिन जिन लोगों को हम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और बाकी 500 लोगों को हमने लोकेट कर चुके हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे हम रेस्क्यू कर पाएंगे जो है। और आपके मार्फत मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहाँ पे तैनात है और हमारे पास 3 एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है और सभी टीम जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो हमने कम से कम 4 से 5 टीम यहाँ लगा रखी है, उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है और आज शाम तक जो हम काफी कुछ जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा अभी हमारा असेसमेंट है।
3: इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है। ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, आज तक।
2: सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई शहरों में बारिश इन दिनों मुसीबत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते अब तक गुजरात में 56 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा मौत नवसारी जिले में हुई, जहां 21 लोगों की जान गई है।
3: भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं, सैलाब शहरों तक पहुंच गया है, कई शहरों में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और मुसीबत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में हाल बेहद बुरा है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। भारी बारिश के बाद मलबा बहकर सड़कों पर आ गया है। कई जगहों पर रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के कई शहर भारी बारिश से बेहाल है। हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मौसम की मार के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। एक दिन पहले वलसाड़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी उफान पर है, पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही है। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगी।
7: अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये भी वलसाड़ है, गुजरात का वलसाड़। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान है। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड़ की है। शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुबन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमनगंगा नदी में 2,59,724 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया।
8: मैं इस वक्त वलसाड जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 48, मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देख आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
7: अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए, जहाँ मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में हुई। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रंग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो।
2: पूर्वोत्तर भारत में भी हाल यही है। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 जिले बाढ़ की चपेट में। 7 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। 60 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है।
9: असम में बाढ़ का कहर, बारिश और सैलाब से जनजीवन बेहाल। कई जिलों में हालात गंभीर। आसमानी आफत का असर अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, पूर्वोत्तर में भी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। असम के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। असम बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, कामरूप, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कामरूप, कार्बी, आंगलोंग और तिनसुकिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घरों के अंदर पानी भर चुका है, सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं और कई जगहों पर आवाजाही बंद हो गई है। पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कई परिवार अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की मार सिर्फ लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है, बल्कि इसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ा है। असम में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने का खतरा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। असम में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 3,75,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव में 1,86,000 और जोरहट में 1,15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। घरों से लेकर खेतों तक पानी भर चुका है। राज्य की कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग नदी, शिवसागर की किखोर और देसांग नदी, गोलाघाट की धनसिरी और श्रीभूमि की नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। शिवसागर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश ने असम की राजधानी गुवाहाटी की रफ्तार भी थाम दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें गुवाहाटी के एक पेट्रोल पंप की है, जहां पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर दुकानों, बैंकों और बाजारों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उफनती नदियां गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन रही है, तो दूसरी तरफ शहरों में जल निकासी की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश और बाढ़ के इन हालातों में सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: परीक्षा संशोधन बिल से पहले प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश, नंदन नीलकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स का ऐलान किया, कहा पारदर्शी बनाएंगे परीक्षा प्रक्रिया, लाएंगे कठोर कानून। पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आज संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल, 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल की सजा, 2 महीनों में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पैलेट गन को राहुल ने बनाया नया मुद्दा, गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ AK-47 को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74 फर्स्ट विलेज घूमकर लौटे 400 युवाओं ने प्रधानमंत्री से साझा किया अनुभव। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक, पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी बधाई। जंतर मंतर पर आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उस पर सियासत शुरू हो गई, विपक्ष सरकार को घेरने की अपनी रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा है। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ हुए हिंसा पर जवाब मांगा है, साथ ही विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि संसद में जबरदस्त हंगामे क्या सार है।
1: जंतर मंतर पर अब ना तो आंदोलन की तस्वीर दिख रही है, ना आंदोलनकारी दिख रहे हैं, और ना ही वो सुरक्षा घेरा और बैरिकेड्स हैं। अब यहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ दिल्ली अभी भी उसकी सियासी तपेश महसूस कर रही है। एक तरफ सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी तेवर दिखा रहा है। छात्रों पर 20 जुलाई को हुए एक्शन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। पत्र लिखकर राहुल ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने छात्रों पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया था, घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। राहुल ने ये आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से पूछा है कि क्या आपने पैलेट गन या अन्य घातक हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, अगर आपने नहीं दी थी तो किसने दी। पार्टी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी और सवाल करेगी।
2: On our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament.
1: कांग्रेस कह रही है कि कौरवी शासन का अंत हुआ और विपक्ष रूपी पांडवों का नया उदय हुआ है।
3: 12 साल बीत गए हैं कौरवी शासन की, मैं तुलना करता हूँ मोदी सरकार की। पांडव लौट के आ गए हैं युवा के रूप में, राहुल गांधी के रूप में, विपक्ष के रूप में। अब वहां भारत होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान सजेगा और पांडव जीतेंगे।
1: सोमवार को एक बार फिर संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सोमवार को ही केंद्र सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, लेकिन बिल पेश होने के पहले संसद में हंगामा तय है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा और पुलिसी एक्शन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, और सियासत भी तेज है। आपको दिखाते हैं बिहार के सिवान की तस्वीरें, जहां पुलिस वाले AK-47 ताने नजर आए।
1: जहां हल्के बल प्रयोग से बात बन सकती थी, वहां AK-47 वाले जाबाज पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। तस्वीरें देखिए और देख लीजिए बिहार पुलिस का कारनामा। हर कोई पूछ रहा है कि क्या बिहार पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करती है। तस्वीरें 25 जुलाई की हैं। सिवान में छात्र गुस्से से भरे हुए थे, वो लगातार पथराव कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस भी आंसू गैस की गोले दाग रही थी। इसी प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सिवान पुलिस के अधिकारियों ने अपने AK-47 धारी जवानों को सड़कों पर उतार दिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पुलिस को घेरा, साथ ही सम्राट सरकार पर भी हमला बोला।
4: जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है जिसपे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
1: तेजस्वी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए तो ताजा ताजा आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए नेता पलटवार करने आए।
5: श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये बता रहा है कि गुंडा मानसिकता और लंपटीकरण संस्कृति किस तरह से तेजस्वी यादव जी के अंदर है।
1: सिवान के अलावा कल छपरा में भी बवाल हुआ था जिसमें रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें सिर में चोट लगी जिसका एक्सरे अब आ गया है। साथ ही सारण पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर उपद्रवियों की सूची जारी की है और लोगों से पहचान की अपील की है। कुमार अभिषेक के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
0: 36 दिनों तक सीजेपी आंदोलन के बाद अब काफी कुछ बदल गया और सबसे अहम ये कि शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को दी गई है। प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है और सरकार के सामने हालांकि चुनौतियां कम नहीं हुई।
1: शनिवार का दिन छात्रों के नाम रहा, उनकी मांगे मान ली गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कुर्सी छोड़ी तो चंद घंटे के अंदर उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई। यानी अब तमाम परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने और शिक्षा से जुड़े बदलाव की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी संभालने जा रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया।
6: एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।
1: सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी दो बार इस्तीफे की पेशकश की थी। तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब प्रधान से कहा गया था कि वो शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व जारी रखें। लेकिन सीजेपी के दबाव का असर दिखा। सूत्रों की माने तो बातचीत के अंतिम दौर से पहले सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी मकसद के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। उनके पास उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। अब आने वाले समय में उनके सामने छात्रों के हित में अहम बदलाव की बड़ी चुनौती है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और सभी मांगे माने जाने के बाद रैली हुई और इस रैली में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और रोहित पवार, आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए।
1: मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली हो रही है। छात्रों की जीत के जश्न के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और देखते ही देखते शिवाजी पार्क में तिरंगा लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई ठाकरे बंधुओं ने की थी लेकिन ये यात्रा किसी पार्टी के बैनर तले नहीं थी। ये छात्रों की जीत का जश्न था।
7: आणि ही संघर्षाची सुरुवात झालेली आहे। हा संघर्ष भाजप विरुद्ध भारत असा हा संघर्ष आहे।
8: भाषण करण्याचा दिवस नव्हे। तुम्ही जे आंदोलन अख्ख्या देशभर पेटवलत या देशातले झेंजी हे सरकारच्या झेंज्या कशा उपटतात हे आपल्याला या आंदोलनात कळलं।
1: इस तिरंगा यात्रा में छात्रों के साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची थी। ये 82 साल की शकुंतला घाटगे हैं जो छात्रों की जीत की खुशी में नाच रही हैं। नेताओं के साथ तिरंगा रैली में अभिनेताओं ने भी हिस्सा लिया।
9: बहुत होप्स है, बहुत होप्स है। जिस तरह का यहाँ पर सागर उमड़ा है वो बहुत हौसला देने वाला है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये जो देश है वो छात्रों के हाथ में है और युवा पीढ़ी के हाथ में और जेंजी के हाथ में है।
1: महात्मा गांधी के प्रपौत्र भी छात्रों की जीत का जश्न मनाने तिरंगा रैली में पहुंचे।
10: ये बहुत आशा देने वाला माहौल है क्योंकि युवा शक्ति फाइनली रास्तों पे निकली है और पुलिस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उससे अंदाजा आता है कि सत्ता में बैठे लोग इस युवा शक्ति से कितने घबराए हुए हैं।
1: तो दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का जश्न अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कोलकाता में बीते शुक्रवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। इस केस में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर लगातार छापेमारी भी चल रही है। आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।
1: जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे तो दो दिन पहले कोलकाता की सड़कों पर भी छात्रों का जमावड़ा लगा। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब छात्रों की भीड़ उग्र हो गई। जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस को निशाना बनाने का प्रयास हुआ। अब पुलिस ने छात्र आंदोलन के बीच उपद्रव करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
11: और भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। 24 जुलाई को एसएफआई की रैली के दौरान कोलकाता के धर्मतल्ला में भारी बवाल हुआ था, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया था, बोतलें फेंकी गई थी।
1: बंगाल की पुलिस लगातार एक्शन में है।
12: तुरंत इसका कार्रवाई हुई है। नया जो गुंडा दमन कानून हुआ है उसका आधार पर लोगों का और सबका पनिशमेंट भी होगा और कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया गया और पूरी कार्रवाई जारी है, आगे तक चलेगा।
1: कोलकाता पुलिस का एक्शन जारी है। वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। जल्द ही इस केस में और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। कोलकाता से तपस्विन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
13: उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था।

0: संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है।
1: कारगिल की चोटियों पर 27 साल पहले लिखी गई जीत की इबारत आज फिर से गूंज उठी। द्रास में शहीदों को नमन किया गया, उनकी वीरता को सलाम किया गया और उस रणभूमि से पाकिस्तान को संदेश भी दिया गया।

कारगिल वॉर मेमोरियल, जहां तिरंगे की छांव में अमर जवानों के नाम आज भी इतिहास की तरह दर्ज हैं। 27वें कारगिल विजय दिवस पर यही स्मारक एक बार फिर पूरे राष्ट्र की श्रद्धा का केंद्र बना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास वॉर मेमोरियल में ऑपरेशन विजय के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया, वीरों को सलामी दी और उनके परिवारों को सम्मानित किया।

0: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भर में लोगों ने शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रास में आयोजित समारोह में उन्होंने साफ कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वाली सरकार के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर भी भारत का रुख स्पष्ट कर दिया।
1: पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: द्रास की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना चुका है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और आतंकवाद के नापाक गठजोड़ को अपने बयान में परत दर परत उजागर किया।
1: साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है।
0: कारगिल की रणभूमि से राजनाथ सिंह का संदेश साफ है, आतंकवाद पर भारत की नीति अब और कठोर है। भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। अशरफ वानी, द्रास, आज तक।
2: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच कई राज्यों से मुसीबत की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आफत गुजरात में दिख रही है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद में स्थिति बहुत गंभीर है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
3: शहर के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें डटी हुई हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की हैं, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। इसके बाद संकट के बीच SDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए SDRF के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं।
4: हम लोग यहाँ पर बावड़ा में हैं और ये गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें करीब कल की स्थिति में 900 जितने लोग फंस गए थे।

0: 40 से 50 कंपनियां हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर अंदर जो जरूरी सामान था वो सब भी पहुंचवा दिया था कल। अभी तक 900 में से 500 जितने लोगों को बचा भी लिया गया है, बाहर ला दिया गया है। आर्मी की टीमें, कोस्ट गार्ड, NDRF, SDRF, लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है।
1: अहमदाबाद के इस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी हो रही है।
0: बाहर आने वाले लोग बता रहे हैं कि अंदर का जो पानी की स्थिति है वो कम से कम 6-7 फीट जैसी है, तो इसलिए बोट भी या कोई और ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है। पर धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है और कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअल्टी ना हो, जो अभी तक कहीं से ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तमाम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अंदर रहें, इंडोर्स रहें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सूचनाएं हैं समय समय पर उसका पालन करें।
1: अहमदाबाद शहर पर आसमानी आफत का हमला हुआ तो भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी हैं। सेना के जवानों के साथ SDRF की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।
2: रेस्क्यू की कामगिरी चालू है, कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है, तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले है और आज के टाइम में आज भी 70-80 आदमी हमने बाहर निकाले हैं।
1: हालांकि भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी काफी ज्यादा भर गया है, जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है।
3: अभी हम जो है बोट से अंदर जब देख के आए तो लगभग कुछ विस्तार में लगभग 10 फीट के आसपास भी पानी है, और लेकिन जिन जिन लोगों को हम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और बाकी 500 लोगों को हमने लोकेट कर चुके हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे हम रेस्क्यू कर पाएंगे जो है। और आपके मार्फत मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहां पे तैनात हैं और हमारे पास 3 SDRF की टीम है, NDRF की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है और सभी टीम जो है डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहां पर जो हमने कम से कम 4-5 टीम यहां लगा रखी है, उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है और आज शाम तक जो है हम काफी कुछ जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा अभी हमारा असेसमेंट है।
1: इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है, ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, आज तक।
4: सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई शहरों में बारिश इन दिनों मुसीबत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते अब तक गुजरात में 56 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा मौत नवसारी जिले में हुई, जहां 21 लोगों की जान गई है।

0: भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। सैलाब शहरों तक पहुंच गया है। कई शहरों में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और मुसीबत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में हाल बेहद बुरा है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। भारी बारिश के बाद मलबा बहकर सड़कों पर आ गया है। कई जगहों पर रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के कई शहर भारी बारिश से बेहाल हैं। हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मौसम की मार के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। एक दिन पहले वलसाड़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी उफान पर है, पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही है। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगी।
1: अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये भी वलसाड़ है, गुजरात का वलसाड़। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान हैं। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड़ की है। शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुबन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमन गंगा नदी में 2,59,724 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया।
2: मैं इस वक्त वलसाड़ जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 48 मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देखकर आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
1: अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए जहाँ मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में हुई। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रंग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो।
3: पूर्वोत्तर भारत में भी हाल यही है। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 जिले बाढ़ की चपेट में। 7 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। 60 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है।
4: असम में बाढ़ का कहर, बारिश और सैलाब से जनजीवन बेहाल। कई जिलों में हालात गंभीर। आसमानी आफत का असर अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, पूर्वोत्तर में भी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। असम के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। असम बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, कामरूप, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कामरूप, कार्बी, अंगलोंग और तिनसुकिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घरों के अंदर पानी भर चुका है, सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं और कई जगहों पर आवाजाही बंद हो गई है। पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कई परिवार अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की मार सिर्फ लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है, बल्कि इसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ा है। असम में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने का खतरा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। असम में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 3,75,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव में 1,86,000 और जोरहट में 1,15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। घरों से लेकर खेतों तक पानी भर चुका है। राज्य की कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग नदी, शिवसागर की किखोर और देसांग नदी, गोलाघाट की धनसिरी और श्रीभूमि की नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। शिवसागर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश ने असम की राजधानी गुवाहाटी की रफ्तार भी थाम दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें गुवाहाटी के एक पेट्रोल पंप की है, जहां पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर दुकानों, बैंकों और बाजारों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उफनती नदियां गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन रही है, तो दूसरी तरफ शहरों में जल निकासी की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश और बाढ़ के इन हालातों में सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: परीक्षा संशोधन बिल से पहले प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश। नंदन नीलेकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स का ऐलान किया, कहा पारदर्शी बनाएंगे परीक्षा प्रक्रिया, लाएंगे कठोर कानून। पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आज संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल। 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल की सजा, 2 महीनों में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पैलेट गन को राहुल ने बनाया नया मुद्दा, गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ AK-47 को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74वां विलेज घूमकर लौटे 400 युवाओं ने प्रधानमंत्री से साझा किया अनुभव। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक, पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी बधाई। जंतर मंतर पर आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उस पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष सरकार को घेरने की अपनी रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ हुए हिंसा पर जवाब मांगा है, साथ ही विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं।
1: जंतर मंतर पर अब ना तो आंदोलन की तस्वीर दिख रही है, ना आंदोलनकारी दिख रहे हैं और ना ही वो सुरक्षा घेरा और बैरिकेड्स हैं। अब यहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ दिल्ली अभी भी उसकी सियासी तपेश महसूस कर रही है। एक तरफ सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी तेवर दिखा रहा है। छात्रों पर 20 जुलाई को हुए एक्शन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। पत्र लिखकर राहुल ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने छात्रों पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया था, घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। राहुल ने यह आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से पूछा है कि क्या आपने पैलेट गन या अन्य घातक हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, अगर आपने नहीं दी थी तो किसने दी। पार्टी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी और सवाल करेगी।
2: On our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament.
1: कांग्रेस कह रही है कि कौरवी शासन का अंत हुआ और विपक्ष रूपी पांडवों का नया उदय हुआ है।
3: 12 साल बीत गए हैं कौरवी शासन की, मैं तुलना करता हूँ मोदी सरकार की। पांडव लौट के आ गए हैं युवा के रूप में, राहुल गांधी के रूप में, विपक्ष के रूप में। अब वहां भारत होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान सजेगा और पांडव जीतेंगे।
1: सोमवार को एक बार फिर संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सोमवार को ही केंद्र सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, लेकिन बिल पेश होने के पहले संसद में हंगामा तय है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा और पुलिसी एक्शन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी तेज है। आपको दिखाते हैं बिहार के सिवान की तस्वीरें, जहां पुलिस वाले AK-47 ताने नजर आए।
1: जहां हल्के बल प्रयोग से बात बन सकती थी, वहां AK-47 वाले जाबाज पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। तस्वीरें देखिए और देख लीजिए बिहार पुलिस का कारनामा। हर कोई पूछ रहा है कि क्या बिहार पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करती है। तस्वीरें 25 जुलाई की हैं। सिवान में छात्र गुस्से से भरे हुए थे, वो लगातार पथराव कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस भी आंसू गैस की गोले दाग रही थी। इसी प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सिवान पुलिस के अधिकारियों ने अपने AK-47 धारी जवानों को सड़कों पर उतार दिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पुलिस को घेरा, साथ ही सम्राट सरकार पर भी हमला बोला।
4: जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छा गुंडा है जिसपे खुद 7-7 हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
1: तेजस्वी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए तो ताजा ताजा आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए नेता पलटवार करने आए।
5: श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये बता रहा है कि गुंडा मानसिकता और लंपटीकरण संस्कृति किस तरह से तेजस्वी यादव जी के अंदर है।
1: सीवान के अलावा कल छपरा में भी बवाल हुआ था जिसमें रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें सिर में चोट लगी जिसका एक्सरे अब आ गया है। साथ ही सारण पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर उपद्रवियों की सूची जारी की है और लोगों से पहचान की अपील की है। कुमार अभिषेक के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
0: 36 दिनों तक सीजेपी आंदोलन के बाद अब काफी कुछ बदल गया और सबसे अहम ये कि शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को दी गई है। प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है और सरकार के सामने हालांकि चुनौतियां कम नहीं हुई हैं।
1: शनिवार का दिन छात्रों के नाम रहा, उनकी मांगे मान ली गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कुर्सी छोड़ी तो चंद घंटे के अंदर उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई। यानी अब तमाम परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने और शिक्षा से जुड़े बदलाव की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी संभालने जा रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया।
6: एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।
1: सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी दो बार इस्तीफे की पेशकश की थी। तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब प्रधान से कहा गया था कि वो शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व जारी रखें। लेकिन सीजेपी के दबाव का असर दिखा। सूत्रों की माने तो बातचीत के अंतिम दौर से पहले सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी मकसद के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। उनके पास उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। अब आने वाले समय में उनके सामने छात्रों के हित में अहम बदलाव की बड़ी चुनौती है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और सभी मांगे माने जाने के बाद रैली हुई और इस रैली में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और रोहित पवार, आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए।
1: मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली हो रही है। छात्रों की जीत के जश्न के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और देखते ही देखते शिवाजी पार्क में तिरंगा लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई ठाकरे बंधुओं ने की थी लेकिन ये यात्रा किसी पार्टी के बैनर तले नहीं थी, ये छात्रों की जीत का जश्न था।
7: आणि ही संघर्षाची सुरुवात झालेली आहे। हा संघर्ष भाजप विरुद्ध भारत असा हा संघर्ष आहे।
8: भाषण करण्याचा दिवस नव्हे। तुम्ही जे आंदोलन अख्ख्या देशभर पेटवलत, या देशातले जेंजी हे सरकारच्या झेंज्या कशा उपटतात हे आपल्याला या आंदोलनात कळलं।
1: इस तिरंगा यात्रा में छात्रों के साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची थी। ये 82 साल की शकुंतला घाटगे हैं जो छात्रों की जीत की खुशी में नाच रही हैं। नेताओं के साथ तिरंगा रैली में अभिनेताओं ने भी हिस्सा लिया।
9: बहुत होप्स है। जिस तरह का यहाँ पर सागर उमड़ा है वो बहुत हौसला देने वाला है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये जो देश है वो छात्रों के हाथ में है और युवा पीढ़ी के हाथ में और जेंजी के हाथ में है।
1: महात्मा गांधी के प्रपौत्र भी छात्रों की जीत का जश्न मनाने तिरंगा रैली में पहुंचे।
10: ये बहुत आशा देने वाला माहौल है क्योंकि युवा शक्ति फाइनली रास्तों पे निकली है और पुलिस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उससे अंदाजा आता है कि सत्ता में बैठे लोग इस युवा शक्ति से कितने घबराए हुए हैं।
1: तो दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का जश्न अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कोलकाता में बीते शुक्रवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। इस केस में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर लगातार छापेमारी भी चल रही है। आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।
1: जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे तो दो दिन पहले कोलकाता की सड़कों पर भी छात्रों का जमावड़ा लगा। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब छात्रों की भीड़ उग्र हो गई। जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस को निशाना बनाने का प्रयास हुआ। अब पुलिस ने छात्र आंदोलन के बीच उपद्रव करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
11: और भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। 24 जुलाई को SFI की रैली के दौरान कोलकाता के धर्मतल्ला में भारी बवाल हुआ था, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया था, बोतलें फेंकी गई थी।
1: बंगाल की पुलिस लगातार एक्शन में है।
12: तुरंत इसका कार्रवाई हुई है। नया जो गुंडा दमन कानून हुआ है उसका आधार पर लोगों का और सबका पनिशमेंट भी होगा और कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया गया और पूरी कार्रवाई जारी है, आगे तक चलेगा।
1: कोलकाता पुलिस का एक्शन जारी है। वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। जल्द ही इस केस में और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। कोलकाता से तपस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
13: उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था। और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है। लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है।
0: कारगिल की चोटियों पर 27 साल पहले लिखी गई जीत की इबारत आज फिर से गूंज उठी। द्रास में शहीदों को नमन किया गया, उनकी वीरता को सलाम किया गया और उस रणभूमि से पाकिस्तान को संदेश भी दिया गया।

कारगिल वॉर मेमोरियल, जहां तिरंगे की छांव में अमर जवानों के नाम आज भी इतिहास की तरह दर्ज हैं। 27वें कारगिल विजय दिवस पर यही स्मारक एक बार फिर पूरे राष्ट्र की श्रद्धा का केंद्र बना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास वॉर मेमोरियल में ऑपरेशन विजय के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया, वीरों को सलामी दी और उनके परिवारों को सम्मानित किया।

0: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भर में लोगों ने शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रास में आयोजित समारोह में उन्होंने साफ कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वाली सरकार के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर भी भारत का रुख स्पष्ट कर दिया।
1: पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: द्रास की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना चुका है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और आतंकवाद के नापाक गठजोड़ को अपने बयान में परत दर परत उजागर किया।
1: साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है।
0: कारगिल की रणभूमि से राजनाथ सिंह का संदेश साफ है, आतंकवाद पर भारत की नीति अब और कठोर है। भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। अशरफ वानी, द्रास, आज तक।
2: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच कई राज्यों से मुसीबत की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आफत गुजरात में दिख रही है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद में स्थिति बहुत गंभीर है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
3: शहर के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें डटी हुई हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। इसके बाद संकट के बीच SDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए SDRF के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं।
4: हम लोग यहाँ पर बावड़ा में हैं और ये गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें करीब कल की स्थिति में 900 जितने लोग फंस गए थे। अंदर 40 से 50 कंपनियां हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर अंदर जो जरूरी सामान था वो सब भी पहुंचवा दिया था। कल अभी तक 900 में से 500 जितने लोगों को बचा भी लिया गया है, बाहर ला दिया गया है। आर्मी की टीमें, कोस्ट गार्ड, NDRF, SDRF, लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है।
3: अहमदाबाद के इस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी हो रही है।
4: बाहर आने वाले लोग बता रहे हैं कि अंदर का जो पानी की स्थिति है वो कम से कम 6-7 फीट जैसी है, तो इसलिए बोट भी या कोई और ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है। पर धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है और कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअल्टी ना हो, जो अभी तक कहीं से ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तमाम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अंदर रहें, इंडोर्स रहें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सूचनाएं हैं समय समय पर उसका पालन करें।
3: अहमदाबाद शहर पर आसमानी आफत का हमला हुआ तो भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी हैं। सेना के जवानों के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।
5: रेस्क्यू की कामगिरी चालू है। कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले है और आज के टाइम में आज भी 70-80 आदमी हमने बाहर निकाले।
3: हालांकि भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी काफी ज्यादा भर गया है जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है।
6: अभी हम जो है बोट से अंदर जब देख के आए तो लगभग कुछ विस्तार में लगभग 10 फीट के आसपास भी पानी है और लेकिन जिन जिन लोगों को हम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और बाकी 500 लोगों को हमने लोकेट कर चुके हैं और उन लोगों को भी धीरे धीरे हम रेस्क्यू कर पाएंगे जो है। और आपके मार्फत मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहां पे तैनात हैं और हमारे पास 3 एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है और सभी टीम जो है डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है और यहां पर जो है हमने कम से कम 4-5 टीम यहां लगा रखी है। उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है और आज शाम तक जो है हम काफी कुछ जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे ऐसा अभी हमारा असेसमेंट है।
3: इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है। ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, आज तक।
2: सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं गुजरात के कई शहरों में बारिश इन दिनों मुसीबत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते अब तक गुजरात में 56 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा मौत नवसारी जिले में हुई जहां 21 लोगों की जान गई है।
3: भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं, सैलाब शहरों तक पहुंच गया है, कई शहरों में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और मुसीबत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में हाल बेहद बुरा है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। भारी बारिश के बाद मलबा बहकर सड़कों पर आ गया है। कई जगहों पर रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के कई शहर भारी बारिश से बेहाल हैं। हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मौसम की मार के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। एक दिन पहले वलसाड़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी उफान पर है, पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही है। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगी।
7: अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये भी वलसाड़ है, गुजरात का वलसाड़। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4-5 फीट तक पानी भरा है। इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान है। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड़ की है। शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुबन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमनगंगा नदी में 2,59,724 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया।
8: मैं इस वक्त वलसाड जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहतर से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 48, मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देख के आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
7: अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए, जहाँ मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में हुई। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रंग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो।
2: पूर्वोत्तर भारत में भी हाल यही है। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 जिले बाढ़ की चपेट में। 7 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। 60 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है।
9: असम में बाढ़ का कहर, बारिश और सैलाब से जनजीवन बेहाल। कई जिलों में हालात गंभीर। आसमानी आफत का असर अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, पूर्वोत्तर में भी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। असम के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। असम बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, कामरूप, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कामरूप, कार्बी, अंगलोंग और तिनसुकिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घरों के अंदर पानी भर चुका है, सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं और कई जगहों पर आवाजाही बंद हो गई है। पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कई परिवार अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की मार सिर्फ लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है, बल्कि इसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ा है। असम में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने का खतरा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। असम में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 3,75,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव में 1,86,000 और जोरहट में 1,15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। घरों से लेकर खेतों तक पानी भर चुका है। राज्य की कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग नदी, शिवसागर की किखोर और देसांग नदी, गोलाघाट की धनसिरी और श्रीभूमि की नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। शिवसागर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश ने असम की राजधानी गुवाहाटी की रफ्तार भी थाम दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें गुवाहाटी के एक पेट्रोल पंप की है, जहां पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर दुकानों, बैंकों और बाजारों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उफनती नदियां गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन रही है, तो दूसरी तरफ शहरों में जल निकासी की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश और बाढ़ के इन हालातों में सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: परीक्षा संशोधन बिल से पहले प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश, नंदन नीलकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स का ऐलान किया, कहा पारदर्शी बनाएंगे परीक्षा प्रक्रिया, लाएंगे कठोर कानून। पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आज संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल, 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल की सजा, 2 महीनों में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पैलेट गन को राहुल ने बनाया नया मुद्दा, गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ AK-47 को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74 फर्स्ट विलेज घूमकर लौटे 400 युवाओं ने प्रधानमंत्री से साझा किया अनुभव। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक, पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी बधाई। जंतर मंतर पर आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उस पर सियासत शुरू हो गई, विपक्ष सरकार को घेरने की अपनी रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा, राहुल गांधी ने छात्रों के साथ हुए हिंसा पर जवाब मांगा है, साथ ही विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि संसद में जबरदस्त हंगामे क्या सार है।
1: जंतर मंतर पर अब ना तो आंदोलन की तस्वीर दिख रही है, ना आंदोलनकारी दिख रहे हैं और ना ही वो सुरक्षा घेरा और बैरिकेड्स हैं। अब यहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ, दिल्ली अभी भी उसकी सियासी तपेश महसूस कर रही है। एक तरफ सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी तेवर दिखा रहा है। छात्रों पर 20 जुलाई को हुए एक्शन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। पत्र लिखकर राहुल ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने छात्रों पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया था, घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। राहुल ने ये आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से पूछा है कि क्या आपने पैलेट गन या अन्य घातक हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, अगर आपने नहीं दी थी तो किसने दी। पार्टी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी और सवाल करेगी।
2: He authorized the use of lethal weapons, pellet guns, on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament.
1: कांग्रेस कह रही है कि कौरवी शासन का अंत हुआ और विपक्ष रूपी पांडवों का नया उदय हुआ है।
3: 12 साल बीत गए कौरवी शासन की, मैं तुलना करता हूं मोदी सरकार की, पांडव लौट के आ गए युवा के रूप में, राहुल गांधी के रूप में, विपक्ष के रूप में। अब वहां भारत होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान सजेगा और पांडव जीतेंगे।
1: सोमवार को एक बार फिर संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सोमवार को ही केंद्र सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, लेकिन बिल पेश होने के पहले संसद में हंगामा तय है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा और पुलिसिया एक्शन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी तेज है। आपको दिखाते हैं बिहार के सिवान की तस्वीरें, जहां पुलिस वाले AK-47 ताने नजर आए।
1: जहां हल्के बल प्रयोग से बात बन सकती थी, वहां AK-47 वाले जाबाज पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। तस्वीरें देखिए और देख लीजिए बिहार पुलिस का कारनामा। हर कोई पूछ रहा है कि क्या बिहार पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करती है। तस्वीरें 25 जुलाई की हैं। सिवान में छात्र गुस्से से भरे हुए थे, वो लगातार पथराव कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस भी आंसू गैस की गोले दाग रही थी। इसी प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सिवान पुलिस के अधिकारियों ने अपने AK-47 धारी जवानों को सलकों पर उतार दिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पुलिस को घेरा, साथ ही सम्राट सरकार पर भी हमला बोला।
4: जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है जिसपे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
1: तेजस्वी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए तो ताजा ताजा आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए नेता पलटवार करने आए।
5: श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये बता रहा है कि गुंडा मानसिकता और लंपटीकरण संस्कृति किस तरह से तेजस्वी यादव जी के अंदर।
1: सिवान के अलावा कल छपरा में भी बवाल हुआ था जिसमें रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें सिर में चोट लगी जिसका एक्सरे अब आ गया है। साथ ही सारण पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर उपद्रवियों की सूची जारी की है और लोगों से पहचान की अपील की है। कुमार अभिषेक के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
0: 36 दिनों तक सीजेपी आंदोलन के बाद अब काफी कुछ बदल गया और सबसे अहम ये कि शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को दी गई है। प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है और सरकार के सामने हालांकि चुनौतियां कम नहीं हुई हैं।
1: शनिवार का दिन छात्रों के नाम रहा, उनकी मांगे मान ली गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कुर्सी छोड़ी तो चंद घंटे के अंदर उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई। यानी अब तमाम परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने और शिक्षा से जुड़े बदलाव की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी संभालने जा रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया।
6: एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।
1: सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी दो बार इस्तीफे की पेशकश की थी। तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब प्रधान से कहा गया था कि वो शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व जारी रखें। लेकिन सीजेपी के दबाव का असर दिखा। सूत्रों की माने तो बातचीत के अंतिम दौर से पहले सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी मकसद के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। उनके पास उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। अब आने वाले समय में उनके सामने छात्रों के हित में अहम बदलाव की बड़ी चुनौती है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और सभी मांगे माने जाने के बाद रैली हुई और इस रैली में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और रोहित पवार, आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए।
1: मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली हो रही है। छात्रों की जीत के जश्न के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और देखते ही देखते शिवाजी पार्क में तिरंगा लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई ठाकरे बंधुओं ने की थी लेकिन ये यात्रा किसी पार्टी के बैनर तले नहीं थी, ये छात्रों की जीत का जश्न था।
7: आणि ही संघर्षाची सुरुवात झालेली आहे। हा संघर्ष भाजप विरुद्ध भारत असा हा संघर्ष आहे।
8: भाषण करण्याचा दिवस नव्हे, तुम्ही जे आंदोलन अख्ख्या देशभर पेटवलत, या देशातले जेंजी हे सरकारच्या झेंज्या कशा उपटतात हे आपल्याला या आंदोलनातून कळलं।
1: इस तिरंगा यात्रा में छात्रों के साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची थी। ये 82 साल की शकुंतला घाटगे हैं जो छात्रों की जीत की खुशी में नाच रही हैं। नेताओं के साथ तिरंगा रैली में अभिनेताओं ने भी हिस्सा लिया।
9: बहुत होप्स हैं, बहुत होप्स हैं। जिस तरह का यहाँ पर सागर उमड़ा है वो बहुत हौसला देने वाला है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये जो देश है वो छात्रों के हाथ में है और युवा पीढ़ी के हाथ में और जेंजी के हाथ में है।
1: महात्मा गांधी के प्रपौत्र भी छात्रों की जीत का जश्न मनाने तिरंगा रैली में पहुंचे।
10: ये बहुत आशा देने वाला माहौल है क्योंकि युवा शक्ति फाइनली रास्तों पे निकली है और पुलिस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उससे अंदाजा आता है कि इस सत्ता में बैठे लोग इस युवा शक्ति से कितने घबराए हुए हैं।
1: तो दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का जश्न अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कोलकाता में बीते शुक्रवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। इस केस में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर लगातार छापेमारी भी चल रही है। आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।
1: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे तो दो दिन पहले कोलकाता की सड़कों पर भी छात्रों का जमावड़ा लगा। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ था, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब छात्रों की भीड़ उग्र हो गई। जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस को निशाना बनाने का प्रयास हुआ। अब पुलिस ने छात्र आंदोलन के बीच उपद्रव करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
11: और भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। 24 जुलाई को एसएफआई की रैली के दौरान कोलकाता के धर्मतल्ला में भारी बवाल हुआ था, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया था, बोतलें फेंकी गई थी।
1: बंगाल की पुलिस लगातार एक्शन में है।
12: तुरंत इसका कार्रवाई हुई है। नया जो गुंडा दमन कानून हुआ है उसका आधार पर लोगों का और सबका पनिशमेंट भी होगा और कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया गया और पूरी कार्रवाई जारी है, आगे तक चलेगा।
1: कोलकाता पुलिस का एक्शन जारी है। वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। जल्द ही इस केस में और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। कोलकाता से तपस्विन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ी इटावा में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
13: उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था। और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है।
0: कारगिल की चोटियों पर 27 साल पहले लिखी गई जीत की इबारत आज फिर से गूंज उठी। द्रास में शहीदों को नमन किया गया, उनकी वीरता को सलाम किया गया और उस रणभूमि से पाकिस्तान को संदेश भी दिया गया।

केंद्र बना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास वॉर मेमोरियल में ऑपरेशन विजय के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया, वीरों को सलामी दी और उनके परिवारों को सम्मानित किया।

0: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भर में लोगों ने शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रास में आयोजित समारोह में उन्होंने साफ कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वाली सरकार के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर भी भारत का रुख स्पष्ट कर दिया।
1: पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: द्रास की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना चुका है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और आतंकवाद के नापाक गठजोड़ को अपने बयान में परत दर परत उजागर किया।
1: साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है।
0: कारगिल की रणभूमि से राजनाथ सिंह का संदेश साफ है, आतंकवाद पर भारत की नीति अब और कठोर है। भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। अशरफ वानी, द्रास, आज तक।
2: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच कई राज्यों से मुसीबत की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आफत गुजरात में दिख रही है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद में स्थिति बहुत गंभीर है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
3: शहर के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें डटी हुई हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की हैं, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। इसके बाद संकट के बीच एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए एसडीआरएफ के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं।
4: हम लोग यहाँ पर बावड़ा में हैं और ये गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें करीब कल की स्थिति में 900 जितने लोग फंस गए थे। अंदर 40 से 50 कंपनियां हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर अंदर जो जरूरी सामान था वो सब भी पहुंचवा दिया था। कल अभी तक 900 में से 500 जितने लोगों को बचा भी लिया गया है, बाहर ला दिया गया है। आर्मी की टीमें, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है।
3: अहमदाबाद के इस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा

0: होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी हो रही है।
1: बाहर आने वाले लोग बता रहे हैं कि अंदर का जो पानी की स्थिति है वो कम से कम 6-7 फीट जैसी है, तो इसलिए बोट भी या कोई और ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है। पर धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है और कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअल्टी ना हो, जो अभी तक कहीं से ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तमाम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अंदर रहें, इंडोर्स रहें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सूचनाएं हैं समय समय पर उसका पालन करें।
0: अहमदाबाद शहर पर आसमानी आफत का हमला हुआ तो भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी हैं। सेना के जवानों के साथ SDRF की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।
2: रेस्क्यू की कामगिरी चालू है। कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है, तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले है और आज के टाइम में आज भी 70-80 आदमी हमने बाहर निकाले।
0: हालांकि भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी काफी ज्यादा भर गया है, जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है।
3: अभी हम जो है बोट से अंदर जब देख के आए तो लगभग कुछ विस्तार में लगभग 10 फीट के आसपास भी पानी है, और लेकिन जिन लोगों को हम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और बाकी 500 लोगों को हमने लोकेट कर चुके हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे हम रेस्क्यू कर पाएंगे जो है। और आपके मार्फत मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहां पे तैनात हैं और हमारे पास 3 SDRF की टीम है, NDRF की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है और सभी टीम जो है डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहां पर जो है हमने कम से कम 4-5 टीमें लगा रखी है, उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है और आज शाम तक जो हम काफी कुछ जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा अभी हमारा असेसमेंट है।
0: इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है, ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, आज तक।
4: सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई शहरों में बारिश इन दिनों मुसीबत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते अब तक गुजरात में 56 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा मौत नवसारी जिले में हुई, जहां 21 लोगों की जान गई है।
0: भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं, सैलाब शहरों तक पहुंच गया है, कई शहरों में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और मुसीबत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में हाल बेहद बुरा है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। भारी बारिश के बाद मलबा बहकर सड़कों पर आ गया है, कई जगहों पर रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के कई शहर भारी बारिश से बेहाल है, हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मौसम की मार के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। एक दिन पहले वलसाड से आई इन तस्वीरों को देखिए, नदी उफान पर है, पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही है। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगी।
5: अब जरा आगे की तस्वीर देखिए, मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये भी वलसाड है, गुजरात का वलसाड। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4-5 फीट तक पानी भरा है, इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान है। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड की है, शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुबन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमन गंगा नदी में 2,59,724 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया।
6: मैं इस वक्त वलसाड़ जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 48, मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देख आप से देख सकते हैं जो गाड़ियाँ है वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
5: अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए, जहाँ मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में हुई। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रंग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो।
4: पूर्वोत्तर भारत में भी हाल यही है। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 जिले बाढ़ की चपेट में। 7 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। 60 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है।
7: असम में बाढ़ का कहर, बारिश और सैलाब से जनजीवन बेहाल। कई जिलों में हालात गंभीर। आसमानी आफत का असर अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, पूर्वोत्तर में भी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। असम के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। असम बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, कामरूप, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कामरूप, कार्बी, आंगलोंग और तिनसुकिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घरों के अंदर पानी भर चुका है, सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं और कई जगहों पर आवाजाही बंद हो गई है। पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कई परिवार अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की मार सिर्फ लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है, बल्कि इसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ा है। असम में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने का खतरा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। असम में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 3,75,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव में 1,86,000 और जोरहट में 1,15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। घरों से लेकर खेतों तक पानी भर चुका है। राज्य की कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग नदी, शिवसागर की किखोर और देसांग नदी, गोलाघाट की धनसिरी और श्रीभूमि की नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। शिवसागर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश ने असम की राजधानी गुवाहाटी की रफ्तार भी थाम दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें गुवाहाटी के एक पेट्रोल पंप की है, जहां पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर दुकानों, बैंकों और बाजारों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उफनती नदियां गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन रही है, तो दूसरी तरफ शहरों में जल निकासी की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश और बाढ़ के इन हालातों में सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
4: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: Hey, Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
9: To right field, and it will leave.
8: From the first pitch of the season to the stretch run,
9: and that's the ball game.
8: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
10: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: परीक्षा संशोधन बिल से पहले प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश। नंदन नीलेकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स का ऐलान किया, कहा पारदर्शी बनाएंगे परीक्षा प्रक्रिया, लाएंगे कठोर कानून। पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आज संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल। 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल की सजा, 2 महीनों में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पैलेट गन को राहुल ने बनाया नया मुद्दा, गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ AK-47 को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74वां विलेज घूमकर लौटे 400 युवाओं ने प्रधानमंत्री से साझा किया अनुभव। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक, पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी बधाई। जंतर मंतर पर आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उस पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष सरकार को घेरने की अपनी रणनीति अपनाने पर विचार करा, राहुल गांधी ने छात्रों के साथ हुए हिंसा पर जवाब मांगा है, साथ ही विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं।
1: जंतर मंतर पर अब ना तो आंदोलन की तस्वीर दिख रही है, ना आंदोलनकारी दिख रहे हैं और ना ही वो सुरक्षा घेरा और बैरिकेड्स हैं। अब यहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ दिल्ली अभी भी उसकी सियासी तपेश महसूस कर रही है। एक तरफ सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी तेवर दिखा रहा है। छात्रों पर 20 जुलाई को हुए एक्शन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। पत्र लिखकर राहुल ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने छात्रों पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया था, घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। राहुल ने यह आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से पूछा है कि क्या आपने पैलेट गन या अन्य घातक हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, अगर आपने नहीं दी थी तो किसने दी। पार्टी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी और सवाल करेगी।
2: He authorized the use of lethal weapons, pellet guns, on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament.
1: कांग्रेस कह रही है कि कौरवी शासन का अंत हुआ और विपक्ष रूपी पांडवों का नया उदय हुआ है।
3: 12 साल बीत गए हैं कौरवी शासन की, मैं तुलना करता हूं मोदी सरकार की, पांडव लौट के आ गए हैं युवा के रूप में, राहुल गांधी के रूप में, विपक्ष के रूप में। अब वहां भारत होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान सजेगा और पांडव जीतेंगे।
1: सोमवार को एक बार फिर संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सोमवार को ही केंद्र सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, लेकिन बिल पेश होने के पहले संसद में हंगामा तय है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा और पुलिसी एक्शन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी तेज है। आपको दिखाते हैं बिहार के सिवान की तस्वीरें, जहां पुलिस वाले AK-47 ताने नजर आए।
1: जहां हल्के बल प्रयोग से बात बन सकती थी, वहां AK-47 वाले जाबाज पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। तस्वीरें देखिए और देख लीजिए बिहार पुलिस का कारनामा। हर कोई पूछ रहा है कि क्या बिहार पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करती है। तस्वीरें 25 जुलाई की हैं। सिवान में छात्र गुस्से से भरे हुए थे, वो लगातार पथराव कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस भी आंसू गैस की गोले दाग रही थी। इसी प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सिवान पुलिस के अधिकारियों ने अपने AK-47 धारी जवानों को सलकों पर उतार दिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पुलिस को घेरा, साथ ही सम्राट सरकार पर भी हमला बोला।
4: जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सुरक्षा गुंडा है जिसपे खुद 7-7 हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
1: तेजस्वी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए तो ताजा ताजा आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए नेता पलटवार करने आए।
5: श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये बता रहा है कि गुंडा मानसिकता और लंपटीकरण संस्कृति किस तरह से तेजस्वी यादव जी के अंदर है।
1: सिवान के अलावा कल छपरा में भी बवाल हुआ था जिसमें रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें सिर में चोट लगी जिसका एक्सरे अब आ गया है। साथ ही सारण पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर उपद्रवियों की सूची जारी की है और लोगों से पहचान की अपील की है। कुमार अभिषेक के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
0: 36 दिनों तक सीजेपी आंदोलन के बाद अब काफी कुछ बदल गया और सबसे अहम ये कि शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को दी गई है। प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है और सरकार के सामने हालांकि चुनौतियां कम नहीं हुई।
1: शनिवार का दिन छात्रों के नाम रहा, उनकी मांगे मान ली गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कुर्सी छोड़ी तो चंद घंटे के अंदर उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई। यानी अब तमाम परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने और शिक्षा से जुड़े बदलाव की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी संभालने जा रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया।
6: एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।
1: सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी दो बार इस्तीफे की पेशकश की थी। तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब प्रधान से कहा गया था कि वो शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व जारी रखें। लेकिन सीजेपी के दबाव का असर दिखा। सूत्रों की माने तो बातचीत के अंतिम दौर से पहले सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी मकसद के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। उनके पास उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। अब आने वाले समय में उनके सामने छात्रों के हित में अहम बदलाव की बड़ी चुनौती है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और सभी मांगे माने जाने के बाद रैली हुई और इस रैली में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और रोहित पवार, आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए।
1: मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली हो रही है। छात्रों की जीत के जश्न के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और देखते ही देखते शिवाजी पार्क में तिरंगा लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई ठाकरे बंधुओं ने की थी लेकिन ये यात्रा किसी पार्टी के बैनर तले नहीं थी, ये छात्रों की जीत का जश्न था।
7: आणि ही संघर्षाची सुरुवात झालेली आहे। हा संघर्ष भाजप विरुद्ध भारत असा हा संघर्ष आहे।
8: भाषण करण्याचा दिवस नव्हे, तुम्ही जे आंदोलन अख्ख्या देशभर पेटवलत, या देशातले जेंजी हे सरकारच्या झेंज्या कशा उपटतात हे आपल्याला या आंदोलनातलं कळलं।
1: इस तिरंगा यात्रा में छात्रों के साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची थी। ये 82 साल की शकुंतला घाटगे हैं जो छात्रों की जीत की खुशी में नाच रही हैं। नेताओं के साथ तिरंगा रैली में अभिनेताओं ने भी हिस्सा लिया।
9: बहुत होप्स है। जिस तरह का यहाँ पर सागर उमड़ा है वो बहुत हौसला देने वाला है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये जो देश है वो छात्रों के हाथ में है और युवा पीढ़ी के हाथ में और जेंजी के हाथ में है।
1: महात्मा गांधी के प्रपौत्र भी छात्रों की जीत का जश्न मनाने तिरंगा रैली में पहुंचे।
10: ये बहुत आशा देने वाला माहौल है क्योंकि युवा शक्ति फाइनली रास्तों पे निकली है और पुलिस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उससे अंदाजा आता है कि सत्ता में बैठे लोग इस युवा शक्ति से कितने घबराए हुए हैं।
1: तो दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का जश्न अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कोलकाता में बीते शुक्रवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। इस केस में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर लगातार छापेमारी भी चल रही है। आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।
1: जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे तो दो दिन पहले कोलकाता की सड़कों पर भी छात्रों का जमावड़ा लगा। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ था, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब छात्रों की भीड़ उग्र हो गई। जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस को निशाना बनाने का प्रयास हुआ। अब पुलिस ने छात्र आंदोलन के बीच उपद्रव करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
11: और भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। 24 जुलाई को SFI की रैली के दौरान कोलकाता के धर्मतल्ला में भारी बवाल हुआ था, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया था, बोतलें फेंकी गई थी।
1: बंगाल की पुलिस लगातार एक्शन में है।
12: तुरंत इसका कार्रवाई हुई है। नया जो गुंडा दमन कानून हुआ है उसका आधार पर लोगों का और सबका पनिशमेंट भी होगा और कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया गया और पूरी कार्रवाई जारी है, आगे तक चलेगा।
1: कोलकाता पुलिस का एक्शन जारी है। वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। जल्द ही इस केस में और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
13: उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था। और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है।
0: कारगिल की चोटियों पर 27 साल पहले लिखी गई जीत की इबारत आज फिर से गूंज उठी। द्रास में शहीदों को नमन किया गया, उनकी वीरता को सलाम किया गया और उस रणभूमि से पाकिस्तान को संदेश भी दिया गया।

कारगिल वॉर मेमोरियल, जहां तिरंगे की छांव में अमर जवानों के नाम आज भी इतिहास की तरह दर्ज हैं। 27वें कारगिल विजय दिवस पर यही स्मारक एक बार फिर पूरे राष्ट्र की श्रद्धा का केंद्र बना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास वॉर मेमोरियल में ऑपरेशन विजय के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया, वीरों को सलामी दी और उनके परिवारों को सम्मानित किया।

0: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भर में लोगों ने शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रास में आयोजित समारोह में उन्होंने साफ कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वाली सरकार के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर भी भारत का रुख स्पष्ट कर दिया।
1: पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: द्रास की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना चुका है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और आतंकवाद के नापाक गठजोड़ को अपने बयान में परत दर परत उजागर किया।
1: साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है।
0: कारगिल की रणभूमि से राजनाथ सिंह का संदेश साफ है, आतंकवाद पर भारत की नीति अब और कठोर है। भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। अशरफ वानी, द्रास, आज तक।
2: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच कई राज्यों से मुसीबत की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आफत गुजरात में दिख रही है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद में स्थिति बहुत गंभीर है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
3: शहर के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें डटी हुई हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की हैं, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। इसके बाद संकट के बीच SDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए SDRF के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं।
4: हम लोग यहाँ पर बावड़ा में हैं और ये गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें करीब कल की स्थिति में 900 जितने लोग फंस गए थे। अंदर 40 से 50 कंपनियां हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर अंदर जो जरूरी सामान था वो सब भी पहुंचवा दिया था। कल अभी तक 900 में से 500 जितने लोगों को बचा भी लिया गया है, बाहर ला दिया गया है। आर्मी की टीमें, कोस्ट गार्ड, NDRF, SDRF, लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है।
3: अहमदाबाद के इस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी हो रही है।
4: बाहर आने वाले लोग बता रहे हैं कि अंदर का जो पानी की स्थिति है वो कम से कम 6-7 फीट जैसी है, तो इसलिए बोट भी या कोई और ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है। पर धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है और कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअल्टी ना हो, जो अभी तक कहीं से ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तमाम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अंदर रहें, इंडोर्स रहें, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सूचनाएं हैं समय समय पर उसका पालन करें।
3: अहमदाबाद शहर पर आसमानी आफत का हमला हुआ तो भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी हैं। सेना के जवानों के साथ SDRF की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।
5: रेस्क्यू की कामगिरी चालू है। कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है, तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले है, और आज के टाइम में आज भी 70-80 आदमी हमने बाहर निकाले हैं।
3: हालांकि भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी काफी ज्यादा भर गया है, जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है।
6: अभी हम जो है बोट से अंदर जब देख के आए तो लगभग कुछ विस्तार में लगभग 10 फीट के आसपास भी पानी है, और लेकिन जिन लोगों को हम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, और बाकी 500 लोगों को हमने लोकेट कर चुके हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे हम रेस्क्यू कर पाएंगे जो है। और आपके मार्फत मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहां पे तैनात हैं, और हमारे पास 3 SDRF की टीम है, NDRF की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है, और सभी टीम जो है डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहां पर जो है हमने कम से कम 4-5 टीमें लगा रखी है, उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है, और आज शाम तक जो हम काफी कुछ जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा अभी हमारा असेसमेंट है।
3: इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है। ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, आज तक।
2: सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई शहरों में बारिश इन दिनों मुसीबत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते अब तक गुजरात में 56 लोगों की मौत हो चुकी है, और सबसे ज्यादा मौत नवसारी जिले में हुई, जहां 21 लोगों की जान गई है।
3: भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं, सैलाब शहरों तक पहुंच गया है, कई शहरों में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, और मुसीबत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में हाल बेहद बुरा है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। भारी बारिश के बाद मलबा बहकर सड़कों पर आ गया है, कई जगहों पर रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के कई शहर भारी बारिश से बेहाल है। हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मौसम की मार के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। एक दिन पहले वलसाड से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी उफान पर है, पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही है। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगी।
7: अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है, और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये भी वलसाड है, गुजरात का वलसाड। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4-5 फीट तक पानी भरा है। इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान है। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड की है। शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुबन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमनगंगा नदी में 2,59,724 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया।
8: मैं इस वक्त वलसाड जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 48, मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देखे आप से देख सकते हैं जो गाड़ियां है वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
7: अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए, जहाँ मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में हुई। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रंग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो।
2: पूर्वोत्तर भारत में भी हाल यही है। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 जिले बाढ़ की चपेट में। 7 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। 60 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है।
9: असम में बाढ़ का कहर, बारिश और सैलाब से जनजीवन बेहाल। कई जिलों में हालात गंभीर। आसमानी आफत का असर अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, पूर्वोत्तर में भी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। असम के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। असम बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, कामरूप, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कामरूप, कार्बी, आंगलोंग और तिनसुकिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घरों के अंदर पानी भर चुका है, सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं और कई जगहों पर आवाजाही बंद हो गई है। पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कई परिवार अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की मार सिर्फ लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है, बल्कि इसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ा है। असम में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने का खतरा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। असम में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 3,75,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव में 1,86,000 और जोरहट में 1,15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। घरों से लेकर खेतों तक पानी भर चुका है। राज्य की कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग नदी, शिवसागर की किखोर और देसांग नदी, गोलाघाट की धनसिरी और श्रीभूमि की नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। शिवसागर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश ने असम की राजधानी गुवाहाटी की रफ्तार भी थाम दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें गुवाहाटी के एक पेट्रोल पंप की है, जहां पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर दुकानों, बैंकों और बाजारों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उफनती नदियां गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन रही है, तो दूसरी तरफ शहरों में जल निकासी की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश और बाढ़ के इन हालातों में सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: परीक्षा संशोधन बिल से पहले प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश। नंदन नीलेकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स का ऐलान किया, कहा पारदर्शी बनाएंगे परीक्षा प्रक्रिया, लाएंगे कठोर कानून। पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आज संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल। 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल की सजा, 2 महीनों में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पैलेट गन को राहुल ने बनाया नया मुद्दा, गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ AK-47 को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74 विलेज घूमकर लौटे 400 युवाओं ने प्रधानमंत्री से साझा किया अनुभव। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक, पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी बधाई। जंतर मंतर पर आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उस पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष सरकार को घेरने की अपनी रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ हुए हिंसा पर जवाब मांगा है, साथ ही विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं।
1: जंतर मंतर पर अब ना तो आंदोलन की तस्वीर दिख रही है, ना आंदोलनकारी दिख रहे हैं और ना ही वो सुरक्षा घेरा और बैरिकेड्स हैं। अब यहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ, दिल्ली अभी भी उसकी सियासी तपिश महसूस कर रही है। एक तरफ सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी तेवर दिखा रहा है। छात्रों पर 20 जुलाई को हुए एक्शन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। पत्र लिखकर राहुल ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने छात्रों पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया था, घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। राहुल ने यह आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से पूछा है कि क्या आपने पैलेट गन या अन्य घातक हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी? अगर आपने नहीं दी थी तो किसने दी? पार्टी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी और सवाल करेगी।
2: He authorized the use of lethal weapons, pellet guns, on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament.
1: कांग्रेस कह रही है कि कौरवी शासन का अंत हुआ और विपक्ष रूपी पांडवों का नया उदय हुआ है।
3: 12 साल बीत गए हैं कौरवी शासन की, मैं तुलना करता हूं मोदी सरकार की। पांडव लौट के आ गए हैं युवा के रूप में, राहुल गांधी के रूप में, विपक्ष के रूप में। अब वहां भारत होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान सजेगा और पांडव जीतेंगे।
1: सोमवार को एक बार फिर संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सोमवार को ही केंद्र सरकार लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, लेकिन बिल पेश होने के पहले संसद में हंगामा तय है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा और पुलिसी एक्शन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी तेज है। आपको दिखाते हैं बिहार के सिवान की तस्वीरें, जहां पुलिस वाले AK-47 ताने नजर आए।
1: जहां हल्के बल प्रयोग से बात बन सकती थी, वहां AK-47 वाले जाबाज पुलिसकर्मी मैदान में उतर गए। तस्वीरें देखिए और देख लीजिए बिहार पुलिस का कारनामा। हर कोई पूछ रहा है कि क्या बिहार पुलिस ऐसे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करती है। तस्वीरें 25 जुलाई की हैं। सिवान में छात्र गुस्से से भरे हुए थे, वो लगातार पथराव कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस भी आंसू गैस की गोले दाग रही थी। इसी प्रदर्शन पर काबू करने के लिए सिवान पुलिस के अधिकारियों ने अपने AK-47 धारी जवानों को सलकों पर उतार दिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर पुलिस को घेरा, साथ ही सम्राट सरकार पर भी हमला बोला।
4: जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छा गुंडा है जिसपे खुद 7-7 हत्या के मुकदमे हैं, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
1: तेजस्वी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए तो ताजा ताजा आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुए नेता पलटवार करने आए।
5: श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये बता रहा है कि गुंडा मानसिकता और लंपटीकरण संस्कृति किस तरह से तेजस्वी यादव जी के अंदर है।
1: सिवान के अलावा कल छपरा में भी बवाल हुआ था जिसमें रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें सिर में चोट लगी जिसका एक्सरे अब आ गया है। साथ ही सारण पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर उपद्रवियों की सूची जारी की है और लोगों से पहचान की अपील की है। कुमार अभिषेक के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
0: 36 दिनों तक सीजेपी आंदोलन के बाद अब काफी कुछ बदल गया और सबसे अहम ये कि शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जिम्मेदारी अब प्रहलाद जोशी को दी गई है। प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है और सरकार के सामने हालांकि चुनौतियां कम नहीं हुई।
1: शनिवार का दिन छात्रों के नाम रहा, उनकी मांगे मान ली गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कुर्सी छोड़ी तो चंद घंटे के अंदर उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई। यानी अब तमाम परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने और शिक्षा से जुड़े बदलाव की बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी संभालने जा रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज इन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया।
6: एक नई जिम्मेदारी मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा और बाकी जो चीजें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं।
1: सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी दो बार इस्तीफे की पेशकश की थी। तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब प्रधान से कहा गया था कि वो शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व जारी रखें। लेकिन सीजेपी के दबाव का असर दिखा। सूत्रों की माने तो बातचीत के अंतिम दौर से पहले सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी मकसद के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। उनके पास उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। अब आने वाले समय में उनके सामने छात्रों के हित में अहम बदलाव की बड़ी चुनौती है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और सभी मांगे माने जाने के बाद रैली हुई और इस रैली में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और रोहित पवार, आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए।
1: मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा रैली हो रही है। छात्रों की जीत के जश्न के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और देखते ही देखते शिवाजी पार्क में तिरंगा लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई ठाकरे बंधुओं ने की थी लेकिन ये यात्रा किसी पार्टी के बैनर तले नहीं थी, ये छात्रों की जीत का जश्न था।
7: आणि ही संघर्षाची सुरुवात झालेली आहे। हा संघर्ष भाजप विरुद्ध भारत असा हा संघर्ष आहे।
8: भाषण करण्याचा दिवस नव्हे, तुम्ही जे आंदोलन अख्ख्या देशभर पेटवलत, या देशातले झेंजी हे सरकारच्या झेंज्या कशा उपटतात हे आपल्याला या आंदोलनातून कळलं।
1: इस तिरंगा यात्रा में छात्रों के साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी पहुंची थी। ये 82 साल की शकुंतला घाटगे हैं जो छात्रों की जीत की खुशी में नाच रही हैं। नेताओं के साथ तिरंगा रैली में अभिनेताओं ने भी हिस्सा लिया।
9: बहुत होप्स है। जिस तरह का यहाँ पर सागर उमड़ा है वो बहुत हौसला देने वाला है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये जो देश है वो छात्रों के हाथ में है और युवा पीढ़ी के हाथ में और जेंजी के हाथ में है।
1: महात्मा गांधी के प्रपौत्र भी छात्रों की जीत का जश्न मनाने तिरंगा रैली में पहुंचे।
10: ये बहुत आशा देने वाला माहौल है क्योंकि युवा शक्ति फाइनली रास्तों पे निकली है और पुलिस जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उससे अंदाजा आता है कि सत्ता में बैठे लोग इस युवा शक्ति से कितने घबराए हुए हैं।
1: तो दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का जश्न अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख और ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कोलकाता में बीते शुक्रवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ। इस मामले में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। इस केस में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर लगातार छापेमारी भी चल रही है। आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।
1: जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे तो दो दिन पहले कोलकाता की सड़कों पर भी छात्रों का जमावड़ा लगा। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ था, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब छात्रों की भीड़ उग्र हो गई। जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस को निशाना बनाने का प्रयास हुआ। अब पुलिस ने छात्र आंदोलन के बीच उपद्रव करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
11: और भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। 24 जुलाई को एसएफआई की रैली के दौरान कोलकाता के धर्मतल्ला में भारी बवाल हुआ था, जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया था, बोतलें फेंकी गई थी।
1: बंगाल की पुलिस लगातार एक्शन में है।
12: तुरंत इसका कार्रवाई हुई है। नया जो गुंडा दमन कानून हुआ है उसका आधार पर लोगों का और सबका पनिशमेंट भी होगा और कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया गया और पूरी कार्रवाई जारी है, आगे तक चलेगा।
1: कोलकाता पुलिस का एक्शन जारी है। वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। जल्द ही इस केस में और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। कोलकाता से तपस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
13: उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था। और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है।
0: कारगिल की चोटियों पर 27 साल पहले लिखी गई जीत की इबारत आज फिर से गूंज उठी। द्रास में शहीदों को नमन किया गया, उनकी वीरता को सलाम किया गया और उस रणभूमि से पाकिस्तान को संदेश भी दिया गया।

0: द्रास में आयोजित समारोह में उन्होंने साफ कहा कि भारत अब आतंकवाद और उसे संरक्षण देने वाली सरकार के बीच कोई फर्क नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर भी भारत का रुख स्पष्ट कर दिया।
1: पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: द्रास की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना चुका है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और आतंकवाद के नापाक गठजोड़ को अपने बयान में परत दर परत उजागर किया।
1: साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है।
0: कारगिल की रणभूमि से राजनाथ सिंह का संदेश साफ है, आतंकवाद पर भारत की नीति अब और कठोर है। भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह जारी रहेगी। अशरफ वानी, द्रास, आज तक।
2: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच कई राज्यों से मुसीबत की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आफत गुजरात में दिख रही है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अहमदाबाद में स्थिति बहुत गंभीर है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
3: शहर के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है, गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें डटी हुई हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की हैं, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। इसके बाद संकट के बीच SDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए SDRF के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं।
4: हम लोग यहाँ पर बावड़ा में हैं और ये गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें करीब कल की स्थिति में 900 जितने लोग फंस गए थे। अंदर 40 से 50 कंपनियां हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर अंदर जो जरूरी सामान था वो सब भी पहुंचवा दिया था। कल अभी तक 900 में से 500 जितने लोगों को बचा भी लिया गया है, बाहर ला दिया गया है। आर्मी की टीमें, कोस्ट गार्ड, NDRF, SDRF, लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है।
3: अहमदाबाद के इस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी हो रही है।
4: बाहर आने वाले लोग बता रहे हैं कि अंदर का जो पानी की स्थिति है वो कम से कम 6-7 फीट जैसी है, तो इसलिए बोट भी या कोई और ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है। पर धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है और कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअलिटी ना हो, जो अभी तक कहीं से ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तमाम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अंदर रहें, इंडोर्स रहें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सूचनाएं हैं समय समय पर उसका पालन करें।

0: अहमदाबाद शहर पर आसमानी आफत का हमला हुआ तो भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी हैं। सेना के जवानों के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके।
1: रेस्क्यू की कामगिरी चालू है। कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है, तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले है, और आज के टाइम में आज भी 70-80 आदमी हमने बाहर निकाले हैं।
0: हालांकि भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी काफी ज्यादा भर गया है, जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है।
2: अभी हम जो है बोट से अंदर जब देख के आए तो लगभग कुछ विस्तार में लगभग 10 फीट के आसपास भी पानी है, और लेकिन जिन जिन लोगों को हम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, और बाकी 500 लोगों को हमने लोकेट कर चुके हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे हम रेस्क्यू कर पाएंगे जो है। और आपके मार्फत मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहाँ पे तैनात है, और हमारे पास 3 SDRF की टीम है, NDRF की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है, और सभी टीम जो है डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो है हमने कम से कम 4 से 5 टीमें लगा रखी है, उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है, और आज शाम तक जो है हम काफी कुछ जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा अभी हमारा असेसमेंट है।
0: इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है। ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, आज तक।
3: सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई शहरों में बारिश इन दिनों मुसीबत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते अब तक गुजरात में 56 लोगों की मौत हो चुकी है, और सबसे ज्यादा मौत नवसारी जिले में हुई, जहां 21 लोगों की जान गई है।

0: भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। सैलाब शहरों तक पहुंच गया है। कई शहरों में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और मुसीबत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में हाल बेहद बुरा है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। भारी बारिश के बाद मलबा बहकर सड़कों पर आ गया है। कई जगहों पर रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के कई शहर भारी बारिश से बेहाल हैं। हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मौसम की मार के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। एक दिन पहले वलसाड़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी उफान पर है, पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही है। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगी।
1: अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये भी वलसाड़ है, गुजरात का वलसाड़। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान हैं। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड़ की है। शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुबन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमन गंगा नदी में 2,59,724 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया।
2: मैं इस वक्त वलसाड़ जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 48, मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है, यहाँ देखकर आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है।
1: अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए, जहाँ मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में हुई। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रंग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो।
3: पूर्वोत्तर भारत में भी हाल यही है। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 जिले बाढ़ की चपेट में। 7 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। 60 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है।
4: असम में बाढ़ का कहर, बारिश और सैलाब से जनजीवन बेहाल। कई जिलों में हालात गंभीर। आसमानी आफत का असर अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है, पूर्वोत्तर में भी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। असम के कई जिले इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। असम बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, कामरूप, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कामरूप, कार्बी, आंगलोंग और तिनसुकिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घरों के अंदर पानी भर चुका है, सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं और कई जगहों पर आवाजाही बंद हो गई है। पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कई परिवार अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं। और राहत का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की मार सिर्फ लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है, बल्कि इसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ा है। असम में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने का खतरा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। असम में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 3,75,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव में 1,86,000 और जोरहट में 1,15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। घरों से लेकर खेतों तक पानी भर चुका है। राज्य की कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग नदी, शिवसागर की किखोर और देसांग नदी, गोलाघाट की धनसिरी और श्रीभूमि की नदियां उफान पर हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। शिवसागर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश ने असम की राजधानी गुवाहाटी की रफ्तार भी थाम दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें गुवाहाटी के एक पेट्रोल पंप की है, जहां पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर दुकानों, बैंकों और बाजारों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उफनती नदियां गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन रही है, तो दूसरी तरफ शहरों में जल निकासी की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश और बाढ़ के इन हालातों में सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
6: You're listening to CNBC.
7: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
8: Keep it on smooth jazz.
9: This is Roots Reggae
10: exclusively on TuneIn.
11: This is classic hip hop
12: exclusively on TuneIn.
5: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music and news you love anytime you want.
13: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: परीक्षा संशोधन बिल से पहले प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश, नंदन नीलेकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स का ऐलान किया, कहा पारदर्शी बनाएंगे परीक्षा प्रक्रिया, लाएंगे कठोर कानून। पेपर लीक को सील करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आज संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन बिल, 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की जेल की सजा, 2 महीनों में जांच करनी होगी पूरी। इस्तीफा और आंदोलन के अंत के बाद नई सियासत की शुरुआत, पैलेट गन को राहुल ने बनाया नया मुद्दा, गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, पटना में पुलिस के हाथ AK-47 को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में प्रतिभागियों से पीएम का संवाद, 74वां विलेज घूमकर लौटे 400 युवाओं ने प्रधानमंत्री से साझा किया अनुभव। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता पहला गोल्ड, 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक, पीएम समेत तमाम दिग्गजों ने दी बधाई। जंतर मंतर पर आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उस पर सियासत शुरू हो गई, विपक्ष सरकार को घेरने की अपनी रणनीति अपनाने पर विचार कर रहा। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ हुए हिंसा पर जवाब मांगा है, साथ ही विपक्ष ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद कहा जा सकता है कि संसद में जबरदस्त हंगामे क्या सार है।
1: जंतर मंतर पर अब ना तो आंदोलन की तस्वीर दिख रही है, ना आंदोलनकारी दिख रहे हैं, और ना ही वो सुरक्षा घेरा और बैरिकेड्स हैं। अब यहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ दिल्ली अभी भी उसकी सियासी तपेश महसूस कर रही है। एक तरफ सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी तेवर दिखा रहा है। छात्रों पर 20 जुलाई को हुए एक्शन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है। पत्र लिखकर राहुल ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने छात्रों पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया था, घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया। राहुल ने यह आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से पूछा है कि क्या आपने पैलेट गन या अन्य घातक हथियार इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, अगर आपने नहीं दी थी तो किसने दी। पार्टी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी और सवाल करेगी।
2: On our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament.
1: कांग्रेस कह रही है कि कौरवी शासन का अंत हुआ और विपक्ष रूपी पांडवों का नया उदय हुआ है।
3: 12 साल बीत गए हैं कौरवी शासन की, मैं तुलना करता हूँ मोदी सरकार की। पांडव लौट के आ गए हैं युवा के रूप में, राहुल गांधी के रूप में, विपक्ष के रूप में। अब वहां भारत होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान सजेगा और पांडव जीतेंगे।
1: सोमवार को एक बार फिर संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी।